आए तो थोड़ा सुकून से एकदम से जवाब देने की जरूरत नहीं है, पानी पी लीजिए, अपनी जगह बदल लीजिए, वजू कर लें, खड़े हैं कमरे में तो कहीं बाहर चले जाएं, चंद मिनट के लिए गहरी सांस लें और दिल में आहिस्ता से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। ये छोटे अमल इंसान के दिल की रफ्तार को बदल देते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि मुझे गुस्से में कुछ समझ में नहीं आता।

सोने लगे, अपने माइंड को डाइवर्ट करें, पानी पी लें, घर से बाहर निकल जाएं, ऑफिस में है तो ऑफिस वालों से उस वक्त बात करने से इज्तनाब करें, थोड़ी देर कह दीजिए कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता। इस तरह से होगा ये कि आपकी वो बात जो बहस थी या कुछ भी जो एक बहुत बड़ी लड़ाई बन सकती थी, आपके ताल्लुक को खत्म कर सकती थी, वहां आपका ये थोड़ी देर खामोश रहना आपको कमजोर नहीं साबित करेगा बल्कि आपके रिश्ते को बचा लेगा। और याद रखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने आपको बताई थी, ताकतवर इंसान वो नहीं जो कुश्ती में किसी को पिछाड़ दे, बल्कि ताकतवर इंसान तो वो है जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखता है। चिलिस्टर्स, ये थी हमारी आज के एपिसोड में, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और आप भी अगर गुस्से में मुब्तला रहते हैं तो अपने गुस्से को थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश जरूर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस गुस्से की आदत से बिल्कुल छुटकारा पा लेंगे, इंशाल्लाह। आमीन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक एक और अच्छी सी हदीस के साथ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने सब वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम कुरान के मोती में आपका खैर मकदम है। वैसे एक अहम मौजू पर आज गुफ्तगू होगी जिसका ताल्लुक है तसव्वुर खुदा, अल्लाह पर ईमान और जिंदगी को हम किस जाविये से देखें। ठीक है सामिन किराम, इन जो मौजूआत पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अल्लाह की रहमत की बात आ जाती है और सबसे पहला जो सवाल है वो ये कि रहमत इलाही कहाँ है या इस दुनिया में अल्लाह की रहमत कहाँ है। खुसूसन जब इंसान अपने गिर्द दुख बीमारी आजमाइश महरूमी और परेशानी देखता है तो कभी दिल के किसी गोशे से ये सवाल उठता है कि अगर अल्लाह रहमान रहीम है तो फिर उसकी रहमत हमें कहाँ दिखाई देती है। अच्छा जी, अगर इस सवाल को एक दूसरे जाविये से देखने की कोशिश करें कि ये पूछने के बजाय कि अल्लाह की रहमत कहाँ है, यूँ पूछिए कि इस कायनात में आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ अल्लाह की रहमत नहीं है, वो कौन सी मखलूक है जिस तक उसकी रहमत का कोई हिस्सा नहीं पहुँचा। कुरान हमें मलाइका की एक नहायत खूबसूरत दुआ सुनाता है, अर्श उठाने वाले फरिश्ते और उसके गिर्द मौजूद मलाइका अपने रब की हमद तस्बीह करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं और अहले ईमान के लिए मगफरत मांगते हैं। अर्ज करते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

0: FM 107 Time Check.
1: भाई देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सुबह के 6:01 हो चुके हैं। मंसूरा में मैंने एक घोड़ा बांधा हुआ था, वो मेरी गली से भाग गया है। जिसको मिले उसे मैं नाम दूंगा। उसकी आवाज़ कुछ इस तरह है, तो ये आवाज़ पहचान लीजिएगा, जहाँ मिले उसे बस पहुँचा दीजिएगा मुझ तक प्लीज़। बहुत याद आ रही मुझे।

0: रूम करे शेक अप, आँखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आँखों को खोलो वेक अप.
1: Hey,
2: हाजी
0: तो हवाला में कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
2: wake up. Assalamualaikum. 6:02 में दो हवाला कबीर FM 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है सर जी. एंटरटेनमेंट को किधर भी जाने नहीं देंगे. और बाकी भाई पूछ रहे जो घोड़ा खो गया है वो कौन सा रंग का है, चित कपड़ा है भाई वो. उसका जीव सा रंग है वो, मैं क्या बताऊँ आपको. बस पहचान, मैं आवाज सुना दी ना, आवाज से पहचानिए. कलर छोड़िए आप और मैसेज करते रहिए 666-22107 पे. गुड मॉर्निंग सबको. वेंसडे तक पहुंच चुके हैं हम, हिम्मत बना के रखिए, एक दिन और बाकी है. एक मैसेज आया है आसिफ आलम साहब का, लिखते हैं ओए सलाम मेरे भाई को, गुड मॉर्निंग मेरे वीर. मेरे भाई बहुत सारा प्यार लिखते हैं. भाई आज का क्या है किरदार जो कि है, क्या जॉकी है आपका है आज का किरदार जॉकी, क्या मतलब ओ नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ज्यादा सोच लिया आज आपने. सुभाष भाई वालेकुम अस्सलाम. मैं बढ़िया भाई, गुड मॉर्निंग. क्या हाल है तौफीक साहब फ्रॉम अल वखरा मैसेज कर रहे हैं. वालेकुम सलाम तौफीक भाई. बस कर रहे हैं कलर कौन सा है, ये मोहसिन भाई ने पूछा था मुझसे. रोल नंबर 2 मोहसिन भाई. गुड मॉर्निंग, आप फ्रंट बेंचर हैं हमारे, बैठिए आगे आराम से माशाल्लाह. और एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई आपसे एक मेहरबानी है. अच्छा एक मेहरबानी है भाई, कृपया करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज दिया करें, मुझे बहुत आदत लग गई है लेकिन मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ. आज मैं स्पेशली सुबह उठा हूँ आपको याद दिलाने के लिए कि मुझे भाई सिर्फ ये याद दिलाने के लिए आप सुबह उठ गए. मेरा भाई बहुत प्यार. मेरा भाई कैसा, नहीं मैं इंशाल्लाह भाई भेजूंगा, टेंशन मत लो, आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको कहानी मिल जाएंगी. डोंट यू वरी ओके. 6:04 वैसे तो हो चुके हैं, आपको तो पता ही है शो का फॉर्मेट क्या है. एक मैसेज जो कि मतलब हाँ मैं वो इस बात में समझ गया था, मैं थोड़ा सा फंस गया. सुबह सुबह मशीन थोड़ी ऑन करने में टाइम लगता है भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार. आज नहीं, वो जॉकी नहीं है आज के शो, वो सॉरी स्टोरी में बात अगर स्टोरी की आप करें तो आज की कहानी भाई साहब, आज की कहानी ओए आज आपको बहुत मजा आने वाला है, आज आपको कुछ ज्यादा ही मजा आने. पता है मैं जब भी कोई कहानी सुनाता हूँ मुझे लगता है नहीं इससे बढ़िया तो नहीं मिल सकता ही. ना, तभी मेरे सामने कुछ ना कुछ ऐसा किस्सा आ जाता है जो मुझसे ये कहलवा देता है कि भाई ऐसा भी है. ये तो उससे भी ज्यादा है. तो आज जो आप सुनेंगे यू आर नॉट रेडी फॉर दिस माई फ्रेंड. एक मैसेज है भाई, बहुत दिन हो गए हॉरर स्टोरी नहीं सुना है. भाई सुबह हॉरर स्टोरी का प्रोटोकॉल नहीं है मेरी जान. जब शाम को शो आएगा इंशाल्लाह तब आपको हॉरर स्टोरी मिलेगी, सुबह मेरेक अलाउड नहीं है. एक वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या मैं बढ़िया भाई अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ख्याल है आपके. और एक मैसेज है, एक लंबा हॉरर स्टोरी लेकर आओ भाई, सुबह सुबह नहीं सुना सकते आसिफ भाई, यही तो मामलात हैं, क्या करें हम नहीं कर सकते. और एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम अस्सलाम. मुझे लग रहा है कि आज की कहानी में कोई घोड़ा नहीं, कहानी में घोड़ा नहीं. लोग जो है सुबह सुबह की इंट्रो से सोच लेते हैं कि कहानी में पक्का ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है. ओके ज़रा चिल करें. आप समय से आगे चल रहे हैं. पर सुबह सुबह जो बच्चे भी तैयार हो गए और जा रहे हैं स्कूल के लिए, और जो माँ बाप हैं जो उन्हें तैयार करके जा रहे हैं स्कूल के लिए और ऑफिसेज के लिए, उन सबको मेरा प्यार सलाम गुड मॉर्निंग. 10:33 के बाद मिलेंगे तला भाई की आवाज़ में सुबह के अस्कार. और सबके लिए दुआ मांगिए और अपने लिए ख़ास करके अलग से दुआ मांगिए, भर भर के मांगिए, भर भर के. ठीक है, स्टे ट्यून्ड.
3: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिक बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर.

0: मुझे 5 घंटे काफी भाई नींद खींचने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। हाँ तो सवाल पे रहते हैं, ये मेरा सवाल है क्योंकि देखो एक एक जो पूरी पूरी ऑडियंस है इस पर मैंने वोटिंग भी देखी जो ऑनलाइन मौजूद है, उसमें यही है कि कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है ट्रेडिशनल तरीके से एक हद तक पढ़ाई होनी चाहिए, एक हद तक 8th class तक बच्चों को ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा लो, चौक ब्लैक बोर्ड बढ़िया बढ़िया सब वैसे ही, उसके बाद टेक्नोलॉजी आपको लानी ही पड़ेगी। और कुछ कह रहे हैं नहीं शुरू से पढ़ाओ इन्हें, हाथों में इनके टैब दो तब जाके ये समझेंगे टेक्नोलॉजी को। तो आप किस तरफ हैं और क्यों हैं ये मुझे बता दीजिएगा 666-22-107 पर, 666-22-107 पर। हमारी बहन सुम्बुल खुद टीचर हैं, उन्होंने मैसेज करके बोला आई वॉन्ट ट्रेडिशनल। तो बहन जब आप कह रही हैं और आप टीचर हैं, टीचर के आगे कोई कैसे बोल सकता है मतलब, तो बहन वाई ट्रेडिशनल, मतलब क्यों आप ट्रेडिशनल पढ़ाई की तरफ हैं ये मेरे को बताओ, क्यों आपको लगता है कि पुराना जो तौर तरीका है पढ़ाई का वो बहुत बढ़िया है। एट सर्टेन एज, व्हाट इज दैट सर्टेन एज, व्हाट इज दैट सर्टेन एज। आज टीचर साहिबा जो है मुझसे किश्तों में बात कर रही हैं एक ही वर्ड आ रहा है मेरे पास। एक मैसेज है, आई मीन थैंक्स ब्रदर मनाना ब्रो है क्या, अप टू ग्रेड 8th, तो कह रही है 8th class तक ट्रेडिशनल पढ़ाई होनी चाहिए उसके बाद टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए, ऐसा सुम्बुल बहन का कहना है और वो खुद टीचर हैं तो हम इसमें उनसे बहस नहीं करेंगे। कल हमने देख लिया था कि बहस करने का नतीजा क्या था। एक मैसेज है, 2 दिन से आप बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चला रहे, मेरी इच्छा, मेरी नहीं चला रहा दिलो थोड़ा सा लिटिल ये ठीक है। एक मैसेज है, प्लीज कॉल मी, नहीं करूंगा कॉल, पहले बताओ किस बारे में बात करनी है सलीमुद्दीन अगर दूसरी तीसरी बात करी ना तो दिक्कत मिला रहा हूँ, कॉल मजाक कर रहा हूँ रुको एक सेकंड, इनको जरा कॉल मिलाई जाए देखते हैं। मुझे पता है तीसरे चौथे टॉपिक की बात हो सकती है पर आई वॉन्ट टू टेक द रिस्क, आई डोंट वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट प्रॉब्लम्स। एक कॉल मैंने कर दी है, कॉल लग जाए बस भाई को फिर बात हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातहु। कबीर भाई क्या हाल है?
0: बढ़िया भाई, हम तो बढ़िया रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम।
1: तो सुबह सुबह मतलब पूरा मूड फ्रेश कर देता है।
0: थैंक यू मेरा भाई, बहुत प्यार भाई को
1: माशाल्लाह। और कबीर भाई क्या हाल चाल? ठीक ठाक,
0: बढ़िया
1: भाई, अच्छा
0: भी बराबर टना भाई क्या भाई, बस सब कुछ शानदार।
1: आपका जो आज टॉपिक आपने छेड़ा ना कि एडुकेशन के बारे में कि ट्रेडिशनल में सही है या मॉडर्न में,
0: हाँ हाँ
1: मैं अपने एक ख्याल पेश करना चाहता हूँ इसी मामले में।
0: क्या पेश करना चाहता हूँ
1: मतलब मैं अपना जो ओपिनियन है ना,
0: पेश करो
1: बोलना चाहता हूँ।
0: हाँ, बोलो।
1: जैसे कि आपने सुना होगा हमारा कुरान में लिखा है कि अल्लाहु खलक लकुम मिन बुतून उम्महातिकुम, उसके बाद क्या बातों में ध्यान दीजिएगा, वजअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। मतलब अल्लाह ने वर्डली क्या किया, बोला कि मैंने आप लोग जब अपना माँ के पेट से जन्म लिया ना आप लोगों ने, फिर आप लोगों को कुछ नहीं पता था, फिर मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाया, कान बनाया, फिर आप लोगों की आंख बनाया, फिर जाके दिल बनाया। सुनिए, इसमें जो मतलब सीरियल नंबर लगाया ना, इसके पीछे बहुत बड़ा हिकमत है।
0: अच्छा वो तो ठीक है, ये तो रिलीजियस बात हो गई। मैं सुनो इतना भाई, देखो क्या है ना, मैं लोगों को पहले बता के रखता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट टाइम होता है मेरे भाई, तो अभी जो सवाल है फोकस करते हैं, रिलीजियस एंगल नहीं देखे तो,
1: रिलेटेड है हाँ। कि हाँ जी, ये रिलेटेड है कि हाँ। सीखने का साथ इसका रिलेटेड है
0: हाँ,
1: कि कोई भी बच्चा पहले कान से सीखता है, उसके बाद आंखों से, उसके बाद दिल से। इसलिए जो क्लास 8 तक जो ट्रेडिशनल वे है ना वो सबसे बढ़िया है, उसके बाद कभी भी कामयाब नहीं होगा मेरे ख्याल से।
0: क्यों? तो टेक्नोलॉजी भी तो आंख और कान उसमें यूज होगा ना।
1: कान को जो यूज है ना टेक्नोलॉजी से, कान का यूज कभी भी नहीं कर सकता प्रॉपर वे में,
0: क्योंकि
1: दूसरा उसके सामने रीड आउट करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी कितना भी रीड आउट करे, टेक्नोलॉजी का रीडिंग आउट अपना जो ब्रेन में वो मेमोरी में ये क्या बोलता है सेव नहीं होता जल्दी। इंसान के साउंड की जो रीडिंग है ना, इंसान के साउंड और टेक्नोलॉजी के साउंड में आसमान जमीन का फर्क होता है।
0: अच्छा ओके,
1: ये मैं मतलब अपना जो मतलब ओपिनियन है आपको बता रहा हूँ, बाकी लोगों का अपना अपना मर्जी है, कौन किसका सुनेगा।
0: देखते हैं भाई लोग क्या कहते हैं, वो तो बहुत गहरी बात कह दी आपने, देखते हैं भाई लोग क्या कहते हैं।
1: मतलब इंसान की साउंड कानों में जाके दिमाग में सेव होता है। आप छोटे बच्चों को जैसा मतलब एकदम बचपन में कोई सूरा सिखा दो, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आप वो टैप में सुना वो सूरा, देखो कितना दिन के बाद वो फिर याद रहता है।
0: नहीं ऐसा नहीं है, मैं इससे पूरी तरह से अग्री नहीं करता मेरे भाई, ऐसा भी नहीं है यार, इतना बुरा हाल भी नहीं है। हाँ इतना बुरा हाल भी नहीं है।

0: लेकिन मैं ऐसा महसूस किया कि मेरे को लगता है ऐसा ही है।
1: अच्छा,
0: फिर जाके वो कान और आँख दोनों मिला के पढ़ने का, फिर कान आँख और अपना दिल तीनों मिला के पढ़ने का।
1: मैं आपका पर्सपेक्टिव समझ गया, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी तो कान आँख दिमाग तीनों चीजें लगती है ना भाई, उसमें क्यों नहीं लगेगी, मैं ये नहीं समझ
0: पा रहा। आप दिन भर अगर मतलब टिकटॉक और फेसबुक में कितना स्क्रॉलिंग करते
1: नहीं,
0: हो।
1: नहीं फेसबुक को छोड़ दो, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ।
0: आपको अगर पूछा ना एक भी बात याद नहीं रहेगा।
1: नहीं नहीं नहीं, वो तो फेसबुक पढ़ाई नहीं कर रहा ना, मैं तो पढ़ाई के लिहाज से कह रहा हूँ। मैं
0: फॉर एग्जाम्पल कुछ तो उधर पढ़ते होंगे, कोई टॉपिक देखते होंगे।
1: मैं कुछ नहीं पढ़ता भाई,
0: याद नहीं रहता। मैं खुद मतलब ऑनलाइन में बहुत कुछ पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद मेरे को वो जल्दी भूल जाता हूँ, लेकिन किताब में पढ़ता हूँ तो याद रहता है।
1: अच्छा ठीक है, ये भी ओपिनियन ठीक है। चलो देखते हैं लोग क्या कहते हैं। ओपिनियन रिस्पेक्टेड मेरा भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए भाई।
0: ओके मेरे भाई, थैंक यू।
1: वालेकुम सलाम। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, ट्रेडिशनल तरीके से ये मैसेज किया है मुझे, क्यों नहीं किया है ये, मैं बता कंफ्यूज रहता हूँ, मैं आपका नाम क्या पढ़ूँ, मेरे पास एक आपका नाम है आयशा। अच्छा आयशा है ना, फिर ठीक है, थैंक यू सो मच आयशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम अब्बर शेर, क्या बात है भाई, हाँ वही जैस भाई, क्या करूँ भूलना पड़ता है भाई। एक मैसेज नेक्स्ट भाई आसिफ भाई, आप बहुत अच्छे से जाते हैं मेरे को। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, टेक्नोलॉजी गिव्स यू शॉर्टकट्स बट ट्रेडिशनल स्टडिंग builds the actual brain power to figure out things on your own. यहां मैं agree करता हूँ, shortcut मिल जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने बाद में message किया है, at the end of the day, high tech tools are great, but the old ways of studying are what actually makes learning stick. पर कितने क्लास तक आपको लगता है पढ़ा देनी चाहिए, उसके बाद जो है नहीं होना चाहिए, this is what I want to know. शहजादा सलीम देखते हैं, टीचर दीदी शी इज वेरी एक्सलेंट जजमेंट, अगर आपको जज कर लेना भागते फिर होगा भाई। एक बच्चे गुड मॉर्निंग कबीर भाई, मारी तरफ से भाई भाई गुड मॉर्निंग, अच्छा थैंक यू सो मच भाई। एक दो मिनट और 14 सेकंड का मेरे पास वॉइस नोट आया है, तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं सुन सकता। एक मैसेज संबुल बहन का, आज मैं नहीं बोलूंगी टॉपिक पे, टू लॉन्ग हो जाएगा। नहीं बहन आप बोलिए ना, प्लीज़ आपके बोलने की ज़रूरत है आज। जासिम भाई वालेकुम अस्सलाम भाई, टॉपिक ये है कि भाई पुराने तौर तरीके से पढ़ाई जो है कब तक होनी चाहिए बच्चों के लिए, और टेक्नोलॉजी कब इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, ये है सवाल। देखो मैं उनमें से नहीं हूँ जो रेडियो बजा के गाएगा कि टेक्नोलॉजी बहुत बुरी है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। आई वुड नॉट से दैट, बिकॉज टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली उनके हाथ में आएगी, आपको पसंद हो ना पसंद हो, ये दुनिया की आज की डिमांड है, कहीं भाग नहीं सकते आप, तो अल्टीमेटली वो उससे मिलेंगे। एक कॉल आ रही है सुमुल बहन की है, अस्सलाम वालेकुम। आपकी जरूरत है, एक टीचर का पर्सपेक्टिव हमको चाहिए, कैसे आज आपको जाने दें, बताइए।
2: मैं आपको
1: रूट कॉज बताता हूँ। एक्चुअली 2-3 कंट्री से मैं नाम नहीं ले रहा उनका, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई 8th या 9th क्लास तक कम से कम,
2: हाँ
1: या तो उन्होंने सिस्टम ये कर दिया कि भाई एक हद तक ट्रेडिशनल पढ़ाई होगी, मतलब पुराने तौर तरीके से 8th क्लास तक, और उसके बाद हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे, शुरुआत से नहीं लेके आएंगे। तो आप किस साइड हैं, डू यू थिंक दिस इज द राइट वे टू डू इट, या फिर आपके पास कोई और तरीका?
2: This is the right way. पहले स्कूल को क्या लगा कि भाई हम अपने बच्चों को बहुत मॉडर्न बना देंगे, ठीक है। तो जो आप बोल रहे थे ब्लैक एंड बोर्ड का, दैट इज चॉक एंड टॉक मेथड, तो वहाँ पे उन्होंने ये सोचा कि हमें इसको खत्म करना है, हमें टेक्नोलॉजी को ऐड करना है, लेकिन उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, तो फिर अब ये इम्प्लीमेंट हुआ है अगेन,
1: है ना। तो दिक्कत क्या आती है टेक्नोलॉजी से पढ़ाने में?
2: सर्टेन एज तक बच्चा जो है ना, अगर आप बात करें किंडरगार्टन के, तो वो एक कहते हैं ना कि वो लर्निंग बाय सीइंग का कांसेप्ट होता है, कि वो देख के सीख रहा है।
1: करेक्ट है।
2: टेक्नोलॉजी का यूज करना, आप बोल रहे हो आईपैड देना, पहले उनको एक टेक्नोलॉजी सही से यूज करने का एक तरीका सिखाया जाए। एक छोटे बच्चे को आप बोलोगे कि भाई बारकोड स्कैन करो, चलो क्विज चल रहा है इसको करो, उसको नहीं आता है, दे डोंट नो हाउ टू रीड।
1: सही है।
2: It is about the aids, the audio visual और बहुत सारी aids ले, तो जो मतलब एक certain age तक audio visual aids का ठीक है। अभी मैं बोलूँ कि नहीं स्मार्ट बोर्ड हटा दो क्लास से, नहीं हम ब्लैक बोर्ड लगाएंगे और चौक लेकर आएंगे लिखेंगे, नहीं नहीं वो भी नहीं चाहिए भाई। स्मार्ट बोर्ड में भी एक होता है फंक्शन के, आप उसको बोर्ड पे कन्वर्ट करो और स्टाइलस से लिखो, दैट्स इट, वो हो गया आपका बोर्ड।
1: हाँ राइट, तो मतलब बेसिक प्रॉब्लम ये है कि

0: टेक्नोलॉजी से पढ़ाने में आपको लगता है कि थोड़ा सा डम डाउन हो जाता है मतलब मामला,
1: इसीलिए अपॉन बस एक सर्टेन एज के बाद जरूरत पड़ती है टेक्नोलॉजी की, जैसे कि आप बोल रहे हो ग्रेड 8 के बाद ठीक है बच्चा समझदार हो जाता है, उसको आप जो समझाना चाह रहे हो कंसेप्ट उसको समझ में आता है, तो वहाँ पे जरूरत है, क्योंकि आप बच्चे को सिर्फ एक वो नहीं कि भाई आपने अपना टारगेट कंप्लीट करा आपने बच्चे को पढ़ाया चाहिए, नहीं नहीं आप एक फ्यूचर लीडर को बना रहे हो और उसको आनी चाहिए वो चीजें यूज करना।
0: हाँ राइट, तो मतलब आगे जाके टेक्नोलॉजी देनी ही पड़ेगी बट एक हद तक रोक के रोकनी चाहिए। हाँ ओके, गेट योर पॉइंट, ओके ठीक है। और ये जो आपने
1: जब अभी देखिए टेक्नोलॉजी का क्या मतलब एक ड्रॉबैक जो व्हाट आई फील कि आजकल पहले हम कितना रीड करते थे कितना लिखते थे, आजकल वो नहीं है, बच्चों को लिखना की लिखने की हैबिट नहीं है बिकॉज दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी से कॉपी मारा कॉपी पेस्ट किया और प्रिंट निकाला, दैट्स इट, टीचर माय असाइनमेंट कंप्लीट, टीचर दे बाबू,
0: राइटिंग अच्छी मिलती है आजकल,
1: चैट जीपीटी यूज करती है,
0: राइटिंग अच्छी मिलती है आजकल स्कूल में, नहीं मिल रही है आज आपको आजकल?
1: नहीं नहीं,
0: क्या बात कर रहे हैं आप, सही में
1: एग्जैक्टली क्या लिखते हैं मुझे खुद समझ में नहीं आता, मैं सोचती भाई दोबारा पढ़ूं या मैं एबीसी फिर से लर्न करूं। अच्छा एक कुछ चीजें बहुत चेंजेस हुई है, हमने पढ़ा एबीसी, आजकल फोनिक्स आ गए तो ठीक है, समहाउ इट इज वेरी गुड।
0: हाँ उसमें क्या है साउंड से,
1: उसमें फोनिक्स, हाँ साउंड से रीडिंग करना और पिक्टोरियल बेस्ड, तो ठीक है बच्चे को आपने पिक्चर देख के उसके साउंड सिखा दिए, उसको रीडिंग का कंसेप्ट आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया, बट वहाँ टेक्नोलॉजी कैसे यूज करोगे?
0: हाँ ओके ओके,
1: टेक्नोलॉजी आप अपने लिए यूज करो, बच्चे के लिए नहीं है, बच्चे के लिए एक सर्टेन एज के बाद जब उसको प्रॉपर हैंडलिंग आना चाहिए चीजों को।
0: एक मेरा पर्सनल सवाल भी है, आजकल के राइटिंग के नंबर मिलते हैं? क्योंकि हमारे टाइम पे थोड़े से नंबर मिल जाते थे या फिर वो
1: हमारे टाइम पे मिलते थे, और आपको याद होगा जब हम लोग 10th 12th के एग्जाम देते थे तो ये होता था कि नहीं पेपर बिल्कुल खाली नहीं छोड़ के आना, सब कुछ लिख कर आना, लेकिन आजकल नहीं है कॉन्सेप्ट। अगर बच्चे की कैन यू इमेजिन की अगर बच्चा लिखना चाह रहा है पार्ट PARTS इसकी स्पेलिंग होती है, अगर उसने PRTS लिखा भाई बच्चे का सेंस सही है, आप उसको नंबर दो, स्पेलिंग में क्या रखा है, व्हाई यू गॉट,
0: क्या बात कर रही हैं आप सही में,
1: एग्जैक्टली
0: अरे भाई
1: अगर बच्चे के कहने का सेंस सही है और स्पेलिंग मिस्टेक है आप उसको मार्क्स दोगे, क्योंकि वो सोच रहा है, थिंकिंग है उसकी वो जो आप चाह रहे हो।
0: क्या बात है, तो बड़ा कन्वीनियंट है आज की तारीख में बच्चा होना, ये तो क्या बात है, अच्छे कोर्स रहे
1: आज की तारीख में नंबर गेन करना बहुत इजी।
0: क्लियरली
1: मेरी हमेशा से कोशिश रहती है मैं अपने क्लास में जहाँ तक टेक्नोलॉजी का यूज है वो कम करूँ भाई, मैं नहीं यूज करती और इस बात के लिए मुझे कितने सारे वार्निंग लेटर्स मिल गए आपको मैं बताऊँ ये बात।
0: अच्छा ये भी हो चुका है। ओके ये तो चलो, ये आप बहुत बड़ा, ये तो टीचर होने के अपने आप में बहुत सारे इंटरनल लॉज है ना,
1: मुझे डफर्स नहीं बनाना जिनके जो मंद बुद्धि जिनको बोलते हैं।
0: कितने टाइम बाद मैंने ये वर्ड सुना है एक टीचर के मुंह से, मजा आ गया। ओके ठीक है
1: यार, मतलब आप बच्चे ना जैसे कि आपने उसको कोई एक टारगेट दिया कि भाई ये पहले हम लोग क्या फील्ड विजिट करते थे कि हाँ हमारे टीचर्स ने एक प्रोजेक्ट दिया है हमें, हम फील्ड विजिट करी, हमने उसके बारे में सारी नॉलेज लेकर आए, ग्रैब करी, लिखा, असाइनमेंट सबमिट करा। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ऐसा बच्चे की वो क्रिटिकल थिंकिंग ना टेक्नोलॉजी ने ब्लॉक कर दी है एक सर्टेन एज पे।
0: तो आप मतलब आप खुद भी तो पढ़ाई करनी पड़ती होगी भारी भरकम पढ़ाई, क्योंकि बच्चे तो भी अपडेटेड है काफी।
1: अच्छा टेक्नोलॉजी आप क्या बोलोगे बच्चे को, बच्चा घर जो घर में वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, पेरेंट्स उसको आईपैड्स दे रहे हैं, अब हम उसका स्क्रीन टाइम स्कूल में भी करेंगे, आई एम नॉट एग्री विद दिस।
0: क्या बात है यार, तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन सुमुल बहन को, बहन कल कल जो आपने किया मुझ पे चिल्लाई है वो सारा माफ कर रहे हैं हम। अरे मजाक कर रहा हूँ। नहीं बहुत बढ़िया,
1: कुडोस टू यू, स्टैंडिंग ओवेशन। हां लीडर को बनाते हूं, हम नहीं चाहते कि उसको डम वो डफर बना के भेजें कि भाई एक वो मंद बुद्धि है उसको कुछ आता ही नहीं है।
0: नहीं मजा आ गया आपके आपके
1: बस में होता ना,
0: बस में होता तो
1: जानो कबीर। हां I am not agree with the education system nowadays.
0: No. Okay. With you on this. बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात बोली आपने और सब हम सब आपके साथ है, बहुत बढ़िया।
1: और अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं,
0: जी,
1: मैं उनको आज भी भले ही स्कूल कुछ कराता है, मुझे उससे इट्स अ पार्ट of the school. लेकिन मैं अपने बच्चों को आज भी ट्रेडिशनल वे से ही पढ़ाती
0: हूँ. बेहतरीन.
1: I focused on writing.

0: थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई फोकस्ड ऑन रीडिंग ऑल्सो उनको बोल उनका कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस लेवल वो उसके बाद बाकी चीजें बाद में भाई टेक्नोलॉजी खुद ही यूज कर लो वो ऐड हो ही जाएगी एनी हाउ कहीं से भी
1: घुस और आप तो वैसे भी वाईफाई बंद करके रखती है वाईफाई बंद कर देती है टोपी बनाती है आप
0: बुद्धू बनाती हूँ बच्चों को
1: एग्जैक्टली
0: मैं बंद कर देती हूँ कल भी आपको मैं यकीन नहीं जानो मैं स्कूल में थी मेरे बेटे का मैसेज है मम्मा फोन कहाँ रखे गई हो ऐसी जगह छुपाती हूँ ना बच्चे को मिलता नहीं
1: बहुत शातिर टीचर है भाई बहुत शातिर
0: घर पे गई ना तो सो रहा था आई फील सो हैप्पी कि एटलीस्ट इसने अपने माइंड को पीस दिया वरना इसके हाथ में फोन होता ना तो ये फोन
1: बहुत बढ़िया बहन वक्त देने के लिए
0: कंट्री में ना मैंने कल दो दिन पहले ही कुछ पढ़ रही थी कि एक कंट्री के स्कूल ने ये चीज इंट्रोड्यूस किया कि 45 मिनट तक बच्चों को स्लीपिंग टाइम दोगे
1: 45 मिनट का स्लीपिंग टाइम स्कूल में दिया जाएगा ऐसा है क्या
0: क्योंकि उनको एक उनका पैटर्न है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो और अगर आप एआई टूल्स यूज कर रहे हो तो आप 45 मिनट्स को अपने ब्रेन को स्लीपिंग रेस्ट पोजीशन दोगे उसके बाद फिर भाई आपने एआई यूज करा स्लीपिंग मोड पे गए और फिर आप अपना दिमाग खुद का चलाओ
1: यार तो बहुत बड़े ये 45 मिनट्स का बीच में मिल रहे हैं रिसेस के अलावा ये लंच वंच के अलावा ये
0: रिसेस के अलावा 45 मिनट स्लीपिंग टाइम
1: अरे यार तो बहुत बढ़िया है आप मुझे वापस स्कूल में भर्ती करवाई ये तो बहुत शानदार चीज है
0: ये आई लाइक दिस आइडिया क्योंकि जब आप कभी भी आप ये देखो कि आप मतलब एक घंटे दिन में एक घंटे भी आई क्लोज करके आप थोड़ा सा रेस्ट करते हो अपने माइंड को पीस देते हो यू आर एनर्जी बॉम्ब अगेन
1: डन हो गया मैं आज 45 मिनट में सो के रहूंगा बीच शो में सो जाऊं तो समझ जाएगा ठीक है बहन की आपकी गलती है
0: गाने लगा के सो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता भाई टेक्नोलॉजी का यूज
1: करो और क्या मैंने कहानी ढूंढी भाई मेरा बनता है सुना
0: अरे आप देखो आप रिकॉर्ड करके लाओ घर से चालू कर दो सो जाओ बस बात खत्म
1: बहुत बढ़िया ऐसी ही टीचर की जरूरत थी मुझे बचपन में अगर मिल गए मैं वापस स्कूल में आ रहा हूँ आपके डन हो गया एडमिशन दिलाइए
0: लेकिन कैसे कर सकते हैं वो मैं उसके खिलाफ हूँ बहुत वो कभी बाद में डिस्कस
1: करें थैंक यू सो मच बहन लेकिन बहुत बहुत
0: शुक्रिया
1: भाई साहब इस टॉपिक में इससे बढ़िया बात तो हो नहीं सकती थी एक टीचर का ओपिनियन बहुत जरूरी था मैं बाकी लोगों के ओपिनियन देख लेता हूँ एक मैसेज है टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर किड्स बिकॉज इट बिल्ड्स एसेंशियल रियल वर्ल्ड स्किल एनहांसेस लर्निंग एंड प्रिपेयर्स देम फॉर फ्यूचर करियर्स जबरान भाई फ्रॉम बहरीन भाई वी कंप्लीटली अग्री व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नॉट मी बट रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ कंट्रीज में ऐसे हैं कि उन्होंने कहा भाई 8वीं कक्षा तक पढ़ाओ 8th क्लास के बाद इनको फिर लगाओ एक कॉल आ रही है अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
1: जी भाई आपका नाम
2: अब्दुल रूफ बात कर रहा हूँ
1: जी रऊफ साहब बताइए
2: ट्रेडिशनल वे में तो ठीक है उन्होंने जो कंट्रीज ने किया 8th के बाद तो जाहिर कुछ सर्वे किए होंगे उनका रिजल्ट अच्छे नहीं मिले होंगे तो मेरा ख्याल है कि ये बच्चे को उसका माइंड एक्सप्लोर करने के लिए ये दिया है कि टेक्नोलॉजी 8th के बाद क्योंकि 8th मिडिल क्लास आने तक बच्चे की मेच्योरिटी आ जाती है और उसमें एक्सप्लोर करने की जो सलाहियत ज्यादा हो जाती
1: है उन कंट्रीज ने पता क्या रीजन दिया है जो आपने कहा आपने तो बहुत भारी रीजन दिया रोहित साहब उन्होंने क्या रीजन उन्होंने कहा कि बच्चों की राइटिंग खराब हो रही है इनको लिखना नहीं आ रहा है दिस इज द रीजन व्हाट दे गिव समझ रहे हैं आप
2: हाँ बिल्कुल अगर चैट जीपीटी और ये जितने भी ये सोर्सेज हैं इसमें जाएगा तो बच्चा खुद नहीं एक्सप्लोर करेगा अपना जहन नहीं लगाएगा
1: तो
2: अल्टीमेट उसको एक रिजल्ट रेडी होके मिल जाएगा जो भी है तो ये चीज उसे उन्होंने बच्चे का जहन खोलने के लिए उसे खुद तलाश करने के लिए तो ये चीजें की हैं जाहिर है उन्होंने पहले अगर बिगिनिंग में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए शुरू की होगी तो वो रिजल्ट नहीं मिले उन्हें उसमें राइटिंग भी खराब हुई बच्चों का जहन भी नहीं खोला तो आई थिंक ये अच्छा स्टेप है
1: पर हमारी तो
2: बच्चों को
1: हमारी तो राइटिंग वैसी खराब है हम क्या करें हमारे तो बचपन से राइटिंग खराब है
2: राइटिंग तो डॉक्टर की भी खराब होती है।
1: क्या बात है, यही मोटिवेशन चाहिए था मुझे।
2: डॉक्टर का लिखा सिर्फ फार्मेसी वाला ही पढ़ सकता है।
1: मेरा लिखा तो भाई वो भी नहीं पढ़ते, भगा देते हैं मुझे।
2: लिखे मूसा पढ़े खुदा।
1: क्या बात कही यार, क्या लाइन ऑफ द डे। फिर हम सब बहुत बहुत शुक्रिया वैसे आपने कॉल करी, माशाल्लाह कमाल
2: है। अच्छा स्टेप है कि बच्चे का जहन खोला जाए, उसे खुद तहकीक करने का मौका मिले, फिर वो 8th आने तक तो जाहिर है मैच्योरिटी आ जाती है।
1: उसके बाद तो अल्टीमेटली देखो टेक्नोलोजी देनी पड़ेगी ना आपको, तो 8th क्लास के बाद दे दो।
2: उससे तो इनकार नहीं है, दुनिया बदल रही है और इतनी डेवलपमेंट है तो ये सोर्सेज तो लेने ही है, लेकिन 8th 9th तक आने तक बच्चे में वो चीज आ जाती है कि उसे फिल्टर कर सकता है उसे, क्योंकि इनकी नेगेटिव चीजें भी अप्रोच कर जाती हैं और उसे वो बहुत, क्योंकि बच्चा अभी कच्चा जहन है तो इन चीजों का उसे जब आदी हो जाएगा तो वो उससे नेगेटिव हो सकता है।
1: डेफिनेटली ठीक है,
2: बहुत सी स्टडीज आई हैं जिसमें ये ठीक नहीं टेक्नोलॉजी, तो लेट देम डिपेंड ऑन दिस थिंग।
1: डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच राहुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ राहुल साहब के बाद कुछ मैसेजेस हैं बहुत सारे, इनफैक्ट मैं एक एक मैसेज ले लेता हूँ। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ रह गया था मैं। हाँ, जकिया भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो, गुड मॉर्निंग, नाउअडेज़ देयर इज़ अ डिबेट ऑफ होम स्कूलिंग एज़ वेल। यस, इस पर हम बात करेंगे। एक मैसेज है भाई, दोनों ही जरूरी है, क्लास 5 तक पुरानी और फिर 6th क्लास से स्टार्ट कर दो। जैसे मैं कह रहे हैं 6th क्लास के बाद शुरू हो जाना चाहिए मामला। इनके बाद हसन भाई ने मैसेज किया है, दोनों मेथड जरूरी है लेकिन टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ कहीं ना कहीं भाई, इट्स अ वेरी हार्ड डिसीजन मगर एब्सोल्युटली। वकास इकबाल साहब कहते हैं इस्लाम भाई हमें चाहिए कि बच्चों को ट्रेडिशनल वे पर ट्रेन करना चाहिए और टेक्नोलॉजी के कॉज एंड इफेक्ट्स बताने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें कॉज बताने से, वो आएंगी इसी पे। ट्रेडिशनल वे इज द बेस्ट वे, वर्ल्ड हैज प्रोड्यूस्ड मेनी जीनियसेस। यहाँ मैं अग्री करता हूँ आपसे। एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई, टेक्नोलॉजी इज द कंटिंजेंसी प्लान ऑफ ओल्ड स्कूल, एग्जाम्पल कोविड। क्या ख्वाजा साहब ने तो मतलब भारी भरकम बात कह दी है भाई। और कह रहे हैं भाई टॉपिक चेंज करो, हमारे सिलेबस के बारे में। जैस भाई कभी कभार बाहर का सिलेबस भी पढ़ना चाहिए बेटे। एक मैसेज है, मिडिल स्कूल 6 से 8वीं क्लास तक इज़ द ट्रेडिशनल ब्रिज वेयर स्टूडेंट्स इवॉल्व फ्रॉम पैसिव टेक यूजर्स इनटू केपेबल सेफ एंड एनालिटिकल डिजिटल क्रिएटर्स। और हमारी, मुझे भी याद है 5वीं क्लास के बाद पेन मिलता था ना, एकदम से चेंज आ जाता था, पेंसिल से ही पेन पकड़ा दिया, फिर हम भारी भरकम पेन लेते थे और इंक बिखेर देते थे। सो समवेयर डाउन द लाइन वो वैसी ही बात है। फराज भाई कहते हैं सलाम भाई, एटलीस्ट स्टार्ट के ग्रेड्स में ट्रेडिशनल स्टडी हो, लेटर ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल के साथ मर्ज करके पढ़ाया जाना चाहिए, आपस में लिंक्ड रहना चाहिए। शहजादा सलीम क्या कह रहे हैं, सलीम कह रहे हैं टीचर दीदी सुपर एक्सप्लेन। बस तरफदारी की जा रहा है, टीचर ने बोला सही बोला होगा। सलाम कबीर भाई, अग्रीड विद सुम्बुल टीचर, टेक्नोलॉजी शुड बी लिमिटेड अंटिल क्लास 8th। ऑलराइट वाहिद साहब, सुम्बुल बहन के लिए तालियां बज रही हैं, वो बहुत बढ़िया, टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। ये जबरान साहब को मैच मैंने पढ़ दिया था, सुम्बुल बहन लिख रही हैं अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज़ द टॉपिक। टॉपिक ये बहन कि कौन सी क्लास तक ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडिंग होना चाहिए, उसके बाद जो है कब टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, क्या कोई है, क्या कोई मुझे सुन सकता है, क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, आपका नाम?
3: उसामा बात कर रहा
1: हूँ। उसामा भाई आज चाय वाय नहीं पी, क्या बात होगी भाई की आवाज को आज?
3: मैं नहीं, मेरी जैसी है आप, मेरे पास आपका कॉल रिसीव हुई आपने। हाँ।
1: अच्छा बताओ उसामा भाई,
3: आपने पहले प्रेस कर लिया लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई थी।
1: अरे रे रे रे, कोई बात नहीं, होता रहते हैं, हाथ से बता के तो नहीं होते। बताइए क्या कहना चाहते हैं, बताइए।
3: मैं वो सिस्टर की बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ। हाँ। लेकिन एक चीज मैं ये भी कहता हूँ कि होना भी चाहिए, क्या कहते हैं आपके टेक्नोलॉजी का यूज, क्योंकि आपका देखिए आपका टाइम बहुत सेव
1: होता है। कौन सी क्लास से?
3: मेरे ख्याल से जब आपका कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्टार्ट हो जाए ना, जिसमें आपको वो, यानी कि उस स्टेज पे आपको मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी यूज कर लेनी चाहिए, जहाँ पे आके आपको रट्टे की जरूरत शुरू हो जाती है।
1: कौन सी क्लास लगती है आपको कि जरूरत शुरू हो जाती है रट्टा मारने?
3: अब आज के अगर हम देखें तो पता नहीं, हमारे टाइम पे तो स्टार्ट हो जाता था रट्टा।
1: उससे
3: पहले तो बेसिक, यानी कि हिस्ट्री होती थी या बेसिक चीजें होती थी, उसमें रट्टे की जरूरत तो नहीं होती थी। लेकिन क्योंकि देखें हम कुछ आपके आप भी 90s वाले हैं, हम 90s वाले के उसमें आपके कुछ ऐसे टीचर्स या वो भी होंगे कि जो बुक में लिखा होता था ना बस वही रीडिंग करवा के वो समझते थे हमने ना पढ़ा दिया बच्चे को। अगर ऐसे ही पढ़ना है तो हम खुद रीडिंग भी कर सकते थे।
1: तो वही वही।
3: और कुछ ऐसे टीचर्स आ रहे थे यानी कि जैसे साइंस के कुछ टीचर्स थे कि जो आपको उस स्टडी के अलावा जो एक्स्ट्रा आपको ज्ञान या मिल रहे थे या जो कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ यानी कि आपको बोल के बताते समझाते थे वो ऐसा समझाते थे कि आपका कहने के वो कानों से आपके दिमाग में उतर जाता था।
1: नहीं आप मैं अभी भी पढ़ा सकता हूँ, आप मुझे ट्यूशन की फीस देते कोई टेंशन नहीं है।
3: मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आपके पास ऑप्शन उस वक्त बहुत लिमिटेड थे, अब आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। आप ऑनलाइन मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी के यूज करते हुए आपको अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आपको बहुत से आर्टिकल्स वगैरह या बहुत सा यानी कि वो मिल जाता है, टॉपिक्स मिल जाते हैं बहुत ज्यादा और टू द पॉइंट मिल जाते हैं। टाइम से मेरे ख्याल से टाइम सेविंग भी है और मोर ज्यादा आपके पास मोर ऑप्शंस हैं यानी कि शिफ्ट करने के। सपोज अगर आपके पास किसी चीज की नहीं आपको यानी कि कोई टॉपिक अगर आपको नहीं हो कर पा रहे आप पिक नहीं कर पा रहे आपके पास एक ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है, हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा ऑप्शन है, वही टीचर है भाई उसी से ही पढ़ना है उसी से ही गुजारा करना है।
1: तो आपकी राइटिंग कैसी थी बताइए पहले तो। आप
3: राइटिंग ठीक थी, बहुत बुरी भी नहीं थी बहुत अच्छी भी नहीं थी लेकिन ठीक थी। इस चीज को आप कवर कर सकते हैं, देखें ये एक ऐसी चीज है कि आप इसको अगर हम कहें कि मेरे ख्याल से इसको आप कवर कर सकते हैं एक एक्टिविटी के तौर पे ऐड करके अपने सिलेबस में या उसको बच्चों को। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप उस टाइम तक देखिए आपको जब आपकी बेसिक राइटिंग स्किल्स आपकी सारी बात है बिफोर फिफ्थ स्टैंडर्ड या बिफोर एट स्टैंडर्ड आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप हो चुकी होते हैं।
1: ओके ठीक है, तो मतलब बेसिकली वही बात होगी ना गुम्बर की, 8th क्लास तक जो है ट्रेडिशनल पढ़ाई और उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी आ जाए तो चलेगा।
3: लेकिन इससे पहले भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप बच्चे को टेक्नोलॉजी के
1: उससे पहले
3: कर सकते हैं।
1: ठीक है, पांचवी क्लास वाले को मतलब टेक्नोलॉजी दे देनी चाहिए, ऐसा कुछ है आपके माइंड में?
3: आप मेरा पॉइंट नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ कि आप ये भी नहीं कह सकते कि बच्चे के हाथ में उससे पहले टेक्नोलॉजी होनी ही नहीं चाहिए, नहीं कि टेक्नोलॉजी के उस पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा।
3: उस वक्त भी आप जरूरत पड़ने पे कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपने जैसे सपोज अब मेरी बेटी है अभी 2 साल की भी नहीं हुई, मैं उसको टॉयज लर्निंग टॉयज भी हम ला के देते हैं, वो उससे इतनी जल्दी पिक नहीं करती जितनी जल्दी वो आप विजुअली करके वो पिक करती है। अभी वो 18 months की है और यू कैन से
1: माशाल्लाह
3: सॉरी आई कैन से कि वो A टू Z पूरी उसको अल्फाबेट।
1: नहीं वो तो एज ही विजुअल वाली है, वो तो एज ही विजुअल वाली है, उसमें विजुअल ही चीजें समझा पाती है तो वो तो कहानी अलग है।
3: आप देखें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको विजुअली आप को आपकी लर्निंग अच्छी होती है।
1: ओके ओके पॉइंट टेकन उसाम भाई।
3: फिर बात वही है कि आप जितना उनको शुरू से जिन जिन जिन चीजों में उनको दूर रख सकते हैं या जिन जिन चीजों में आप उस पे शिफ्ट किए बगैर आप उनकी वो कर सकते हैं लर्निंग वो करनी चाहिए बिकॉज अल्टीमेट तो उनको शिफ्ट होना ही होना
1: है। ठीक है उसाम भाई, डन हो गया भाई, देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। उसाम भाई थैंक यू सो मच फिलहाल तो कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत प्यार आपको।
3: थैंक यू
1: ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़। तो उसाम भाई की बात एक जरा कॉल करनी है क्योंकि मुझे तला भाई आपकी कॉल कब मिस हुई यार, मुझे याद भी नहीं आ रहा, रुको मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। लगता है मैं उस तरफ मैसेज पढ़ रहा हूँ तो ही मैंने आपकी कॉल मिस की होगी, वरना जानबूझ के मैं ऐसा करूँ तला भाई ये हो नहीं सकता। तो मैंने कॉल लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
1: क्या हाल है भाई के?
3: देखो ऐसा हो भी नहीं सकता और ना होना चाहिए, वरना कतर में रहना नहीं रहना तुम।
1: शाबाश मेरे शेर, शाबाश। तो भाई तला ये बताएं, पहले तो आपकी राइटिंग मुझे दिखाना, क्या राइटिंग कैसी है तला भाई आपकी? बुरी होगी
3: भाई, राइटिंग दिखा देंगे, मसला ही नहीं है बादशाह।
1: बुरी तो होगी,
3: चला रहे हम भले भाई, राइटिंग कैसी भी हो अपन चला रहे दुनिया ना शिकरे की तरह, तो रैकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ओल्ड स्कूल थॉट्स जो है ना ये आयरली घूम से मेरी बड़ी हटती है इससे।
1: अच्छा
3: यार एक बात बताओ मुझे तो, मतलब फॉर एग्जांपल लोग कह रहे हैं 8th के बाद या फिर मिडिल स्कूल के बाद जो है ना टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए बच्चों पे, ठीक है, आप एक गैप क्रिएट कर रहे हो उनका और दुनिया का।
1: ठीक है
3: ना, जो करंट सिनारी जो है, करंट सिचुएशन जो है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, डेली आवर्स की बेस पे इन्वेंशन हो रही है,
4: डेली आवर्स की बेस पर डेवलपमेंट हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, आप अपने बच्चे को अपनी अपनी थॉट के चक्कर में, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उसको, तो आप अपनी औलाद को दूर रख रहे हो उससे. भाई उसका जगह सूरज लगे बंदे. फॉर एग्जाम्पल, हमने

0: हम 90s वाले हैं 80s वाले हैं ठीक है ना
1: हाँ.
0: हमारे दौर में फीनिक्स वर्ड्स नहीं होते थे वो जो साउंड से आप वो
1: सोनिक्स
0: आइडेंटिफाई करते
1: हैं
0: सोनिक या जो भी
1: हाँ.
0: सही है ना भाई मेरे ठीक है वो भी हमने एक्सेप्ट किया ना बाद में ठीक है ना आप यूज टू है ना आपको दुनिया के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा मैच करना पड़ेगा उसकी स्पीड
1: तो भाई, लेकिन स्कूल में क्या होना चाहिए क्योंकि स्कूल का सिस्टम तो अपने हाथ में है नहीं है ना आप भी मतलब आपके घर में बच्चे हैं तो स्कूल का सिस्टम आप क्या अग्री करते हैं स्कूल को क्या फॉलो करना चाहिए क्या मेथड
0: भाई होना चाहिए स्कूल को टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए 100% होना चाहिए देखो बच्चे ने आज भी करना है बच्चे ने 8th class के बाद भी करना है ठीक है ना लेकिन जो आप गैप क्रिएट कर दोगे ना बच्चे का इस टाइम फ्रेम में जैसे मेरा बेटा 3rd class में ठीक है ना अब उसके असाइनमेंट्स आ रहे हैं ठीक है ना उसकी चीजें आ रही हैं जो के फिजिकली उसको डिलीवर करना पॉसिबल नहीं है आज के दौर में जो रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं स्कूल सिस्टम ना उसके लिए उसको सिस्टम का उसकी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा ठीक है अब मैं अपनी ओल्ड स्कूल थॉट पे आ जाऊँ नहीं नहीं भाई टेक्नोलॉजी तो नेगेटिव है अरे कद्दू नेगेटिव है यार अबे भाई आप विजिलेंट रहो आप एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स का वो पार्ट प्ले करो ना आप उसको छोड़ भी दो आप रिस्ट्रिक्शन भाई दुनिया जो टेक्नोलॉजी अगर आपके इस्तेमाल में है ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हैं लेकिन आप उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो आप 18+ कंटेंट लगा सकते हो 50 चीजें हैं यार
1: नहीं बात अगर मैं सोलली स्कूल की बात करूँ ना तो उसमें क्या है कि 2-3 countries ने कहा कि स्कूल के अंदर स्कूल के बाहर नहीं स्कूल के अंदर अंदर उन्होंने कहा 8th class तक तो हम भाई पुराने तौर तरीके से पढ़ाएंगे उसके बाद हम लेके आएंगे टेक्नोलॉजी तो स्कूल के लिहाज से ओपिनियन चाह रहा था मैं
0: देखो ना स्कूल अथॉरिटी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो तो वो ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन होती है
1: करेक्ट
0: प्राइवेट सेक्टर बात करो तो एक इंडिविजुअल वो कमेटी कह लो या फिर नंबर ऑफ पीपल की थॉट्स होती है वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है
1: ठीक है ना
0: तो देखो आप थॉट्स चेंज नहीं कर सकते लेकिन बात सारी यही है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप कुछ लोगों की सोच की वजह से एक जनरेशन को आप पूरे गैप में इन्वॉल्व कर रहे हो ना मुझे इससे सुटेबल नहीं लगता ठीक है ना
1: क्या बात है काफी
0: आप यार लिटरली बता प्रैक्टिकली बेस बात कर रहा हूँ देखो आज तुम अपनी औलाद या मैं अपनी औलाद को जो है ना टेक्नोलॉजी दूर रख लूँ फॉर एग्जाम्पल 3rd में हमदान उसको मैं 8th class तक टेक्नोलॉजी दूर रख लूँ पता मुझे वो 8th class में जो टेक्नोलॉजी यूज करेगा वो मैच कर पाएगा रेगुलर बच्चे यूज कर
1: रहे हैं ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है मतलब वो गैप क्रिएट हो जाएगा ऐसा करने से ये आपका ओपिनियन है भाई बड़ा अलग किस्म का ओपिनियन है सही है करेक्ट पर तरह भाई इसमें मेरा एक सवाल ये है आपसे कितनी मदद कर पाते हैं आप बच्चों के प्रोजेक्ट में ईमानदारी से बताइएगा
0: क्या करना कर पाते
1: प्रोजेक्ट में मदद कर पाते हैं बच्चों की कि हमारी बहन पे छोड़ रखा
0: है
1: मुझे नहीं लगता कि आप कोई मदद करवा दोगे प्रोजेक्ट में
0: बस वही है ना अब्बा से कहते थे देखो 100 पर अच्छी रखो तुम्हारी सामने वाला तुम्हें देख के दूसरों को देख के जज कर जाएगा वो सिगरेट पी रहा है ये गंदा लड़का है
1: मुझे तो यकीन
0: नहीं है
1: मुझे पूरे 2 रियाल का यकीन नहीं आप कि प्रोजेक्ट में मदद करते होगे मुझे लगता
0: है अभी गर्मी बाकी है बिजली
1: नहीं सर मुझे पता है सर आप महान है सर मालिक कैसी मदद कर दिया आपने मालिक चिप्स खिला दो
0: ले वो अपना अल्फाज
1: मैंने रख लिए भाई जेब में
0: मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया उसी लौंडे की तरह मालिक मेरे मुंह से निकल गई
1: मुंह से निकल गई मालिक अरे नहीं तला भाई नहीं मैं भाई आपके ओपिनियन से एग्री करता हूँ बड़ा हार्ड एंड फास्ट ओपिनियन है भाई कमाल कर दिया तला भाई के लिए मैं मेरे पास एक चीज है आपको सुनाना चाहूंगा मैं आप सुनेंगे क्या
0: ये सुबह गाली नहीं
1: आज आपने तला भाई के लिए बेहतरीन बात करी तला भाई आपके लिए और हॉर्न बजा दिया है थैंक यू सो मच तला भाई मेरे भाई थैंक यू सो मच आज लोग बड़े हैरान होने वाले कि तला भाई ने इतनी अकलमंदी की बात करके चले गए ये क्या किया तला भाई ने तो आज लोग हैरान परेशान होने वाले
0: साल में एक दफा
1: अब सीधा 2027 में आप सीधा 2027 में बात होगी ठीक है तला भाई थैंक यू सो मच भाई बहुत प्यार भाई اللہ حافظ اللہ حافظ. اور طلح بھائی کے بعد ایک میسج ہے طاہر بھائی کا, میں مس سنبل شوڈ بی این آر جے راسد ان اے ٹیچر. سنبل میں نے بھی چلی گئی.

0: स्कूल में बता नहीं पाया उन्हें मैं क्या करूँ। इरफान भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम दोहा वाले कबीर, एक पहले मैं कॉल उठा लेता हूँ उसके बाद मैसेज पढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम?
1: अज्जू।
0: क्या नाम बताया आपने?
1: अज्जू।
0: हाँ अज्जू भाई बताओ भाई।
1: ओके, सो टॉकिंग अबाउट द टुडेज टॉपिक, आजकल जितना जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इट इज द रेफरेंस टेकन फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल।
0: जी।
1: सो आजकल बच्चे लोग को स्कूल में एक क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड को हाथ में पूरा लैपटॉप में जितना खेलने के लिए सबको मालूम है। सो द टेक्नोलॉजी इज वेरी नियर टू इन आवर फिंगर्स। सो आपका यूज करने के लिए बहुत इजी है एंड आपको एक बार देखेगा तो आपको टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड यू कैन इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, बट हमारा ट्रेडिशनल अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा पेशेंट होना चाहिए, थोड़ा सबर करने का।
0: वेरी गुड पॉइंट।
1: आप एक फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड बच्चों को देखे, हमारा ट्रेडिशन बुक उठा गए, इसका अंदर एक मेडिकल साइंस है, आप थोड़ा पढ़ के देखो, बेसिकली
0: द अटेंशन स्पैन इज लेसर देन अर्लियर टाइम्स, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से।
1: या एग्जैक्टली। तो आपको ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल इज वेरी गुड टू एक्सप्लोर व्हेन यू आर स्कूल, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट इसके लिए थोड़ा बच्चों को थोड़ा मैच्योर होने का, उसका अंडरस्टैंड करने के लिए माइंडसेट होना चाहिए।
0: वेरी गुड पॉइंट यू नाइसली पुट इट थ्रू आउट, क्योंकि आई ऑल्सो बिलीव द सेम थिंग राइट नाउ इन दीज डेज देयर अटेंशन स्पैन इज सो लेस दैट यू दे कैनॉट कॉम्प्रीहेंड एवरीथिंग टुगेदर एट वंस, बिकॉज इन आर टाइम्स वी कुड कॉम्प्रीहेंड अ बुक एंड ट्राई टू एक्सप्लोर इट इन अ डिफरेंट वे, बट नाउ डेज किड्स कांट डू दैट। So, Jubai,
1: yeah, really you cannot put, do that nowadays.
0: Yeah, very nicely put, bhai. And you are from?
1: Tamil Nadu.
0: Tamil Nadu, very nice. But do you understand everything? Like, I mean, do you understand Hindi? I just wanted to know.
1: Understand Hindi and little understand Urdu also.
0: Because
1: I'm working with my Pakistan senior.
0: Wow.
1: So,
0: very nice.
1: Usually 24/7, 107 bhi gaadi mein chalata
0: hai. Achha. Thank you to him, Ajju bhai. By the end of this year, you might learn a lot of more words, I guess. But I'm so proud of you, bhai. You are a good learner. And the way you put out your opinions is really, really nicely put, bhai. Thank you so much.
1: Thank you so much,
0: Ajju bhai.
1: अल्लाह हाफिज़
0: भाई अज्जू भाई का फैन हो गया भाई। भाई किस तरीके से भाई ने अपना ओपिनियन रखा ना, मज़ा आ गया भाई। अरसलान भट्ट साहब लिखते हैं सलाम कबीर भाई, वी गिव किड्स टैबलेट्स एंड फोन्स एट होम एनीवे, सो वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस देम टू टेक्नोलॉजी, इवन एट स्कूल टीचर्स शो देम वीडियो, सो देर इज नो वे वी कैन कीप देम अवे फ्रॉम इट, दैट इज अनदर पॉइंट। बाकी जो जी द नेक्स्ट पॉइंट इज जिंगल चलाना पड़ेगा।

0: FM 107, Time Check.
1: आपको पता ही मैं क्या कहने वाला हूँ, साथ दो और आप भी मेरा साथ दो, ये क्लीशे चलता रहेगा अपना, यू लाइक इट और नॉट भाई। आपने बुलाया मुझे मॉर्निंग में, मेरी गलती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कॉल पे कोई है हमारे साथ? हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई।
1: अरे इरफान भाई, क्या चल रहा है भाई? सॉल्ट एंड पेपर लोग मेरे भाई का चारा है क्या, 10 में से 10 क्या? कैसे इरफान भाई?
2: अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं खैरियत से?
1: बढ़िया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या चल रहा है इरफान भाई, क्या कहना चाहेंगे भाई?
2: बस गुजर रही है, ये आपके पास बीवी और फिर अब उनके बच्चे और अब उनका स्कूल, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है?
1: नहीं भाई, मैं आजकल क्या देखो, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, सुमड़ी में समझाओ को, मैं देखो कौन है बताता हूँ। इरफान भाई, कुछ चीजें जो होती है नौकरी के लिए करनी पड़ती है। समझ में आ गया आपको, ये और क्लियरली समझाऊं? वेरी गुड, शाबाश। क्या कह रहा था?
2: जितने भी लोग यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली टेक्नोलॉजी का रुझान इस वक्त ज्यादा बढ़ गया है और जाहिर बात है बच्चों को इस दौर में टेक्नोलॉजी से दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक भाई ने अभी जस्ट रिसेंटली एक बात कही ना कि स्कूल की जो बेसिस है जो वो वहां से स्टार्ट करें, डेफिनेटली ट्रेडिशनल को वो समहाउ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है ना, अब ये है कि किस एज से या किस क्लास से बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, डेफिनेटली ट्रेडिशनल को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे स्कूल के जमाने में जो किताबें हमें मिला करती थी, टीचर उन्हीं उस किताबों का हशर नशर इतना बुरा हो जाता था कि हम लोग उन किताबों से पढ़ा करते थे। लेकिन आजकल के जमाने में जब एयर एंड होता है, ऑनेस्टली बच्चों की किताबें एज इट इज ऐसी होती हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, आउटसोर्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है, एक्सटर्नल पेपर्स वगैरह दिए जाते हैं और इंटरनेट से सर्च वगैरह करने को कहा जाता है, बुक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम हो गया है।
1: तो कितनी क्लास से, कितनी क्लास से लेके आए इरफान भाई, कौन सी क्लास में आना चाहिए आपके हिसाब से?
2: मेरा ऐसा ख्याल है कि ग्रेड 5 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इनिशियली आप ट्रेडिशनल को और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलें और फिर 5वीं ग्रेड के बाद, ग्रेड 5 के बाद डेफिनेटली फिर आपको टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा मूव हो जाना चाहिए, क्योंकि दौर वही चल रहा है। और जैसे तलहा ने कहा कि भाई आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, अपने बच्चों को वो गैप आ जाएगा एक, तो डेफिनेटली उसको भी आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते।
1: राइट,
2: तो मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन देखा जाए तो आजकल के दौर में ट्रेडिशनल को हम बहुत ज्यादा, क्योंकि एक डिपेंडेंसी इतनी टेक्नोलॉजी की तरफ हो गई, हर किसी को अगर कुछ सर्च करना है, डेफिनेटली बच्चों को अगर आप स्कूल से एक टास्क मिला है कि आपने एक स्पीच रेडी करनी है, तो मैं अपने बच्चों को यही समझाता हूँ कि आप अपने आइडियाज डालें, सीधा पूछे नहीं उनसे, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी से मुझे करना क्या, पहले आप अपना इनपुट तो डाल दें। तो ये जो ट्रेडिशनल का जो जमाना था ना, तो उसमें हमारा इनपुट हम देते थे, ठीक है ना, उसी का इस्तेमाल होता था। अब हम इनपुट कम देते, हम सवाल ज्यादा करके उनसे खाली आंसर ले लेते हैं, एंड ऑफ द डे हमें करना क्या है।
1: हम तो AI से पूछ रहे होते हैं साग दी रेसिपी, चंडीगढ़ सेक्टर 17 में एक प्लाट द प्राइस।
2: नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। ये इस AI के ऊपर जो डिपेंडेंसी ज्यादातर बढ़ती जा रही है ना, वो मेरे ख्याल से इंसानी दिमाग और डेफिनेटली इसको मफलूज कर देगी एक दिन। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया जाए, लेकिन उसका सही वक्त पे कहाँ इस्तेमाल कब करना है वो किया जाए।
1: ठीक है, चलो ये तो हो गई सीरियस बात। और बताओ इरफान भाई, नाश्ते में क्या है आज?
2: नाश्ते में मैंने ऑमलेट खाया था और बस घर से ओट्स वगैरह खाए थे, वो खा के निकल गया, उसके बाद बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया। फिर मैंने कहा कि ये 500 mg को मैं मैसेज कर दूं, तो उन्होंने आधा मेरा मैसेज पढ़ा।
1: नहीं, मैं आपको पढ़ते पढ़ते रहिए, कॉल आ गई इस बीच में। इरफान भाई, क्या मुझे माफ नहीं करेंगे? इरफान भाई, आप इतना तो बनता है।
2: मैंने आपको माफ किया,
1: मुआफ किया आपने, थैंक यू सो मच। आप आइन लगा के बात क्या करें, थैंक यू सो मच इरफान भाई।
2: एग्जैक्टली, वो मुझे कभी कभी उर्दू का जो मखरज, मेरी कल उनसे बातचीत हो रही थी, आपके एक को प्रेजेंटर हैं फजील भाई, उन्होंने एक वर्ड यूज किया अपुन, तो मैंने उनको पूछा ये अपुन क्या चीज होती है।
1: हमारे मुंबई की तरफ और कराची की तरफ दबा के।
2: हाँ, एग्जैक्टली यही मैंने उनको बताया था, मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो गई, अपुन यानी हम। और उन्होंने ये भी बताया मुझे कि ये वर्ड ज्यादातर वो जो टपोरी वाले लोग नहीं होते हैं, अपुन। हाँ। वो जो
1: नहीं, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा इसमें मिसप्लेस्ड हो गए, बिना टपोरी वाले भी यूज करते भाई। लेकिन आप आइए गुड़गांव साइड आइए, कभी बॉर्डर वॉर्डर खुलेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको जरा बिगाड़ के भेजूंगा इरफान भाई, पूरी भाषा बदल दूंगा आपको।
2: मुझे तो बहुत आने का दिल है, लेकिन ये कम वक्त
1: इंशाल्लाह
2: लाइज ये जो है ना, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता तो वो मुझे आने नहीं देंगे आने का तो बहुत दिल
1: नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोल के निकल जाया करें बस इरफान भाई, ये बहुत जरूरी है।
2: अच्छा ये जो इंशाल्लाह का वर्ड है ना, मिसाल के तौर पे जिस काम को इंसान को ना करना ना वो हमेशा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर।
1: अरे नहीं यार इरफान भाई ऐसा मत करो इरफान भाई प्लीज।
2: अरे किसी को आपने दावत दी फॉर एग्जांपल, यार आप कभी घर पर आए ना, उसको पता है कि इसकी तरफ मुझे जाना नहीं है, ये बड़े पकाऊ लोग,
1: इसका इस्तेमाल सरोवर भाई करते हैं सबसे ज्यादा बचने के लिए, समझ रहे हैं आप, सबसे ज्यादा वो करते हैं इस्तेमाल इसका, निकल लेते भाई पतले
2: अच्छे से हैं वो बेचारे,
1: छोड़ूंगा नहीं मैं उनको भाई साहब ऐसे कैसे, बहुत शो में बोलते हैं वो,
2: नहीं बिरयानी खा लेना उनसे खिला
1: देना सॉरी, आज आज आज इनको पकड़ा जाएगा। नहीं थैंक यू सो मच इरफान भाई, बहुत प्यार आपको मेरे भाई, थैंक यू सो मच, ओके अल्लाह हाफिज भाई,
2: अल्लाह हाफिज।
1: तो इरफान भाई के बाद जो है मैं तमाम मैसेजेस पे जरा ध्यान देना चाहूंगा, तो बस मैंने मैसेज किया है, एज वी कैन सी टेक्नोलॉजी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ टुडे बट आई बिलीव टेक्नोलॉजी शुड बी लिमिटेड अंटिल सेवंथ स्टैंडर्ड। तो बहन ने बोला सेवंथ स्टैंडर्ड तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, सेवंथ तक बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ाए जाते हैं जो इन बुक्स में लिमिटेड टेक्नोलॉजी एक्सपोजर से भी की जा सकते हैं। मैं जिस बच्चे की ट्यूशन पढ़ाती हूँ, द गर्ल इज फ्रॉम कैनेडा एंड नाउ थर्ड ईयर फ्रॉम ब्रिटिश करिकुलम, माई गॉड, और वो मेरा स्ट्रगल रहता है उसको कॉपी में बाकायदा लिखाना, लास्ट ईयर तक उसको सिर्फ टैबलेट्स में होमवर्क मिलते थे, उस वक्त वो भी लिखना नहीं चाहती थी, अब उसके पेरेंट्स का फोकस है उसे राइटिंग करवाना। यकीन कीजिए कबीर भाई, मैं तो शुरू शुरू में शॉक हो गई कि उसे लिखना क्यों नहीं आता, अरे बाप रे लिखने नहीं आता, अरे भैया। आगे लिखती है, शी इज़ वेरी लेजी, शी जस्ट सेज देयर इज नाउ नीड टू राइट, वी जस्ट रीड एंड डू इट ऑन अ टैबलेट, ऐसी बोलती होगी ना आजकल के अंग्रेजी बच्चे ऐसे बोलते हैं भाई, देयर इज नो नीड टू राइट, यू कैन जस्ट डू इट ऑन अ लैपटॉप। अब मैं उससे समझाऊं और अग्री कराऊं कि लिखना भी इंपॉर्टेंट है, सो आई थिंक इट्स बेटर टू लेट देम यूज टेक्नोलॉजी आफ्टर सिक्स टू सेवन्थ, ये है मेजर इशू। ये बहन ने बहुत बढ़िया बताया था, बसम बहन ने लिखती है टेक्नोलॉजी की वजह से उसके माइंड में ये बात फिट हो गई है कि सब चीज़ें टैबलेट पर तो हो जाती हैं, लिखने की जरूरत को नहीं भाई। और एक कॉलिंग प्लीज जैसे मैं थोड़ा सा रुकिएगा, मैं ऐसे सारे पढ़ दूँ। मैं लिखते हैं पॉश भाई, लोग सरप्राइज वाला कॉम्प्लीमेंट किया है आज, क्या कौन सा कॉम्प्लीमेंट, मैं समझा नहीं आसिफ भाई, मैंने समझाओ। एक मैसेज है ये तला भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, आजकल 6 साल के बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, लगता तला भाई की बनाई कोई पार्टीशन में रहता है जो लाइट कट करने को कह रहा है, आपको पता नहीं है, बच के रहिएगा इनसे। खादिर अब्दुल आदि भाई कहते हैं अज्जू ऑलवेज कम्स इन द मॉर्निंग शो, अच्छा आते हैं अज्जू भाई, मुझे नहीं पता था भाई। भाई इन भाई का रिकॉर्ड साफ करो ये जैज भाई, वैसे भाई आप तो हीरो हो, कभी कभी आपका दीदार मिल ही जाता है, मुझे किधर दिखा आपने भाई। टायर भाई कहते हैं डिपेंड्स हाउ द टेक इज़ यूज फॉर किड्स, गिविंग देम टैबलेट्स एंड फोन्स डजेंट मीन टीचिंग, इट शुड बी फोकस टू हेल्प डिवेलप डिफरेंट साइंटिफिक स्पेसिफिक स्किल्स इन देम, मैनुअल वर्क इज ट्रेडिशनल वे इज इंपॉर्टेंट टू न्यूरो डेवलपमेंट प्रोग्रेस इज वेल, भारी बात लेकिन अच्छी बात। मैं अजीज भाई कहते हैं कबीर भाई अपने घर की प्रॉब्लम लोगों से आइडियाज लेकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व, मेरे घर पे बच्चे नहीं है भाई अभी, पर इंशाल्लाह होंगे, मेरी टेंशन छोड़ दो भाई, मैं खुद ही सॉल्व करूँ, सुनता को नहीं किसी की भाई मैं। भाई भाई कहना है भाई कल टॉपिक होना चाहिए कि लोग ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर गाड़ी में कैसे टाइम पास करते, मैं आपके साथ हूँ, डन है भाई। मोहम्मद आसिफ भाई अभी मैं कॉल करता हूँ, एक मैसेज है कबीर भाई कैसे हैं, कबीर भाई टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना पड़ेगा, हमारा ज़माना बहुत स्लो और सादा था, आज की लाइफ बहुत तेज़ हो गई, रिजवान भाई कह रहे हैं, रिजवान भाई काइंड ऑफ अग्री विद यू। या एक मैसेज है, इट हैज़ टू बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ ट्रेडिशनल लर्निंग एंड लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, ग्रेड 3 इज माई ओपिनियन, इनका कहना है कि तीसरी कक्षा से आ जाना चाहिए, हिदायत भाई कह रहे हैं। एक भाई आपको सुनकर मजा आता, सलीम भाई, सलीम एक और सलीम आ चुके हैं, लिखते हैं जहाँ अपना कॉल का प्रोग्राम में सर्वर भाई क्या कह रहे थे, सर्वर भाई मुझे बताओ बताओ इन्हें। मैं एक मैसेज है, यस किड्स डोंट नॉट एबल टू राइट टिल 6 to 7, ऐसा हो रहा है क्या मार्केट में। एक मैसेज है, टीचर का स्कूल कितना टाइम से स्टार्ट होता है, क्या इवनिंग का स्कूल है क्या, ये मैंने संभुल बहन से पूछा नहीं है, आयशा बहन। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, जावेद भाई कैसे। और एक मुझसे मैसेज, मुझे पता है मिस हुआ है, किधर गया वो। एक मैसेज, आई एग्री बेसिक स्टार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल, थैंक यू। कितने रैक्स मिल गई क्या, हाँ मिल गई, बताऊंगा थोड़ी तुमको भाई, मैं पैसे कलेक्ट करके फिर बताऊंगा। समीर मैं लिखती हैं कम्प्लीटली एग्री विद सुमुल मैन, ओके। और एक मैसेज है, प्लीज़ रीड, अगर रेडियो से निकाह तो लोग कहाँ सुनेंगे, मोस्टली लोग लिसन इन द कार, हाउ रेडियो विल सर्वाइव रिमूव फ्रॉम द कार, रेडियो विल सर्वाइव भाई, रेडियो हैज़ सर्वाइव्ड for many, many years, even after getting so much on television and in your hands. So, रेडियो किधर नहीं जाएगा भाई, तो सर्वाइवल के तरीके अलग अलग है. एक मैसेज आया है भाई, आपका शो तो कहाँ तक पहुँचा हुआ है, लोग कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, अलग अलग भाषा वाले. जी भाई, थैंक यू.

समझ, ये मोहब्बत है। एक मैसेज है, चाइना इंप्लीमेंट 15 मिनट्स ब्रेक टू आर फिजिकल एक्टिविटी इन कंपलसरी, क्या कंपलसरी एजुकेशन, मिनिस्टर अपडेटेड मार्च 7, 2026 को शिनखुआ बीजिंग, 7 मार्च चाइना हैज रोल्ड आउट एन इनिशिएटिव 15 मिनट इंटर क्लास ब्रेक, 2 घंटा ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटीज फॉर प्राइमरी एंड जूनियर स्टूडेंट्स। अच्छा है यार, ये अच्छा तरीका है। एक कॉल आ रही है लेकिन अभी हम कॉल लेने के टाइम नहीं है हमारे पास अभी। हम क्या, आई हेट दिस आइडिया, केड़ा आइडिया, आई वॉन्ट टू आस्क, इवनिंग स्कूल क्यों होता है? ये भी सही है। अपनी अपनी बात है भाई, इसमें क्या कर सकते हैं। मैं इस गाने के बाद मिलता हूँ आपसे, ठीक है, फिर ज़रा कॉल पाएंगे। अगर कोई मैसेज मुझसे मिस हो गया है भाई, नाराज मत हो ना, लोग फौरन नाक फुला लेते हैं। अभी मैं पढ़ दूंगा, ठीक है, नाराजगी नहीं। 7:13 बाय द क्लॉक, ऐसी मेरी वाइब वाइब वाइब वाइब।

0: ये सैयद हमजा भाई को सुनाई दे रहा है, ऐसी मेरी वाइफ वाइफ वाइफ वाइफ। अरे भाई वाइफ का ये गाना क्या है हमजा भाई आप मेरा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, 7:15 बाद क्लॉक। कह रहे गुड मॉर्निंग टैक, अभी से देने पर हम बच्चों का अभी से लिमिट कर रहे हैं जो मेंटल मैथ्स वगैरह कॉन्सेप्ट। देखो मैं यार मैं यही कहूँगा, ये टॉपिक थोड़ा सा भारी हो गया है, कम्प्लीटली एग्री, बट बहुत सही है। इरफान भाई का जो टॉपिक है वो हम जरूर लेंगे। एक मैसेज है, क्या आई एम जस्ट गोइंग टू रमेश, मैं भी कहानी है, आई जस्ट गोइंग टू, क्या शहजादा सलीम क्या कहना चाह रहे हो? एक मैसेज है, आज का टॉपिक क्या जरा बताइए कबीर भाई। अब नहीं, अब नहीं, अभी टॉपिक बहुत सीरियस हो गया भाई, इसको अपन को यहीं रोकथाम करनी पड़ेगी मलिक वकास साहब, नहीं तो मामला बहुत गहरा हो जाएगा भाई। अभी और नहीं भाई। अच्छा तो मैं आज की कहानी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो आज की स्टोरी है इससे नहीं, इससे इससे बढ़िया बढ़िया नहीं कहूँगा, लेट मी रीफ्रेज माई सेल्फ भाई। एकदम प्योर प्योर सिनेमा है, एकदम प्योर प्योर सिनेमा, आपको सही बता रहा हूँ। आज मैं जो किस्सा सुनाने वाला हूँ ना, ये किसी पिक्चर से कम नहीं है भाई। आज आप समझ लीजिए कि आप अपने गाड़ी में बैठ के अगर एक मुकम्मल पिक्चर देखना चाहते हैं, ऐसी मूवी जो आपको याद रहे पूरे दिन, तो आज आपको सुनना पड़ेगा। आज आपको भाई कति मजे करा देंगे, मैं सही बता रहा हूँ। एक मैसेज, कबीर भाई टेक्नोलॉजी मैटर्स अ लॉट, हमारे दिन एक है, हमारे हाँ एक डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, लेकिन उसे ईमेल सेंड नहीं करनी आती और बाकी एडवांस चीज़ों तो बहुत दूर की बात है। इतने पढ़ने के बाद भी अगर टेक्नोलॉजी यूज़ ना करनी आए तो डॉक्टर तो फिर बंदा बन ही जाता है। ओके, टेक्नोलॉजी का सिर्फ स्कूल में करवाया जाए, घर में टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किया जाता है गेम्स के नाम पर, खासकर जैसे हाँ मोबाइल गेम्स। ठीक है, मोबाइल गेम्स तो मैं उनको गिनता भी नहीं गेमिंग में, आई एम सो सॉरी, दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। इन बच्चों को एक सेपरेट काइंड ऑफ मोबाइल या लैपटॉप, इन सब में रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। हमारे में टेक्नोलॉजी खुद पर ज़माने के लोग अजीम। ओके, कम्प्लीटली एग्री सुदीप सर, एंड थैंक यू सो मच। ये सुदीप्त नहीं, सॉरी उज़्मा बहन ने मैसेज किया, सुदीप्त सर ने अलग मैसेज किया, दोनों का मिक्स हो गया, दोनों ने सेम बात करी। उज़्मा बहन थैंक यू सो मच, एक कॉल उठा लेता हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, स्पेशली कॉल फॉर यू जहाँ पना, बिकॉज आई एम जस्ट मूव फ्रॉम सनैया गोइंग टू रवे, प्लीज कैन यू सेंड अ कहानी, बिकॉज आई एम ऑन द वे, नॉट लिस्टिंग, मिसिंग कहानी है।
0: अरे क्या बात हो गई सलीम भाई। किसने छेड़ दिया मेरे भाई को, क्या बात हो गई भाई।
1: Because this topic now, all this teaching in school, in college, and accident for the education. So
0: you have breakfast, egg, morning? No.
1: Thank you so much, all listeners. And good.
0: But you breakfast morning. सलीम, यू ब्रेकफास्ट वेरी गुड।
1: कहानी भेज देना कबीर भाई।
0: शेखू अगर मैं कहानी ना भेजू तो क्या करोगे? भेज दूंगा, फिक्र नहीं।
1: आप यही दरख्वास्त है,
0: बिल्कुल सुनवाई की जाएगी, ख्याल रखो। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। और एक भाई को लग रहा है कि मैं बुरा मान गया, अरे मैं बुरा नहीं मारा हूँ वकाश भाई, वकाश भाई को वॉइस नोट भेजूँ आपके साथ, वकाश भाई बिल्कुल बुरा नहीं मारा भाई, ऐसा मत सोचिए भाई। अरे नहीं नहीं देखो, अगर गाड़ी सट जाएगा इंटरनेट पे मिलेगा भाई अपना रेडियो स्टेशन। आई एम सो सॉरी अगर आपको ऐसा लगा, बुरा नहीं माना मैं, वकास भाई जिंदाबाद। अच्छा इनके बाद एक मैसेज, गुड मॉर्निंग भाई, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना लाजमी है, द वर्ल्ड इज बिंग रूल्ड बाय टेक्नोलॉजी, ऐसे में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्कूल हैज़ बिकम अ फैशन, टैब्स, स्मार्ट बोर्ड्स, विजुअल ग्राफिक्स, रोबोट्स, डिजिटल कॉन्टेंट, देर इज नो लिमिट टू सच टूल्स, वी शुड ऑल यूज देम टू मेक लर्निंग मोर एक्सेसिबल, इफेक्टिव एंड फन, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टीचर्स एंड ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट दीज डेज यूज टेक्नोलॉजी फॉर कन्वीनियंस एंड नॉट एजुकेशन एंड लर्निंग, दिस अप्रोच इज डिस्ट्रक्टिव। तो जी तो सर, वन लाइक टू यू मेरा भाई। एक कॉल आ रही है, एक कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो कबीर भाई?
0: मैं बढ़िया हूँ मेरा भाई, आपका नाम बताओ मेरे भाई।
2: अरमान खान।
0: कितने अरमान मैंने अरमान भाई बताइए क्या चल रहा है भाई?
2: यार कबीर भाई, शिकायत है आपसे यार, कहानी नहीं भेजते हो आजकल, क्या हो गया आपको?
0: उसके लिए देखो मैं आपको मैं शिकायत करूँ तो अभी आप पकड़े जाओगे आप। घेरूं आपको? चलो आपका घेराव होगा। तो अरमान भाई सीन ऐसा है कि मैंने एक जगह बताई थी जहाँ कहानी मिलेगी और वो जगह के लिए मैंने कहा था मैसेज करने को, तो अरमान भाई आपका मैसेज नहीं आया है रिसेंट टाइम्स में, इसलिए आपको वो जगह नहीं पता है, वो नुक्कड़ नहीं पता है।
2: यार कबीर भाई सबको बांट रहे हो और मुझे डांट रहे हो, ये अच्छी बात।
0: अरे मेरा प्यारा भाई है, तो मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरमान भाई एक बार मैसेज कर देना भाई, आपको पूरी सब पूरे हफ्ते की, आने वाले दिनों की, सालों की सबकी कहानी मिलेगी भाई, टेंशन नहीं भाई। और अरमान भाई क्या चल रहा है? बढ़िया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब शानदार। आप बताइए। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन। अरमान भाई मैसेज कर देना अभी अभी, मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है? डन मेरा भाई, ख्याल रखिए अपना। तो अरमान भाई के बाद ये स्ट्रगल देखो अभी क्या है, हम लोग तो जनरेशन से हैं जब लोग कंप्यूटर केवल डॉस, हाँ मैं भी उसी जनरेशन से आता हूँ, बट ठीक है, टेक्नोलॉजी की हमने बात बहुत कर ली है, अभी हम थोड़ा सा चिल करेंगे एकदम। एक मैसेज ये किधर है मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एक और मैसेज आया है, क्या बोलते भाई हम लोग भी इसमें पार्टी, नहीं इसका हो गया है, हो गया अभी बताऊँ, मैं थोड़ा सा ब्रेन रॉट फील कर रहा हूँ अभी, इस टॉपिक पे और बात नहीं कर पाऊँगा मैं। बिग टेक ओनर्स में लास्ट मैसेज पढ़ता हूँ बिकॉज अच्छा मैसेज है। बिग टेक ओनर्स दे से दैट दे, एक सेकंड मेरी जुबान को क्या हो गया, बिग टेक ओनर्स से दैट ट्राई टू कीप अप देयर किड्स अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी इन देयर यंग एज, देयर इज अ वॉक ऑफ बिहेवियरल इशू इन किड्स हु आर एक्सपोज टू टेक एट यंग एज, वी हैव नो आइडिया how till the present day kids will be when they grow up after being exposed to technology. Any doctors here who can throw some lights on this? Doctor

भाई डॉक्टर ये हरी साहब मैं मिलिया को नहीं भाई, एक मैसेज सेंड मी द लिंक, मैं भेजता हूँ, मैं अभी अभी भेजता हूँ। इरफान अली भाई कहते हैं शेखू इतनी इंग्लिश बोल दी, टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल

0: को एक बंदा है, एक बंदे के ऊपर कितना जुल्म ढाएंगे आप जमाल भाई, बताइए भाई।
1: हाँ, आपके आपके टॉपिक के ताल्लुक से एक छोटा सा शेर याद आया। हाँ,
0: शेर सुनाइए, टॉपिक को गोली मारो, बहुत हो गया, पक गया। हाँ बताओ बताओ।
1: वो किसने कहा था कि हम बोरियां नशी हैं जमाने की आबरू, जो लोग आसमान हैं हमसे मिला करें। एक के मतलब अपनी अपनी सोच के हिसाब से ये मैं कहूंगा कि सही बात यही है, घूम फिर के मामला वहीं पहुंचता है कि आप आज के दौर में बिना टेक्नोलॉजी के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी छोटी सोच के हिसाब से कम तो भी दर्जा 8 वोल्ट के बाद है ना ये चीज शुरू होनी चाहिए। आप उसकी वजह पूछेंगे तो दो लफ्ज में उसकी वजह मुझे ये समझ में आता है कि देखिए, जब किसी भी चीज के अंदर जब तक पुख्तगी ना आए और उससे पहले आप उस पर बर्न डालोगे, बोझ डालोगे, है ना, तो उसके ना कवर करने का सच्चा होता है।
0: अच्छा ठीक है, पॉइंट
1: बात यह है कि जैसे थोड़ा सा जहन अगर पुख्ता हो जाता है तो वो दर्जा 8 वोल्ट तक मतलब बच्चे जरा सा ये लगता है कि हाँ इनके अंदर थोड़ी सी वो आ गई है, है ना, हर चीज की अवेयरनेस होती है थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं, तो तब अगर उनको टेक्नोलॉजी उनके हाथ में दिया जाए तो मुझे लगता है बेहतर होगा। ये मेरी अपनी सोच है।
0: नहीं बिल्कुल सही सोच है। और जमाल भाई इस सीरियस बात को साइड में करते हैं यार, सुबह से हम ज्यादा सीरियस हो गए। जमाल भाई अब हम थोड़ा अलग बात करेंगे। जमाल भाई ये बताओ यार, कोई ऐसा शेर है जिस जो इंट्रोडक्शन के लिए हो, बाद में अपने आपको इंट्रोड्यूस कर सके यार, ऐसा कोई शेर बताओ, मतलब पब्लिक जो है अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहे तो क्या शेर पड़े यार, कोई ऐसा कुछ बढ़िया शेर बता दो यार।
1: यार इतना अच्छा शेर तो मैंने शुरू में ही बता दिया।
0: आ, वो तो बहुत बेहतरीन है, वो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, टॉपिक पे भी चिपक गया वो एकदम। और कोई ऐसा है जो इंट्रोडक्शन में दिया जाए?
1: इस वक्त तो ध्यान में नहीं आ रहा है।
0: मुझे बताना जमाल भाई, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है भाई, आप कुछ पक्का नहीं ढूंढ के ले आएंगे
1: इंशाल्लाह। आपको मैं उम्मीद तो बहरहाल नहीं करूंगा, और इंशाल्लाह जरूर मैं आपको अपना है ना आपके पर्सनल उस पे एक दो तीन चार जो भी वक्त से याद आ जाएगा या थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं जो कहीं जहन के किसी कोने में जो मदफून होगा उसको निकालेंगे और निकाल
0: जहन के किसी कोने में। यही शेर था अपने आप में भाई। थैंक यू सो मच जमाल भाई, बहुत प्यार जमाल भाई, मुझे भेजेगा जरूर भाई, कभी आपके जहन के कोने में कुछ आए तो मुझे भेजेगा जरूर, ठीक है।
1: नहीं भाई, अगर नहीं होगा तो उसे तलाश लेंगे।
0: यार ये आदमी
1: है, आप सर आंखों पर साहब,
0: भाई
1: साहब इतनी जसारत कहां मुझ में कि उसे
0: कितनी क्या
1: इतनी जसारत कहां है
0: इतनी जसारत कहां। वाह वाह वाह वाह, ये शेर का मतलब हो गया भाई आज। क्या बात है यार जमाल भाई, कमाल के आदमी यार आप, थैंक यू सो मच कि आप कॉल करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पर वो शेर आप भूलिएगा नहीं, आज मुझे चाहिए आपसे, उम्मीद है मुझे आपसे।
1: अच्छा मतलब ऐसी कुछ खास जरूरत है क्या, तो मैं उसको अभी से क्या कहते हैं अरे छानना शुरू करूं जहन के किस हिस्से।
0: आप सोचिए, टेक योर स्वीट टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, आप कल तक का टाइम ले लो, ऐसा होना चाहिए ना, मतलब आदमी जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करे तड़कता भड़कता एकदम आग ला दे, ऐसा कुछ शुरू होना चाहिए यार, ठीक है जमाल भाई।
1: अरे बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह पहुंचेगा आपका,
0: ठीक है, होमवर्क दे दिया मेरा आज का आपको। आप मुझे जरूर बताइए। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई।
1: एक चीज तो यार, एक चीज पर कसम से सुबह सुबह मजा बड़ा आता है।
0: थैंक यू जमाल भाई, बहुत प्यार भाई, बहुत प्यार। आई नो आज टॉपिक थोड़ा हार्ड हो गया, आज टॉपिक हार्ड हो गया, वरना और आता, मैं समझ गया हूँ आप, टॉपिक जो है सुबह थोड़ा हल्का लाना पड़ेगा, मैं हल्का ही लेके आऊंगा। एक मैसेज है, क्या है, एक मैसेज और आया है कि जरूरत पड़े तो हम देंगे लहू का तेल चिराग में डालने के लिए। अरे भैया यार, कहाँ कहाँ से शायर आ रहे हैं, बाप रे बाप, नाम क्या है इनका पता नहीं
1: भाई, वो क्या कहते हैं, धीरे धीरे देखिए, मैं आज तक अपना रवैया चेंज नहीं किया हूँ, खास करके 107 पर 2011 से मैं सुनता हूँ, और मतलब पार्टिसिपेट भी करता हूँ गाहे बगाहे, किसी भी वक्त मिलता हूँ मैं हाजिर रहता हूँ, लेकिन मैंने अपना रवैया इस वजह से नहीं बदला है भाई, क्योंकि इसका नाम पता है क्या है, 107 उर्दू FM।
0: नहीं वो आप, तो आपकी बातों में ही है भाई, इतनी गाढ़ी उर्दू है माशाल्लाह आपकी के इंप्रेस हो जाता है आदमी।
1: हमेशा उसको मलूज खाद रखते हैं कि भाई मोहब्बत के कानों में रस घोलते हैं, ये उर्दू जबान है जो हम बोलते हैं, इसे छोड़ेंगे भी नहीं।
0: अरे यार एकदम मतलब ओहो डेडली डेडली कॉम्बिनेशन, थैंक यू सो मच। आप तो पता है उर्दू में किसी पे गुस्सा भी करते हैं वो बोलेगा थैंक यू जमाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं भाई बहुत प्यार, बहुत प्यार जमाल भाई आपको।
1: सही बात यही है ना कबीर भाई के गुस्से में भी झगड़े में भी थोड़ी मतानत होनी चाहिए,
0: नहीं नहीं
1: संजीदगी उसमें भी टपकनी चाहिए।

0: क्योंकि जानते हैं आप वैसे भी मतलब लोग फिल्म देखते हैं तो डायलॉग याद करते हैं, पता है मैं किस तरह का डायलॉग याद करता हूँ?
1: किस तरह का बताइए?
0: वो एक एक बंदा एक फिल्म में पूछता है, यार तुम तो मर गए थे ना, तुम्हें तो राजा ने मरवा दिया था, तो वो कहता है सामने वाला कि मेरे कांधे पर जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ है कि मौत भी मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दी।
1: अरे भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई बहुत कर रहा था भाई ये क्या बात है जमाल भाई, क्या बात है भाई,
0: संगीत की है लेकिन मुझे वो डायलॉग लगता है
1: जबरदस्त जमाल भाई यार, जबरदस्त जमाल भाई जबरदस्त। आज इसके बदले में आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं ना, यकीन मानिए आपको अगले हफ्ते तक याद रहने वाली है, आप आज की कहानी छोड़िएगा नहीं भाई।
0: अरे भाई हम तन गोश 15 नहीं आधा घंटा कस्टमर के लेट हो जाए नो प्रॉब्लम, गाड़ी खड़ा कर दूंगा भाई।
1: ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच।
0: जी मेरा भाई बहुत शुक्रिया,
1: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़।
0: एनर्जी आ गई।
1: अभी देखिए आप, अभी देखिए आप कहानी सुनिए क्या क्या आएगा आपको सुनाता हूँ तो अभी जमाल भाई के बाद जो है ना, मैं बहुत सारे मैसेज हैं कि कबीर भाई जमाल भाई नहीं छोड़ेंगे आज आपको। इश्तियाक भाई, जमाल भाई अभी पता नहीं है आपको, एक मैसेज है, मैसेज कहता हूँ मैसेज कहता हूँ ये जो तुम्हारा अंदाज कलम है दिल को छू जाए बस वही मोहब्बत का पैगाम है। इरफान भाई, इरफान भाई और बहुत सारे और भी शेयर हैं। एक भाई ने मैसेज किया है, व्हाई डिड द स्केयरक्रो विन एन अवार्ड, बिकॉज ही वाज आउटस्टैंडिंग इन दिस फील्ड। सुभाष भाई घर जाऊं फिर मैं एक और आए देखिए ये मुशायरा शुरू कर दिया उन्होंने, यासिर भाई ने, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, बताऊं भी अच्छा भाई ऐसा टॉपिक में आज हैवी टॉपिक हो गया, कल से लगाऊंगा मैं हैवी टॉपिक, बिल्कुल लाइट लिटिल लिटिल खेलेंगे। तो अच्छा आज का जो किस्सा है मैं आपको बता दूं, जो लोग मिस करने वाले हैं वो मिस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत भारी किस्सा आज का, बहुत भारी भाई। ये समझ लो कि वीकेंड से पहले आपको वीकेंड वाली वाइब देने वाला किस्सा है ये, यूं समझ लीजिए कि लगातार दो दिन आज और कल आपको वीकेंड स्पेशल कहानी मिलने वाली है। सो जस्ट बी रेडी फॉर समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग। आज की कहानी विल ब्लो योर माइंड। अगर आप तैयार हैं एक पिक्चर देखने के लिए मेरी बातों को सुन के, तो 2 मिनट के बाद मिलिएगा मुझसे, जाना नहीं है आपने, ठीक है? 2.5 मिनट के बाद मिलना भाई। भाई आज कितने के लोगों किस्सा ऐसे पूछ रहे हैं, आसिफ भाई भाई उठा नहीं पाओगे इतने के लोगों किस्सा भाई, कल आई पूरी मरोड़नी पड़ेगी आपको, फिर भी ना उठेगा भाई, ऐसा किस्सा आज का। रेडी सीनियर एंड सीनियर।

0: छुआ ऐसे जैसे कोई
1: कोई देख नहीं रहा पर आज का जो किस्सा है ना ये आपको देखने में मजबूर कर देगा क्या क्या क्या बात है यार क्या लिंक हो गई मैं अपने लिए चलाना चाहूंगा क्या बात है भाई तो आज का जो किस्सा है ना भाई अच्छा ये आपको वीकेंड की वाइब दे जाएगा आपको लगेगा कि एक दिन पहले आ गया वीकेंड तैयार हैं आप बिकॉज दिस विल ब्लो योर माइंड मैंने शुरुआत के शो से आप, मतलब आज सुबह से मैंने इसको इतना सेल नहीं किया है इतना बेचा नहीं है मैंने ओवर प्रमोट नहीं किया है बट ट्रस्ट मी आप भुला नहीं पाएंगे इस किस्से को इस बात की पूरी पूरी गारंटी है सो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँ भाई क्योंकि मुझे आपको ये किस्सा देना भी है और जो लोग लाइव सुन रहे हैं प्लीज़ मुझे मैसेज करते चले जाएं सो दैट आई कैन सेंड यू वेज टू फाइंड द स्टोरी ओके इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता ना ही कभी देगा लेकिन आज ये किस्सा भी एकदम असली है एंड इसलिए बेहद हैरत अंगेज़ है एंड ओहे होए होए होए मैं सही बता रहा हूँ यू आर नॉट रेडी फॉर दिस चलो भाई वॉल्यूम जरा बढ़ा ली जाए ओके तैयार हैं तो आज का जो किस्सा है इसे सुनाने के लिए ना मैं आपको 90s के दौर में जरा ले चलता हूं इन 1990s ये दौर बड़ा कमाल का था क्योंकि इंट्रोडक्शन हो रहा था लोगों का इंटरनेट की तरफ दुनिया थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जा रही थी जिनके पास पैसा था उनके पास कंप्यूटर था जिनके पास नहीं था उनके पास कुछ भी नहीं था मतलब ऐसा नहीं था कि बीच की कोई एक क्लास है तो या तो कोई अपर क्लास में या कोई नीचे वाली क्लास में बीच का कोई सिस्टम नहीं जैसे अभी बहुत सारी क्लासेस बन चुकी है एनीवे 90s में एक बंदा था जो इधर उधर भटक रहा था इसका नाम था नाम देने सुनिएगा शायद याद ना रहे आपको फोटांगो सिसोको नाम का ये बंदा जो था ये बेचारा बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ एक छोटे से गांव में और ये गांव जो था ये अफ्रीका में था माली में था और जिस जगह पे वो था ना तो यहाँ पे स्कूल थे ना सड़कें थी ना बिजली आती थी तो बेचारा कभी पढ़ना लिखना सीख ही नहीं पाया जब सिसो को जवान हुआ तो उसने कहा भाई कुछ तो करना पड़ेगा ऐसे तो काम चलेगा नहीं और उस वक्त पे कुछ नौकरियां निकल रही थी घर पे हेल्पर्स की जरूरत होती थी जगह जगह पे तो उसने कहा ठीक है मैं भी जाता हूं एक कैंप में गया उसने कहा सर मैं काम करना चाहता हूं हाउस हेल्पर के तौर पे तो उसने घर छोड़ने का फैसला किया और एक हेल्पर के तौर पर उसे रवाना कर दिया गया अफ्रीका से सीधा इंडिया की तरफ तो भाई साहब हमारे इंडिया में आ गया सिसो को जब इंडिया में आया तो उसे जिंदगी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता लगा उसे यह पता लगा कि उसका टैलेंट क्या है उसे ये समझ में आया कि किस चीज में वो बेहद माहिर है एक डिस्कवरी हुई और ये डिस्कवरी ऐसी नहीं थी कि कोई बिजनेस आइडिया आ गया नंबर्स के बारे में सिसो को इंडिया में आके ये समझ गया कि लोगों को कैसे समझा जा सकता है सामने वाले को क्या चाहिए सामने वाले को जो चाहिए उसे वही दिया जाए और उसमें थोड़ी सी हल्की सी मिलावट कर दी जाए स्वाद अनुसार नमक मगर इसमें मजा नहीं आया ना क्योंकि कहानी में नमक और मसाला तो आपको भी चाहिए तो सिसोको ने क्या किया सिसोको ने लोगों को यकीन बेचना शुरू किया यकीन कैसे बेचा यह है मेन पॉइंट अब सुनिए और से सिसो को लोगों को यकीन बेच रहा था उन्हें यह बता के कि वो अफ्रीका से है अब मान लीजिए मैं सिसो को हूं और आप जो हैं एक नॉर्मल इंडियन है 90s के दौर में जिसको ज्यादा दुनियादारी के बारे में पता नहीं है सिसो को बैठता था एक बिजनेसमैन के आगे एक नॉर्मल ठेकेदार के आगे और बोलता था आपको पता है मैं अफ्रीका से आया हूं ऐसे खानदान से हूं जहां पे ना हम लोगों के दूसरी दुनिया से कनेक्शन है हम दूसरी दुनिया के मखलूकात को बुलाते हैं और वो जो है हमारे पैसों को डबल कर देते हैं अब सामने वाला जो इंडियन है वो बैठा हुआ उससे कह रहा है हाँ पर तू तो बेहद गरीब दिखता है भाई पैसे किधर डबल हुए सिसो को बोलता था उससे हाँ तो गरीब दिखना पड़ता ना हम ऐसे पब्लिक में बता नहीं सकते ना बाबा जिसको ये आता है वो ऐसे बताता नहीं फिरता है हाँ तुम मुझे एक नोटों की गड्डी दो मैं डबल करके बताता हूं तुम्हें अब सामने वाला जो कह रहा है कि अच्छा होता है क्या ऐसा, ठीक है ठीक है ठीक है मैं तुझे देता हूँ, हाँ पर कम दूंगा ज्यादा नहीं दूंगा, मुझे भरोसा नहीं है। उसने बोला ठीक है भरोसा करना है करो, नहीं करना मत करो, मैंने तो तुम्हें बता दिया, तुम्हारी मर्जी है। और ये कन्विंसिंग पावर इतनी ज्यादा थी कि 90s के दौर में जो लोग इंटरनेट वगैरह से कनेक्टेड नहीं थे वो उसे 2000-3000 कुछ लोग नोटों की गड्डी, इसमें ठेकेदार, बड़े बड़े मर्चेंट्स देने लगे नोट उसको, और वो अपने आप में एक छोटा सा बैंक बन गया। किसी से 2000 लिए, किसी से 4000 लिए, 2000 वाले को 4000 पकड़ा दिए, फिर 8000 वाला ढूंढा, और ऐसे कर करके बीच में जब जमा हुए तो फिर लोगों से कनेक्शन उसने तोड़ना बंद कर दिया। और अब उसने ये अपना जो यकीन बेचने का बिजनेस है ये पूरे पुरजोर शोरों से चालू कर दिया। लोग खुद चल के उसको गड्डियां देने लगे नोटों की, और लुटकर खुद ही उसको थैंक यू भी बोल रहे थे, और उनको बोलता था देखो वक्त लगता है, ये दूसरी दुनिया से जो आते हैं ना नोटों को डबल करने के लिए, इनको गुस्सा मत दिलाना, हाँ यकीन करना बहुत जरूरी, यकीन तो यकीन करो हो जाएंगे डबल, पर यकीन रखना, जहां यकीन टूटा ये तुम्हारे खानदान वालों को भी बीमार बीमार कर देंगे। तो सामने वाला हो अच्छा अच्छा ठीक है सिसो को भाई कर देना, और नोटों की बारिश होने लगी। सिसोको को समझ में आ गया कि इंसान को क्या बेचना है, मटेरियलिस्टिक चीज नहीं चाहिए उसको, उसको बेचना है यकीन। 1995 के आते आते सिसोको अच्छा खासा पैसे वाला हो गया था यकीन बेच बेच के, और उसने कोई ऐसी बड़ी ट्रिक नहीं करी, उसे कुछ बड़ी ट्रिक चाहिए ही नहीं, उसे चाहिए एक बड़ा यकीन करने वाला, एक ऐसा शख्स उसे चाहिए था जिसके पास भर भर के दौलत हो, जो अपनी दौलत खुद उसे दे दे। अभी सुनने में कितना अजीब लगता है, मगर साथ रही है कहानी में बहुत कुछ है। तो फुटोंगा सिसोको, इसने ये तमाम यकीन बेच बेच के जो कमाया था इससे इसने टिकट बुक किया और फिर पहुंचा दुबई, दुबई पहुंच गया। यहां जब पहुंचा तो अब वो कोई सर्वेंट नहीं था, वो कोई हाउस हेल्पर नहीं था ना, अब तो भाई साहब ऐसा लग रहा था कि सालों से इसके पास न जाने कितना पैसा है। एक तो उसकी बिल्ड देख के लगता था कि अफ्रीका का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स है, VIP है, लहीम शहीम हट्टा कट्टा, बढ़िया बिल्ड एकदम, और महंगी रोब्स पहने हुए, चार्मिंग मैन फ्रॉम अफ्रीका, और ऊपर से बात बात पे होटल के स्टाफ को वो टिप्स दे रहा था। कोई स्टाफ आया, उसने कहा सर आपका बैग पकड़ के पहुंचा दूं, थैंक यू माय फ्रेंड, दे दिया उसको येलो नोट। और सभी देख रहे थे कि यार हमारे होटल में कोई बहुत ही पैसे वाला अफ्रीकन बिजनेसमैन आया है, क्या बात है यार। तो उसने अपना एक ऑरा सेट कर लिया था पहले, एक वेल्दी अफ्रीकन बिजनेसमैन का टोरा। फिर आया अगस्त 1995, सिसोको पहुंचा दुबई के एक बैंक में, और यहां पहुंच के उसने कुछ ऐसे नहीं किया जो बाकी कहानियों में आपने सुना है, नॉर्मल एकदम वो बैंक के अंदर गया और उसने मैनेजर से कहा कि सर मुझे एक लोन चाहिए, कार लोन चाहिए। मैनेजर साहब सामने बैठे हुए थे, जो मैनेजर सामने बैठे हुए थे उनका नाम था मोहम्मद अयूब। आयु साहब ने कहा किस किस्म का आपको चाहिए, कौन सी गाड़ी पे सोच रहे हैं आप? तो गाड़ी कोई छोटी मोटी नहीं थी, गाड़ी बहुत भारी भरकम गाड़ी थी, पर लोन का अप्रूवल आ गया क्योंकि पता लग रहा था कि भाई सामने जो है वो पैसे वाला बंदा है, इसको तो अप्रूवल देना ही पड़ेगा, और उसे अप्रूवल दे दिया गया। एकदम रूटीन नॉर्मल बात है, सिसोको ने पेपर आगे रखा और अप्रूवल भी आ गया, और इसके बाद फुटांगो सिसोको ने चलिए वो चाल जैसे शतरंज में डेढ़ चाल चलता है घोड़ा, ढाई चाल, ढाई कदम चलता है ना, वैसी ढाई कदम वाली चाल थी। उसने आयुब भाई को जो इस बैंक के मैनेजर थे उनको बोला कि यार आयुब भाई घर पे आइए, आपके लिए दावत वावत है यार, आइए कभी मिलते हैं। एंड आयुब के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उसके सामने उसे क्लियरली दिख रहा था कि आदमी बहुत बड़ा आदमी है, और उसने दावत पे बुलाया तो यार जाना तो पड़ेगा। एंड जवाब में आयुब ने बोला सर ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है,

बी एन ऑनर फॉर मी, बिल्कुल मैं आपके घर आना चाहूंगा, ऑब्वियसली ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। अब आप देख रहे हैं कितनी छोटी लेकिन कितनी बड़ी बात हुई है इन दोनों के बीच में। बीच में कोई नकली डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी किस्म का हथियार वित्यार कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, एक सिंपल डिनर इनविटेशन है। अब हुआ ये कि अगले ही हफ्ते डिनर पर आयूब पहुंचा सिसोको के घर पे, वो घर जो उसने किराए पे लिया था, बड़ा सा, वो भी दुबई में, तो आप समझ सकते हैं द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब वहां पे पहुंचा तो उसने, सिसोको ने आयूब को गिफ्ट दिए। ये गिफ्ट मैं हर किसी को देता हूं जो मेरे घर में एंटर करता, गिफ्ट भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, बाकायदा एक गोल्ड का बिस्किट था। तो कर क्या यार, क्या आदमी है आयूब, ने कहा वाओ, एंट्री के साथ ही गोल्ड का बिस्किट, साहब ये तो बहुत बड़े आदमी है। और बातें हुई, खाना वाना हुआ, सब कुछ हुआ, और बात करते करते सिसोको ने फिर एक बात कही जो आयूब के दिमाग में कहीं जाके टक गई। उसने बोला, आयूब तुम यहाँ पे आई गए हो यार, तुम्हें कुछ बात कहना चाहता हूँ मैं। यू नो मैं किसी से कहता नहीं हूँ मगर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही इस बात से रिलेट कर पाओगे। यार मेरा ना दूसरी दुनिया से एक कनेक्शन है, दूसरी दुनिया के जो मखलूकात हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, तुम जानते ही हो मैं अफ्रीका से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसी जगह पे आता हूँ जहाँ पे हम ये सब करते हैं, तो मैं नोट डबल करता हूँ। अब कोई और होता, कोई वेस्टर्नर होता, कोई अंग्रेज होता, तो शायद वो इस बात में फंसता नहीं। आयूब जो था वो इस बात में आधा तो आ ही गया था, पर उसे यकीन कैसे आए। तो आयूब ने कहा, अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप सिसोको भाई। सिसोको ने कहा, नहीं मजाक नहीं कर रहा, मैं करता हूं ये यार, मैं तुम्हें नहीं करा करने को लेकिन करता हूं यार, मैं क्या करूं, इतने बेचारे लोग हैं इस दुनिया में, पर मैं हर किसी की मदद नहीं करता, मैं सेलेक्ट करता हूं उन लोगों की मदद करता हूं जिनको सच में यार ये चाहिए। तो आयूब ने कहा, आप मेरी मदद करेंगे? सिसोको ने कहा, हाँ हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगा, अगली बार आओ तो लेके आना तुम, मैं डबल करके देता हूं। अब आयूब साहब जो थे वो सिसोको की बात में आधे आ चुके थे, पूरा आना बाकी था। वो दो दिन के बाद 10,000 dirhams लेकर पहुंच गए वापस सिसोको के पास। वहां पे सिसोको था और सिसोको जो था उसने कहा, लाओ अटैची दो। तो एक पूरा ब्रीफ केस था जिसमें 10,000 dirham थे, वो आगे रखे और सिसोको मुड़ा, एक कमरे की तरफ बढ़ रहा था, ऊपर शीशे की एक बेल टंगी हुई थी जिसमें वो देख सकता था कि उसके पीछे आयूब का क्या रिएक्शन है। अब बारी थी एक पूरी थिएटर करने की आयूब के सामने, तो सामने कमरे की तरफ बढ़ रहा था और सिसोको अपने मन में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा था, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो नोट डबल करने के लिए। और आयूब बड़ा रहा था, ये क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है, और वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। लेकिन फिर एक बंदा जिसको हायर किया था सिसोको ने पैसे देकर, उसे बताया था कि तुझे भाग के आना है और डराना है इसको। तो वो दूसरे कमरे से निकल के आया और आयूब को बोला, नहीं ठहर जाओ, अंदर मत जाओ साहब, जब तक नोट डबल ना कर दें तुम्हारे यहीं ठहरो, वरना दिक्कत हो जाएगी, हाँ यहीं ठहरो। और एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग करी उसने कि आयूब वहीं ठहर गया, कमरे के अंदर गया सिसोको, और वहां पे उसने लाइट्स और स्मोक, कुछ मशीनें होती है ना लगाते हैं हम अक्सर वीडियो शूट करने के लिए, वो सारी की सारी लगा रखी थी उसने। तो जो लाइट्स होती हैं उनके कलर को चेंज करता रहा, कभी लाल कभी हरी कभी नीली, और दरवाजा बंद कर रखा था, अंदर धुआं धुआं कर दिया, दरवाजे के नीचे से नजर आ रहा था, बाप रे इतनी लाइटें बिखर रही हैं भाई, ऐसा धुआं निकल रहा है, कुछ तो हो रहा है अंदर। और उसने हाई वॉल्यूम पे, जैसे माइक को बहुत लो वॉल्यूम लेकिन एक ऐसी वॉल्यूम जो सुनाई दे बाहर तक आए, उस पे करके पढ़ने लगा, ऐसे तेज़ पढ़ा था। तो बाहर आयूब को लग रहा है कि अंदर कुछ तो हो रहा है ना। फिर लाइट्स बंद हुई, सिसोको बाहर आया एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस देने के बाद, और बाहर आके एक दूसरा बैग उसके सामने रखा, बोला लो तुम्हारे पैसे डबल हो चुके हैं, धिरम्स डबल हो चुके हैं। तो वो 10,000 जो लेके गया था, बाहर आया 20,000 dirhams के साथ, अंदर दूसरे बैग में से 10,000 dirham निकाल के उसको दे दिए। और जब आयूब ने बैग खोला कि 20,000 dirham होंगे तो सच में डबल हो गए, मिरेकल मिरेकल, पर सिंबल उसने बस नाटक करके बैग में से चेंज करके डाल दिए थे। और आयूब जो था अब पूरी तरह से बिक चुका था, मतलब उसे यकीन बेच दिया गया था।

और ये जो ट्रिक थी आयुब के साथ सिसोको ने 2-3 बार करी, बैंक में भी करी, बाहर भी करी। अब आयुब को लगने लगा यार ये तो मेरे हाथों में क्या लग गया। आयुब अपने आप को अलादीन समझने लगे कि अरे वाह मेरे हाथ तो ये चिराग लग गया है, अब तो मेरे नोट डबल होते ही रहेंगे। और सिसोको को यही चाहिए था। अभी सिसोको उसे लूटने के लिए तैयार नहीं था, सिसोको अभी उसे यकीन बेच रहा था। वो जानता था कि अभी उसने दाना फेंक दिया है, कबूतर को आदत तो हो जाए एक मर्तबा, और कबूतर को आदत हो गई। आयुब ने अब वो करना शुरू किया जिसका इंतजार था सिसोको को। आयुब ने, क्योंकि वो बैंक का मैनेजर था, उसने ट्रांसफर मारने शुरू करे बैंक के ही पैसे डबल करने के लिए सिसोको के अकाउंट में, और पहली बार डबल होकर पैसे वापस आए। सिसोको ने डबल करके दे दिए, वो भी ऑफिशियल बैंक के चैनल से। आयुब को तो पूरी तरह से यकीन हो गया, भारी यकीन। पहले जो मैजिक शो लग रहा था अब कन्विंस हो गया वो। सिसोको ने ये क्यों किया, उसे यकीन बेचना था ना, बेच दिया। आयुब को बैंक ट्रांसफर में अपनी सेविंग्स थोड़ी देनी है, उसे तो बैंक का जो पैसा है वही देना है, और वो आखिर बैंक का मैनेजर है, उसे कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं है सिसोको को, क्योंकि छुपाने का काम तो खुद आयुब करेगा, वो सीनियर मैनेजर है, उसके पास अथॉरिटी है कि नोटों की गड्डी इधर से उधर जाए, कितने भी ट्रांसफर हो अकाउंट से इधर जाए, कोई नहीं पूछेगा। उसे कोई सिस्टम ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आयुब खुद एक सिस्टम है। हर ट्रांसफर एक आम बिजनेस जैसा नजर आ रहा था, तो ट्रांसफर होते रहे। सिसोको ने भारी भारी अमाउंट लेना शुरू किए, और जब भारी भारी अमाउंट आते गए, जमा होते गए, सिसोको ने बोलना शुरू किया देखो टाइम लगता है, इतने लालच मत फैलाओ, और कुर्बानी दो। और वो ट्रांसफर करता गया, आयुब करता गया। सिसोको के पास अमाउंट बैंक खुद दे रहा था, और सिसोको ने कहा देखो भाई टाइम लगेगा डबल होने में, सब्र रखना, हिम्मत रखो। और सिसोको खुद चला गया अमेरिका, वहां उसने क्रेडिट कार्ड को दबा के यूज किया, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और क्रेडिट कार्ड का बिल कौन पे कर रहा है कौन पे करेगा, बैंक, दुबई वाला बैंक, वो पे कर रहा है, क्योंकि आयुब दिए जा रहा है डबल होने के लिए। अभी वो बैंक पर्सनल अकाउंट की तरह बन गया है सिसोको के लिए। शुरू में डबल आए क्योंकि डबल करने पड़े उसे दिखाने के लिए, इतनी बार डबल कर दिए थे कि यकीन हो जाए। फिर उसको क्या नाम दिया कि कुर्बानी चाहिए, बड़ी कुर्बानी, फिर बहाने, फिर कैश, इतना ज्यादा कि बस ठीक लगे, नामुमकिन ना लगे। अब आयुब जो था वो थोड़ा सा फंस गया था। आयुब अगर ये मानता भी है कि ये झूठ है तो वो बता नहीं सकता, क्योंकि वो खुद एक बेवकूफ लगेगा, तो उसे बस ये यकीन रखना है कि ये कभी ना कभी हो जाएंगे डबल। बैंक का जो खजाना है वो एक अजनबी को थमा रहा है, क्या सोच के कि दूसरी दुनिया के मखलूकात आएंगे और डबल करके चले जाएंगे। अब कौन चाहेगा कि दुनिया जो है उसको बोले कि यार तुम कैसे बेवकूफ आदमी हो भाई, कोई नहीं कहलवाना चाहेगा ना, तो इसलिए चुपचाप रहा वो। सिसोको ने डर की एक चादर चढ़ा दी थी, और सिसोको ने फिर डर को बढ़ाने के लिए ये कहा कि देखो आयुब ट्रांसफर करते रहो, एक ना एक दिन डबल हो जाएगा, समझे, ये लोग बड़े ताकतवर और बेसब्र होते हैं, इनसे पंगा नहीं है, वरना बहुत कहर गिरेगा तुम पर, खानदान वालों पर भी, जरा संभल के रहो। तो पहले तो उम्मीद दी, और उम्मीद को देने के बाद पीछे से डर से दरवाजा बंद कर दिया, अंदर आयुब फंस गया। आयुब साहब अपने डेस्क पे बैठे हुए थे और बैंक का पैसा ट्रांसफर कर रहे थे सिसोको को, और वेट कर रहे थे कि कभी ना कभी एक चमत्कार होगा, दूसरी तरफ से फुटांगा सिसोको पैसे डबल कर देगा। पर ये सिसोको पैसे को खर्च कर रहा था फुल स्पीड से, उसने स्पोर्ट्स कार्स ली, एक नहीं दर्जनों ली, लेता ही चला गया,
और उसके खर्च करने का अंदाज बाकियों से अलग था, जितने भी मैंने आपको कहानियां सुनाई हैं। मायामी में सिसोको ने लग्जरी गाड़ियां खरीदी, खरीदता ही चला गया और वो ऐसे खरीद रहा था जैसे हम और आप गाड़ी से एक रियाल की चाय खरीदते हैं। हाफ अ मिलियन की गाड़ी वो आराम से अगले ही 5 मिनट में खरीद लेता था और वो इन गाड़ियों को अनजान लोगों को बांट रहा था। चलते फिरते वैले में गाड़ी ले गया, वैले वाले ने कहा सर आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, ठीक है भाई तू रख ले, ये ले चाबी। ऐसे वो बांट रहा था लोगों को गाड़ियां, एक रेप्यूटेशन बन रही थी सिसोको की पूरे के पूरी जहां वो जा रहा था। फिर उसने कहा अभी मैंने बांटना बहुत कर लिया है, अभी मुझे निकल लेना चाहिए। तो वो न्यूयॉर्क होते हुए अफ्रीका की तरफ वापस चला गया और अफ्रीका में जब वो जा रहा था तो JFK जो एयरपोर्ट है वहां पे जाने के बाद भी उसने लोगों को चेक्स बांटे, बड़े बड़े अमाउंट के चेक। JFK टर्मिनल में जाते ही ये लो ये लो ये लो ये लो। उसके बाद अफ्रीका पहुंचा, प्रेस को मीडिया को समझ में नहीं आ रहा था कि अरे ये कौन बंदा यार, क्या बात है। उसे लोगों ने टाइटल दिया कि ये तो फिलैंथ्रोपिस्ट है, कोई प्रिंस होगा ये। किसी ने नहीं पूछा कि कहां से आ रहा है पैसा, क्योंकि इंसानी फितरत है जब पैसा बट रहा है तो कोई क्यों पूछे, है ना। पर वो बांट क्यों रहा है ये लोगों ने जानने की कोशिश नहीं करी। ये मैं आपको बताता हूं, सिसोको इतना सब कुछ करके ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स बांट रहा था क्योंकि उसका कल्चर उससे ये करवा रहा है। वो एक कल्चर से आता है अफ्रीका का जिसे ग्रियो फैमिली कहते हैं। वेस्ट अफ्रीका में ग्रियोज जो होते हैं वो माने जाते हैं ऐसे लोग जो अपने कल्चर को बड़ा दिल से लगा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। इन इस कल्चर में म्यूजिशियंस होते हैं, स्टोरी टेलर्स होते हैं, इसमें हर किसी का अपना अपना एक रोल होता है और उसमें एक रोल होता है पेट्रॉन्स का, जो कि बड़े लोग माने जाते हैं, पैसे वाले लोग माने जाते हैं जो पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। और वो रोल अदा करने के लिए सिसोको पहुंच गया था। वो फंड कर रहा था आर्ट को, म्यूजिशियंस को सपोर्ट कर रहा था और लोग गाने बना रहे थे उस पर। भर भर के उसने बांटे, भर भर के नोट बांटे। माली के इतिहास में ऐसा कभी किसी ने देखा ही नहीं था। उसने जो ग्रियो म्यूजिशियन थे जो गाने बजाने वाले थे उसके कम्युनिटी के, उन्हें कैश गोल्ड कॉइन्स पूरे पूरे घर दे डाले। एक बार उसने कई 100 म्यूजिशियंस को एक साथ इकट्ठा किया, एक साथ बुलाया इन द कैपिटल ऑफ बामको और वहां पे उसने कैश बांटा। एक लेजेंडरी सिंगर थी अफ्रीका की, उसी के गांव की, कांडेया कुया थे, और उसको बुला के उसने क्या दिया पता, जहाज, 2 सीटर का जहाज पायलट के साथ और तेल के साथ। फिर एक सिंगर था सालिफ कीटा, इन भाई साहब ने सिसोको पे गाना लिखा, गाने का नाम बाबा। माली में सिसोको कोई फ्रॉड नहीं था, वो सबसे बड़ा हीरो था, लिविंग लेजेंड जिस पर म्यूजिक बन रहा था, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और उसके बाद सिसोको अपने गांव पहुंचा, जड़ में जहां वो पैदा हुआ था, जहां ना सड़कें हैं ना क्लिनिक है, जहां से बस लोग भाग जाना चाहते लेकिन भाग नहीं सकते, बस वहां पे उसके कदम पड़े और उसने हॉस्पिटल्स को फंड किया, स्कूल बनवाए, एक पूरी की पूरी एयरफील्ड बना डाली जिस गांव के पास कुछ भी नहीं था, अचानक से सब कुछ बन रहा था। और ये बनवाने का पैसा कौन दे रहा है? सही जवाब है वो बैंक जो दुबई का बैंक है, जिसे आइडिया ही नहीं है कि वो एक गांव बसा रहा है। और उसके बाद सिसोको ने कुछ ऐसा किया जो काफी हटके था, काफी हटके। उसने अपनी एक एयरलाइन खोल डाली, नाम दिया एयर दाबिया, यानी उसके गांव का नाम एयर दाबिया अपने गांव के नाम पे। अब जब एयरलाइन खोल ली तो जहाज भी तो चाहिए, उसने जहाज खरीदना शुरू किए, एक सेकेंड हैंड हॉकर स्टिली बिजनेस जेट खरीदा, सेकेंड हैंड था पर बढ़िया था। फिर सेकेंड हैंड 2 बोइंग 727 खरीद लिए, उसके बाद एक पूरा बड़े साइज का बोइंग 747 जंबो जेट खरीद लिया। अब एक शख्स जो ऐसे गांव से आता है, ऐसे गांव में पैदा हुआ है जहां ना सड़कें हैं ना कुछ है ना वो खुद पढ़ा लिखा है, उसके पास अब एक फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट थे। अब एयरलाइन चलवानी भी तो है, तो उसने पकड़ा एक ड्राइविंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर को, बोला भाई कल से तुम मैनेजर हो, ये लो। उसको मैनेजर बना दिया और भर भर के उसे तोहफों में डुबा दिया। अब आप बोलेंगे इन सब का सेंस नहीं बनता, बिजनेस के लिहाज से बड़ा बड़ा अजीब सा आइडिया है, गलत आइडिया है, पर पॉइंट ये नहीं है ना, ना ना ना ना ना बात ये है कि
इससे साबित होता है कि फुटोंगो सिसोको ये सब कर सकता है। वो एयरलाइन इसलिए थोड़ी खोल रहा है कि बिजनेस कमाएगा, इससे पैसा आएगा, ना ना ना ना, ना। इससे इमेज बिल्ड हो रही है कि सिसोको ये कर सकता है, उसके पास एंडलेस अमाउंट है। अब ये जो सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसमें अमेरिका का बैंक सिस्टम भी शामिल है। अब इसको सुकून से चलता रहने के लिए क्या करना है, इसके अंदर भी कोई ढूंढना पड़ेगा। चला गया आयुब, उसने ढूंढा एक बंदा जिसने अंदर के रास्ते खोले। सेम आयुब जैसा बंदा उसे मिला। $150 million मूव हुए अमेरिका के अकाउंट से। अब दो बैंक है, एक दुबई वाला बैंक है जो उसको फीड कर रहा है, और एक अमेरिका वाला बैंक है जो उसके खर्चे वर्चे संभाल रहा है। स्टिल उसने सारी की सारी गाड़ियां, विलेजर्स को, स्ट्रेंजर्स को, सब कुछ करी। इसके बाद तो दिल भरदाना चाहिए था, सब कुछ तो कर लिया, मगर उसका जी नहीं भरा। नहीं नहीं, एक और चीज चाहिए। और जो चीज उसे चाहिए थी, ये चीज ही बहुत ट्विस्ट लाती है कहानी में। उसने एक हेलीकॉप्टर की चाहत अपने दिल में जगाई। सिसोको को चाहिए था एक हेलीकॉप्टर, उसे खरीदने के लिए वो निकल गया 1996 में। ये आम हेलीकॉप्टर नहीं था, ये टू बेल हुई हेलीकॉप्टर थे जो कि वियतनाम एरा के मिलिट्री ग्रेड एयरक्राफ्ट थे। अब आप पूछेंगे ये हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है, भाई एम्बुलेंस चाहिए थी उसको, उसको एम्बुलेंस बनाना था अपने अफ्रीका में वहां पे गांव में, इसलिए उसको हेलीकॉप्टर चाहिए था। तो उसने कहा ठीक है ये मुझे चाहिए। पर उस टाइम पे यूएसए में ये सब करना अलाउड नहीं था, मतलब इसके लिए आपको बहुत ही स्पेशल एक अलग ग्रेड का एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। सिसोको के पास तो ऑब्वियसली नहीं था। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी तक मैं करता ही आया हूँ, नोटो कैश फेंक तमाशा देख। तो उसने वही किया, वो कस्टम ऑफिसर के पास गया, अपनी जेब में से $30,000 उसके टेबल पर रखे और बोला इजरा काम हो जाना चाहिए। पर यहां पर दिक्कत हो गई। सामने वाला जो ऑफिसर था, ये बंदा निकला ईमानदार, ईमानदारी का पुतला। ये वो बंदा था जो खरीदा नहीं जा सकता, और इसने रिश्वत लेने से मना कर दिया, उल्टा इल्जाम लगाया, और इसने अथॉरिटीज को बता दिया। मामला खराब हो गया, वारंट निकल गया, इंटरपोल वाले पीछे पड़ गए। फाइनली इतना सब करने के बाद, सब कुछ मिलियन डॉलर्स उड़ाने के बाद पकड़ा कब गया, हेलीकॉप्टर खरीदने की वजह से। सिसोको को गिरफ्तार किया गया जिनेवा में, और वहां से उसे एक्स्ट्राडाइट किया गया फ्लोरिडा यूएसए में, ताकि उस पर मुकदमा चल सके। अब यहां कहानी अपने बिल्कुल पीक पे पहुंच जाती है। सिसोको को सजा हुई 43 डेज की, जो कि बाकी पिछली कहानी तो लोगों को पता ही नहीं थी ना, करंटली बस एक हेलीकॉप्टर वाली कहानी पता थी। तो उसकी सजा 43 डेज, 43 दिन, और उस पर फाइन लगाया गया $250,000 का। फाइन कौन पे करेगा, सही जवाब दुबई वाला बैंक। उन्हें पता ही नहीं है कि वो जो पे कर रहे हैं आयुब साहब, वो किसी का फाइन पे कर रहे हैं। वायरिंग फुल चालू है, सेम मनी कोर्ट फाइन के लिए भी यूज हो रहा है, और सिसोको ने इसमें भी एक खेल कर दिया। सिसोको ने अच्छा बिहेवियर दिखाया, जल्दी रिहाई मिली, और उसने अपने बिहेवियर को और अच्छा करने के लिए $1 million डोनेट करने का फैसला किया होमलेस शेल्टर की तरफ। तो ऑब्वियसली सरकार भी खुश, उसने कहा भाई जाओ, तुम तो बहुत बेहतरीन आदमी हो। ये कहां से आया, बिल्कुल सही जवाब, दुबई से आया, आयुब भाई ने भी जाए। अब जब वो लौटा अपने अपने कंट्री में, अफ्रीका में, माली में जब पहुंचा सिसोको, तो वहां तो उसका स्वागत हुआ बिल्कुल हीरो की तरह, मालाएं, लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, जबकि ये वही बंदा है जिसे अरेस्ट किया, फेडरल कोर्ट में भेजा गया। एक भी बंदा कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहा था कि कहानी इसकी पिछली क्या है। बैंक के हिसाब से तो सब बढ़िया चल रहा है, दूसरी तरफ आयुब क्योंकि मैनेजर था तो वो चीजों को छुपा पा रहा था। पर अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका था, मामला हो चुका था $242 million के आसपास। 1998 में सिसोको ने फोन उठाना ही बंद कर दिया आयुब का। आयुब कह रहे हैं सर मेरे पैसे डबल कब होंगे, कब होंगे, कब होंगे। सिसोको ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। टोटल ट्रांजैक्शन जो अभी तक हो चुका था आयुब की तरफ से सिसोको को, वो 183 बार हो चुका था, 183 टाइम्स
हिसाब लगा लीजिए, ना तो डबल हुआ ना कोई दूसरी दुनिया का आया। बैंक ने ऑडिटर्स को हायर किया और ऑडिटर्स को

जाहिर सी बात है ये गैप समझ में आ गया और अब सवाल जवाब शुरू हो गए आयुब भाई से, कब तक ना होते, समझाए ना समझे। एक कलीग ने सीधा पूछा, आयुब सच बताओ क्या हुआ है। आयुब की आंखों में इतनी शर्म थी, उसने अपनी आंखें नीचे झुकाई, एक कागज पे एक नंबर लिखा और वो जो नंबर था वो था 890 million dirhams, यानी कि 242 million dollars, गायब उड़नछू। ये ट्रेडिंग फ्लोर्स पे ये कहानी पहुंची, अखबारों में चली, हर जगह फैली। ऑर्डिनरी डिपॉजिटर्स जो थे, जो बेचारे जिनका पैसा था बैंक में, सब के सब पहुंच गए। अब इमरजेंसी मनी को इस्तेमाल करना पड़ा और अलग अलग जगह से, खैर वो अलग टेक्निकल चीज़ें हैं, मगर आयुब साहब को सजा तो भुगतनी थी, उन्हें सेंटेंस सुनाया गया। मगर फिर सिसोको का क्या होगा, आयुब भाई को सजा मिल गई, सिसोको को भी सेंटेंसिंग सुनाई गई, उसे सजा सुनाई गई, मगर दूर से। सिसोको जब तक बिल्कुल हद के पार हो चुका था, वो तो वहां था ही नहीं, उसे सजा सुनाते रहो, पूरी जिंदगी सुनाते रहो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहुंच चुका था अपनी जगह माली में, जहां से कोई उसे एक्स्ट्रा डाइट नहीं कर सकता, मतलब उसे कोई वहां से निकाल के पकड़ के ले जा नहीं सकता। सिसोको ने फिर कुछ ऐसा करा कि वो बिल्कुल ही पहुंच के बाहर हो गया, बिल्कुल ही पहुंच के बाहर। 2002 में उसके लोगों ने उसे उठा के बना दिया मेंबर ऑफ माली नेशनल असेंबली, समझ रहे हैं, यानी कि वो पार्लियामेंट का मेंबर हो चुका है। 12 साल तक वो रहा। एक आदमी जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो अब कानून बना रहा है, अनटचेबल है। पीछे तो उसने सब कुछ बनाया, एयरलाइन बनाई वो बैंकक्रप्ट हो गई, जो गाड़ियां बांटी वो चली गई, जो मेंशन उसने बनाए वो चले गए, उसने जो कुछ भी किया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसने बांट दिया, बस बांटता ही चला गया, सब कुछ फूंक दिया जितना उसने आयुब से लिया था। एंड में कुछ नहीं था उसके पास, कुछ भी नहीं था, मगर 2021 में वो इस दुनिया से बड़े ही सुकून से गया, आराम से लेटे लेटे दुनिया को अलविदा कह दिया, वो भी अपने गांव बाली में बिना कोई सजा काटे। ये है कहानी इन भाई साहब की, जिनका नाम है फुटांगो सिसोको। अब आपके ऊपर है, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। 666-22107 666-22107, ठीक है। जंगल के बाद मिलते हैं और फिर देखते हैं कि आपकी क्या रिस्पॉन्स है। मैंने तो आपसे कहा था वीकेंड वाली फील करा देंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: मजा आया, बिकॉज मुझे सुनाने में बहुत मजा आया. ये कमाल का किस्सा है भाई. किसी किसी ना खोपड़े की वायरिंग ही अलग होती है, उसको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता. कुछ लोग दुनिया से पैरेलल ही चल रहे होते हैं भाई. एक दो मैसेज मैं पढ़ देता हूँ और आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पर, 4434377 पर. तिशान भाई ने मैसेज किया, वो कह रहे हैं डबल शाफ फ्रॉम अफ्रीका. नहीं भाई, ये तो रॉबिन हुड था अफ्रीका का. और आगे लिखते हैं, यार ऐसे लोग बांटने वाले कहाँ मिल जाते हैं इन पब्लिक को, हमें तो 3 दिन से रेक्स बिल्ली नहीं मिल रही है. एक कॉल आ रही है मेरे को. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी साहब, बताइए क्या हुआ.
1: कुछ नहीं भाई, सदमे में, मैं नौकरी से रिजाइन दे रहा हूँ, जा रहा हूँ इंडिया वापस, कुछ सीखूंगा. बस हो गया भाई, लोग इंडिया से सीख के कहाँ कहाँ पहुंच जा रहे भाई. जहाज हेलीकॉप्टर सब कुछ खरीद रहे.
0: अरे भाई भाई भाई
1: भाई, बस
0: तो ऐसा ही है भाई.
1: दिल कर रहा है भाई रिजाइन मार के चला जाए इंडिया. यही काम किया जाए, इसी में पैसा है.
0: हाँ भाई ऐसे ही भाई, क्या बोल सकते हैं भाई. पर आपको लगी कैसी कहानी.
1: कहानी भाई, कहानी सुना रहे थे जो कोई मूवी भी दिखा रहे थे भाई,
0: है ना. मैं
1: आदमी जो है जा रहा वहाँ पे, लोग बिल्कुल बनाया, पैसा लिया चला गया दूसरे देश, वहाँ गया वहाँ से बैंक से पैसा लिया दूसरे देश चला गया, लोन भी उसको मिल जा रहा है.
0: कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप लड़के का, कॉन्फिडेंस
1: वो भी जो बताइए अंगूठा छह.
0: बताइए यहाँ तो क्या ही बोलू मैं. जब भी मुझे लगता है ना कि इससे आगे तो कोई नहीं गया होगा, ये रिकॉर्ड तोड़ ही देता कोई ना कोई. तो
1: नहीं भाई, होंगे दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होंगे भाई, जैसे आप कहानी सुना रहे ना, अभी तो कंफ्यूजिंग होने लगी है यार भाई, क्या है दुनिया. जैसे वो है ना, क्या कहते हैं वो जंगल, कौन सा है,
0: अमेज़न
1: का जंगल. हाँ हाँ. इसमें कुछ भी है भाई, आज तक जो है फाइनल नहीं हो पाए कि क्या है, कितने लोग है, कितने कलाकार है, रियल आज तक फाइनल नहीं हो पाया है
0: भाई. लेकिन इस पे तो पिक्चर बननी चाहिए भाई, मेरे को लगता है ये तो डिजर्विंग, वेल डिजर्विंग है ये.
1: सीरीज बननी चाहिए
0: पिक्चर. ये सीरीज है, ये सीरीज वाली कहानी है, बिल्कुल सही कहानी.
1: हाँ ये सीरीज वाली कहानी.
0: हाँ ये सीरीज वाली कहानी, 30-30 मिनट की एपिसोड होनी चाहिए भाई पे. अरे यार थैंक यू सो मच, आपको अच्छी लगी भाई. मैं तो सोच रहा था कि वीकेंड के लिए बचा के रखा हूँ, मैंने कहा नहीं चलो वीकेंड पे कुछ भारी लेके आते हैं.
1: चलो
0: ये, लेकिन
1: भारी हो इससे अच्छी हो,
0: अब पता नहीं भाई,
1: हो सकता है लेवल पे दोनों हो.
0: हाँ
1: वो अच्छी होती है कबीर भाई, बहुत ध्यान से सुनो तो हर चीज जो है, ध्यान से क्या सुना, सुनाते तो ध्यान अपने आप ही लग जाता है, दूसरे काम में लगता भी नहीं है.
0: थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत प्यार आपको. थैंक यू, इतने दिल लगा के सुनने के लिए.
1: ओके
0: भाई. ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. तो कमाल भाई के बाद एक और कॉल आ रही है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: जी मेरे भाई बताइए.
2: मेरे भाई क्या रहे, ठीक ठाक.
0: बढ़िया भाई, आप सुनाइए. लो ठीक ठाक के बाद कॉल कट गई. एक मैसेज है भाई, इस स्टोरी में अब तो खुराफाती दिमाग चल गया होगा कि अब ऐसा भी कर सकते. आदिल अहमद भाई का मैसेज है, इसके बाद जरा कॉल उठा लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. क्या जरा, क्या हाल चाल है.
0: बढ़िया भाई, आप सुनाइए.
3: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया भाई साहब. अरे 2-4 रुपए किधर को सिखवा देते भाई साहब.
0: कैसे लगी आपको कहानी ये बताइए आप.
3: जबरदस्त खिला दिया भाई.
0: है ना, बात है.
3: फिल्म दिखा दिए यार तुम, तो कहानी के चक्कर में पूरी फिल्म दिखा दिए भाई.
0: मैं
3: इमेजिन कर रहा था भाई.
0: थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. आई एम रियली हैप्पी कि अच्छी लगी.
3: यार जबरदस्त भाई,
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई. मैं यही चाह रहा था, बस
3: चले क्या फिर कहीं.
0: आयुब भाई को ढूंढो भाई.
3: चले चले उड़ी ढूंढो, चलना चलो फिर.
0: आज इतने लोगों का नाम आयुब है वो कह रहे यार ये क्या.
3: अरे भाई वो बंदा डबल घंटे के चक्कर में अपनी लंका लगा ली.
0: मुझे लगता है हेरा फेर ये अनुराधा, मेरे अनुराधा कहाँ है, ये वो वाली कहानी.
3: अनुराधा लगा के चले गए चूड़ा.
0: अरे यार, पर मुझे यार। मैं पता जज्बा इंतजार कर रहा था, मैंने कहा वीकेंड पे सुनाऊंगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया. पता ही ऐसी कहानी थी, तो मैं कहा चलो आज ही.
3: जबरदस्त यार,
0: थैंक यू.
3: इससे ज्यादा थ्रिल वाली आएगी वीकेंड का, तो आ ही जाएगी.
0: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स भाई, उसका भी जुगाड़ है अपने पास.
3: थ्रिल तो भर भर के भरा पड़ा है इधर.
0: अरे भाई पूरा
3: क्वांटम के टनों के हिसाब से,
0: खजानों भाई खजानों.
3: भर भर के टनों के हिसाब से भरा पड़ा भाई.
0: बिल्कुल भाई, तो ये मजा आएगा. लोग सर्च करके मेरे को मैसेज भी कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है कि लोग वेरीफाई कर रहे हैं मेरी बात को.
3: नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त भाई, बहुत बढ़िया.
0: वही तो सिसोको है, वही सिसोको है अपने. मैं बोलूंगा सिसोको पैसे वापिस दे दो सिसोको.
3: आज यही वाला टॉपिक छेड़ते
0: हैं. हाँ सिसोको, आयुब के साथ तुमने अच्छा नहीं किया ये बोल देना बस. आयुब भाई के साथ अच्छा नहीं किया तुमने.
4: अरे कोई दूसरा यू भाई जी आ जाए गले पड़ जाएंगे फिर
0: नहीं आज तो ये होना चाहिए आज तो बनता है भाई आज तो बनता है
4: नहीं आज करेंगे करेंगे
0: डन डन हो
4: गया आज छेड़ेंगे जरूर
0: डन हो गया भाई डन हो गया थैंक यू सो मच भाई
4: ठीक है इंशाल्लाह भाई होती है
0: अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ शेख अली भाई लिखते हैं ये कहानी पर रेस फोर बननी चाहिए अस्सलाम वालेकुम भाई जान वालेकुम अस्सलाम भाई एक मैसेज भाई क्या कहानी थी ट्विस्ट पे ट्विस्ट देके जा रहे थे दुनिया में एक सच्चा इंसान है, है? दुनिया में एक सच आसान है इंसान को बोल दो बनाना ये प्रूव कर दिया है ना यकीन बेचना आना चाहिए भाई बस दैट्स इट एवरीथिंग एल्स जस्ट फॉल्स एक मैसेज कॉल आ रही है हमारे जवाल भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम
5: अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: जी भाई क्या कहेंगे
5: किसी ने कहा था ना भाई
0: हाँ
5: कि न इतना टूट कर मिलिए कि दिल को शक गुजरे
0: हाँ
5: खुलूस में भी जरूरी है फासला रखना
0: है ना ये एकदम फिट गया उन्हें एकदम फिट हुआ भाई
5: भाई हाँ। मुझे हैरत सबसे ज्यादा एक चीज पर है
0: जी
5: बंदे ने जिस कंट्री का इंतखाब किया था
0: हाँ,
5: यकीन बेचने के लिए
0: हाँ,
5: वो उसके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत हथियार था
0: हाँ,
5: क्योंकि देखिए हाँ, मुझे जहां तक लगता है कि अगर वो किसी मतलब इब्तदा में शुरुआत में यकीन बेचने वाला अगर कहीं किसी यूरोप की कंट्री का इंतखाब करता
0: हाँ,
5: तो मैं भी शायद वो शुरू में ही फेल हो जाता
0: हाँ, तो वही मैंने बोला भी कहानी मैंने बोला ना अगर कोई वेस्टर्न वाला होता ना तो नहीं खेल खत्म हो जाता
5: है
0: तो कैसे लगी आपको कहानी जमाल भाई टोटल अगर पूछो मैं तो मजा आया
5: भाई कहानी वो किसी भाई ने अभी कहा ना कि इस पे सीरीज बननी चाहिए
0: हाँ।
5: तो सच में वो सीरीज के लायक वाली बात है उस पे सीरीज बननी चाहिए और चलेगी जबरदस्त चलेगी फिर वो
0: है ना मुझे भी ऐसा लगता है ये पिक्चर वाली कहानी नहीं है ये पूरी सीरीज वाली कहानी है
5: भाई था दिमाग उसके पास मानना पड़ेगा गट था दिमाग था हर चीज का इंतखाब बहुत बेहतरीन उसने किया
0: हाँ, एक
5: वो एक कहानी का एक महासल यही है कि सच बात यह है कि वो अपना यकीन बेचने में कामयाब रहा
0: हाँ और पता है उसमें इसका एक चीज की मैं तारीफ करूंगा उसके हाले की तारीफ की लायक काम नहीं है मगर उसके जो सबर दिखाया ना कि भाई पहले कोई बात नहीं ले लूंगा उससे वैसे डबल करके दे दूंगा हाँ, कोई टेंशन नहीं है पहले बेच दूं
5: करो आप तो हाँ, करना पड़ता है
0: हाँ, फिर बाद में देखूंगा मैं तेरे को ये वाला सीन था तो बड़ा ही क्रिएटिव कहानी लगी मुझे इसलिए मैंने आज पब्लिक को सुनाई थैंक यू सो मच
5: इसलिए भी है कि तमाम मामलों में इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आदमी मतलब सजा के हद तक पहुंच जाता है
0: हाँ।
5: या ये होता है कि चलो एंड ऑफ द सजा एक आखिरी सजा मिली लेकिन पूरा मतलब उसने ऐश अपनी जिंदगी गुजार ली
0: हाँ।
5: लेकिन आखिर में जाते जाते चलो मुश्किल नहीं है वो बात हाँ। वो भी बात समझ में आती या तो बंदा बिल्कुल आराम से चला गया
0: सब बांट बूट के मजे करके
5: हाँ सब कुछ मजे करके और कुछ भी नहीं है उसको मतलब किसी भी तरह की कोई दबिश ही नहीं है
0: हाँ, चिल
5: मस्ती में चलते चलते चले भी गया
0: हाँ।
5: और एकदम ऐश भी कर लिया अब बताओ लोग कहते हैं कंप्यूटर सीखो टेक्नोलॉजी और ये वो सारा टेक्नोलॉजी फेल कर दिया उसने
0: तभी मैंने आज ये टॉपिक सुना था मुझे लगा ये कहानी जो है बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करती है उसको बड़ा मजा आया मुझे कहानी सुना के भाई थैंक यू मेरा भाई
5: बहुत मजा नहीं हकीकत में बड़ा जबरदस्त कहानी था भाई मैंने भी सुना यार एक ग्लव्स मैं तो क्या बोलते हैं कस्टमर का दरवाजा तक नहीं खुला उसके बाहर गाड़ी खड़ा करो चलो खुद से खोलेगा तो देखेंगे खत्म हो गई तब उतर के गया हूं बेल मारा हूं अब खोल भाई दरवाजा
0: थैंक यू सो मच जमाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल करने के लिए थैंक यू सो मच
5: नहीं बड़ी अच्छी चीज भाई जबरदस्त एकदम आपकी मेहनत भी होती है माशाल्लाह से उसमें बहुत
0: थैंक यू भाई
5: सराहने के काबिल होती
0: है थैंक यू मेरा भाई ख्याल रखिए
5: अल्लाह हाफिज़ भाई
0: तो जमाल भाई के बाद एक मैसेज आया है मेरे पास यूसुफ भाई कहते हैं ये क्या स्टोरी ये तो हाईएस्ट धोखाधड़ी हो गई आंखों के सामने हेरा फेरी टू से भी आगे डबल पैसा बना के सबको ही बना हाँ भाई ऐसे कबीर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आयुब क्या बंदा था कोई इंसान किसी को इतना कैसे बना सकता है और वो कैसे इतना सब्र कैसे किया ये ह्यूज अमाउंट ट्रांसफर होने तक इट्स अनबिलीवेबल और दूसरी बात ये कि इसको और ये आयुब अमेरिका वाला भी मिला वारे किस्मत और इसका चालाक दिमाग पर एक बात अच्छी लगी कि वो बैंक से पैसे लेके नेक काम कर रहा था इस पर तो पूरी सीरीज बन सकती है यूसुफ भाई मैं कम्प्लीटली नहीं करता हूँ भाई सीरीज तो बननी चाहिए इस पर डिजर्विंग तो है अस्सलाम वालेकुम
6: हेलो
0: हेलो
6: हाँ कबीर भाई, सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कौन है मेरे साथ?
6: जी मैं शैलेश बात कर रहा हूँ।
0: जी शैलेश भाई, अरे मेरा भाई, लॉन्ग टाइम नो सी शैलेश भाई, किधर थे भाई?
6: क्योंकि मैं, मेरी आइडेंटिटी वही है, शैलेश ऊर्जा का पप्पा।
0: हाँ जी शैलेश भाई बताइए भाई।
6: जी आपने जो स्टोरी सुनाई ना, मुझे एक पुरानी स्टोरी याद आ गई आपकी,
0: जी, जी।
6: शायद आपको भी पता होगी, एक ऑस्ट्रेलिया में थी, देखिए आपने बताया एटीएम ग्लिच।
0: हाँ हाँ, वो एटीएम ग्लिच था। हाँ हाँ हाँ हाँ,
6: तो उसने भी यही कांड किया था शायद। हाँ, वो 2010 या 11 की स्टोरी, मतलब तब की।
0: हाँ, मुझे एयर नहीं याद है। हाँ,
6: पहले बताई थी, दो तीन साल पहले बताई थी कि उसने भी ऐसा ही किया ना, बस वो एटीएम ग्लिच का फायदा ले लेके उसने कितना, मतलब और बाद में अपने गाँव में भी पैसा बांटा, जगह को बांटा और एजुकेशन के लिए किया था। आई रिमेम्बर यू टोल्ड मी दिस स्टोरी। तो वो भी मैंने जब वेरीफाई की थी स्टोरी, मतलब मैं फैसिनेट हो गया था।
0: हाँ,
6: कि एक छोटी सी ग्लिच, वो 10 मिनट का कुछ तो था ना।
0: हाँ, हाँ,
6: 11:55 को अगर निकाले तो, और तो 12।
0: हाँ, वो टाइमिंग, वो विंडो थी एक पूरी। हाँ,
6: हाँ, वो और ड्रंकन था, लकीली उसको पता चल गया।
0: हाँ,
6: तो ये सेम, मतलब एक छोटा सा लूप होल, जैसे उसने बस वो ग्लिच का फायदा उठाया। और जैसे आपने इसमें एक जो वर्ड यूज किया, आई लाइक दिस वर्ड, दैट यकीन बेचना, दैट इट्स वेरी वेरी बिग। अगले बंदे को बस कन्विंस करना है ऐसे ही है, बस खत्म। उसके बाद आदमी का जो सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है पूरा कम करना बंद कर देता है।
0: ये बहुत बढ़िया सेल्समैन था भाई, यकीन बेचने में।
6: एक्चुअली ना कबीर भाई, इट्स मतलब आई अप्रिशिएट यू दैट यू सर्च फ्रॉम दिस बिग वर्ड इन द गूगल। और ये स्टोरी हमें पता नहीं थी, ये इंडिया से शुरू हुई और दुबई में गई। और अभी मैंने जस्ट सर्च किया, ऑलमोस्ट 2000 करोड़, 1995 को, मतलब आज भी वो रकम बड़ी है।
0: या आज भी रकम बहुत बड़ी भाई।
6: तो वो 2000 करोड़ का झोल उसने तब किया। तो और उसका मैंने फोटो आपको भेजा है ना, देखो ना कितना सादा दिखता है,
0: कितना सादा है ना। पता ये एक तो सादगी का उसने इस्तेमाल किया, एक तो जो लेम शेम था, बिल्ड भी थी ना उसकी, तो ही यूज दैट एज वेल, वो भी एक यूज करने वाली बात थी इसलिए।
6: और आपको पता है, आपने इंडिया में तो ऐसे ऐसे भयंकर बाबा है, लेकिन इसने अच्छे खासे लोगों को फंसाया और ज्यादा बड़ी झोल नहीं किया।
0: हाँ,
6: बड़े बड़े टारगेट किए और उनको ही बस कन्विंस किया, बस छोटे मोटे टारगेट नहीं करते बेटा। और अनबिलीवेबल, मतलब एक गरीब देश से आया, इंडिया आया और दुबई में गया, और मतलब अनबिलीवेबल, मतलब मुझे उसके ज्यादा ना, आपने वो स्टोरी दी है ना, और मेरे लिए भी एक और एक खजाना हो गया, जैसे वो जो ऑस्ट्रेलिया का मेरे रिमेम्बर, अभी लाइफ लॉन्ग इट्स रिमेम्बर।
0: जी, आई एम रियली हैप्पी टू रिमेम्बर।
6: ये भी मेरे लिए लाइफ लॉन्ग रिमेम्बर रहेगा। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू ब्रिंग दिस स्टोरी।
0: थैंक यू सो मच।
6: और मॉर्निंग में जो आपने कहा ना कि एआई का यूज कैसे, तो एक मैं बस वर्ड में बोल के खत्म करता हूँ, AI आने दो और कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आने दो, वो आने ही वाली है। Either you will go with this technology or you will get
0: out. You like it or not, you cannot ignore it.
6: Yes, you can't ignore it. मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल बता, अभी इंटरनेट है, उसमें बहुत सारी गंदी चीजें भी है, अच्छी चीजें भी है, और आप अपने बच्चों को आप रोक नहीं सकते हो कि तुम नहीं देखना है। अभी मतलब बस आपको एक्सेप्ट करना है कुछ चीजें कि भाई ये होना ही है, तो आपको सुकून मिलेगा, नहीं तो आप टेंशन में रहोगे।
0: डेफिनेटली भाई, लव द फैक्ट कि आपने वेरीफाई करी और आपको अच्छी लगी, ये सबसे अच्छा फैक्टर ही है असली कहानियों का, कि यू कैन गो बैक एंड वेरीफाई।
6: ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी स्टोरी सुनी है आपकी ना, मैं वो फिर से जाके ना गूगल पे चेक करके, यूट्यूब पे जाके वो फिर से एक बार ना पूरा डिटेल और कुछ ज्यादा मिलता है।
0: बढ़िया भाई, बढ़िया।
6: जापान की एक ऐसी स्टोरी थी ना, वो जंगल में जाके मार रहा था, वो डेंजरस, वो तो बहुत भयंकर थी। तो और एक सर था, एक अल्जीरिया का एक हैकर था, आई थिंक सेम उसकी स्टोरी, कभी आप उसको जरा देख लीजिए,
0: मुझे बताइए, आई वुड
6: लाइक टू। मैं आपको मैसेज करता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
6: उसने भी ऐसे ही ना बहुत बड़ा, उसने तो डायरेक्ट यूएसए से पंगा लिया था।
0: अच्छा, मुझे बताएगा, मुझे बताएगा, जस्ट लेट मी नो क्या क्या है, मैं
6: देखता हूं। आप उसको नैरेट अच्छी तरह से करके पाओगे। अभी भी वो जेल में बेचारा, लेकिन ही वाज द बेस्ट हैकर स्टिल डेट, और वो किसी को पता नहीं चल रहा था।
0: ठीक है,
6: मैं आपको भेजता हूँ उसका एक लिंक, तो आप उसकी डिटेल निकाल के कभी सुना।
0: डेफिनेटली,
6: आई एम वेरी हैप्पी कबीर भाई दैट यू ब्रिंग दिस मार्वेलस स्टोरी। आई सीरियस तो बननी चाहिए पक्का।
0: थैंक यू सुरेश भाई, लॉट्स ऑफ लव भाई।
6: ओके, टेक केयर कबीर भाई।
0: थैंक यू सो मच भाई, टेक केयर, टेक केयर। शैलेश भाई की मोहब्बत, थैंक यू सो मच शैलेश भाई फॉर द काइंड वर्ड्स। एक मैसेज है, सर्पेंट सीरीज में काफ़ी डिटेल्स हैं। वो एक्चुअली मैजिशियन भाई, उसमें ना एक दो तीन चीज़ें जो मुझे बड़ा छुपाने में थोड़ा मास्किंग करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना आप। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, असलम अंसारी साहब का मैसेज है, एंड एक्सलेंट स्टोरी खातिर भाई ने लिखा है। और एक मैसेज, सरवर भाई सिसोको और कबीर भाई आयूब। मुझे क्यों आयूब बना रहे हो भाई? आसिफ आलम भाई का मैसेज है, एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, कबीर भाई छा गए, बहुत मस्त स्टोरी लाते हो, ये सब। थैंक यू सो मच भाई, ये मुझे भी पर्सनल फेवरेट्स में से एक है भाई, उमर भाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनके बाद सेम स्कैम हैपेंड इन पाकिस्तान, होम टाउन, डबल शाह। डबल शाह स्कैम, मुझे ये मैंने कहीं तो सुना था, मैंने पढ़ा नहीं, मैं देखता हूँ अगर ये कहानी इंटरेस्टिंग हो ये भी सुनाऊंगा। और क्या मैसेज है,

इरशादुल्लाह यूसुफ सईद साहब, मुझे भी नहीं पता। आर्य अंसारी भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, आयुब भाई कहाँ मिलेंगे मुझे, एक बजे आयुब मिलो। आयुब भाई डेढ़ बजे आते हैं शो करने के लिए। आयुब भाई से मिल लेना। एक मैसेज, टोपी पहनाने वाले अक्सर सुकून में ही जीते हैं। ये हमारी बहन कहती है, तो वो सुन बहन, थैंक यू सो मच बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज है अब्दुल्ला जौनपुरी साहब का, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, क्या स्टोरी थी, लेट हुआ, नंबर वन स्टोरी। प्रिंस भाई लिखते हैं, आज तो मुझे लगता है कि आपको कॉल ही करनी पड़ेगी, हम तो थक गए कॉल लगा के। प्रिंस भाई कॉल लगा दो ना एक गाने के बाद, दिक्कत को नहीं भाई। एक और मैसेज है, कैन यू प्लीज शेयर द स्टोरी। ओके, मिलते हैं भाई गाने के बाद। एंड इंडीड ये कहानी जितना आपको सुनने में मजा आया उतना मुझे सुनने में मजा आया, तो थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। एंड आगे बढ़ते हुए भाई गाना चलाएंगे बढ़िया सा, जसबीर जस्सी बादशाह, बोनी मनुष्य की आवाज। मिलते हैं जी गाने के उस पर, लेट्स गो।

टीचर आ गई नी। हाँ जी भाई साहब, गुड मॉर्निंग। कहानी सुन ली, मजे आ गए। आपको जाना नहीं है ऐसे थोड़ी। हाँ ऐसे थोड़ी उठ के जाने देंगे आपको। रिलैक्स रिलैक्स।

0: में फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड मकर के आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
2: वेकअप जी वेकअप और एक कॉल आते आते गिर गई कॉल हाँ जी जमी गिर गई प्लीज कॉल कर लीजिएगा प्लीज जो भी कॉल कर रहे थे मैंने नंबर जस्ट अभी देखा एक्चुअली में वो आ गई कॉल है देखो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम बेंचो
2: क्या हाल है भाई साहब
3: तेरा मेरे कार्ड में इतने पैसे नहीं है अयूब साहब कहाँ है भाई
2: कौन क्या है
3: अयूब साहब कहाँ पे है
2: यूसुफ कहाँ पर है क्या
3: अयूब साहब

0: अयूब साहब,
1: अयूब साहब का, अयूब साहब डेढ़ बजे आते हैं शो करने के लिए। आपको अयूब साहब की तलाश है आपको, तो आप सिसोको बनना चाहते हैं कि अयूब भाई बनना चाहते हैं?
0: अली बाबा 40 चोर
1: बनते हैं। क्या क्या क्या?
0: अली बाबा 40 चोर बन
1: जाएंगे। हाँ तो यहाँ यहाँ पे तो भाई 40 चोर के बराबर एक आदमी था भाई, एक आदमी सबके बराबर कल्ला काफी था वो। आपकी आवाज कट रही है भाई, बहुत बुरी तरह से आवाज कट रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हेलो,
0: आवाज नहीं आ रही आपको?
1: अभी आ रही, अब बोलिए।
0: अच्छा, मैंने कहा मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी है, एक बार अगर आपकी मार्केटिंग में आपके किसी कोई आपको घेर ले,
1: हाँ,
0: उसके बाद आपको चीज लिए बगैर उठते नहीं है काउंटर।
1: हाँ यही तो बात है भाई, और वो मार्केटिंग करना कोई आसान काम नहीं है। ये आपको होता ना, जैसे पहले हम कहते थे कि मतलब भाई कोल्ड ड्रिंक का मतलब तो यही है, चॉकलेट का मतलब तो यही है, तो एक नाम आपके दिमाग में फिट हो गया ना, तो फिर आप किसी पे भरोसा करेंगे नहीं उसके अलावा, और वो बिल्कुल अंधा भरोसा होता है वो।
0: और वो ये जो बता रहे हैं, आपको एक मैसेज भी आया है डबल शाह वाला,
1: हाँ,
0: ये भी ऐसे ही है, आप 50-100 को वापस दिया, उसके बाद बस 2000 से लिया निकल गए।
1: मैं करता हूँ ये कहानी में ढूंढता हूँ, मुझे पता नहीं है, आई हैव टू सी, मैं इस कहानी को अच्छे से भी रिसर्च करूँगा, मुझे नहीं पता ये कहानी है, तो अब मैं सुनाऊंगा तो मुझे पता है, मैं इसलिए नहीं सुना रहा कि सारे पाकिस्तानी भाइयों को तो पता ही है, तो मैं सुनाऊं कि ना सुनाऊं?
0: तो, नहीं तो अभी पता करें प्रिंस साहब डबल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे
1: हैं। वाह जी वाह, आप दीजिए मुझे, आप दीजिए, मैं मेरे पास भी एक मखलूक है, मैं उनसे डबल कराता हूँ।
0: 65 रियाल गाड़ी में पड़े हैं, वो दीजिएगा, मैं आपको कल 120।
1: ठीक है सिसोको भाई, देता हूँ मैं आपको 65 रियाल, डबल करके दे देना, ना धनिया बोल दूंगा मैं सिसोको जी।
0: बस यही चल रहा है, और आप बताएं लोगों को, आप इस तरह लोगों को बता रहे हैं गाड़ियां दान देना, ये अच्छी बात नहीं है, इतनी गाड़ियां कोई नहीं दान देता।
1: अरे भाई मैं बताऊं, वैसे आपको कहानी कैसे लगी फवाद भाई, आपने पहले सुना था इसके बारे में?
0: जबरदस्ती, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि यार बंदा जा रहा है गाड़ी दान दे रहा है, लोग खा के हजम करके याशी करके उड़ा रहे हैं, ये गाड़ियां दान दे रहे हैं।
1: हाँ उसका यही तो ट्रिक थी भाई, यही तो मार्केटिंग है, जैसे आपने कहा ना मार्केटिंग, दिस वॉज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी।
0: यानी हर, यानी उसने उस कहते हैं वेले वाले से पूरा होटल खरीद लिया, नहीं उसने कहा यार ये गाड़ी दे रहा है वेले वाले को तो मेरा पैसा तो 4 गुना कर ही देगा।
1: हाँ ये भरोसा है, यही यही तो कला है, कह रहे उसको गाड़ी दे दी भाई, मेरे को तो कुछ ना कुछ दे ही देगा, मतलब 10-20 तो कर ही देगा एटलीस्ट। तो ये वो भरोसा,
0: 500 करोड़, 1000।
1: तो ये आर्टिस्ट था भाई,
0: और यहाँ हम लोन लेने जाए या कुछ लेने जाए तो कितने कागज चाहिए?
1: उस पे तो मैं क्या ही बोलूं फवाद भाई, क्या ही बोल सकते हैं, पर आपका भी पाला पड़ा
0: जाए तो क्या घर भी दे।
1: आपका लेकिन क्या, आपका ओपिनियन क्या है फवाद भाई के जो डबल शाह वाली
0: कहानी?
1: पाला पड़ा वेरी गुड। तो आपने क्या किया?
0: मैंने बड़े ख्वाब दिखाए, अच्छा
1: क्या ख्वाब दिखाए थे?
0: मैंने $50 दे के जान छुड़ाई,
1: $50 में जान छूट गई। बहुत सस्ता कौन आर्टिस्ट है भाई, क्या बात हुई? अच्छा
0: हाँ, उसने उसके $150 करके मुझे दिए कि हाँ। मैं अगले दूंगा, मैंने कहा यार जमा करने के लिए टाइम लेगा।
1: वाह, तो ये आपको कहाँ मिला, बाहर मिला था, अमेरिका में मिला था ये?
0: हाँ जी।
1: वाह वाह वाह वाह, अच्छा मुझे एक ओपिनियन दे के जाएगा, बिकॉज यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो जो डबल शाह वाली लोग स्टोरी कह रहे हैं वो सुननी है लोगों को, या फिर आपको ऑलरेडी पता है तो सुनाने का मतलब नहीं है?
0: ज्यादातर लोगों को पता है ये, ज्यादातर
1: लोगों को पता है, या तो
0: आप स्टोरी सुनाते हैं तो वो दाइमत है, कुछ आपने कभी कभार स्टोरी सुनी होती है लेकिन आपने पूरी तरह नहीं सुनी होती जिस तरह आप सुना रहे होते,
1: या
0: ठीक है इतनी डिटेल में, तो दाइमत है ये तो नाम हमने सुना ही नहीं कभी।
1: हाँ ठीक है, तो वही मैं इसलिए
0: हिस्ट्री की बुक में भी नहीं था
1: ना, हिस्ट्री हिस्ट्री की बुक में क्यों चाहिए आपको,
0: मार्केटिंग की स्ट्रेटजी की बुक में था।
1: पर पता है ये एक्चुअली में मार्केटिंग में पढ़ाया जाना चाहिए, ये केस स्टडी होना चाहिए इस पे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये पढ़ाया जाना चाहिए, बहुत काम आएगा लोगों के
0: आगे, एथिक्स में तो सुना सकते हैं सर।
1: अब पता नहीं, देखो मैं तो ये कंफ्यूजन पता है कहाँ पर है, कि मैं डबल शाह वाली स्टोरी सुनाऊं कि ना सुनाऊं, बिकॉज आप सबको तो ऑलरेडी पता ही है तो सुनाने का मतलब नहीं है।
0: ज्यादातर लोगों को पता है डबल शाह इतना फेमस था, वो
1: तो फिर
0: जानती है,
1: तो फिर रहने देते हैं,
0: डबल शाह के लेवल की कोई और हो, जैसे अच्छा भाई तो बोले थे एटीएम वाली आपने पहले लास्ट टाइम सुनाई थी,
1: हां हां हां
0: लोगों को नहीं पता।

0: उसके अलावा पता नहीं आपने सुना ना, एक बंदे ने एक हैक किया था अमेरिका का अकाउंट और उसने सिर्फ सेंट ट्रांसफर किए थे और एक ही दिन में पता नहीं कितने ट्रिलियन
1: मतलब यस वो भी है वो भी सुनी सुनाई कहानी है, बट कुछ नया लेके आता
0: है। कई कहानी आपने सुनी होती है तो फिर उसका आपको मजा नहीं आता कि आपको आधा पार्ट तो पता ही होता है क्या होता है।
1: ठीक है ठीक है, फिर नया कुछ ढूंढते हैं।
0: ये वाली जो कहानी हमें पता है कि भाई हमने तो सुनी भी थी, हमने रूट दोहा एक्सप्रेस से ट्रैफिक ब्लॉक थी, हमने सीधा डीरिंग फीडिंग होते होते जब तक आप पहुंचने का ऑफिस 45 मिनट्स का हो गया।
1: चलो अच्छा अच्छा हुआ आपने सुन ली कहानी। ठीक है अब मैं नहीं ढूंढूंगा क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा था सुनाना सुना, बट नाउ आई एम क्लियर। थैंक यू सो मच फहद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई,
0: बहुत शुक्रिया सर,
1: बहुत प्यार भाई, ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। तो ठीक है जी क्लियर हो गया मामला। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, लखनऊ में बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं वो लखनऊ में तो 3 साल काटे मुझे पता है, वहाँ बहुत आर्टिस्ट है, बहुत ऑफर्स, जब इंडिया जाते हैं तो बहुत ऑफर्स मिलते हैं ऐसे। एक मैसेज, नहीं नहीं, एक भाई ने मुझे 25 दिरहम का सिक्का भेजा, अरबाज भाई हमारे, और कह रहे हैं भाई इसको डबल कर दीजिए प्लीज़। अभी करता हूँ डबल, कहते नहीं नहीं नहीं, क्या है वर्षा वाली कहानी, नहीं हमें देखा है बहुत सुना है। अच्छा वो मुझे पता नहीं, आप वो मैं खुद अपने मज़े के लिए पढ़ लूँगा। आसिफ भाई कहते हैं भाई नाइस स्टोरी ब्रो, मैंने सर्च किया मगर कोई मूवी नहीं है, नहीं मूवी नहीं है भाई, इस पे कोई बननी चाहिए। नियाज भाई वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैं ज़रा जल्दी से खबरें बता दूँ आपको जो है मेरे पास, एंड देन आई विल मूव ऑन। तो भैया एक जो है बहुत ही इमर्सिव एग्जीबिशन हुई है, ये रोम के एक बहुत बड़ी मस्जिद ग्रेट मॉस्क में हुई है, विच ओपन इन कतर ऑन मंडे, और इसमें साथ दिया है इटली के एम्बेसडर ने, इटली के एम्बेसडर टू द स्टेट ऑफ कतर, उन्होंने बात करी किस किस्म का आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन दो कल्चर्स को आपस में मिला सकता है। ऑफकोर्स इसमें रिलीजन, कल्चरल कम्युनिटी सबका एक साथ आना बड़ा ज़रूरी है ताकि एक मजबूती के साथ इन एवरी एरा इस चीज़ को आगे लाया जा सके, और जो ब्रिज करने का तरीका है वो कल्चर ही होता है। तो आप कई मरतबा देखते हैं कई सारे आर्किटेक्चर ऐसे होते हैं जिसमें डिज़ाइन जो है वो आपको नज़र आएगा कि हाँ ये लग रहा है कि गल्फ में ही किसी ने बनाया है, फिर उसमें एक इटालियन डिज़ाइन आ जाता है, तो वो ब्यूटी इन्हांस भी होती है, समझ में भी आता है कि ब्रिज किया गया है दो कल्चर्स को, एंड डेफिनेटली अ वेरी गुड इनिशिएटिव ये भी। इसके बाद फैमिली कंसल्टिंग सेंटर जो है विफाक, मेम्बर ऑफ कतर फाउंडेशन फॉर सोशल वर्क, उनको मिला है जी अवार्ड 2025 अवार्ड फॉर द बेस्ट सोशल मीडिया कंटेंट इन फैमिली एंड पॉपुलेशन सेक्टर। ये मिलना ही था, इसके ऐसा कोई है नहीं, ये जो इनिशिएटिव लेते हैं आई डोंट थिंक एनीबॉडी एनी कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन टेक्स इट सीरियसली इन अदर कंट्रीज, यहाँ पर बहुत सीरियसली और बहुत बड़े लेवल पे होता है। सो क्रोस टू द फैमिली कंसल्टिंग सेंटर विफाक। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अल्फरदान एक्सचेंज, इन्होंने लॉन्च किया है फिनटेक स्टार्स कॉम्पिटिशन, और जो कॉम्पिटिशन है इसका मकसद है नए चीज़ों को, इनोवेशन को सपोर्ट करना, और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप जो है जो बहुत ही कम एज से अब शुरू हो चुकी है इस टाइम में हम जी रहे हैं। सो इट विल नॉट ओनली इंकरेज स्टूडेंट्स टू डेवलप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बट ऑल्सो उनके जरिए एडवांस हो सके ये फिनटेक सेक्टर जो है कतर का। तो इसमें जब तक नया ब्रेन नहीं आएगा तब तक नथिंग विल हैपन, एंड दिस इज बाउंड टू हैपन क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। सो यस माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद 8:37 बाय द क्लॉक एक और मैसेज है, यार ये अयूब भाई की नेशनलिटी क्या थी, देसी थे या लोकल थे? ईशान भाई ये मैंने चेक नहीं किया है, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली ईशान भाई, आई हैव टू चेक बिकॉज आई ओनली रेड मोहम्मद अयूब, सो आई थिंक देसी होगा ये आदमी, आई डोंट थिंक सो देसी होगा, सॉरी बट आई विल चेक फॉर यू। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, उमर शहजाद साहब का मैसेज है, फिर एक मैसेज है, मैं अब रैक्स छोड़ के अयूब सर को ढूंढने जा रहा हूँ। ये अच्छा अच्छा डिसीजन है आपका, ये ज़्यादा काम आएगा आपके, समझे? हाँ वेरी गुड। 666-222-107 जी नंबर है, और आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पर ट्रैफिक है। बाकी आज अयूब भाई अगर आप ढूंढ रहे हैं तो 1:30 बजे सर्वर भाई को ढूंढ लीजिएगा, वही है हमारे अयूब भाई, ठीक है, वही सबसे पहले हमारी मदद करेंगे, तो उनसे संपर्क ज़रूर कीजिएगा। बाकी तो मैं हूँ, ट्रैफिक अपडेट ज़रूर दीजिएगा। किथे निकली कितने चलिए गोभी तक फूल पाने की 8:38 बाय द क्लॉक। गॉड डैम करण ओजला एंड बाच

0: अजी क्या हाल है?
1: गॉड डैम, एक मैसेज है मेरे पास भाई, म्यूजिक हम इवनिंग में बहुत मिस करते हैं, मेरा भाई बहुत प्यार अशफाक भाई को, आई नो भाई, आई अंडरस्टैंड, मुझसे मेरा जिक्र होते ही आपको शायद शाम ही याद आती होगी सीधा। अशफाक भाई बहुत सारा प्यार है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्वीट भाई। एक मैसेज भाई, आज की स्टोरी, हमारे पाकिस्तान में डबल शाह के नाम से आदमी मशहूर है। हाँ, मैंने अभी लोगों को ये कहते हुए सुना है, बट वो कहानी ना इतनी ज़्यादा मशहूर हो चुकी है कि मैं आप क्या सुनाऊँ उसको, मतलब सेंस ही नहीं बनेगा उसे सुनाने का, समझ रहे हैं आप, तो उसको हम रहने देते हैं। बट मैं अपने अपने नॉलेज के लिए जरूर उसको पढ़ूंगा सुनूंगा फॉर श्योर। आज कुछ इंटरनेशनली दिन मार्क्ड किए गए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आज है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डे, एंड आई थिंक कतर में भी आज ये यूनिवर्सिटीज में एक तरीके से मनाया जा रहा है सिखा के, वेरी गुड इनिशिएटिव अगेन। इसके अलावा आज है एप्पल साइडर विनेगर डे, बहुत ज़रूरी है ये लेने का साइनस होने का, ठीक हो जाने का, मतलब फॉर टाइम बींग। इसके अलावा आज है स्नैक स्टिक डे, आपने देखा वो जो चॉकलेट की स्टिक्स आती है, पहले पहले भी आती थी, तभी भी आती हैं, कुछ अलग ही, चरते आप चरते चले जाएंगे, एक बकरे की तरह चरते चले जाएंगे, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। ये वो वाली है चॉकलेट की जो स्टिक्स आती है। इसके अलावा आज है रेस्टलेस लेग्स अवेयरनेस डे, बेसिकली ये एक किस्म का सिंड्रोम है, मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा बिकॉज इसके ऊपर भी मेरे पास एक कहानी है, सो जब वो कहानी आएगी तब मैं इसके बारे में बात कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। आज है एजुकेशन टेक्नोलॉजी डे, तो बहुत अच्छी बात है कि हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर ली, इत्तफाकन ही टॉपिक भी इसी पे हो गया, बच गए भाई। तो ये सारे दिन है, आज के कोई ऐसा दिन नहीं है जिसको बोलूं मैं, अरे ये क्या दिन हुआ, सारे बढ़िया है, आज आज इंपॉर्टेंट है, कल भी बहुत बड़े बड़े दिन है। बट फिलहाल कुछ मैसेजेस है मेरे पास, एक मैसेज है क्या, इंडिया के मल्टी लेवल मार्केटर सबसे मजेदार हैं, अरे उनको तो पूछो मत भाई। उनकी तो बात ही अलग है अब्दुल उस्मानी भाई, दे आर डिफरेंट ब्रीड ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं आपको क्या क्या क्या क्या क्या मैं आपको शाम में बहुत मिस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वाइब कभी भी मैच नहीं हो पाएगी कहीं भी, मैं चाहता हूँ कि आप तुरंत क्या करें, अच्छा मेल करें और आप गुजारिश करें अपने बॉस से कि आपको शाम में लाया जाए। अरे अरे भाई, देखते हैं इंशाल्लाह भाई, जब शाम का टाइम आएगा जब शाम में भी ज़रूर आएंगे। कहते हैं आज वेंसडे है, हाँ आज वेंसडे है, मतलब मैं समझा नहीं, अच्छा आज, ओहो अफजल उस्मानी भाई, जब मैं इतना आगे बढ़ चुका होता ना तो कॉमन चीज़ मेरा दिमाग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, हाँ आज एक और दिन है, आज वेंसडे है, यही

कहना चाह रहे हैं ना आप? सॉरी मैं थोड़ा लेट, आज मेरा प्रोसेसिंग यूनिट थोड़ा स्लो चल रहा है भाई। एक मैसेज है भाई, आपके बॉस का नंबर मिल सकता है? मैं उनसे मिन्नत करता हूँ। अरे भाई नहीं नहीं मेरा भाई, भाई भाई भाई आएंगे भाई, शाम में भी आएंगे, फिकर नहीं भाई, बहुत जल्दी। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, स्टोरी बहुत अच्छी थी। क्या हर्षत मेहता फेवरेट है अपना? तो भाई उसकी उससे आगे की चीज़ था ये, उससे बहुत आगे की चीज़ है। अदर भाई ही हैज़ ब्रोकन ऑल द साइकोलॉजिकल लॉज दैट यू कैन थिंक ऑफ, समझ रहे हैं आप? ओके सो ट्रैफिक कल बताइएगा 666-22-107। एक गाने के उस पार तुरंत आपसे होगी मुलाकात। गुरु रंधावा डोपामीन, मेरे अंदर का बोहेमिया क्यों भारा जाता है? गुरु रंधावा डोपामीन, मैनू मैसेज करो व्हाट्सएप से।

0: मैं क्यों हंस रहा हूँ बताता हूँ। डोपामिन गाने के रहे लेकिन मैं भाई आसिफ रुक पा रहा हूँ अभी एक सेकंड। आसिफ भाई की पहले कॉल उठा ले फिर बताते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम पार्टी, क्या बोलते
0: हैं? मैंने गाने के बाद ना कुछ ऐसा देख लिया मुझे ऐसी नहीं झुक रही। मैं आपको ना एक आसिफ भाई अभी आप अपना फोन चेक कर पाएंगे क्या?
1: कर सकते ना भाई।
0: तो भाई ये जो मैंने आपको चीज भेजी है देखो सर। हमारे अरबाज भाई हैं उन्होंने अरबाज भाई ने आयुब भाई बनाया, आयुब भाई सर्वर भाई को बनाया।
1: अच्छा भाई, भाई मेरे को एक समझ ही नहीं आई बात, इसमें क्रिमिनल कौन था, आयुब भाई थे या फिर सिसोको भाई थे?
0: नहीं वो तो सिसोको था लेकिन आयुब पैसे दे रहा था ना तो उसको भी ऑब्वियसली सजा होनी थी तो वो तो, लेकिन ये बहुत बढ़िया
1: गेहूं के साथ में गुंडी पीस गया।
0: तो ये सरवर भाई आज हमारे आयुब भाई हैं, जो भी सरवर भाई आज सुनेगा तो उनको आयुब भाई बोलिए। ये फोटो के साथ भाई, फोटो के साथ
1: भाई, मत करो भाई, मत करो भाई, बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा कसम से। वो बंदा कुर्सी से उठ के भाई चाय वाय की कॉफी फेंक के मारेगा।
0: पर भाई देखो बढ़िया तो बनाया है अरबाज भाई ने, कैसा लग रहा है?
1: अरबाज भाई ये अरबाज भाई कौन है भाई, मैं भी जानना चाहता हूँ। आज इसकी बिल्डिंग सेट है,
0: कितना कितना बढ़िया बनाया है ना इन्होंने।
1: आज इसकी बिल्डिंग सेट है भाई।
0: अरबाज भाई भाई बहुत बढ़िया भाई, दिस इज टू मच भाई।
1: अरबाज भाई अरे भाई सेम मत दो, अरबाज भाई तुम्हारी बजाने की
0: मुझे तो भाई बहुत ही मजा आया। पर कैसी लगी आपको कहानी अरबाज भाई? वैसे आसिफ भाई
1: नहीं मेरे को वो छोड़ो भाई, कहानी तो बाद में देखेंगे, मगर ये बता तो मयूर भाई होगी तुम इसको फंसा क्यों रहे हो बंदे को अरबाज को।
0: भाई इतना शानदार बनाया है, इतना शानदार बनाया है मैं बता नहीं सकता।
1: वो तो ठीक है भाई,

0: वो तो ठीक है, एआई ने इसका काम करके दे दिया। बाकी ये बताओ भाई, अरबाज पे कोई दुश्मनी है तुम्हारी?
1: नहीं नहीं नहीं, क्यों?
0: नहीं भाई, आज ये सरवर भाई के हाथ से कटेगा।
1: मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि होगा क्या है जब ये मिलेगा उनको, तो मजा ही आ जाएगा भाई।
0: मेरे को तो वो समझ में नहीं आ रहा, सरोवर भाई कुर्सी पे बैठने के बाद, ये फोटो देखने के बाद, उठने के बाद क्या करेगा? या तो भाई मंसूर पहुंचे, या तो मंसूरा पहुंचेगा, या अरबाज भाई के रूम पे पहुंचेगा।
1: सीधा आज जो वो घर पे आने वाले मेरे, डेफिनेटली
0: बोलेगा कबीर
1: अफ्रीका
0: वाले से दोस्ती वस्ती करूँ थोड़ा।
1: नहीं, आपको आयुब भाई ढूंढने की जरूरत है भाई।
0: नहीं, मैं अफ्रीका जाऊंगा, आयुब भाई से नफरत हो गई अभी।
1: मैं भाई आज मैं 1:30 बजे का जो सुनने के लिए बहुत बेकार आ रहा हूँ। आई रियली हैव टू लिसन
0: भाई, बताओ कि थोड़ी बाटा मीठा पचन क्या हो।
1: अरे भाई साहब, आज जो है हम 1:30 बजे का जब शो सुनेंगे तो टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा।
0: भाई आगे बोल दे भाई, आगे बोल दे तू।
1: हाँ सर भाई, मेरे चाय पीने का वक्त हो गया है मुझे। रेखा जी ने मैसेज किया है कि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं भाई, आए तो मैं जरा जाऊंगा यहाँ से। ठीक है,
0: समाप्ति
1: नहीं भाई, समय समाप्ति की घोषणा। थैंक यू
0: भाई, बाय बाय, दिन बन गया, लव यू
1: भाई, थैंक यू भाई, टेक केयर मेरा भाई, ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। तो ये हंसी मजाक के मूड पे है, रियली लव द फैक्ट कि लोग इतना ज्यादा एंगेज होते हैं किसी भी शो से। थैंक यू सो मच। 1:30 बजे जरूर ये हमारा जो फोटो भेज दीजिएगा, एंड सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar। मिलते हैं इंशाल्लाह कल वीकेंड पे सुबह 6 बजे, तो आपसे मुलाकात होगी। एंड कल की कहानी बहुत जबरदस्त है, मगर आज जो आप लोगों ने मजे किया है ना, ये आयुब भाई बना के एक नंबर अरबाज भाई। दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मां सलाम, आज बेस में भी नहीं जा पा रहा भाई मैं। अल्लाह हाफिज़।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको

बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामिन इकराम, समाअत फरमाइए यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ। ये वो दुआ थी जो उन्होंने तख्त मिस्र पर कामयाबी और इज्जत पाने के बाद मांगी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिस्र की हुकूमत और इख्तदार अता फरमाया तो उन्होंने गुरूर और तकब्बुर के बजाय आजिज़ी इख्तियार की और अपने रब से ये दुआ की। فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاطر السماوات والأرض، اے آسمانوں اور زمین کے خالق، یہ آغاز اللہ کی ربوبیت اور قدرت کا اعتراف ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز اور مددگار ہے. توفنی مسلمہ، مجھے دنیا سے اپنے اطاعت اور اسلام کی حالت میں اٹھا لے. والحقنی بالصالحین، اور آخرت میں مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے. سامعین کرام، اس دعا میں ہمارے لیے کئی اسباق ہیں. عاجزی کا سبق، ایمان پر خاتمہ سب سے بڑی نعمت ہے، نیکوں کی صحبت کی طلب، اور اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ چاہے ہمیں دنیا کی کتنی ہی کامیابیاں نصیب ہوں، اصل دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما اور نیکوں کے ساتھ آخرت میں جمع کر. آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके

अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं. विदारत दाखला का कहना है स्टे सेफ ड्राइव सेफ. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है. सेफ रहें और खुश

कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर। एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा से टैलेंटेड खिलाड़ियों का घर समझा जाता है और अब इस लिस्ट में एक नया नाम तेजी से उभर रहा है, अजान अवैस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। और अजान अवैस के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले 21 साल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल की और फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया है। अजान का क्रिकेट सफर काफी दिलचस्प है। उन्होंने पाकिस्तान के एज ग्रुप क्रिकेट सिस्टम में अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 लेवल पर क्रिकेट खेली, जहां से उनकी टेक्निक और टेम्परमेंट को पॉलिश होने का मौका मिला। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका असल ब्रेक थ्रू 2024-2025 कायदे आजम ट्रॉफी में आया और सियालकोट की तरफ से खेलते हुए अजान ने सिर्फ 8 मैचेस में 844 रन बनाए, जिनमें 4 सेंचुरीज और 2 हाफ सेंचुरीज शामिल थी। इसी टूर्नामेंट में उनका हाईएस्ट स्कोर 203 रन रहा। अगर उनकी डोमेस्टिक कंसिस्टेंसी की बात करूं तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। 2025-2026 कायदे आजम ट्रॉफी में अजान ने 10 मैचेस में 803 रन स्कोर किए, जिनमें 3 सेंचुरीज और 3 फिफ्टीज शामिल थी। वो अपनी टीम के लीडिंग रन स्कोरर रहे और सियालकोट को लगातार दूसरी फाइनल अपीयरेंस तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में भी उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने 448 रन बनाए और ये परफॉर्मेंसेस इस बात का सबूत थी कि अजान सिर्फ एक टैलेंटेड यंगस्टर नहीं बल्कि प्रेशर में रन बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका डेब्यू होना ही था। अगर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस में इतना ज़बरदस्त अगर उनके बैटिंग डिस्प्ले रहा है तो वहाँ पर पीसीबी के सेलेक्टर्स ने सोचा कि इस नौजवान खिलाड़ी को चांस दे देते हैं और उनका टेस्ट डेब्यू हुआ 8 मई 2026 नहीं इसी साल बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर के शेर ए बंगला स्टेडियम में। और उनका डेब्यू किसी ख्वाब से कम नहीं था दोस्तों। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग में अजान ने जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखाया। उन्होंने 103 रन की यादगार पारी खेली और अपने पहले ही टेस्ट मैच के पहले ही इनिंग्स में सेंचुरी

स्कोर कर दी। वो पाकिस्तान के सिर्फ एंड सिर्फ 14 बल्लेबाजों बने जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर की। सच अब यू नो इंटरेस्टिंग माइलस्टोन फॉर अ यंग बैट्समैन। और इस इनिंग्स की खास बात सिर्फ सेंचुरी नहीं थी बल्कि आजान का टेम्परमेंट भी था। उन्होंने 153 गेंदों का सामना करते हुए 14 चौकों की मदद से 103 रन बनाए पहले दिन। और इनिंग्स के आगाज में प्रेशर के बावजूद वो क्रीज पर पुरसकून नजर आए। उन्होंने अब्दुल्ला फजल के साथ 104 रन की पार्टनरशिप भी बनाई। डेब्यू के बाद आजान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में 55 रन की इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। इंग्लैंड के मुश्किल टूर पर भी उनकी टेक्निक और पेशेंस का इम्तिहान हुआ। हेडिंगली में उनका स्कोर कम रहा लेकिन लॉर्ड्स में आजान ने 46 रन की फाइटिंग इनिंग्स खेलकर अपनी मैच्योरिटी दिखाई। जॉफ्रा आर्चर और ऑली रॉबिन्सन जैसे तेज गेंदबाजों के सामने उन्होंने काफी पेशेंस का मुजाहरा किया। और अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में एजबेस्टन पर आजान ने दूसरी इनिंग्स में 59 रन की एक इम्पॉर्टेंट नॉक खेली। उनकी रिसेंट फॉर्म में 46, 55 और 59 रन जैसी इनिंग्स शामिल हैं जो ये बताती है कि वो इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर को समझने और उसके मुताबिक अपने गेम को एडजस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि उनका स्ट्रेंथ जो है मुझे नजर आता है कि वो है लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल, और उनका पेशेंस और टेम्परमेंट एक एडिशनल बूस्ट है उनके पूरे इनिंग्स को अगर हम देखें तो। एंड दैट मेक्स हिम अ रियल बैट्समैन टू लुक आउट फॉर। अगर वो फ्यूचर स्टार बनने के लिए है तो हम गलत नहीं है यहाँ पे कि वो फ्यूचर स्टार हैं। वो सिर्फ एग्रेसिव शॉट्स पर भरोसा नहीं करते बल्कि सिचुएशन को समझकर इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में सेंचुरीज, डबल सेंचुरी और फिर टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी उनके टैलेंट का जो वाजे सबूत है कि ही इज अ स्टार मटीरियल। और मैंने देखा भी इस इनिंग्स को इन एजबेस्टन अगेंस्ट इंग्लैंड ऑन टीवी पर। अरे जिस तरह से वो शॉट लगा रहे थे, ऑफ साइड के जो शॉट्स वो लगा रहे थे, मुझे सौरव गांगुली याद। यकीनन आप समझिए उसके शॉट्स अभी भी सोशल मीडिया में मौजूद है, आप देखेंगे क्या क्लासिकल बैटिंग करता है ये बंदा। पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसे ही यंग बैट्समैन की जरूरत है जो लंबी इनिंग्स खेल सके और मुश्किल कंडीशंस में टीम को संभाल सके। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग टैलेंटेड और स्टार खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है। कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: टू, सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: भी बात करूँ क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू करना बहुत जरूरी हो चुका है. ऑफ कोर्स वी आर लेट टू द पार्टी, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हम चूंकि ये रिकॉर्डेड वर्जन आपके लिए तैयार करके लेके आए हैं, तो बनता है हमारा भी टू सेंट्स देना इनके प्रोडक्ट्स पे. सो मैं दोहा वाला कभी रेफ 107 पे मैं आईफोन के लाइनअप के बारे में बात कर चुका हूँ, स्पेशली प्रो प्रो मैक्स और उसके डुओ के बारे में जो हाईलाइट है ऑफ द होल इवेंट. लेकिन अब जरा बात करते हैं घड़ी और एयरपॉड्स के बारे में. नंबर वन जो बात करूंगा घड़ी के बारे में, घड़ी में इंप्रूवमेंट के तौर पे मुझे इंतजार था कि शायद इस बार कुछ बहुत ही खतरनाक बड़ा होने वाला है. एप्पल ने इस बार अपनी घड़ी को बेचने के लिए ये कहा है कि इट विल बी मोर रिलायबल. अगर हार्ट रेट को आपको जानना है, ज्यादा एक्यूरेट रहेगी इस बार की एप्पल वॉच, ऐसा एप्पल ने कहा है इसे बेचने के लिए. इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारा जो सीरी इंटीग्रेशन है वो इसमें कहीं ज्यादा रहेगा. इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि आवाज़ की क्लैरिटी पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है. मीटिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए घड़ी का जो माइक है वो बाकायदा आपके लिए पूरी की पूरी MOM बना के दे देगा आपको. एंड जो घड़ी का वही लाइनअप जो उनका रहता है, एक दो जो मेजर है और उसके बाद जो उनका जो बड़े पट्टी वाली घड़ियाँ हैं वो भी रहेंगी. मगर आई थिंक इतना मेजर नहीं खेला है उन्होंने इस बार घड़ी में जितना मुझे लग रहा था वो करेंगे. मतलब सेइंग के मैं हमारी घड़ी ले लो क्योंकि अब घड़ी जो है आपकी दिल की धड़कन और एक्यूरेट बताएगी, शुड नॉट बी द वे ऑफ सेलिंग इट. एटलीस्ट ये सेलिंग पॉइंट मुझे इतना नहीं जमा. पर देखो हैंड्स ऑन रिव्यू जब आएगा तो उसके बारे में फिर और ज्यादा गहराई से पता लगेगा. बट फॉर नाउ बैटरी लाइफ को उन्होंने बढ़ाया है, बोला कि बैटरी लाइफ ज्यादा आपको मिलेगी इस बार, पिछली बार के मुकाबले तो कहीं गुना ज्यादा मिलेगी. आई थिंक 35% ज्यादा का उन्होंने वादा किया है. तो अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम मुझे आ रही थी एप्पल की वॉच से वो यही थी कि जो चार्जिंग का सिस्टम है उसका थोड़ा सा वेयर्ड है. कभी कभार लगता है कि पूरे दिन चल जाएगी, कभी कभार लगता है कि अरे क्या हो गया अभी, तो मतलब मैंने इतना तो यूज भी नहीं किया. एंड इसके साथ साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ऑफ कोर्स मोर एप्पल वॉच फेसेस जो कि मिसिंग थे. वो हमेशा वेट करना पड़ता था कि अब शायद अपडेट में कुछ नया आ जाएगा, बट दिस टाइम अराउंड दे हैव डेफिनेटली कम आउट दिल खोल के और बहुत सारे एप्पल वॉचेस के जो चेहरे हैं उन्होंने वो दिए हैं. सो कुडोस टू दैट. और इसके अलावा जो उनके जो डिजाइन रहता है रिस्ट में अच्छा पट्टा होना चाहिए, जो बेल्ट होती है घड़ी की देसी भाषा में कहूँ तो, वो इन्होंने काफी कलर्स में इंट्रोड्यूस करी है. और एक इन्होंने ग्लॉसी वर्जन भी लॉन्च किया एप्पल का मैट के अलावा, विच इज आई थिंक आर्मी ग्रीन और ब्राउन है, वो अलग ही कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा. और उसका ग्लॉसी वर्जन भी है, तो आई थिंक घड़ी इस कलर में जब बिकेगी तो बहुत कमाल की बिकेगी. और इनके साथ इसके साथ इन्होंने टाइप भी किया है कुछ ब्रांड्स के साथ, ऑफकोर्स मैं उनका नाम ही लूंगा, मगर उसके साथ एक प्रीमियम वर्जन भी निकाला है. आई थिंक वो जो गोल्ड वर्जन है एप्पल वॉच का वो भी सामने आपको नजर आ जाएगा. इफ यू वांट टू चेक आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं. अब आ जाते हैं जरा एयरपॉड्स पे. सो एयरपॉड्स जो है अब हम 5 तक पहुंच चुके हैं, 5 प्रो पे आ चुके हैं और अब तो कुछ भारी भरकम उम्मीद है. हालांकि डिजाइन वही आपको सेम नजर आएगा, नॉट दैट ऑफ अ ह्यूज डिफरेंस. नॉइस कैंसिलेशन के बारे में हम ऑलरेडी बात करते रहते हैं, एप्पल उसमें बहुत आगे है. नाउ दैट दे आर सेइंग कि उन्होंने अपने AI को इंटीग्रेट किया है अपने एयरपॉड्स के साथ भी, बाय दैट दे मेंट कि उन्होंने इस बार जो लाइव ट्रांसलेशन है उसको बेहतर बनाया. मैं सच में देखना चाहता हूं क्योंकि पिछली बार के एयरपॉड्स प्रो 4 के साथ ट्रांसलेशन का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, तो इस बार क्या इन्होंने किया है कि मैं कन्विंस हो जाऊं वो देखने वाली बात है. हालांकि मैं आई वाज कंप्लीटली सोल्ड आउट जब उन्होंने इस बार कहा कि फाइनली दे हैव अपग्रेडेड द बैटरी लाइफ एंड एवरीथिंग एल्स इन एयरपॉड 5. बट मैं एयरपॉड्स का पर्सनली फैन हूं. आई थिंक मैं उन लोगों में से आता हूं जो फोन के ज्यादा या फोन के इक्वल एप्पल के एयरपॉड्स का भी इंतजार करते हैं. सो आई एम वन ऑफ देम. सो ये मैं उनका मेन टारगेट ऑडियंस हूँ. तो मैं डेफिनेटली जब ये इंशाल्लाह यूज करूंगा तो मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा. बट इफ यू आर यूजिंग एयरपॉड्स 4 रीसेंट वाले और जो उन्होंने लॉन्च किया था एक और लाइनअप, तो अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा उसमें, बिकॉज आई हैवंट यूज्ड देम. सो 666-22107 ये तुम्हारा व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया हैंडल्स है FM107 Qatar FM107 Qatar. दीज वर द अपडेट्स, मिलते हैं जल्द. Stay tuned. Tech update.
1: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया.
2: It's six again. This is fantastic cricket. No, Brian, why are they crying?
1: सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स

0: journalist or expert Mohammed Amin ke saath. Every Thursday from 7:15 PM only on FM 107. Dil Se Desi.
1: Game Changer Season 2.
2: आप सुन रहे हैं FM 107.
3: FM 107.
4: दिल से देसी.
5: Scam Alert. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस का. वेल, हर रोज हम एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते रहते हैं और आज जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग या कह ले बड़ा ही लाजवाब तरीके से दिमाग लगाते हुए क्रिएटिव स्कैम जरूर है. ये है एड्रेस अपडेट स्कैम. वेल, कैसे ये काम करता है इस पर हम बात करते हैं. मिसिंग डिलीवरी एड्रेस अपडेट स्कैम, ये इस स्कैम से अलर्ट रहना बहुत जरूरी है. ये स्कैम उन लोगों को टारगेट करता है जो ऑनलाइन ग्रोसरी या मील डिलीवरी का वेट कर रहे होते हैं. आपको एक अर्जेंट टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि ड्राइवर आपका घर जो है वो ढूंढ नहीं पा रहा है. आपने डिलीवरी के लिए एक वेबसाइट से कुछ ऑर्डर किया था ऐसा करके. फिर मैसेज में धमकी दी जाती है कि अगर आपने तुरंत लिंक पर क्लिक नहीं किया और एड्रेस अपडेट नहीं किया तो आपको ऑर्डर कैंसिल करके फेंक दिया जाएगा. जब आप गलती से उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक फेक ट्रैकिंग पेज खुलता है. वहां आपसे एड्रेस अपडेट करने के साथ साथ एक छोटी सी फ्री डिलीवरी फी पे करने के लिए बैंक या कार्ड के डिटेल्स जो है वो मांगी जाती है. जैसे ही आप डिटेल्स एंटर करते हैं स्कैमर्स आपके अकाउंट से पैसे चुरा लेते हैं. इस स्कैम से बचने के कुछ तरीके हैं जिन पर आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, गौर करना चाहिए. क्या तरीके हैं और वैसे सिर्फ इसी तरीके को फॉलो ना करें, मतलब जो मैं तरीका बताने वाला हूँ सिर्फ इस तरीके को फॉलो ना करके आप अपने दिमाग से भी काम ले. साथ ही ये जो तरीके मैं जो बताने वाला हूँ एक्चुअली बाकी स्कैम में भी ये फायदेमंद होते हैं. ऑफिशियल ऐप डायरेक्ट चेक करें, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था. अगर आपको कोई भी ऐसा मैसेज आए तो टेक्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बजाय हमेशा उस डिलीवरी कंपनी की ऑफिशियल मोबाइल ऐप खोलकर ऑर्डर स्टेटस चेक करें. कभी भी किसी मिसाल के तौर पे कोई एक ग्रोसरी का डिलीवरी वाला बंदा है या फिर कोई ऐसा फूड डिलीवरी वाला बंदा है, उसने कहा कि मैसेज आया आपके पास, उसने कहा कि प्लीज आप लिंक जो दिया है उस पर अपडेट करें, तो ऐसा ना करें. जिस फूड डिलीवरी ऐप से आपने फूड ऑर्डर किया है उसी ऑफिशियल ऐप पर जाइए, उसी पर अपडेट करिए तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा. उसके अलावा टेक्स्ट लिंक पर क्लिक कभी ना करें. किसी भी अननोन नंबर से आए हुए एसएमएस या व्हाट्सएप लिंक्स पर क्लिक ना करें. डिलीवरी ड्राइवर्स आमतौर पर ऐप के थ्रू ही कॉल या मैसेज करते हैं, डायरेक्ट पर्सनल नंबर से एक्सटर्नल लिंक्स नहीं भेजते हैं. उसके अलावा बैंक डिटेल्स देने से बचें. डिलीवरी कंपनीज कभी भी एड्रेस सही करने या रीडिलीवरी के लिए आपसे रास्ते में बैंक का डिटेल्स या ओटीपी नहीं मांगती है. और आपने तो कई बार इस्तेमाल भी किया होगा, अलग अलग वेबसाइट का इस्तेमाल किया होगा ऑर्डर करने के लिए, आपके साथ कभी नहीं हुआ. लेकिन कभी अगर ऐसा लगे कि यार मेरे पास मैसेज आया और ये फला जो मैसेज है इस पर आपको फोकस करना चाहिए, आपको लिंक करके लिंक अपडेट करना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा कभी ना करें क्योंकि ये एक फेक और आपको फंसाने की तरकीब जो है वो हो सकती है. उसके अलावा ड्राइवर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करें. अगर सच में कोई इशू होता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाएं, वहां पर जो डिलीवरी ड्राइवर का नंबर पड़ा हुआ है उस पर कॉल करके बात करें और फिर पूछे कि क्या आपने ये मैसेज भेजा. क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे लोग मिले होते हैं कि आपको पता भी नहीं होता है कि क्या असल में ये डायरेक्ट उस एप्लीकेशन के थ्रू मैसेज आ रहा है मेरे पास या फिर ये डिलीवरी वाले राइडर का है, तो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा. इसलिए बहुत ही ज्यादा आपको श्योरिटी रखनी है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू ही या डायरेक्ट ड्राइवर को कॉल करने के बाद ही फैसला लें. हमेशा इनबिल्ट ऐप के चैट सिक्योर सिस्टम का ही इस्तेमाल करें. तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं और नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा. ये स्कैम आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, विच इज मिसिंग डिलीवरी एड्रेस अपडेट. आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर जाते हैं, आपने किसी फूड को ऑर्डर किया और फिर ऑर्डर होने के बाद वो आपके घर के सामने खड़ा है ऐसा डिटेल्स में लिख कर आता है, जब आपके पास डायरेक्ट मैसेज आता है. लेकिन बजाय इसके कि वो आपसे आपका एड्रेस पूछे, वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप एप्लीकेशन पे या फिर जो लिंक दिया है ना उस पर अपडेट करें. यही पर होता है सबसे बड़ा खेल और इस खेल के शिकार आप हो सकते हैं, इसलिए आपको होशियार रहने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट,
4: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
6: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
4: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से RJ नासिया के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
7: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
4: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं वेल्थ मैनेजमेंट पे। पैसा कमाना जरूरी है या उसे संभालना जरूरी है? आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। अक्सर लोग समझते हैं कि अमीर बनने का मतलब ज्यादा पैसे कमाना है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। सवाल ये है कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है और क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है या हर शख्स के लिए होता है? तो चलिए पहले मैं आपको समझाती हूँ कि वेल्थ मैनेजमेंट है क्या। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब है अपने पैसों को प्लानिंग के साथ मैनेज करना, यानी कितना पैसा कमाया, कितना पैसा सेव किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना पैसा फ्यूचर के लिए सिक्योर रखना है। अगर एक इनकम वेल्थ मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए सिर्फ इनकम ही लोग समझते हैं कि बड़ी जरूरी है। बहुत से लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि वो फाइनेंशियल स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एवरेज इनकम के बावजूद भी फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, वो है वेल्थ मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट। अगर हर महीने जितना पैसा आए उतना खर्च हो जाए तो फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव नहीं होता। इसीलिए वेल्थ मैनेजमेंट का पहला कदम है बजटिंग। अब बजटिंग क्यों जरूरी है? देखिए हर महीने अपनी इनकम और एक्सपेंसेस लिखना एक बड़ी अच्छी हैबिट है। ये आपको बताती है कि पैसा कहाँ जा रहा है। कभी कभी छोटी छोटी अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी साल के एंड तक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की सलाहियत देता है। बहुत से लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक ही चीज समझते हैं, जबकि सेविंग का मतलब है पैसा महफूज रखना, इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसे को फ्यूचर ग्रोथ के लिए नए काम में लगाना। मिसाल के तौर पे आप इमरजेंसी के लिए सेविंग्स अकाउंट्स में पैसा रखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए

इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैसों के बारे में हमारे डिसीजंस हमेशा लॉजिकल नहीं होते। कभी हम इमोशंस में आके शॉपिंग कर लेते हैं, कभी सोशल प्रेशर में आके, कभी अननेसेसरी चीजें खरीद लेते हैं खुद को खुश करने के लिए, कभी फ्यूचर के बारे में सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं।

आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा फायदा है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है, फ्यूचर सिक्योर महसूस होता है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को आप आसानी से हैंडल कर पाते हैं, वहीं लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फैमिली के लिए स्टेबिलिटी पैदा होती है। और अगर वेल्थ मैनेजमेंट ना हो तो हर महीने पैसों की टेंशन हो सकती है, डेट बढ़ सकता है, इमरजेंसी में मुश्किल पैदा हो सकती है और फ्यूचर प्लानिंग कमजोर हो सकती है। इसीलिए पैसे कमाना अहम है, लेकिन उसे समझदारी से मैनेज करना उससे भी ज्यादा अहम, कितना इम्पोर्टेंट है। तो बस आज हमने और आपने समझा कि वेल्थ मैनेजमेंट कितना जरूरी है, कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका गुड बैलेंस और इसके बीच गुड बैलेंस और इसका गुड चेक।

कमाते हैं। असल दौलत ये है कि आप जो कमाते हैं उसे कितना समझदारी से मैनेज करते हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट हमें पैसों का गुलाम नहीं बल्कि उसका बेहतर मैनेजर बनाता है। क्या आप एक बेहतर मैनेजर हैं अपने वेल्थ के? बताइएगा मुझे जरूर 666-221-07 पर। फिलहाल मुझे यानी

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू साथियों इस वक्त जो है वो वक्त हो चला है महविश के बगैर का यानी के 10:02 इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है और आज का ये शो जो है ना वो महविश के बगैर होने वाला है चलो भाई सब इज्तमाई दुआ करो हमारी महविश जल्दी से अच्छी हो जाए थोड़ी सी बीमार खांसी जुकाम चल रहा है उनको तो भाई आपको याद दिलाते चलें कि आप सुन रहे हैं शो जिसका नाम है
2: आप सुन रहे हैं यू मैटर
3: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
2: एफएम 107 पर दिल से देसी
1: भाई आज के दिन ना मुझे कदर हो गई है माविश की कदर कैसे हो गई देखिए माविश के बगैर ना शो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे नौकरी शो नहीं लग रहा नौकरी लग रहा है तो भाई देखें मामला ये है साथियों कि आज जो है आज भी जैसा हमेशा रहता है इंशाल्लाह कल माविश हमें ज्वाइन कर लेंगी थोड़ी सी खांसी जुकाम वो जो कल बोल रही थी ना तबीयत ख़राब है बस उनका मीज़ानिया दुरुस्त होने के लिए उनको एक दिन के लिए ऑफ दिया है तो इंशाल्लाह कल से हमें ज्वाइन कर लेंगी और आज आपको याद दिलाती चलूँ कि आप यू मैटर सुन रहे हैं सफ़ा के साथ और आपका और मेरा साथ रहेगा 11 तक का यानी कि पूरे एक घंटे का और इस एक घंटे में हम वो मुद्दा डिस्कस करेंगे जो डेली लाइफ का हमारा चलता है क्योंकि यू मैटर अच्छा आपने कभी ये नोट किया है कि जो है चाय ज़्यादा मैटर नहीं करती कंपनी मैटर करती है ये कभी नोट किया आपने अकेले बैठकर उसी चाय का टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है और चार दोस्तों के साथ बैठकर उसी चाय का टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है अकेले शो करो तो अब मज़ा नहीं आता क्योंकि माविश थी एक दिन के अंदर अंदर पता चल गया कभी आपने ऐसा नोट किया है कि आप जब आपकी कोई गैदरिंग होती है या अपने जो पुराने कॉलेज के स्कूल के दिन याद करें अगर स्कूल के दिन याद कर लें तो याद है हम जब एक चिप्स का पैकेट होता था या एक जो लंच बॉक्स होता था उसके अंदर चार दोस्तों के हाथ होते थे उनकी कोई मनपसंद चीज़ कोई पिज़्ज़ा या कोई और बर्गर शर्गर कोई ऐसा जो हम लोग शेयर करके खाते थे बर्गर तो वही होता था लेकिन उसका टेस्ट दोस्तों के साथ खाने में कुछ मुख्तलिफ होता था याद पड़ता है आपको कुछ तो भाई आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना लाइफ की वो हमें कैसे बड़ी बड़ी खुशियाँ लगने लगती हैं छोटी सिंपल चीज़ें बिल्कुल छोटी सिंपल चीज़ क्या ही होगा एक बर्गर के अंदर रोज़ ही खाते हो ना लेकिन वही बर्गर जब अपने किसी मनपसंद शख्स के साथ खाओ तो उसकी कीमत और उसकी खुशी डबल ट्रिपल हो जाती है अच्छा मज़े की बात यह है कि आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों है ऐसा क्या है इस छोटी छोटी खुशियाँ हैं ये इतनी क्यों मैटर करती हैं अक्सर औकात आपने देखा होगा जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं ना ज़िंदगी मुरझा सी गई है रंगों के अंदर वो रौनक नहीं रही हमारी लाइफ जो है बहुत जल्दी जल्दी भाग रही है अचीवमेंट्स फील नहीं हो रही ऐसा क्यों है तो भाई आज हमारे साथ मुद्दे में शामिल होने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22107 इज द नंबर टू मैसेज और चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं कॉल करने के नंबर है 443-443-77 कॉल करने के नंबर है 443-443-77 और अभी भी अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपको बता दूं कि हम अक्सर ये समझते हैं कि खुशी किसी बड़ी अचीवमेंट में होती है महंगी चीज़ों में होती है परफेक्ट वेकेशन में होती है जो अक्सर औकात हम लोगों की पिक्चर्स देख रहे होते हैं ना हाय हाय हाय हाय फलाना कहाँ चला गया फलाना कहाँ चला गया या ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक बहुत बड़े इवेंट आएगा कोई तो उससे मिलेगी हमें लेकिन अक्सर असली और गहरी खुशी जो होती है ना बहुत सिंपल से मोमेंट्स में होती है भाई अच्छा सिंपल से मोमेंट्स बता दूं अगर आप इसे कहना और एलैबोरेट कर दो भाई एक कप चाय में लेकिन वो अपने मनपसंद शख्स के साथ बच्चों के साथ हंसने में कितना मजा आता है अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारो तो ओए होए होए होए किसी अपने के बेवजह मैसेज आ जाने पे या वो आपका हाल पूछ ले कि भाई कैसे हो ठीक ठाक हो क्या कर रहे हो हाँ ये और बात है कि रिश्तेदारों के मैसेज आ जाते हैं तो अक्सर औकात लोगों के दिल धड़क जाते हैं कि अब इन्हें हमसे क्या चाहिए लेकिन अगर कोई आपकी पसंद का रिश्तेदार हो और उसका आपको मैसेज आ जाए तो आप कहोगे अरे भाई, ऐसा लगता है ना पूरे दिन की थकान उतर गई हो, ऐसा रिफ्रेश सा महसूस होता है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें ना दिल को वो सुकून दे सकती हैं जो मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा। क्या कहते हो? सीधी सी बात है ना, बारिश की बूंदें जब एक साथ गिरती हैं तो भाई वो बारिश कहलाती है ना। एक बूंद अगर किसी को मिले तो क्या ही होगा। वैसे ही ये छोटी छोटी छोटी छोटी खुशियाँ हमें अचीवमेंट्स की तरफ लीड करती हैं। तो मुझे ज़रा आप मैसेज करके या कॉल करके बताएं कि आपके दिमाग में कोई ऐसी छोटी सी खुशी आती है, और आपको क्या लगता है कि वाई डू सिंपल थिंग्स ब्रिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें क्यों और कैसे इतना रिफ्रेश कर देती हैं पूरे दिन के लिए। अरे भाई, इसमें बड़ी खुशी मिलती है कि आज ट्रैफिक नहीं मिला रोड पर। ये भी एक बड़ी मजे की बात है कि भाई आज मैं 2 मिनट पहले निकला, 5 मिनट पहले निकला और रोड चकाचौन यूं मुझे क्लियर मिला, मैं बुलेट की स्पीड से आ रहा हूँ भाई। ये भी एक अजीब ही खुशी होती है, और उस खुशी की वजह से आपका मूड इतना अच्छा होता है कि आप ऑफिस में जाकर काम भी अच्छा अच्छा करते हो। तो भाई, आपके पास ऐसी कोई खुशी है तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें आपकी खुशी कौन सी है। 666-22-107 पर 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज, और चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप अपनी खुशियां ढूंढें, छोटी वाली, वड्डी वाली खुशियां नहीं चाहिए गोभी नया फुल्लो। फिलहाल लगाओ अटेंडेंस, मैसेज करो और कॉल भी करो अगर चाह रहे हो तो। 666-22-107 पर आकर बताओ कौन कौन कहाँ कहाँ सुन रहा है। और भाई, कल शाम को क्या मस्त वाली हवा चल रही थी भाई, मेरा तो सुपर डुपर। अगर मेरी तबीयत खराब ना होती ना, मेरे ये कंधों में दर्द ना होता, और कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि गलत पोजीशन में तकिए के ऊपर सोए हैं और गर्दन अटक जाती है एक जगह पर? मेरे साथ वही चल रहा है पिछले एक हफ्ते से मामला। तो भाई, अगर मेरा ये मसला नहीं होता ना तो मैं ज़रूर जाती कॉर्निश साइड पर, लेकिन मैं फिर भी बाहर गई थी और भाई क्या मस्त हवा चल रही थी, सारे सितारे एक साथ आ गए, नज़र आ गए। और अब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में अब वेदर चेंज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फिलहाल तो प्रॉपर पटोला बन के आज निकलेंगे हम शाम को। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। सुनते रहे FM 107 पर सफा के साथ, यू मैटर।

0: ये हाय हाय सुन करना सिर्फ इस वक्त हड्डियां चटकने की आवाज याद आ रही है, जो हाय हाय दर्द से हो रहा है सिर्फ वो ही याद आ रहा है, और बेचारापन अपना याद आ रहा है कि गोलियां खा खा के गुजारा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं यू मैटर
2: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
1: FM 107 पर दिल से देसी।
0: तो भाई कितनी तो खुशी मिलती है कि आप कोई दवाई खाएं और वो असर कर जाए, यानी कि आप पेन किलर खाएं और सुबह को जब उठें तो आपकी बॉडी में दर्द ही ना हो। हाय हाय हाय कितनी छोटी सी लेकिन कितनी बड़ी खुशी मिलती है कि नहीं। तो भाई साथियों आप सुन रहे हैं FM 107 पर यू मैटर, और मेरा ये जो चश्मा है ना, अच्छा मैं ये तो याद दिला दूं आपको कि आप किसको सुन रहे हैं, सफा के साथ सुन रहे हैं आप, और मेरा ये जो चश्मा है ना भाई ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कौन साफ करके देगा कौन साफ करके देगा। पता है मसला क्या है, जो लोग बचपन से चश्मा पहनते हैं ना उनको आदत होती है अपना चश्मा साफ रखने की। अब मेरे जैसे जो लोग हैं ना उनको रिसेंटली या कुछ नया नया चश्मा पहनना शुरू करें तो उनके लिए चश्मा साफ करना बड़ा मसले का काम होता है। अरे भाई इसमें बड़ी खुशी मिलती है, बताऊं इसमें बड़ी खुशी मिलती है कि आप अपना चश्मा प्रॉपरली साफ कर लो। भाई किसी मार का सर करने से कम नहीं होता ये, मजाक समझ रहे हैं आप भाई। किसी के पास कोई चश्मा साफ करने की ट्रिक है ना तो मुझे बता दो प्लीज। मुझे अशद ज़रूरत है, अशद ज़रूरत। लोग कहते हैं ओह फाइबर वाला जो वो होता है ना कपड़ा, फाइबर क्लॉथ जो होता है उससे साफ किया करो। अरे कबीर भाई से पूछें, कबीर भाई ज़रा चश्मा साफ करने की ट्रिक बताओ, कल मैं पहनते ना चश्मा तो कबीर भाई से पूछेंगे। अच्छा भाई आप लोगों से बात, मुद्दा ये चल रहा है हमारा कि ज़रा बताओ कि आप लोगों की ऐसी कौन सी छोटी सी चीज़ है, कौन सी छोटी सी बात है जो आपको खुशी देती है, ऐसी कौन सी छोटी सी चीज़ है जो आपका मूड फौरन अचानक से अच्छा कर देती है, और वो बिल्कुल छोटी सी है बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़। तो आपको मैंने कहा था कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और चाहें तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के नंबर है 4434377, और मुबीन बुखारी जी के MBB के मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। तो क्या कह रहे हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, सफ़ा जी आपको और तमाम लिसनर्स को गुड वाली मॉर्निंग जी। ओब जी वेरी गुड मॉर्निंग जी, अगो भी दया फुल्लो आ जाओ ज़रा खुशबू लगा के। और क्या कह रहे हैं भाई, वाह वाह वाह वाह वा, हवा और मस्त। हाँ कल थी, मैं बता रही हूँ जिस किस्म की गर्मी चल रही थी ना, मुझे पता है कल ह्यूमिडिटी भी थी, ये मैं मानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मौसम बेहतर ही था पहले से, जो अच्छा है उसको काउंट करो ना भाई। अच्छा और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई हाँ ये बात तो है, दर्द पीछा नहीं छोड़ता, जब इंसान 50-55-60 से ऊपर हो जाता है ना तो टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग। देखिए भाई आप अपने बारे में बात कर रहे होंगे, मुझे अभी 60-70 होने में 20-30 साल हैं, तो टेंशन नहीं ले, मेरा भी टाइम है। हाँ ये और बात है कि हम डब्बे की खुराक वाले बच्चे हैं, तो हमारा जो है ना वो 60 से पहले लगता है पत्ता कट होने वाला है हमारा। अच्छा जी और क्या बोल रहे हैं, और ढेर सारे मैसेज, ढेर सारे हो। अच्छा जी और कौन है हमारे साथ, कौन है कौन है कौन है, समीरा अजीज़ क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जब बच्चों को स्कूल से अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिलती है, अरे भाई कितना मज़ा आता है ना बच्चों को अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिल जाए और फिर आप उनको ब्रेकफास्ट या लंच कराने ना कहीं बाहर ले जाओ, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, या उनकी पसंद की ना कोई चीज़ आप उनको बना के खिलाओ, कितना अच्छा लगता है वाकई में। समीरा आई टोटली अग्री विद यू। और या तो फिर वो होता है ना, वो टाइम होता है जब आपके बच्चे स्कूल से वापस आते हैं और एकदम से आपको आके झप्पी पाते हैं, जादू की झप्पी भाई, वो जो 10 सेकंड होते हैं ना, पूरी दुनिया की खुशी एक तरफ और आपका बच्चा आपको प्यार से आके गले लग जाए ना, और उसको पता हो ये मेरा सेफ जोन है, वो खुशी आपको कहीं नहीं मिल सकती भाई, कहीं, पूरी दुनिया की खुशी एक तरफ। चले जी हम कॉलर की तरफ चलते, देखते हैं मतलब कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। नसीम भाई कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह
0: भाई, हम इस उम्र में दुआएं तो देने के लिए बैठे हैं नसीम भाई, है कि नहीं?
3: हाँ

0: अच्छा भाई नसीम भाई, ये बताएं कि आपको क्या लगता है आपके लिए छोटी सी खुशी जो आपकी लाइफ में है वो क्या चीज़ है, या ऐसी कौन सी चीज़ है, कोई एक चीज़ होगी कोई जिसे आप कहते हैं भाई ये मुझे फौरन रिचार्ज कर देती है इसे?
1: तो मेरे बच्चे
0: हैं। हाँ, ये ऐसा अल्लाह ताला ने कितना मजे का कनेक्शन रखा है ना औलाद का। जब आपके बच्चे आपको कहें हाय मेरे अम्मा अब्बा द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बस ये सुनना काफी होता है।
1: वो कहे ना कहे बस बात करते हैं और हंसी खुशी रहता है ना, ये बहुत खुशी।
0: हाँ, ये एक साइलेंट खुशी होती है, एक बड़ी सिंपल सी साइलेंट सी चीज़ है कि बात कर रहे हैं, खुश हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, अब्बा जो है ना वो डिमांडें पूरी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खास तौर से
1: छोटे बच्चे,
0: हाँ, और वो जो एज होती है ना उनकी, ये 9-8 साल से पहले की, मतलब 1 से लेकर 7-8 साल तक की।
1: मेरे के 6-7 महीने की है।
0: हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई फिर तो वो तो बिल्कुल खिलौना है वो तो घर का।
1: वही 6-7 महीने की है, लेकिन जब भी मेरा फोन बजता है तो पहले फोन लपकती है।
0: अरे भाई,
1: बात करे नहीं करे बस हाँ हूँ बस।
0: अच्छा, आजकल के बच्चे कितने तेज है, बैठने वाले अभी होते नहीं है कि इनको फोन इस्तेमाल करना आ जाता है। ये सही बात है। अच्छा, ये बड़ी, ये आपने वाकई में ये बड़े मजे की बात बोली है कि
1: नहीं आती है मगर खुशी
0: होती है, खुशी। अच्छा, इस खुशी का ना, इस खुशी को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे ख्याल से अल्फाज जो है ना वो ना काफ़ी होते हैं।
1: अल्फाज में नहीं बोल सकते।
0: हाँ, वर्ड्स में आप इसको एक्सप्लेन नहीं, ये एक फीलिंग होती है, इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बस एक, आप ये कह सकते हो हाँ मेरे बच्चे मेरी खुशी हैं, बस इतना कह सकते हो आप। सही, चले जी नसीम भाई। और इसके अलावा कोई और चीज
1: है ना? वो किधर है,
0: वो किधर है? मावेश, मावेश के बारे में पूछ रहे हैं। मावेश को हमने साइलेंट मोड पे लगा दिया, जैसे मोबाइल को साइलेंट पे लगा देते हैं ना, मावेश को साइलेंट पे लगा दिया आज। मतलब ये कि मावेश को घर बिठाया हुआ है, मावेश की कल तबीयत ख़राब थी तो मैंने कहा आप एक दिन का रेस्ट ने, कल आए रिचार्ज होकर, कल वैसे ही थर्सडे है, हमारी एनर्जी डबल होनी चाहिए कल के दिन।
1: ऐसा ना हो कि उनके रेस्ट में आपका वेस्ट हो जाए।
0: नहीं, आज मैं भाई मेरी छोटी, मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि मावेश के बगैर ना शो नौकरी लग रहा है। मावेश के बगैर
1: कहीं 1-4 घंटे के बराबर
0: वाकई में। अरे ये होता है जब किसी की आदत हो जाए ना आपको और वो ना हो तो पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या करे बंदा। अब समझ में नहीं आ रहा, कोई कोई कोई जो है तंग करने के लिए नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। चलें फिर इंतजार करेंगे आप और मैं बैठकर माविश का।
1: अमिता जी को ले लेते,
0: अमिता जी शाम को आना है ना, अमिता जी ने वो इंशाल्लाह शाम को आएंगी। चलें ठीक है नसीम भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपकी औलाद को आपके दिल की ठंडक बना के रखे इंशाल्लाह। आमीन, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, ख़ास तौर पे जिसके बच्चे होते हैं ना उससे आप दुनिया की हर चीज़ के बारे में पूछ लो, कहेगा नहीं मेरे बच्चे जो है ना मुझे, मेरी सबसे बड़ी छोटी भी और बड़ी भी खुशी उन्हीं से ही है। अच्छा जी, हमारे पास और मैसेजेस में कौन कौन है मैसेजेस में। अच्छा, समीरा ने फिर से मैसेज किया, समीरा ने क्या कहा है, एक और बात बताएं, बताऊं मेरी छोटी बहन, उसको सबसे ज़्यादा खुशी गैस ख़त्म होने पर होती है, कुकिंग से छुट्टी मिल। ओए होए, देखें आपकी जो बहन है ना बड़ी लकी है कि वो गैस वाला चूल्हा यूज़ कर रही हैं, मेरे जैसे लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा। अब क्या कतर की बिजली कटवाएंगे मेरे लिए, सोचो मुझे तो ये खुशी भी ना मिलती लोगों। ये अच्छा भाई, गैस वाला चूल्हा रखो। गैस वाला चूल्हा रखो। समीरा ये ट्रिक अच्छी है वैसे, शौक बड़ा था मुझे, पता है मुझे बड़ा शौक था कि मैं जो ना इलेक्ट्रिक, ये छोटी सी खुशी के बारे में बात की ना, ये मेरी छोटी सी खुशी थी कि हाय हाय हाय क्या तो ख्वाब थे मेरे, किसी दिन ना मेरे पास भी वो अमीरों के शशकों वाला ना वो इलेक्ट्रिक चूल्हा हो बड़ा सेट वाला। वो इलेक्ट्रिक चूल्हा तो हो गया, फिर पता चला कि इलेक्ट्रिक चूल्हा होने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम कैसी हैं आप? मैं आपको एक पिक्चर शेयर करना चाहूंगा एज अ जोक। अच्छा ये कबीर भाई, ये कबीर भाई ने जो सुबह को स्टोरी सुनाई है ना, वो मैंने भी सुनी थी। तो ये सब ने जो है ना, ये वो कबीर भाई की स्टोरी में जिनको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, उन्होंने एक

0: अरबाज खान ने भेजी है। अच्छा अरबाज भाई खूब सेट वाला एआई का इस्तेमाल कर रहे हो। इसे कहते हैं छोटी सी खुशी, ये होती है छोटी सी खुशी, पता चला छोटी सी खुशी किसे कहते हैं। अच्छा भाई मैं अरबाज भाई मैं कबीर भाई को बताऊंगी ज़रूर इस तस्वीर के बारे में। अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तौफीक भाई हैं, तौफीक भाई क्या कह रहे हैं, माविश एंड सफ़ा अस्सलाम वालेकुम। तौफीक भाई माविश जो है ना इस वक्त घर पे पड़ी भी सो रही हैं। और सवाब खैर आपको भी हमारी तरफ से सवाब खैर। अच्छा जी मुबीन भाई के मैसेजेस जारी और सारी हैं। मुबीन भाई का पता है क्या है, मुबीन भाई भी माशाल्लाह बड़े सेट बंदे हैं। मुबीन भाई का मैसेज देखकर ना वैसे इंसान को खुशी हो जाती है, मस्त बंदे हैं भाई, अपने मैसेजेस किए चले जाएंगे। अच्छा अगर आपको भी इस शो में शामिल होना है हमारे साथ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
0: जी मॉर्निंग मॉर्निंग, कौन है हमारे साथ?
1: आसिफ अंसारी।
0: आसिफ अंसारी, आसिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई आपने कल कॉल की थी नहीं ना?
1: कल नहीं, मैंने शायद
0: कुछ दिनों पहले की थी आपने। हाँ
1: नहीं, मंडे को की थी।
0: मंडे को की थी,
1: मंडे को जी, शायद मंडे को की थी क्योंकि एक्चुअल मैं कल भी ट्राई कर रहा था तो कॉल लगा नहीं था आपका। लास्ट टाइम एक्चुअल मैंने लास्ट टाइम पे एकदम।
0: अच्छा कितनी तो एक मजे की बात है ये आसिफ भाई के कुछ कॉलर्स ऐसे होते हैं जिन जो कॉल ना करें तो शो अधूरा लगता है। मुझे ऐसा लगा मैंने आपकी आवाज पता नहीं कितने दिनों से नहीं सुनी।
1: नहीं तो, ऐसा नहीं है।
0: तो वो होता है, देखिए हम इसे कह रहे हैं छोटी सी खुशी, ये होती है हमारी शो की छोटी सी खुशी। आप लोग कॉल करते हैं, मजे मजे की बातें करते हैं तो
1: बड़ी खुशी का मैटर ये होता है। हमने फॉर एग्जांपल एक घर ले लिया या एक गाड़ी ले ली, वो दो दिन चार दिन के बाद फिनिश। लेकिन जैसे आपने टॉपिक शुरू करा था दोस्तों के साथ, ठीक है, तो दोस्तों के साथ में हम छह महीने नहीं मिलते, खैर अब तो मिलना ही नहीं होता, एक डेढ़ साल दो दो साल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो मिलते हैं ना तो एक अलग ही मतलब पूरी पुरानी चीजें जो है शामिल हो जाती है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और उस टाइम पे हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हो या सारी चीजें फैसिलिटीज हो, लेकिन वो खुशी जो है ना वो एक अलग है
0: वाकई में।
1: जैसे कि मैं अभी मैं एक साल दो साल पे जब भी जाता हूँ, फिलहाल तो मैं अभी एक साल पहले ही आया हूँ यहाँ पे, तीन साल के, उससे पहले भी मैं कतर में था, तो मैं जब भी जाता था तो मेरा एक शाम को फिक्स था कि मुझे जो है मैं यहाँ से गया, मैं अगर 7 बजे भी घर पे पहुंचा हूँ तो 8 बजे मुझे बाइक उठा के उनके पास जाना है। घर वाले फैमिली सब कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए।
0: सही, दोस्तों का अपना एक होता है।
1: हाँ एक बार तो ऐसा हुआ था कि सारे लखनऊ एयरपोर्ट में मेरे को लेने बाइक से चले आए थे।
0: इसे कहते हैं दोस्त, इसे कहते हैं दोस्त।
1: फैमिली गई हुई थी कार से मुझे रिसीव करने, तो उसके बाद ये हुआ वो लोग भी पहुंच गए।
0: नहीं मेरे को ये तो हमारा है।
1: नहीं देखा वो भाई को बोलते हैं कि ऐसा है इनको गाड़ी पे एक काम करो सामान वामान आप लेके जाओ हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। और वहां से ले जाने के बाद उन्होंने पूरा लखनऊ घुमाया, 2 घंटे का सफर, और मुझे हो रहा है कि मैं किसी तरह से जब यहाँ से निकलो ना एयरपोर्ट से, फिर ये होता है कि घर
0: जाओ, हाँ, थोड़ा आराम करें,
1: मुझे घर देखना है।
0: हाँ,
1: नहीं आराम की बात नहीं,
0: अच्छा, घर वालों से मिलना है। हाँ ठीक,
1: हालांकि घर वाले तो मिल चुके थे, लेकिन फिर भी शाम को 8 बजे मैं पहुंचा हूँ, सुबह 9 बजे एयरपोर्ट से निकला था।
0: लेकिन आसिफ भाई आपकी मेमोरी में आ गई वो चीज, वो इतनी यादगार रही, वो उसके अंदर खुशी भी अपनी ही होगी। कैसे जिगरी दोस्त,
1: सारी चीजें हैं। जिस दिन दोस्त दूरियां कब शुरू होती है, जब दोस्त दोस्त का नाम लेने लगता है।
0: हाय जब उल्टे सीधे अल्फाजों से बुलाया जाता है ना, तब तक हाजमा सही रहता है।
1: तब तक अगर कोई इज्जत से बात कर लेना दोस्तों में, तो फिर जो है दूरियां पैदा हो जाती है।
0: हाँ हाँ ये होता है, ये वाकई मैं इस बात को मानती हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को। फिर ऐसा फॉर्मेलिटी वाला आ जाता है, तो आप कहते हैं हाँ, मेरा ही दोस्त है।
1: कि बस वही है, और जो बचपन के दोस्त होते हैं, जो साथ में होते हैं, एक स्कूल के दोस्त होते हैं, एक कॉलेज के दोस्त होते हैं, ठीक है, तो चेंज होता रहता है। एक मेरा फ्रेंड है, मेरा बचपन का फ्रेंड है, मैं करीब 15 साल हो गए 18 साल हो गए उससे मुलाकात नहीं की मेरी।
0: सही
1: शेखू, तो हम लोगों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में मैकेनिक का काम सीखा।

0: था, उसके बाद वो सऊदी गया, मिलते मिलते और घर हमारा और मेरा और उसका घर सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी में होगा, लेकिन 15 साल या 18 साल हो गए मुलाकात नहीं हुई।
1: अरे भाई, ये तो आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैं पिछले 3-4 महीने से एक अपनी मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, उससे अभी तक उसकी शक्ल ना देख पा रही हूँ मैं, साथ वाली गली में रहती है।
0: एक बार ऐसा हुआ भी था कि हम लोग मिलने वाले थे, तो अचानक क्या हुआ, मैं यहाँ से कतर से पहुंचा और ओमान जिस फ्लाइट से मैं आ रहा था उसी फ्लाइट से उसको सऊदी अरब जाना था।
1: सही
0: आया ओमान।
1: अच्छा, आप कभी उनसे मिले ही नहीं क्या?
0: 18 साल से नहीं मुलाकात हुई।
1: अरे भाई, 18 साल से दोस्त से नहीं मिले। ओए होए।
0: अभी तो वो वहां पे शिफ्ट हो गया है सऊदी के अंदर फैमिली लेके, लेकिन बस यही है कि कभी ना कभी मुलाकात होगी।
1: बातचीत रहती है फोन पर?
0: फोन तो भी नहीं है कुछ
1: ना करें।
0: अरे कोई कांटेक्ट नहीं है ना उसका मेरा कोई एक्चुअल, वो जो है सोशल मीडिया से दूर रहता है।
1: सही।
0: हाँ, हालांकि ये होता है कि उसके भाई वगैरह से बातचीत हो जाती है, एक दूसरे का पैगाम पहुंच जाता है, लेकिन बात नहीं हो पाती है, कभी नंबर नहीं शेयर करते एक दूसरे को।
1: भाई ये तो जुल्म है। मेरे को ऐसे दोस्तों, मैं तो उनके घर जाकर बोलूं कि क्या मसला है भाई, क्या है।
0: कि घर उसके जाना होता है मेरा, जब भी मैं जाता हूँ घर में मुलाकात होगी, घर में सब कुछ होगा, लेकिन
1: याद आती है आपको उस दोस्त की।
0: ऐसी बात है, बहुत सारी चीजें हैं।
1: अरे भाई,
0: जो सफा जी दिल से कभी खत्म नहीं हो सकती। देखिए,
1: हाँ, यादें होती है ना, वो जो मुस्कुराहट आ जाती है चीजों को याद करके चेहरे पर।
0: मैंने कई बहुत सारी चीजें हैं कि एक चीज कही है कि दोस्त और भाई में बहुत फर्क होता है। दोस्त कांच की तरह होता है और भाई जो है सोने की तरह होता है, कि सोने को पिघला के फिर हम, और क्या है, कांच में एक बार दरार पड़ गई फिर दोस्ती खत्म हो जाती है, फिर वो बात नहीं आती है।
1: दूर हो गए।
0: लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे उसके अंदर, आज तक कभी कुछ भी नहीं है।
1: बस साइलेंटली दूर हो गए, पता ही नहीं, बस वो जिंदगी की जना भाग दौड़ में कहीं गुम हो गए।
0: भाग दौड़ में बाई चांस उसको मेरी गाड़ी की जरूरत पड़ती है, घर से आके गाड़ी ले जाता है।
1: अच्छा, इंडिया में अभी भी वैसा ही चल रहा है,
0: सब कुछ वैसे ही चल रहा है, लेकिन कॉन्टेक्ट नहीं है।
1: ये क्या है भाई, ये कौन सी, ये क्या किसी दूसरी डायमेंशन में रहते हैं क्या?
0: नहीं, ऐसा ही है कि नहीं होती है मुलाकात, और जिस दिन होगी तो फिर फेस टू फेस होगी।
1: अरे 18 साल या उससे प्लस, 18 साल प्लस, ये क्या चल रहा है, ये कौन से लोग हैं?
0: मारा भी मुझे बहुत है सफा जी, बहुत मारा उसने, बहुत
1: बचपन की दोस्ती है ना आपकी, तो वो तो मार कुटाई तो
0: इतना मारा है उसने मुझे, नहीं गलत चीजों पे,
1: सुधारने के चक्कर में,
0: क्योंकि मेरी थोड़ी सी लाइन गड़बड़ रही है शुरू से, क्योंकि वालिद साहब शुरू से मेरे सऊदी में रहे हैं।
1: सही।
0: मैं 5 साल का था तब से सऊदी अरब में, फिर अपना पढ़ाई लिखाई पे उतना, मतलब जब वाले साहब नहीं होते तो थोड़ा सा जो है असर पड़ता है लाइफ
1: पे,
0: कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी का डर नहीं है। लेकिन वो एक मेरा ऐसा दोस्त है कि अल्लाह ताला उसे हमेशा
1: आमीन अच्छा रखे।
0: बहुत सारी चीजें हैं जो उसने मुझे बहुत सारी चीजों से दूर रखा।
1: सही सही।
0: बर्बादी की तरफ से दूर रखा।
1: सही। शरीफ भाई, अपने रीयूनियन का बताइएगा, जिस दिन रीयूनियन हो, वैसे तो होना चाहिए जल्द, लेकिन जिस दिन भी हो हमें जरूर बताइएगा, हम ढोल बताशे बजाएंगे।
0: इंडिया के अंदर ही जाके होगा, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ बाहर रह रहे के।
1: अल्लाह ताला जो है, मैं क्या कहूँ कि अल्लाह ताला सबकी रोजी रोटी बरकरार रखे, हमारे लिए ऐसे वसाइल पैदा करे कि हम लोग वापस सेट हो सकें अपनी अपनी जगहों पर, इंशाल्लाह।
0: वो एक अलग चीज है, लेकिन अल्लाह ताला ने जहाँ पे रिस्क लिखा हुआ है,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं 3 साल के बाद फिर से वापस आना, छोड़ के जाके फिर वापस आना, मेरे लिए
1: कुछ एग्जॉस्टेड हो रहा है मामला।
0: अल्लाह ताला जो है बहुत, जहाँ भी जिसने रोजी लिखी हुई है,
1: बिल्कुल, दो पहाड़ों के बीच में भी होगी तो मिलेगी भाई, वो तो एक बरहक बात है, तो अल्लाह ताला ने जहाँ लिखी है वहाँ से
0: जो फ्रेंड मिलते हैं, तो आज भी हम लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो कंजड़ पने वाली जो आदत है ना, 2 तू दे 5 तू दे 10 तू दे तब चाय पियेंगे,
1: तो चिल्लर बना, वो जो चिल्लर बना होता

0: है ना, दोस्तों का इकट्ठा करके वो कैंटीन में जो हम लोग हशर करते थे स्कूल की कैंटीन में,
1: वो आज भी है, वो आज भी है,
0: वो होना चाहिए क्योंकि मजा उसी चीज का होता है।
1: अगर पैसे, जिस दिन पैसे देने शुरू कर दिए खुद से, ये सब खत्म करके खुद से शुरू कर दी, उस दिन दोस्ती खत्म,
0: मजा नहीं आता ना फिर फायदा नहीं है दोस्ती रखने का।
1: छीन छीन के हम लोग खाने पीने वाले एक दूसरे से लोग हैं,
0: वो मजा
1: भी 10 रुपए 15 रुपए की चाय, 20 रुपए की चाय मिलती है, एक में दो करा के पीते।
0: वो चिप्स का पैकेट आपको याद है, चिप्स के पैकेट में 6 तो हाथ होते थे सबके।
1: बहुत सारी चीजें यादें हैं, बस कभी कभी रात को जब सोने के टाइम पे की वो अगर दोबारा से मिल जाए ना लाइफ, सारी कुछ चीजें हैं जिंदगी के अंदर टेक्नोलॉजी से भरे हुए हैं, लेकिन वो चीज जो थी ना मट्टी में
0: सिंपलिसिटी,
1: वो चीजें नहीं, वो चीज कभी नहीं आ पाएगी, और ना आज की जनरेशन, इवन मेरे बच्चे भी वो चीज नहीं।
0: इनका एरा कुछ और है, इनका इनका इनकी मस्तियां, इनका एरा कुछ और है।
1: मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं,
0: माशाल्लाह
1: भी हैं,
0: माशाल्लाह
1: 4 बेटियां,
0: माशाल्लाह। ये उनसे उनका, मैं जब आजकल के बच्चों का देखती हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहती कि इनको कुछ मिलेगा नहीं, इनकी मस्तियां अलग हैं, इनके मजे अलग हैं, वो शायद हम नहीं।

0: और पहले हम लोगों को घर से खुद भागते रहे जाता था
1: हम खुद भागते रहे, हम कहते नहीं दोस्तों के पास जाना है, फलाने दोस्त के पास, इतना रोना धोना मचता था एक दोस्त के पास जाने के लिए।
0: बहुत ज्यादा जो है दिन दिन भर क्रिकेट खेलना, पूरे पूरे दिन जो है
1: गुम रहना और मारे भी खाना उसके ऊपर के कहां थे।
0: भाई का बेटा है उसको मोबाइल से नहीं पूछता था।
1: ये सारे सबका ये हाल चल रहा है, आप बच्चों के बारे में बोल रहे हैं, बड़ों का भी ये हाल चल रहा है भाई, बड़ों का भी ये हाल चल रहा है,
0: मोबाइल से ही नहीं पूछता था।
1: छोटी छोटी खुशियां तभी तो गुम हो रही है हमारी, हमारी वो बच्चों के साथ आइसक्रीम खाने चले जाना, कहीं पार्क में बैठ जाना, कहीं खाने की टेबल पर एक साथ बैठ कर खाना खाना बगैर मोबाइल के, एक दूसरे से पूछना कैसे हो, दिन कैसा गुजरा। अरे भाई हम होल्ड पे चले गए, हम अच्छी अच्छी बातें करते करते होल्ड पे चले गए, तो भाई हैं के चले गए, हैं तो सही लेकिन होल्ड पे डाल दिया। चले भाई, अरे भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और साथियों अगर आप भी अपनी कोई यादें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, 4434377 इज़ द नंबर। और मेरा आज का सवाल आप लोगों से ये है कि ज़रा मुझे बताएं आप लोगों के पास कोई अच्छी सी याद है अपनी, और ये इन छोटी छोटी चीज़ों में क्या है ऐसा, कभी कभी आप बड़ी अचीवमेंट भी हासिल कर लो ना तो आपको वो खुशी नहीं मिलती जितनी उस छोटी सी खुशी में आपको ये होता है कि अच्छा देखो मेरे किसी बड़े इवेंट में मेरा दोस्त मेरे साथ आ गया, या मेरी अम्मी जो हैं वो मुझे अवार्ड मिलता हुआ देख रही हैं। आपको अवार्ड की खुशी नहीं होती, आपको ये खुशी होती कि आपकी वालदा आपके साथ बैठ के, आपके अब्बा आपके साथ बैठ के आपको अवार्ड रिसीव करता हुआ देख रहे हैं। चलिए भाई देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम, हैं के चले गए। अरे भाई ये क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम,
2: गुड मॉर्निंग सफा, हाउ आर यू।
1: मॉर्निंग अज्जू भाई, कैसे हैं?
2: वेयर इज योर फ्रेंड?
1: माय फ्रेंड इज सिक, मुझसे बेजार हो गई वो मुझे ज्यादा देर हैंडल नहीं कर पाई, बीमार हो गई।
2: मेबी आप आर गिविंग सो मेनी प्रेशर ऑन योर जूनियर्स।
1: शी इज नॉट माय जूनियर, आई एम हर जूनियर। माविश को बताऊंगी ना, माविश, माविश इज माय सीनियर, आई एम द जूनियर, आई एम अंडर प्रेशर, दैट्स व्हाई शी लेफ्ट मी इन द शो।
2: ओके
1: ओके, शी वाज नॉट फीलिंग वेल सो शी टुक अ डे ऑफ, एंड इंशाल्लाह शी विल बी जॉइनिंग अस टुमारो ऑनवर्ड्स, इंशाल्लाह वीकेंड पे हमें ज्वाइन करेंगी वो। थोड़ी देर का वीकेंड के लिए एनर्जी लेकर आ जाओ माविश। सो अज्जू भाई आज का हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि जरा बताएं व्हाई डू इसको कैसे किया जाए, इसको ऐसे हम सिंपल कर सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू सिंपल थिंग्स ब्रिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू अस।
2: सिंपल थिंग, या ऑफ कोर्स समटाइम्स द स्मॉल थिंग्स विल गिव अस अ वंडरफुल मेमोरीज, यू नो। एस्पेशली चाइल्डहुड मेमोरीज।
1: यस,
2: अभी आप सोचेगा तो ये तो बहुत छोटा चीज है, लेकिन अभी आजकल सोचेगा तो वो तो बहुत डेफिनेटली ये अनरिमेम्बरेबल मेमोरी।
1: एंड डू यू हैव एनी मेमोरी ऑफ योर्स व्हिच यू वुड वांट टू शेयर विद अस, व्हिच ब्रॉट यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, या जिसको अभी भी आप याद करते हैं तो यू योर लाइफ फिल्स अप विद जॉय?
2: बहुत है, अभी बोलेगा तो मैं स्कूल टाइम में बहुत किया था, कोई चीज नहीं बोल सकता है मैं बोलेगा।
1: अच्छा, बहुत सारी मस्तियां की थी वो अभी अभी जो है ऑन एयर नहीं बोल सकते हम, चलें खैर है। सो या
2: एक बार हम लोग को ट्यूशन जा रहा था दोस्त लोग के साथ, ट्यूशन बहुत दूर है, सो वी विल गो फॉर साइकिल।
1: ओके,
2: so that time me and my 4-3 friends are there, so we will go for race. So that time there one of my friend was falling down.
1: Okay,
2: during race na
1: he fell down. Okay,
2: he got some injury in the leg. बोला ये इसको बहुत ब्लड आ रहा है यार, हम लोग को बहुत डर गया। फिर वो बोला थोड़ा वीक जैसे, आप ब्लड आ रहा ना थोड़ा वीक जैसे हो गया। हम लोग को बोला ओके इसको थोड़ा सेफ जगह में रख के हम लोग डॉक्टर को बुला के आएगा बोल के, इसको एक छोटा था नदी जैसे
1: एक
2: अंदर छुप कर रखे, उसका अंदर डाल के हम लोग को चला गया डॉक्टर को मिलके।

0: उस बेचारे को वहीं पे छोड़ दिया?
1: हाँ, छोड़ के हम लोग को चला गया डॉक्टर को बुला के.
0: And did the doctor actually come or no?
1: No.
0: Ori, you just said that we will call the doctor and you guys left him.
1: We left.
0: He was fine after that. I just want to know the end of the story.
1: No, he was fine, but from next day school में आके बहुत झगड़ा किया था.
0: ओरे वो तो करेगा बेचारा, वो सोच रहा 3 घंटे बैठा हुआ वो दरिया के किनारे.
1: Actually he was waiting so long time because हम लोग को बोला था, हम लोग को डॉक्टर को बुला कर जरूर आएगा, आप इधर ही वेट करो. क्योंकि टाइम मोबाइल जैसे कुछ.
0: हाँ, there was no mobile and nothing. Thanks God he reached back home.
1: I think 2-3 घंटा वो वेट किया लगता है. उसके बाद वो कुछ चला गया, फिर नेक्स्ट डे स्कूल में आने के बाद बहुत झगड़ा हुआ था.
0: ओए ओए, ये तो झगड़ा झगड़ा वाली ही बात है. बेचारे को बीच में छोड़ के चले गए ऐसे, वो बैठा हुआ है नीले गगन के तले.
1: बहुत है स्कूल टाइम है, लेकिन अभी हम लोग को फ्रेंड्स बैठ के बात करेगा ना, वो क्या मजा आता है.
0: या इट हैपेंस, इट्स यू आर वेरी राइट कि वो जो मजा है ना वो मेमोरीज में ज्यादा होता है. छोटी सिंपल चीजों में ना हमारी मेमोरीज इतनी सॉलिड होती हैं उसके अंदर कि दैट इट ब्रिंग्स स्माइल टू आवर फेस इवन नाउ.
1: यही रहता खत्म करके सेकंड ईयर जाएगा, आई विल बी राग एवरीवन.
0: सीनियर बनने का शौक.
1: हाँ, सीनियर. वो सीनियर बन के बाद सब आदमी को लाइन में खड़ा करके रैगिंग किया.
0: ओफ अजू भाई, आई वाज वेरी, मैं कहूंगी मेरा बड़ा गुड लक था इसके अंदर. आई डोंट नो हाउ, बट आई हैव एन इंप्रेशन ऑन पीपल दैट व्हेनेवर दे मीट मी फॉर द फर्स्ट टाइम दे गेट स्केयर्ड ऑफ मी बिकॉज दे थिंक दैट आई एम वेरी मच, यू नो, वो एक बच्चा होता है ना, इसको आप दूर से देखो और आप कहो कि भाई ये बहुत एटीट्यूड वाला बंदा है, इससे दूर रहने का इसका रोब है. मुझे किस पूरी क्लास की रैगिंग होती थी, मुझे कोई एक चीज नहीं बोलता था. मुझे कोई एक बात नहीं बोलता था बिकॉज दे एंड आफ्टर सम टाइम आफ्टर 6 to 8 months व्हेन दे गॉट टू नो मी द सीनियर्स दे सेड दिस इज व्हाई वी नेवर इंटरैक्टेड विद यू बिकॉज वी वर स्केर्ड ऑफ यू. आई एम लाइक अरे भाई मैं तो कबीर सिंह निकली. मुझे पता ही नहीं था. सो आई वॉज गुड. मेरा लक इस चीज में अच्छा था. तो चलिए अंजू भाई, ये बड़ी अच्छी, इट वॉज वेरी गुड टाइम. सिंपल थिंग्स बट वेरी गुड टाइम.
1: लोगो पूरा रिकॉर्ड नोट्स पूरा उस कॉलेज का होमवर्क पूरा जूनियर को देता है, कल सुबह मैं आएगा
0: करके देने का. हाँ, ये बहुत होता था. चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड शेयरिंग योर मेमोरीज विद अस. इट वॉज प्लेजेंट टॉकिंग टू यू. अल्लाह हाफिज. तो भाई छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आपको भी खुशी मिलती है, मुझे भी खुशी मिलती है. अज्जू भाई ने क्या क्या बातें याद दिला दी. अरे भाई क्या क्या बातें याद दिला दी. आपके पास भी अगर कोई ऐसी मेमोरी है तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें. फिलहाल तो मेरे पास मैसेजेस हैं, मैसेजेस की तरफ चलती हूँ. ढेर सारे मैसेजेस. और आज मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास मुद्दा ये चल रहा है कि ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है कि छोटी छोटी चीजें ना जिंदगी में बड़ी अचीवमेंट से ज्यादा खुशी देती हैं कभी कभी. आपके पास कोई ऐसी खुशी है जिसको याद करके आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है? तो भाई हमारे पास कौन है, शेख इरफान ने हमें मैसेज किया है और क्या कह रहे हैं. कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु, मोहतरमा औलाद की सारी दुआएं एक ही बंदे को देनी है क्या क्या किसकी किसकी. अच्छा ठीक है, कुछ दुआएँ हम भी डिज़र्व करते हैं जी. देखें ये जो औलाद की सारी दुआएं होती है ना, ये सबके लिए हैं. अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबके बच्चों को, भाई सबके बच्चों को अल्लाह ताला खुश व खुरम रखे. अल्लाह ताला माँ बाप की दिल की ठंडक बना के रखे. दुनिया और आखिरत दोनों में अच्छी जगह दे सबकी औलादों को, भाई सबकी औलादों को. तो भाई और कौन है हमारे साथ, मैसेजेस थोड़े से लेती हूँ. मोहम्मद यूसुफ़ खान हैं, कॉल भी आ रही है, मैसेज पढ़ लेती हूँ. मैसेज थोड़े से डिले हुए हुए हैं. यूसुफ़ भाई क्या कह रहे हैं, यूसुफ़ भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मावीर जी नहीं हैं आज, होप शी इज़ वेल. अल्हम्दुलिल्लाह मावीर जी इज़ फाइन, जस्ट थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, तो कहता है भाई थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ. तो वो देखा आपने घोड़े की रेस में जो घोड़ा भागता है, हाँ वो जो है ना भागते भागते ये वाला घोड़ा थक गया, तो हमने हमने ना उसे चने खिलाने के लिए बिठा दिया. तो भाई इंशाल्लाह कल ज्वाइन करेंगी हमें. सफ़ा जी मुझे मेरी बच्ची के साथ खेलने में बहुत खुशी मिलती है. यूसुफ भाई कह रहे हैं, यूसुफ भाई ये तो हम सब का मामला है, जिस जिस के हाथ में औलाद है अपनी, तो भाई पूरी दुनिया का सोना एक तरफ और अपनी औलाद एक तरफ है कि नहीं. ये तो है भाई. अच्छा ऑफिस से शाम को घर जाके बच्ची को देख के एक टाइट सी हक करता हूँ, दिन भर की सारी टेंशन सारी थकान एक पल में ख़त्म हो जाती है. हाय हाय, मैंने कहा ना वो जो जादू की झप्पी होती है ना, उसका अगर आपने सही वाला एक्सपीरियंस करना है ना, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को ना ऐसे वो बेशक वो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड की जादू की झप्पी देंगे आपको, लेकिन वो 5 से 10 सेकंड ना पूरी दुनिया के सुकून के बराबर होता है. उसको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन किया सकता. अच्छा भाई शहजाद सलीम क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, हमें आपके साथ एफएम 107 के साथ. शहजाद सलीम कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? बाद अब्बा मुलायजा होशियार, और कौन है हमारे साथ मैसेज में, रहमान भाई हैं. अरे रहमान डकैत. वो मूवी में था ना रहमान डकैत, रहमान भाई का नाम सुना था वो रहमान डकैत याद आता है. अच्छा अस्सलाम वालेकुम सफ़ा मैम, हाउ आर यू, सब खैरियत है, मौसम माशाल्लाह अच्छा होने लगा है, हमारी दुआ है मावे सिस्टर के लिए, अल्लाह पाक जल्दी सेहत दे, आमीन. नहीं नहीं उन्हें कुछ वैसे नहीं हुआ, कुछ अल्लाह का शुक्र है, बस वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गई, थक गई, तो कल देखा था ना आपने उनका वो गजनी बनी हुई थी कल मेरी तरह, तो आज उनको छुट्टी की ज़रूरत थी. और कौन है हमारे साथ, अरबाज़ भाई क्या मैसेज कर रहे हैं हमें, है क्या है, बकरी के बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं. ठीक है ओके, बकरी के बच्चे, बकरा ईद आ गई है. कैसी बात है. वैसे हाँ हम लोग हमारे पास ना उसे कहते हैं वो मेमले, मेमले होते हैं ना बकरी के बच्चे, आपके पास क्या कहते हैं, हमें कहते हैं मेमले, मेमले ही होता है ना. हाँ मैं तो ये कहती हूँ मेमले जो होते हैं छोटे छोटे इतने प्यारे होते हैं, हाय हाय हाय हाय कितने खूबसूरत. वैसे बात तो है कि हाँ सही बात है, लेकिन भाई अब बच्चों को कहाँ मेमलों के साथ कंपेयर कर रहे, ये क्या हो रहा है ये अरबाज भाई, ये कौन सी डायमेंशन में रहते हो. अच्छा और कौन है हमारे साथ, क्या है कौन है, नहीं सॉरी, आसिफ भाई हैं. आसिफ भाई क्या कह रहे हैं, देखो मैडम रहमान डकैत का नाम मत लो, हम अभी तक का वो सदमे से उभरे नहीं हैं. अच्छा अरे भाई क्या एक्टिंग की है बंदे ने, क्या एक्टिंग की थी भाई इस बंदे ने, क्या क्या तो सोचो भाई बंदे ने कैसी एक्टिंग की है मूवी में कि अच्छे अच्छों को याद हो गया एक नाम. अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ, मुबीन भाई ने मुझे ढेर सारी पिक्चर्स भेजी. मुबीन भाई ये इतनी प्यारी प्यारी माशाल्लाह अल्लाह ताला खुशो खुरम रखे ने, किसी की तो पिक्चर भेजी है और आपने मैसेज भी भेजा है. नाना अच्छा ये मेरे ख़्याल से कुछ तो किसी की तो है. मुबीन भाई आपने मुझे वॉइस मैसेज भेजा है, पिक्चर्स भेजी हैं, किसी बच्चे की पिक्चर भेजी है और बहुत माशाल्लाह से अल्लाह ताला जो है ना नज़र बद से बचाए, प्यारी सी बच्ची. और हाँ बच्चों की जो हम बात कर रहे हैं कि बच्चे दिल का सुकून होते हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने भेजी है. और हमारे पास भाई आपको ये बताती चलूँ कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, मैसेज भी कर सकते हैं 6662107 पर, बता सकते हैं कि भाई आपको छोटी सी खुशी आपकी ज़िंदगी कौन सी है. देखते हैं हमारे साथ कॉल पर कौन है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, खैरियत
0: है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर अकेले ही पूरा वजन संभाल
0: रही है. मेरे मेरे छोटे छोटे कंधों पे इतना वजन
2: है. तो आज ये जो है मैं भी शो, आपने अचानक ये खुशी दी कि ये
0: ये छोटी सी खुशी नहीं, ये बड़ी वाली खुशी है. ये बड़ी वाली खुशी है. माविश को जो ना माविश ने मुझे मिनी हार्ट अटैक दे दिया सुबह सुबह फोन करके, और जो है ना खुद के लिए उनके लिए खुशी हो गई. अब वो छोटी थी कि बड़ी, वो कल आके पूछेंगे, कल आएंगी तो पूछेंगे.
2: तो बाकी अक्सर यहाँ डेली खुशी ये भी होती है, अब ऑफिस से निकले और रोड खाली है.
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, मैंने कहा, मैंने शुरू में इस बात का जिक्र किया था.
2: अच्छा अच्छा,
0: इतनी खुशी भाई, ओ हो हो हो,
2: बंदा सोच रहा है ये कहाँ चले गए सब लोग.
0: अच्छा कभी कभी ऐसा होता है, डर भी लगता है कि भाई मैं जल्दी निकल आया हूँ या मैं गलत रोड पर आ गया हूँ, मतलब आपका दिमाग जो है ना वो एक्सेप्टेंस उसके अंदर बहुत कम होती है कि क्या हो गया. अच्छा ये मैंने

0: मैंने एक चीज नोट की थी ट्यूसडे के दिन, मैं हमेशा नोट करती हूँ कि ट्यूसडे के दिन पता नहीं क्यों रैंडमली रश थोड़ा सा कम होता है।
1: हो सकता है ये मैंने दिनों का हिसाब नहीं रखा, लेकिन कभी कभी ऐसे ही होता है, जैसे ही मेन रोड पे आए देखा रोड खाली है, घर वाले भी टाइम देख रहे होते हैं क्या हो गया, जल्दी पहुंच गए घर में।
0: मेरे साथ ही ट्यूसडे वाले दिन हुआ है, मैं सुबह को बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकली तो रोड खाली, वो रोड खाली जिसके ऊपर ट्रैफिक जैम होता है, और मैं डर गई। मैंने कहा मैंने कहीं जल्दी तो नहीं कर दी है, मैंने टाइम देखा, मैंने कहा रोज इसी टाइम पे निकलते हैं, मेरा दिमाग एक्सेप्ट ही ना करे। फिर मैंने रोड फिर से देखा, मैंने कहा मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चढ़ गई हूँ, जहाँ
1: रोड के पीछे से बंद हो सकता है, डाइवर्ट हो सकता है वहां से ट्रैफिक,
0: कुछ तो था। और मैंने कहा भाई ये तो 7:45 का जो टाइम है, हम सबको पता है कि ये रश वाला टाइम होता है सुबह के 7:45 का, वो ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर जैम चलता है,
1: बहुत टाइम होता है। और जहाँ तक वो बच्चों की खुशी या वो है, सही है, बच्चे बाज का क्लेम करते हैं, आप हमारे लिए कमा रहे हैं, बस पूछे ना जो बोले दे ही जाए वो।
0: हाँ ये है, ये अब आ गया है, ये एक आ गया है
1: कि ये इस बात के ऊपर, लेकिन उनको रिलाई करना पड़ता है कि हर चीज एक मेहनत से मिलती है, आपको हर चीज अगर इसी तरह मिलने लग जाए तो आपकी एफर्ट कोशिश और मिलने की खुशी भी नहीं होती।
0: एग्जैक्टली वो जो हम कह रहे हैं ना कि खुशी खत्म हो जाती है,
1: खुशी खत्म हो जाती है। एक बंदा दौड़ा है बहुत मेहनत से, कोशिश से, उसने ट्रेनिंग की है, वो जीता है तो बोलेंगे इसको मेहनत का समर, और जिसने कुछ नहीं किया उसको मिल गया तो फिर तो मेहनत का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, मेहनत का सबक ही गलत हो गया।
0: अच्छा ये तो आजकल का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, एक बड़ी छोटी सी बात है कि आजकल के बच्चे ना वो गेम्स में और इनमें ऑनलाइन गेम्स वगैरह में बड़े मसरूफ और मशगूल हैं, उनको बड़ी अच्छी लगती है गेमिंग कंसोल वाली जो गेमिंग होती है। तो मैंने खुद ये बात नोट की, जबकि माशाल्लाह हर चीज़ है, लेकिन बच्चे ना वो एहसास खो देते, वैल्यू करना छोड़ देते हैं चीज़ों को, उनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, जैसे आपने वो बात कही ना कि आप तो मशीन हो, आप हमारे लिए कमा रहे हो, और कमा किसके लिए रहे हो, उनकी हर डिमांड आप पूरी कर दो। तो
1: इसमें इनको ये रियलाइज होना चाहिए कि हम आपके लिए नहीं कमा रहे, आपको कुछ बनाने के लिए कमा रहे हैं।
0: हाँ।
1: फिर उसके बाद फिर आगे आपने अपने मुस्तकबिल को खुद मैनेज करना है, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि अच्छी तालीम फ्री, सेहत फ्री।
0: बिल्कुल,
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम लोग बहुत फैसिलिटेट हैं, बट वी आर नॉट बिलोंग्स टू सेम कंट्री।
0: एग्जैक्टली,
1: हमें अपने पीछे नजर रखनी चाहिए।
0: सही,
1: और ये अल्लाह ने मौका दिया है, देखें जिनको मौका नहीं दिया वो तड़प रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जिनको मौका दिया है वो ये ना सोचें फॉर द ग्रांटेड, वो उस एफर्ट को अल्लाह का शुक्र अदा करें। और एक एक कहानी मुझे एक मुख्तसर सी याद आ गई, एक मिनट, एक समझे हमने कहानी में पढ़ा था, असूल था कि वहां ना बादशाह एक साल के लिए बनाते थे, और उनमें उनका रूल ये था कि जो सुबह को उस दरवाजे से या उस एंट्री से आता था उसको बादशाह बनाते थे, कोई क्वालिफिकेशन नहीं कुछ नहीं। उसके बाद एंड ऑफ द ईयर उसको वहां एक जंगल था, वहां छोड़ आते थे, वो तू जान जंगल जान जानवर जाने।
0: सही।
1: तो ऐसे ही एक बंदे को बनाया, तो उसको ये कंडीशन बताई, सोचता रहा, उसने कहा ठीक है बना दिया मुझे बादशाह, उसने बादशाह बनाया। तो एक साल के बाद जब उसको वहां छोड़ने गए, तो जहां उसको छोड़ना था उसने काफी वहां डेवलपमेंट की, उसने कहा मुझे अपना मुस्तकबिल, मुझे अपना कल, ये जो जहां जो हड्डियां पड़ी लोगों की, वो यहाँ आके भूल जाते हैं कि हमने वहां जाना है,
0: वापस जाना है।
1: तो हमारी दुनिया और आखिरत पे भी ये चीज फिट बैठती है।
0: सही।
1: और उसके ऊपर भी उसने कहा कि मैंने फिर उसका इंतजाम पहले किया, कहता मैं भूला नहीं, मैं अक्सर वहां चक्कर लगा के आता था, वहां किन किन की हड्डियां पड़ी हैं, जानवरों ने खा लिया है।
0: अरे भाई,
1: तो इस वजह से। और बाकी एक बात, वो जो हमारे एक दोस्त कह रहे थे अल्लाह उनको बच्ची की बहुत खुशियां मुबारक हो, छोटे बच्चों को स्क्रीन मोबाइल पापा से बात दूर कर दें, दूर से देखें, उनके हाथों में मोबाइल ना दें, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी के अलावा जो छोटे बच्चों को एडिक्शन
0: रेडिएशन।
1: आप एक और चीज देख लें, आप एक बच्चे को एक चीज दें, एंजॉय करो, खेलो, उसके बाद आप लेके बोलो ये अच्छी नहीं है, आपको
0: नहीं भाई नहीं, वो तबाही मचा देंगे, तहलका मचा देंगे वो।
1: लेकिन आपने पहले ही ये कड़वा जहर पी लिया, नहीं बेटा, यू हैव बच्चों नेवर टच। इस तरह है, जहां तक पढ़ाई की भी है डेस्कटॉप लेके दें, सामने रखें, इवन लैपटॉप टैबलेट जरूरत नहीं है, यानी कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, अवॉइड इट, इवन रूम में तो कभी रखे ही ना, ये तजर्बा ये इस तरह है, ये कभी ना करें, क्योंकि बच्चों को आप एक चीज दे के फिर उसके अगेंस्ट में दलील देना बहुत मुश्किल है, बहुत आर्गुमेंट करें
0: वापस जब आप किसी, मैंने एक बड़ी अच्छी सी मिसाल सुनी थी, जब इंसान फर्स्ट क्लास पे चला जाना तो उसके लिए इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करना फिर बड़ा मुश्किल काम होता है।
1: एक्सीलेंट,
0: जब आपने उसे एक्स्ट्रा दे दिया तो फिर जब आप उसको कम करोगे ना तो फिर वो झिलमिलाएगा
1: और आपके पास उससे ज्यादा देने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा।
0: हाँ, तो हाँ जी, हाँ जी।
1: जो तरक्की करेंगे वो कहते हैं कि आप
0: तरसा तरसा के, तो भाई तरसा तरसा
1: बड़ा अच्छा चैनल है, एजुकेशनल भी है, और शायद मैंने पहले भी जिक्र किया है, तख्ती बच्चों की नफसियात के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वो अदील नाम है, बहुत एक्सीलेंट, और हम लोग सीखते रहते हैं और कई चीजें हम, मैंने अपनी गलतियां वाकई उसमें देखी हैं कि मैंने कर ली हैं जिनको मैं रिवर्स भी नहीं कर सकता, मेरी गलतियां थी। चले बड़ा अच्छा जबरदस्त प्रोग्राम, वो हमारे एक दोस्त का भी, लखनऊ वाले का भी बड़ा मजे का आया, तो दोस्तों की कहानियां और ये चीजें परदेश, और लकी इनफ कि वो वापस भी आ गए इधर, तो हमारे बड़े दोस्त गए हुए वो आज तक लिखते हैं भाई हमें बुला लो।
0: अल्लाह ताला जो है ना वो सबको, भाई मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबकी रोजी रोटी बरकरार रखे, दिलों के सुकून दे, दिलों के सुकून।
1: सही सही।
0: चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
1: थैंक यू।
0: तो भाई मेरा जाने का टाइम आ गया है साथियों, देखो जाते जाते लेक्चर नहीं दूंगी, सिर्फ इतनी सी एक बात करूंगी कि याद रखो जिंदगी एक किताब की तरह है, हम कहते हैं ना लाइफ इज़ लाइक अ बुक, ठीक है, बड़े इवेंट्स सिर्फ कुछ पेजेस में नज़र आते हैं, बड़ा हाईलाइट करके उनको दिखाया जाता है कि हाँ भाई ये मेरी अचीवमेंट है, लेकिन असली जो कहानी छुपी होती है ना उन छोटी छोटी लाइन्स में होती है, जिन्हें हम अक्सर जल्दी में पढ़ कर गुजार देते हैं, ऐसे यूँ सरसरी सा पढ़ते हैं और ये जा वो जा। छोटी छोटी खुशियाँ भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं, इनके ऊपर ध्यान दें, बेशक एक आइसक्रीम खाना हो, बेशक अपने बच्चों के साथ 5 मिनट गुजारना हो, बेशक जो है वो किसी पुराने दोस्त से बात करना हो, ये बहुत छोटी छोटी खुशियाँ हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम और अल्लाह हाफिज़, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी के कप को भर देती हैं। तो भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें और सुनते रहें FM 107, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए नोट पर, तब तक के लिए सुनते रहें FM 107 दिल से देसी, और सफा को दीजिए इजाजत, फ्रॉम यू मैटर, टाटा बाय बाय, FM 107 सुनते रहो, ठीक है, अगला शो आने वाला है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4484880

0: 6 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को संवार दें।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सभी कराम, प्रोग्राम में कुरान के मोती के आज के इस हलके में आप सबका खैर मकदम है। गुज़श्ता हलके में हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी रहमत इलाही के हवाले से, वहीं हमने ये भी कहा था कि अल्लाह की रहमत सिर्फ अहले ईमान तक महदूद नहीं, उसकी रहमत आम्मा इस दुनिया में वो शख्स भी पाता है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, यानी उस रहमत से एक हिस्सा पाता है। तो रहमत आम्मा के हवाले से बात है, अल्लाह की वो अमूमी रहमत जो दुनिया में सिर्फ मोमिन को नहीं बल्कि पूरी मखलूक को अपने दामन में लिए हुए है, इसलिए हम बार बार पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। वो तमाम जहानों का रब है रब्बिल आलमीन, और इसी रुबूबियत के साथ उसकी रहमत के आसार भी पूरी मखलूक में दिखाई देते हैं। सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल यौमिन हुवा फी शान, आसमानों और ज़मीन में जो भी है सब उसी से मांगते हैं और हर आन उसकी एक नई शान जलवागर है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या काफिर भी अल्लाह से मांगता है और क्या अल्लाह उसकी पुकार पर भी दुनिया में रहमत फरमाता है? जी हाँ, इस नुक्ते को समझने के लिए अहले इल्म ने मांगने की दो सूरतें बयान की हैं, सुआलुल मकाल और सुआलुल हाल। सुआलुल मकाल ये है कि इंसान जबान से मांगे, या अल्लाह मुझे अता फरमा, मेरी मुश्किल दूर फरमा, और सुआलुल हाल ये है कि जबान खामोश हो मगर इंसान की हालत खुद उसकी जरूरत बयान कर रही हो। एक सादा मंजर जहन में लाइए कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं, सामने एक बहुत कमजोर शख्स सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। अब कदम कमजोर है, रफ्तार भी सुस्त है और उसे किसी सहारे की जरूरत है। उसने आपको आवाज नहीं दी, उसने ये भी नहीं कहा कि मेरा हाथ पकड़ लीजिए, लेकिन आप आगे बढ़ते हैं और उसका हाथ थाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जबान ने नहीं, उसकी हालत ने सवाल किया था और आपके दिल में मौजूद थोड़ी सी रहमत ने उस खामोश सवाल को समझ लिया। तो फिर सोचिए, आप ज्यादा रहम करने वाले हैं या वो रब जो अरहमुर रहीमीन है? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि एक औरत मस्जिद नबवी में एक खेमे में रहती थी। वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आकर बैठती, गुफ्तगू करती और गुफ्तगू के खिताम पर बार बार एक शेर पढ़ा करती थी जिसका मफहूम था, वो शाह का दिन हमारे रब की अजीब निशानियों में से है, उसी वाकये ने मुझे कुफर की बस्ती से निजात दिलाई। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक रोज पूछा, तुम हर मरतबा यही शेर क्यों पढ़ती हो, उसके पीछे क्या किस्सा है? उस औरत ने अपनी जिंदगी का एक दर्दनाक बाब खोला। उसने बताया कि इस्लाम कबूल करने से पहले वो अरब के कबीले के साथ रहती थी। एक रोज उस कबीले की एक लड़की कीमती वशाह यानी जेवर से आरास्ता दुपट्टा या पट्टी पहनकर निकली। रास्ते में वो वशाह गिर गया, एक चील ने उसे गोश्त समझा, झपट कर उठाया और उड़ गई। घर वालों ने तलाश की, वशाह न मिला। फिर शक किस पर गया? उस बेसहारा औरत पर। उन्होंने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तलाशी की हद यहाँ तक पहुंच गई कि उसके इज्जत नफ्स को भी मजरूह किया गया। तसव्वुर कीजिए, एक बेकसूर औरत है, कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं और इस वक्त वो मुसलमान भी नहीं, और रिवायत में ये भी मजकूर नहीं कि उसने उस लम्हे जबान से अल्लाह को पुकारा हो, लेकिन कभी जबान खामोश होती है और हाल फरियाद बन जाता है। वो इसी अजियत में बैठी थी कि अचानक वही चील वापस आई और वो शाह नीचे गिरा दिया। अब हकीकत सबके सामने थी। औरत ने कहा, यही वो चीज है जिसकी चोरी का तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था। फिर वो उन्हें छोड़कर चली गई, बाद में इस्लाम भी कबूल किया और उस दिन को याद करके कहा करती थी कि यही वो अजीब दिन था जिसके जरिए अल्लाह ने मुझे कुफर की सरजमीन से निजात दी। तो यहाँ से हमारे कराम गौर कीजिए कि रहमत का जो मामला उसके साथ हुआ है ईमान लाने से पहले का वाकया है, वो शायद यही रहमत

0: दुआ मांगने वालों को अपनी रहमत से ढांप लेता है। याद रखिए कि अल्लाह के खौफ और उससे उम्मीद के दरमियान जिंदगी बसर करना मोमिन की निशानी है। अल्लाह ताला हर बुराई और शर से और नागहानी आफात से हम सब की हिफाजत फरमाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
4: लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि अगर जिंदगी के किसी हिस्से में अल्लाह ने दर्द रखा है तो उस दर्द की हिकमत क्या है? क्या हर तकलीफ रहमत के मुनाफी है? पुरानी जाविये से देखा जाए तो नहीं, क्योंकि हमें पहले ही समझना होगा कि इंसान दुनिया में सिर्फ आराम करने के लिए नहीं आया, वो अल्लाह की बंदगी उसकी मारिफत और उसकी तरफ लौटने के लिए आया है। अल्लाह ने रसूल भेजे, किताबें उतारी और हिदायत का रास्ता दिखाया ताकि इंसान उस अजीम तर रहमत तक पहुंच सके जो ईमान और आखिरत की कामयाबी की रहमत है। लेकिन हर इंसान नरमी की आवाज सुनकर वापस नहीं आता। कुछ लोग नेमत से जाग जाते हैं और कुछ को जगाने के लिए आजमाइश की दस्तक दरकार होती है। इसीलिए कुरान कहता है وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، हमने उन्हें सख्ती और तकलीफ में मुबतला किया ताकि वो आजिजी के साथ हमारी तरफ रुजू करें। आले फिरौन के बारे में फरमाया हमने उन्हें कहत के बरसों और फलों की कमी में मुबतला किया ताकि वो नसीहत हासिल करें। एक और मकाम पर निहायत माना खेज अल्फाज हैं हम उन्हें बड़े अजाब से पहले छोटे अजाब का कुछ मजा जरूर चखाएंगे ताकि वो पलट आए। तो लअल्लहुम यरजिऊन, इस लफ्ज पर गौर कीजिए, ताकि वो वापस आ जाए। गोया बाज़ औक़ात तकलीफ सिर्फ सजा का नाम नहीं होती, वापसी की पुकार भी हो सकती है। कभी बंदा खुशहाली में इतना दूर निकल जाता है कि नसीहत की आवाज उस तक नहीं पहुंचती। फिर जिंदगी में झटका आता है, बीमारी आती है, कोई सहारा छूटता है, हालात बदलते हैं और वही शख्स जो मुद्दत से अपने रब को भूला हुआ था अचानक आसमान की तरफ हाथ उठा देता है। अगर एक आरजी तकलीफ इंसान को अबदी तबाही से बचा कर अपने रब की तरफ लौटा दे तो जाहिरी दर्द के पर्दे में भी रहमत का एक दरवाजा मौजूद है। सामने किराम, अब अल्लाह के हिल्म को भी देखिए। बंदा सरकशी करता है फिर भी फौरन गिरफ्त नहीं आती, वो मोहलत पाता है, सांस लेता है, रिज़्क़ खाता है, सोचने और पलटने का वक्त पाता है। सूरह मरियम में आया है कुल मन काना फिल दलालति फलयमदुद लहु रहमानु मद्दा, जो गुमराही में है रहमान उसे मोहलत देता चला जाता है। तो यहाँ काबिल गौर बात यह कि कुरान ने इस मकाम पर भी नाम अर रहमान इस्तेमाल किया है। बंदा गुमराही में है लेकिन रब उसे मोहलत दे रहा है, शायद वो पलट आए, शायद उसका दिल जाग जाए, शायद वो तौबा का दरवाज़ा खटखटा दे। और कभी तंबीह भी एकदम आखिरी गिरफ्त की सूरत में नहीं आती। कुरान एक और अंदाज बयान करता है अव यअखुज़हुम अला तखव्वुफ फइन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम, बाज़ नेमतें कभी आहिस्ता आहिस्ता कम की जाती हैं, एक तंबीह आती है फिर दूसरी, मकसद ये कि इंसान संभल जाए। इसीलिए आयत के अख्तिताम भी रऊफुर रहीम पर होता है। ओवरऑल बात यह कि इन तमाम आजमाइशों का तकाजा ये है कि हम वापस आ जाएं, अल्लाह के दरबार की तरफ हमें हिदायत हासिल हो जाए। तो इस तंबीह के अंदर भी वापसी का दरवाज़ा रहमत ही खोल रही है। मुख्तसर यह है कि खल्क भी उसी का है, परवरिश भी उसी की, हिफाजत भी उसी की और तदबीर भी उसी की। इसलिए ज़िंदगी को सिर्फ उस लम्हे से न देखिए जो हमें रुला रहा है, उस पूरी दास्तान को देखिए जिसमें रब हमें पैदा करने से लेकर हर लम्हा संभालता आया है। इसी के साथ सामने कराम आज के हलके से तकनीकी मुआविन उद्दीन अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
5: आप सुन रहे हैं FM 107
6: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. Your health matters.
1: Assalamu alaikum listeners. आपकी सेहत वाकई अहम है योर हेल्थ मैटर्स आज हम बात करते हैं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी की एक बहुत अहम चीज वो है खाने की कि किस तरह से हम खाते हैं हम रोजाना कई बार खाना खाते हैं लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि जो कुछ हम खा रहे हैं वो हमारे जिस्म के लिए क्या कर रहा है खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं है हमारी ग़िज़ा जिस्म को तवानाई देती है यानी जो एनर्जी लेवल है उसको ज़्यादा करती है जिस्म की जो नशोनुमा है और उसकी मरम्मत में मदद करती है और मजमूई सेहत पर असर डालती है सेहतमंद ग़िज़ा का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पसंद की हर चीज़ हमेशा के लिए छोड़ दें असल बात है बैलेंस क्या है यानी तवाज़न और उसकी मिकदार कितनी है अपनी प्लेट पर नज़र ज़रूर डालिए कि क्या इसमें सब्ज़ियाँ मौजूद हैं क्या आप

0: दाल खाते हैं, क्या आप दालें, अंडे, फिश, गोश्त या दूसरी मुनासिब प्रोटीन वाली गिज़ा इस्तेमाल करते हैं? ये देखना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह पानी पीना कभी मत भूलिए। बहुत से अफराद प्यास को नज़रअंदाज करते रहते हैं और दिन भर मुनासिब मकदार में पानी नहीं पीते। एक और अहम बात है, वो है सॉल्ट और शुगर, यानी नमक और चीनी। हमें अक्सर अंदाज़ा भी नहीं होता कि जो तैयारशुदा खाने हैं और जो मीठे मशरूबात हैं या बेकरी के जो आइटम्स हैं और मुख्तलिफ पैकशुदा चीज़ों में कितनी मकदार में सॉल्ट है या शुगर शामिल हो सकती है। इसलिए खाने के लेबल पढ़ने की आदत बना लीजिए कि जो भी आप ख़रीदें कोई बीफ मील, तो उसमें देखिए कि उसमें सॉल्ट कितना है, उसमें शुगर कितनी है। ये बहुत अहम है। और खाने के वक्त जल्दी ना कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता खाना खाइए और अपने जिस्म के इशारों पर तवज्जो दीजिए कि क्या आपका पेट जो है वो भर गया है, आपकी भूख कम हो गई है, इसे ज़रूर समझिए। बच्चों के लिए भी यही उसूल अहम है। उन्हें सिर्फ ये ना कहिए कि ये मत खाओ, ये ना करो, ये फलां चीज़ जो है वो आप बिल्कुल ना खाएं, बल्कि घर में सेहतमंद इंतखाब आसान और जो दस्तियाब है उसे बनाइए। याद रखिए, सेहतमंद खाना कोई वक्ती जो डाइट नहीं है, ये ज़िंदगी भर की एक बहुत ही अच्छी आदत है। आज से एक छोटी सी तब्दीली कर लीजिए। मसलन ये कि जो शुगरी ड्रिंक्स हैं या मीठे मशरूबात की जगह पानी और एक इजाफी जो वेजिटेबल है या फल का एक हिस्सा है, या फिर जो फ्राई की हुई चीज़ें हैं उनकी जगह निस्बतन आप सेहतमंद इंतखाब कीजिए, मगर आज ही से। तो आज की बात याद रखिए कि अपनी प्लेट का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी ग़िज़ा आपकी सेहत का एक अहम हिस्सा है। इसी तरह हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है। हम में से बहुत से अफराद वर्जिश के नाम से घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना जिम जाना या बहुत सख्त एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन हमारी जो जिस्मानी सरगर्मी या एक्टिविटी है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जिम नहीं है। चलना है, सीढ़ियाँ इस्तेमाल करना है, घर के काम करना है, बागबानी करना है, बच्चों के लिए आपने काम करने हैं, उनके साथ खेलना है, ये सब हमारे जिस्म को एक्टिव रखने के तरीके हैं। आजकल हमारा ज़्यादा वक्त बैठकर गुजरता है, यानी ऑफिस में बैठना, गाड़ी में बैठना, घर आकर मोबाइल या टीवी के सामने बैठ जाना। मसला ये है कि जिस्म को मुसलसल हरकत की ज़रूरत होती है, जिस पर हमें तवज्जो देनी है। अगर आपका काम बैठकर करने वाला है तो दिन के दौरान छोटे छोटे वक्फे लीजिए। कुछ देर आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा आप चलिए और जिस्म को स्ट्रेच कीजिए। और एक आप मामूल बना लीजिए कि हर 30 मिनट के बाद आपको 2 से 3 मिनट इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो है वो करनी है। और अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल जो हदफ है उससे उसका आगाज न कीजिए। अपनी मौजूदा सेहत और जिस्मानी सलाहियत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता शुरू कीजिए। मसलन रोज़ाना कुछ मिनट आप पैदल चलने से आगाज़ कीजिए और वक्त के साथ साथ उसे बढ़ाते रहिए। बुज़ुर्ग अफराद भी अपनी सलाहियत के मुताबिक जो जिस्मानी सरगर्मी है वो जारी रख सकते हैं। बच्चों के लिए खेल कूद और फाल रहना उनकी सेहत और नशोनुमा के लिए बहुत अहम है। लेकिन अगर किसी शख्स को दिल, सांस, जोड़ों या किसी दूसरी बीमारी का मसला है तो नई या कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। याद रखिए कि जो एक्सरसाइज है वो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा की जाए, बल्कि उसमें सबसे अहम बात यह है कि मुस्तकिल मिजाजी हो। हम और आप आज ही अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर तब्दीली करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सोच लीजिए कि आज मैं पहले से कुछ ज़्यादा एक्टिव कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। लिफ्ट की जगह आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल कीजिए, गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कर लीजिए, खाने के बाद मुख्तसर जो वॉक है वो कीजिए, या हर घंटे के बाद चंद मिनट उठकर आप चलना शुरू कर दीजिए। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी आदत बन सकते हैं। आज का पैगाम बहुत सादा है कि ज़्यादा हरकत कीजिए, कम बैठिए, यानी मूव मोर सिट लेस, क्योंकि अब आपका जिस्म हरकत के लिए है। और अपनी सेहत के लिए आज एक कदम ज़रूर उठाइए। Your health matters.
1: उत्तर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: आपके जहन में वजारत दाखिला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है? वजारत दाखिला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखिला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम, पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107। दोस्तों, आजकल के डिजिटल दौर में वीडियो गेम्स बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन गेम्स का मुनासिब इंतखाब और उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के करीब रहिए, उन्हें गेम्स के इंतखाब में शामिल कीजिए, उन गेम्स का चुनाव कीजिए जो उनकी एज और जहनी तरक्की के मुताबिक हों। गेम्स के जरिए सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तालीम और स्किल्स भी हासिल की जा सकती हैं, अगर सही इंतखाब किया जाए। आपकी रहनुमाई और तवज्जो उनकी डिजिटल दुनिया को महफूज और फायदेमंद बना सकती हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी गेमिंग दुनिया को सेफ और प्रोडक्टिव बनाइए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक

0: शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर एक बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक अपडेट। और ऑफ कोर्स हम पिछले एक दो दिन से बात कर रहे हैं एप्पल की, तो मैं भी बात करूँ क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू करना बहुत जरूरी हो चुका है। ऑफ कोर्स वी आर लेट टू द पार्टी, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हम चूंकि ये रिकॉर्डेड वर्जन आपके लिए तैयार करके लेके आए हैं, तो बनता है हमारा भी टू सेंट्स देना इनके प्रोडक्ट्स पे। सो मैं दोहा वाला कबीर F7 पे, मैं आईफोन के लाइनअप के बारे में बात कर चुका हूँ, स्पेशली प्रो, प्रो मैक्स और उसके डुओ के बारे में जो हाईलाइट है ऑफ द होल इवेंट। लेकिन अब जरा बात करते हैं घड़ी और एयरपॉड्स के बारे में। नंबर वन जो बात करूंगा घड़ी के बारे में, घड़ी में इंप्रूवमेंट के तौर पे मुझे इंतजार था कि शायद इस बार कुछ बहुत ही खतरनाक बड़ा होने वाला है। एप्पल ने इस बार अपनी घड़ी को बेचने के लिए ये कहा है कि इट विल बी मोर रिलायबल। अगर हार्ट रेट को आपको जानना है, ज्यादा एक्यूरेट रहेगी इस बार की एप्पल वॉच, ऐसा एप्पल ने कहा है इसे बेचने के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारा जो सीरी इंटीग्रेशन है वो इसमें कहीं ज्यादा रहेगा। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि आवाज़ की क्लैरिटी पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। मीटिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए घड़ी का जो माइक है वो बाकायदा आपके लिए पूरी की पूरी MOM बना के दे देगा आपको। एंड जो घड़ी का वही लाइनअप जो उनका रहता है, एक दो जो मेजर है और उसके बाद जो उनका जो बड़े पट्टी वाली घड़ियाँ हैं वो भी रहेंगी। मगर आई थिंक इतना मेजर नहीं खेला है उन्होंने इस बार घड़ी में जितना मुझे लग रहा था वो करेंगे। मतलब सेइंग कि मैं हम हमारी घड़ी ले लो क्योंकि अब घड़ी जो है आपकी दिल की धड़कन और एक्यूरेट बताएगी, एंड शुड नॉट बी द वे ऑफ सेलिंग इट। एटलीस्ट ये सेलिंग पॉइंट मुझे इतना नहीं जमा, पर देखो हैंड्स ऑन रिव्यू जब आएगा तो उसके बारे में फिर और ज्यादा गहराई से पता लगेगा। बट फॉर नाउ बैटरी लाइफ को उन्होंने बढ़ाया है, बोला कि बैटरी लाइफ ज्यादा आपको मिलेगी इस बार पिछली बार के मुकाबले, तो कहीं गुना ज्यादा मिलेगी। आई थिंक 35% ज्यादा का उन्होंने वादा किया है। तो अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम मुझे आ रही थी एप्पल की वॉच से वो यही थी कि

0: जो चार्जिंग का सिस्टम है उसका थोड़ा सा वियर्ड है. कभी कभार लगता है कि पूरे दिन चल जाएगी, कभी कभार लगता है कि अरे क्या हो गया अभी तो, मतलब मैंने इतना तो यूज भी नहीं किया. एंड इसके साथ साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस किए ऑफ कोर्स मोर एप्पल वॉच फेसेस जो कि मिसिंग थे. वो हमेशा वेट करना पड़ता था कि अब शायद अपडेट में कुछ नया आ जाएगा, बट दिस टाइम अराउंड दे हैव डेफिनेटली कम आउट दिल खोल के और बहुत सारे एप्पल वॉचेस के जो चेहरे हैं उन्होंने वो दिए हैं. सो कुडोस टू दैट. और इसके अलावा जो उनके जो डिजाइन रहता है रिस्ट में अच्छा पट्टा होना चाहिए, जो बेल्ट होती है घड़ी की देसी भाषा में कहूं तो, वो इन्होंने काफी कलर्स में इंट्रोड्यूस करी है. और एक इन्होंने ग्लॉसी वर्जन भी लॉन्च किया एप्पल का मैट के अलावा, विच इज आई थिंक आर्मी ग्रीन और ब्राउन है, वो अलग ही कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा. और उसका ग्लॉसी वर्जन भी है तो आई थिंक घड़ी इस कलर में जब बिकेगी तो बहुत कमाल की बिकेगी. और इनके साथ इसके साथ इन्होंने टाइप भी किया है कुछ ब्रांड्स के साथ, ऑफकोर्स मैं उनका नाम ही लूंगा, मगर उसके साथ एक प्रीमियम वर्जन भी निकाला है. आई थिंक वो जो गोल्ड वर्जन है एप्पल वॉच का वो भी सामने आपको नजर आ जाएगा. इफ यू वांट टू चेक आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं. अब आ जाते हैं जरा एयरपॉड्स पे. सो एयरपॉड्स जो है अब हम 5 तक पहुंच चुके हैं, 5 प्रो पे आ चुके हैं और अब तो कुछ भारी भरकम उम्मीद है. हालांकि डिजाइन वही आपको सेम नजर आएगा, नॉट दैट ऑफ अ ह्यूज डिफरेंस. नॉइस कैंसिलेशन के बारे में हम ऑलरेडी बात करते रहते हैं, एप्पल उसमें बहुत आगे है. नाउ दैट दे आर सेइंग कि उन्होंने अपने एआई को इंटीग्रेट किया है अपने एयरपॉड्स के साथ भी, बाय दैट दे मेंट कि उन्होंने इस बार जो लाइव ट्रांसलेशन है उसको बेहतर बनाया. मैं सच में देखना चाहता हूं क्योंकि पिछली बार के एयरपॉड्स प्रो 4 के साथ ट्रांसलेशन का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, तो इस बार क्या इन्होंने किया है कि मैं कन्विंस हो जाऊं वो देखने वाली बात है. हालांकि मैं आई वाज कंप्लीटली सोल्ड आउट जब उन्होंने इस बार कहा कि फाइनली दे हैव अपग्रेडेड द बैटरी लाइफ एंड एवरीथिंग एल्स इन एयरपॉड 5. बट मैं एयरपॉड्स का पर्सनली फैन हूं. आई थिंक मैं उन लोगों में से आता हूं जो फोन के ज्यादा या फोन के इक्वल एप्पल के एयरपॉड्स का भी इंतजार करते हैं. सो आई एम वन ऑफ देम. सो ये मैं उनका मेन टारगेट ऑडियंस हूँ. तो मैं डेफिनेटली जब ये इंशाल्लाह यूज करूंगा तो मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा. बट इफ यू आर यूजिंग एयरपॉड्स 4 रीसेंट वाले और जो उन्होंने लॉन्च किया था एक और लाइनअप, तो अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा उसमें, बिकॉज आई हैवंट यूज्ड देम. सो 666-22107 ये तुम्हारा व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया हैंडल्स है FM107 Qatar FM107 Qatar. दीज वर दी अपडेट्स, मिलते हैं जल्द. Stay tuned. Tech update. 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर. लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात. स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक. सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी. याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत.
2: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर. आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं.
3: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है. ट्यून इन टू FM 107 दिल से देसी.
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस का। वेल, हर रोज हम एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते रहते हैं और आज जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग या कह लें बड़ा ही लाजवाब तरीके से दिमाग लगाते हुए क्रिएटिव स्कैम जरूर है। ये है एड्रेस अपडेट स्कैम। वेल, कैसे ये काम करता है इस पर हम बात करते हैं। मिसिंग डिलीवरी एड्रेस अपडेट स्कैम, ये इस स्कैम से अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ये स्कैम उन लोगों को टारगेट करता है जो ऑनलाइन ग्रोसरी या मील डिलीवरी का वेट कर रहे होते हैं। आपको एक अर्जेंट टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि ड्राइवर आपका घर जो है वो ढूंढ नहीं पा रहा है, आपने डिलीवरी के लिए एक वेबसाइट से कुछ ऑर्डर किया था, ऐसा करके। फिर मैसेज में धमकी दी जाती है कि अगर आपने तुरंत लिंक पर क्लिक नहीं किया और एड्रेस अपडेट नहीं किया तो आपको ऑर्डर कैंसिल करके फेंक दिया जाएगा। जब आप गलती से उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक फेक ट्रैकिंग पेज खुलता है। वहां आपसे एड्रेस अपडेट करने के साथ साथ एक छोटी सी री डिलीवरी फी पे करने के लिए बैंक या कार्ड के डिटेल्स जो है वो मांगी जाती है। जैसे ही आप डिटेल्स एंटर करते हैं स्कैमर्स आपके अकाउंट से पैसे चुरा लेते हैं। इस स्कैम से बचने के कुछ तरीके हैं जिन पर आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, गौर करना चाहिए। क्या तरीके हैं और वैसे सिर्फ इसी तरीके को फॉलो ना करें, मतलब जो मैं तरीका बताने वाला हूँ सिर्फ इस तरीके को फॉलो ना करके आप अपने दिमाग से भी काम लें। साथ ही ये जो तरीके मैं जो बताने वाला हूँ एक्चुअली बाकी स्कैम में भी ये फायदेमंद होते हैं। ऑफिशियल ऐप डायरेक्ट चेक करें, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। अगर आपको कोई भी ऐसा मैसेज आए तो टेक्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बजाय हमेशा उस डिलीवरी कंपनी की ऑफिशियल मोबाइल ऐप खोलकर ऑर्डर स्टेटस चेक करें। कभी भी किसी मिसाल के तौर पे कोई एक ग्रोसरी का डिलीवरी वाला बंदा है या

0: फिर कोई ऐसा फूड डिलीवरी वाला बंदा, उसने कहा कि मैसेज आया आपके पास, उसने कहा कि प्लीज आप लिंक जो दिया है उस पर अपडेट करें, तो ऐसा ना करें। जिस फूड डिलीवरी ऐप से आपने फूड ऑर्डर किया है उसी ऑफिशियल ऐप पर जाइए, उसी पर अपडेट करिए, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उसके अलावा टेक्स्ट लिंक पर क्लिक कभी ना करें, किसी भी अननोन नंबर से आए हुए एसएमएस या व्हाट्सएप लिंक्स पर क्लिक ना करें। डिलीवरी ड्राइवर्स आमतौर पर ऐप के थ्रू ही कॉल या मैसेज करते हैं, डायरेक्ट पर्सनल नंबर से एक्सटर्नल लिंक्स नहीं भेजते हैं। उसके अलावा बैंक डिटेल्स देने से बचें। डिलीवरी कंपनीज कभी भी एड्रेस सही करने या रीडिलीवरी के लिए आपसे रास्ते में बैंक का डिटेल्स या ओटीपी नहीं मांगती है। और आपने तो कई बार इस्तेमाल भी किया होगा, अलग अलग वेबसाइट का इस्तेमाल किया होगा ऑर्डर करने के लिए, आपके साथ कभी नहीं हुआ। लेकिन कभी अगर ऐसा लगे कि यार मेरे पास मैसेज आया और ये फला जो मैसेज है इस पर आपको फोकस करना चाहिए, आपको लिंक करके लिंक अपडेट करना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा कभी ना करें, क्योंकि ये एक फेक और आपको फंसाने की तरकीब जो है वो हो सकती है। उसके अलावा ड्राइवर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करें, अगर सच में कोई इशू होता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाएं, वहां पर जो डिलीवरी ड्राइवर का नंबर पड़ा हुआ है उस पर कॉल करके बात करें और फिर पूछे कि क्या आपने ये मैसेज भेजा। क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे लोग मिले होते हैं कि आपको पता भी नहीं होता है कि क्या असल में ये डायरेक्ट उस एप्लीकेशन के थ्रू मैसेज आ रहा है मेरे पास या फिर ये डिलीवरी वाले राइडर का है, तो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। इसलिए बहुत ही ज्यादा आपको श्योरिटी रखनी है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू ही या डायरेक्ट ड्राइवर को कॉल करने के बाद ही फैसला लें। हमेशा इनबिल्ट ऐप के चैट सिक्योर सिस्टम का ही इस्तेमाल करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं और नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। ये स्कैम आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, विच इज मिसिंग डिलीवरी एड्रेस अपडेट। आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर जाते हैं, आपने किसी फूड को ऑर्डर किया और फिर ऑर्डर होने के बाद वो आपके घर के सामने खड़ा है, ऐसा डिटेल्स में लिख कर आता है, जब आपके पास डायरेक्ट मैसेज आता है, लेकिन बजाय इसके कि वो आपसे आपका एड्रेस पूछे, वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप एप्लीकेशन पे या फिर जो लिंक दिया है ना उस पर अपडेट करें। यहीं पर होता है सबसे बड़ा खेल और इस खेल के शिकार आप हो सकते हैं, इसलिए आपको होशियार रहने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट,
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107, दिल से देसी।

पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा से टैलेंटेड खिलाड़ियों का घर समझा जाता है और अब इस लिस्ट में एक नया नाम तेजी से उभर रहा है, अजान अवैस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। और अजान अवैस के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले 21 साल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल की और फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा किया है। अजान का क्रिकेट सफर काफी दिलचस्प है। उन्होंने पाकिस्तान के एज ग्रुप क्रिकेट सिस्टम में अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 लेवल पर क्रिकेट खेली, जहां से उनकी टेक्निक और टेम्परमेंट को पॉलिश होने का मौका मिला। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका असल ब्रेक थ्रू 2024-2025 कायद आजम ट्रॉफी में आया और सियालकोट की तरफ से खेलते हुए अजान ने सिर्फ 8 मैचेस में 844 रन बनाए, जिनमें 4 सेंचुरीज और 2 हाफ सेंचुरीज शामिल थीं। इसी टूर्नामेंट में उनका हाईएस्ट स्कोर 203 रन रहा। अगर उनकी डोमेस्टिक कंसिस्टेंसी की बात करूं तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। 2025-2026 कायद आजम ट्रॉफी में अजान ने 10 मैचेस में 803 रन स्कोर किए, जिनमें 3 सेंचुरीज और 3 फिफ्टीज शामिल थी। वो अपनी टीम के लीडिंग रन स्कोरर रहे और सियालकोट को लगातार दूसरी फाइनल अपीयरेंस तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में भी उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने 448 रन बनाए और ये परफॉर्मेंसेस इस बात का सबूत थी कि अजान सिर्फ एक टैलेंटेड यंगस्टर नहीं बल्कि प्रेशर में रन्स बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका डेब्यू होना ही था। अगर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस में इतना ज़बरदस्त अगर उनके बैटिंग डिस्प्ले रहा है तो वहाँ पर पीसीबी के सेलेक्टर्स ने सोचा कि इस नौजवान खिलाड़ी को चांस दे देते हैं और उनका टेस्ट डेब्यू हुआ 8 मई 2026 नहीं इसी साल बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर के शेर ए बंगला स्टेडियम में। और उनका डेब्यू किसी ख्वाब से कम नहीं था दोस्तों। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग में अजान ने जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखाया। उन्होंने 103 रन की यादगार पारी खेली और अपने पहले ही टेस्ट मैच के पहले ही इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर कर दी। वो पाकिस्तान के सिर्फ एंड सिर्फ 14 बल्लेबाजों बने जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर की। सच अब इंटरेस्टिंग माइलस्टोन फॉर अ यंग बैट्समैन। और इस इनिंग्स की खास बात सिर्फ सेंचुरी नहीं थी बल्कि अजान का टेम्परमेंट भी था। उन्होंने 153 गेंदों का सामना करते हुए 14 चौकों की मदद से 103 रन बनाए। पहले दिन और इनिंग्स के आगाज में प्रेशर के बावजूद वो क्रीज पर पुरसकून नजर आए। उन्होंने अब्दुल्ला फजल के साथ 104 रन की पार्टनरशिप भी बनाई। डेब्यू के बाद अजान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में 55 रन की इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। इंग्लैंड के मुश्किल टूर पर भी उनकी टेक्निक और पेशेंस का इम्तिहान हुआ। हेडिंगली में उनका स्कोर कम रहा, लेकिन लॉर्ड्स में अजान ने 46 रन की फाइटिंग इनिंग्स खेलकर अपनी मैच्योरिटी दिखाई। जॉफ्रा आर्चर और ओली रॉबिन्सन जैसे तेज गेंदबाजों के सामने उन्होंने काफी पेशेंस का मुजाहरा किया। और अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में एजबस्टन पर अजान ने दूसरी इनिंग्स में 59 रन की एक इम्पॉर्टेंट नॉक खेली। उनकी रिसेंट फॉर्म में 46, 55 और 59 रन जैसी इनिंग्स शामिल हैं, जो ये बताती है कि वो इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर को समझने और उसके मुताबिक अपने गेम को एडजस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि उनका स्ट्रेंथ जो है मुझे नजर आता है कि वो है लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल और उनका पेशेंस और टेम्परमेंट।

एक एडिशनल बूस्ट है उनके पूरे इनिंग्स को अगर हम देखें तो, एंड दैट मेक्स हिम अ रियल बैट्समैन टू लुक आउट फॉर. अगर वो फ्यूचर स्टार बनने के लिए है तो हम गलत नहीं है यहाँ पे कि वो फ्यूचर स्टार हैं. वो सिर्फ एग्रेसिव शॉट्स पर भरोसा नहीं करते बल्कि सिचुएशन को समझकर इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश करते हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट में सेंचुरीज, डबल सेंचुरी और फिर टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी उनके टैलेंट का जो वाजे सबूत है कि ही इज अ स्टार मटेरियल. और मैंने देखा भी इस इनिंग्स को इन एजबेस्टन अगेंस्ट इंग्लैंड ऑन टीवी पर. अने जिस तरह से वो शॉट लगा रहे थे, ऑफ साइड के जो शॉट्स वो लगा रहे थे, मुझे सौरव गांगुली याद. यकीनन आप समझिए उसके शॉट्स अभी भी सोशल मीडिया में मौजूद है, आप देखेंगे क्या क्लासिकल बैटिंग करता है ये बंदा. पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसे ही यंग बैट्समैन की जरूरत है जो लंबी इनिंग्स खेल सके और मुश्किल कंडीशंस में टीम को संभाल सके. उम्मीद है आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा. अगली बार एक और इंटरेस्टिंग टैलेंटेड और स्टार खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
2: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
4: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain Culture Moment. Main hoon aapki aarzu Mahabash. Is 5 minute ke safar mein hum baat karenge Qatar ki khoobsurat saqafat, riwayat aur virse ki. Yahan har rasam, har libas, har khane aur har mehman nawazi ke peeche एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस वर्षे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में शादी दो अफराद का रिश्ता नहीं बल्कि दो खानदानों की खुशी और मुलाकात का भी खूबसूरत मौका होती है। शादी से मुतालिक रिवायात मोहब्बत, एहतराम और खानदानी ताल्लुक को जाहिर करती है। तैयारियों का सिलसिला अक्सर तकरीब से पहले ही शुरू हो जाता है और घर के मुख्तलिफ अफराद अपना अपना किरदार अदा करते हैं। रिवायती तौर पर शादी की तैयारी में खानदान के बड़े लोग रहनुमाई करते हैं। वो मुनासिब इंतजाम, मेहमानों के इस्तकबाल और तकरीब की तरतीब पर तवज्जो देते हैं। खुशी का ये मौका पूरे खानदान को एक साथ आने और अपने ताल्लुकात मजबूत करने का मौका देता है। शादी के करीब आते ही घरों में रौनक पड़ जाती है, रिश्तेदारों के दरमियान गुफ्तगू होती है, दावतें दी जाती हैं और तैयारियों में मदद की जाती है। इस दौरान खवातीन

और मर्द अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं। किसी का काम मेहमानों का इंतजाम होता है और किसी का तरतीब देखना, किसी का घर के छोटे छोटे कामों में मदद करना। कतरी शादियों में लिबास को भी खास अहमियत दी जाती है। आज मौकों पर लोग अपनी रिवायती पहचान को खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। मर्द थोप और ब्रिश पहनते हैं, जबकि खवातीन मुख्तलिफ रंगों और खूबसूरत कढ़ाई वाले लिबास का इंतखाब करती हैं। लिबास का इंतखाब खुशी, सलीके और मौके की अहमियत को जाहिर करता है। शादी की महफिलों में सजावट भी एक अहम पहलू होती है। फूलों, रोशनी और खूबसूरत रंगों से माहौल को पुरकशिश बनाया जाता है। कुछ जगहों पर रिवायती नक्शों निकार और जदीद डिजाइन को मिलाकर ऐसा इंतजाम किया जाता है जो खूबसूरत भी हो और मकाम के मुताबिक भी। कतरी शादी की तैयारियों में मेहमान का ख्याल रखना बहुत अहम होता है। मेहमानों की तादाद, बैठने की जगह, खाने और दूसरी जरूरियात को मद्देनजर रखना, इस्तकबाल के वक्त मुस्कुराहट, सलाम और नरमी से पेश आना महफिल को खुशगवार बना देता है। शादियों में खाने का इंतजाम भी बहुत अहमियत रखता है। रिवायती खाने, मिठाई, खजूर और कहवा दस्तरखान का हिस्सा हो सकते हैं। खाना पेश करना सिर्फ एक जरूरत पूरी करना नहीं, बल्कि मेहमान को इज्जत और खुशी में शरीक करने का तरीका भी होता है। हिना यानी मेहंदी खवातीन की शादी से जुड़ी मशहूर रिवायात में से एक है। मेहंदी का नक्श खुशी और तैयारी की अलामत समझा जाता है। इस मौके पे खवातीन और बच्चियां जमा होती हैं, बातचीत करती हैं और एक दूसरे की खुशी में शरीक होती हैं। मेहंदी की ये महफिल अपनी खूबसूरत सदाओं, रंगों और यादों की वजह से खास होती है। शादी की तैयारी में बुजुर्ग खवातीन का किरदार भी काबिले जिक्र होता है। वो पुराने तजुर्बात की रहनुमाई करती हैं, रिवायती आदाब बताती हैं और नई नस्ल को मुख्तलिफ कामों से वाकिफ कराती हैं। इस तरह शादी एक खुशी के साथ साथ तरबियत और वर्से की मुंतकली का मौका भी बन जाती है। आज के कदर में शादियों के तरीके जदीद हो गए हैं। लोग नए आइडियाज, बेहतर सहूलियात और मुख्तलिफ डिजाइन अपना सकते हैं। फिर भी खानदान की शिरकत, मेहमान की इज्जत, खुशी बांटना और रिवायती आदाब का ख्याल रखना अब भी अहम समझा जाता है। शादी की तैयारी हमें टीम वर्क का दर्ज देती है। जब खानदान मिलकर काम करता है तो जिम्मेदारियां आसान हो जाती हैं और खुशी और बढ़ जाती है। एक दूसरे की मदद, सब्र और मुस्कुराहट इस पूरे सफर को यादगार बना देती हैं। तो लिसनर्स, आज का कल्चर मोमेंट हमें बताता है कि कतरी शादियों की असल खूबसूरती सिर्फ सजावट या लिबास की खूबसूरती में नहीं होती। इसकी रूह खानदानी मोहब्बत, मेहमान नवाजी, मिलजुल कर काम करने और खुशी को बांटने में होती है। शादी की हर तैयारी एक ऐसी याद बन सकती है जो बरसों तक दिलों में महफूज रहे। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है उनकी कुर्बानियां सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां उनकी मेहनत उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें
2: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप सुन रहे हैं एफएम 107 पे स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और एक दफा फिर से एक और खूबसूरत और सबक आमोज एपिसोड के साथ मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूं। पिछले एपिसोड में हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनकी बेमिसाल इस्तकामत के बारे में जाना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बरसों पहले अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, उन्होंने लोगों को समझाया, नसीहत की, उन्हें अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन उनकी कौम ने मजाक उड़ाया, मुखालफत की और हक को कबूल करने से इनकार किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि इंसान की जिम्मेदारी हक पहुंचाना और अपनी पूरी कोशिश करना है। नताइज हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते, लेकिन अल्लाह के रास्ते में इखलास के साथ कोशिश कभी जाया नहीं होती। आज का हमारा सफर एक ऐसी कौम की तरफ है जिसे अल्लाह ताला ने ताकत दी, कुव्वत दी, वसाइल दिए, जमीन में मकाम दिया और ऐसी जिस्मानी कुव्वत अता की जिसका जिक्र कुरान करीम में खास तौर पर किया गया। ये कौम थी कौमे आद। कौमे आद ताकतवर थी, वो अपने वक्त की एक मजबूत और तरक्की याफ्ता कौम थी। उन्होंने इमारतें बनाई, बस्तियां आबाद की, अपनी कुव्वत और वसाइल पर फख्र किया और अपनी ताकत को अपनी कामयाबी की जमानत समझ लिया। लेकिन मसला ये था कि जिस ताकत को अल्लाह ने उन्हें नेमत के तौर पे दिया था, उन्होंने उसी ताकत को अपनी बर्तरी और तकब्बुर का जरिया बना लिया। उनके दिलों में यह एहसास पैदा हो गया कि उनसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। और जब इंसान ये समझने लगे कि उसकी ताकत उसे हर खतरे में महफूज रख सकती है, तो वो अपने असल मालिक को भूलने लगता है। ऐसी कौम की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक नबी को मबूस फरमाया और वो थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, अपने रब से डरो, उसकी नेमतों को याद करो, अपने तकब्बुर को छोड़ दो। लेकिन कौमी आत ने क्या जवाब दिया? उन्होंने अपने नबी को झुठलाया, उनका मजाक उड़ाया और अपनी ताकत पर ऐसा भरोसा किया कि उन्होंने अजाब को भी चैलेंज कर दिया। आज हम जानेंगे कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौन थे, कौमे आद को क्या नेमतें मिली थीं, उनकी असल गलती क्या थी, उन्होंने अपने नबी की मुखालफत क्यों की और आखिर वही ताकत जिस पर उनको इतना फख्र था उनके किसी काम क्यों ना आ सकी। आइए अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होते हैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम और कौमे आद के इस सबक आमोस वाक्य में। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौमे आद से था। कुरान करीम में कौमे आद का जिक्र कई मकामात पर आया है। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी कुव्वत और सलाहियतें अता की थी जो उनके लिए बहुत बड़ी नेमत थी। हजरत नूह अलैहि सलाम के बाद अल्लाह ताला ने कौम आद को जमीन में इक्तदार और ताकत अता की। वो एक मजबूत कौम थी, उनके जिस्म मजबूत थे, उनके पास वसाइल थे, उनकी बस्तियां आबाद थीं और उन्हें तामीरात का हुनर भी हासिल था। कुरान करीम में उनके इलाके को एकाफ कहा गया है, जिसका ताल्लुक रेत के टेलों वाले इलाके से है। ये लोग अपनी ताकत के एतबार से अपने इर्द गिर्द की कौमों पर बढ़तरी रखते थे। लेकिन याद रखिए, ताकत बसाती खुद बुरी चीज नहीं है, माल भी बुरा नहीं, इल्म भी बुरा नहीं, तामीरात और तरक्की भी बुरी नहीं। अगर अल्लाह किसी को माल दे और वो माल गरीबों की मदद, खानदान की कफालत और भलाई के कामों में इस्तेमाल करे तो ये नेमत है। अगर अल्लाह किसी को इल्म दे और वो इल्म इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल करे तो ये नेमत है। अगर अल्लाह किसी कौम को ताकत दे और वो ताकत कमजोरों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करे तो ये भी नेमत है। लेकिन जब इंसान नेमत को अपना कमाल समझने लगे और नेमत देने वाले को भूल जाए तो वही नेमत आजमाइश बन जाती है। कौम आद के साथ भी यही हुआ। कौम आद को अल्लाह ताला ने कुव्वत अता की थी। कुरान करीम में हजरत हूद अलैहि सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की नेमतें याद दिलाते हुए फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें नूह अलैहि सलाम की कौम के बाद जानशीन बनाया और उनके जिस्मानी कदोकामत और कुव्वत में इजाफा फरमाया। सोचिए, हजरत हूद अलैहि सलाम उनको उनकी कमजोरियों से पहले उनकी नेमतें याद दिला रहे थे। ये दावत का एक खूबसूरत तरीका है। कभी कभी इंसान को गलती से बाहर निकालने के लिए सिर्फ उसकी गलती गिनवाना काफी नहीं होता, उसे ये भी याद दिलाना पड़ता है कि अल्लाह ने उसे क्या कुछ अता किया है। आपके पास सेहत है, आपके पास वक्त है, आपके पास घर है, आपके पास खानदान है, आपके पास इल्म है, आपके पास रोजगार है, आपके पास सलाहियत है। ये सब किसकी अता है? अल्लाह की। और जब नेमत अल्लाह की तरफ से है तो उस नेमत के लिए शुक्र भी होना चाहिए। कौम आद ने अपनी ताकत को अल्लाह की नेमत समझने के बजाय अपनी बर्तरी की दलील बना लिया। यहीं से तकब्बुर ने जन्म लिया। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहि सलाम को अपनी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। हजरत हूद अलैहि सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? ये हजरत हूद अलैहि सलाम की दावत की बुनियाद थी। तौहीद, सिर्फ अल्लाह की इबादत, सिर्फ उसी के सामने झुकना, सिर्फ उसी को हकीकी माबूद मानना। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अंबिया कराम अलैहि सलाम की दावत सिर्फ इस बात तक महदूद नहीं थी कि लोग अल्लाह के वजूद को मान लें। असल दावत ये थी कि इंसान अपनी इबादत, अतात, मोहब्बत और खौफ, उम्मीद का मरकज अल्लाह ताला को बनाए। हजरत हूद अलैहि सलाम ने अपनी कौम को यही पैगाम दिया। उन्होंने उन्हें बताया कि जिन चीजों को वो अल्लाह के मुकाबले में पूज रहे हैं उनमें कोई हकीकी ताकत नहीं, ना तो वो पैदा कर सकते हैं, ना मौत को रोक सकते हैं, ना ही रिस्क दे सकते हैं, ना अल्लाह के फैसले को तब्दील कर सकते हैं। फिर उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, जब सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है तो इबादत भी सिर्फ उसी की क्यों ना की जाए। लेकिन कौम आद ने इस दावत को कबूल करने के बजाय हजरत हूद अलैहिस्सलाम की मुखा

का सबर याद रखना चाहिए। हक पर कायम रहना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हक की कदर उस वक्त भी बाकी रहती है जब लोग उसे पसंद ना करें। कौमे आद की सरकशी यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे हमें डराते हो। ये बहुत खतरनाक बात थी, अल्लाह के अजाब को मजाक समझना। दरअसल अल्लाह की कुदरत के बारे में इंतहाई गुस्ताखाना रवैया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहले ही समझा दिया था। वो जानते थे कि अजाब लाना उनके अख्तियार में नहीं, नबी का काम अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। फैसला अल्लाह करता है, वक्त अल्लाह मुकर्रर करता है, अजाब अल्लाह के हुक्म से आता है, और जब अल्लाह का फैसला आता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। फिर वो वक्त आया जिसे कौमे आद ने शायद अपनी कामयाबी समझा। आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ। कौमे आद ने उसे देखा तो खुश हो गई। उन्हें लगा कि बारिश होने वाली है, उनकी जमीनों को पानी मिलेगा, उनके खेत सैराब होंगे। लेकिन जिस चीज को वो रहमत समझ रहे थे वो दरअसल अजाब था। कुरान करीम के मुताबिक जब उन्होंने बादल को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहा, ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। लेकिन हजरत हूद अलैहि सलाम की कौम को बताया गया कि ये वही चीज है जिसके लिए वो जल्ली बचा रहे थे, यानी वो अजाब जिसका उन्होंने मुतालबा किया था। ये मंजर इंसान को एक बहुत गहरा सबक देता है। हम हमेशा चीजों की हकीकत फौरन नहीं पहचान सकते। कभी हमें कोई चीज फायदेमंद नजर आती है लेकिन उसके नताइज नुकसानदेह होते हैं, और कभी एक मुश्किल हमें नुकसान लगती है लेकिन अल्लाह उसके जरिए हमारे लिए खैर पैदा करता है। इसीलिए मोमिन अल्लाह से हिदायत मांगता है और अपनी ख्वाहिश को हर हाल में मयार नहीं बनाता। कौमे आद पर एक जबरदस्त हवा भेजी गई। कुरान करीम में उसे एक सख्त और तबाहकुन हवा के तौर पर बयान किया गया। यह हवा अल्लाह के हुक्म से कई दिन और रात उन पर मुसल्लत रही। वो कौम जिसने अपनी कुव्वत पर फख्र किया था अब एक ऐसी चीज के सामने बेबस थी जिसे वो देख भी नहीं सकते थे। ना उनकी जिस्मानी ताकत काम आई, ना उनके किले काम आए, ना उनकी तादाद, ना उनके वसाइल, ना उनकी तामीरात, ना उनका हुरूर। कुरान करीम में उनके अंजाम को इंतहाई मौसर अंदाज में बयान किया गया। वो ऐसे हो गए जैसे खजूर के उखड़े हुए तने हों। सोचिए, जो लोग कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, वो अल्लाह के हुक्म के सामने बिल्कुल बेबस हो गए। यही वो मकाम है जहां कौमे आद की पूरी कहानी अपने मरकजी सबक तक पहुंचती है। ताकत उन्हें बचा ना सकी क्योंकि ताकत तो खुद अल्लाह की अता थी। जिसने दी थी वो जब चाहे वापस ले सकता है। माल अल्लाह की अता है, सेहत अल्लाह की अता है, औलाद अल्लाह की अता है, इल्म अल्लाह की अता है, ओहदे अल्लाह की अता है, जिंदगी खुद अल्लाह की अता है। तो फिर इंसान किस चीज पे तकब्बुर करे। हमारी हर सांस हमें बताती है कि हम मोहताज हैं, हम अल्लाह के मोहताज हैं। जब कौमे आद पर अजाब आया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम और जो लोग उन पर ईमान लाए थे अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत से बचा लिया। यहां एक और अहम बात सामने आती है। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के दरमियान तन्हा नहीं छोड़ा। जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हुए। इसे मालूम होता है कि असल कामयाबी ताकतवर नजर आने में नहीं, असल कामयाबी अल्लाह के सामने झुकने में है। दुनिया की नजर में शायद

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107
2: टाइम चेक। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू। स्टूडियो की घड़ी में 1:31।
3: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर,
4: एनर्जी आर
3: आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी,
5: दोस्तों सलाम आदाब, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर, सर्वर और नाजिया हम दोनों आपके साथ आ चुके हैं, पूरे एक घंटे आपके साथ रहने वाले हैं। और अयूब भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
2: आप मुझसे बात करें,
5: आपसे मुखातिब हूँ।
2: अयूब कहा आपने?
5: जी जी जी जी जी जी, आपको पूछा, आप खैरियत से हैं? उचक्के पने के बाद खैरियत है कि नहीं है
2: समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, ये क्या कहना चाहती हैं आप?
5: मैंने कहा कभी कभी आप अकल ले आया कीजिए साथ में ना।
2: मतलब शुरुआत में आपने यार ऐसा सोचा छोड़ दिया जो समझना मुश्किल है। बहरहाल चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आप सबका इस्तकबाल है भाई प्रोग्राम के अंदर, और आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। वो कैसे, वो आपको पता ही है, हमारे कुछ नंबर्स हैं, उनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। 666-22-107 पे आप अपने मैसेजेस कर सकते हैं, और

0: कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 443-443-77, इसके जरिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप नंबर पे आप बता सकते हैं हाँ कि अगर आप बात करना चाहते हैं हमसे और हमें कॉल करवाना चाहते हैं हमसे, तो वो हम जरूर कर सकते हैं। बाकी ये कि आप अगर कॉल करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, टाइम भी बचेगा और मजा भी आएगा बात करने में। हज़्बे रिवायत
1: हमारे साथ एक कॉलर यहाँ जुड़ गए,
0: कॉलर जुड़ गए।
1: हेलो।
0: तो भाई एक हमारे पास टॉपिक भी है आज आपके लिए, बात करने के लिए मुद्दा है हमारे पास, तो वो भी आपसे अभी देखिए इन्हीं के साथ शुरू कर देते हैं।
2: बिल्कुल।
0: हला हला, कौन है हमारे साथ? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं।
2: मुर्गों को मार दिया गाड़ी पे, कैसे हो सर?
0: क्या मार दिया?
1: मुंह पे गाड़ी मार दी।
2: मुर्गे नहीं, चिड़िया
1: मार दी इन्होंने गाड़ी से।
0: क्यों ऐसा किया?
1: उड़ा दी।
2: आप बात नहीं सुन रहे थे, मैं बहुत स्पीड में था, कैसे हो सर?
0: नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नाजिया भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा कौन है हमारे साथ ये तो बताइए।
2: मैं बिलाल हूँ।
0: लाल हूँ?
1: अम्मा के लाल हैं।
0: बिलाल बताया मेरे ख्याल में।
1: अच्छा
0: बिलाल भाई, अगर पहले तो आप मेरी बात सुनिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को पहले आप साइड में पार्क कर लीजिए और फिर हम आपसे बात करते हैं।
2: पार किया सर, मुझे तो पता नहीं था कि नाजिया बैठी है, कैसे हो?
0: अच्छा नाजिया भी हमारे साथ, बल्कि नाजिया के साथ मैं बैठा हूँ, इसको मैं इस तरीके से कह सकता
1: हूँ। अलग-अलग बैठे।
0: हाँ हाँ बैठे तो अलग अलग ही हैं, मगर शर्फ मुझे हासिल हुआ है कि मैं नाजिया जी के साथ बैठ सकूं और आपको अपनी आवाज सुना सकूं। बिलाल भाई आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसा गुजरा दिन आपका अभी तक का? तो कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं जो इतनी तेजी से भाग रहे थे आप?
2: जा रहा था सनाइया की तरफ, रूम की तरफ।
0: अच्छा
2: ओल्ड एयरपोर्ट।
0: क्या खाना रेडी है जल्दी में?
2: खाना तो दो बार खाया सुबह।
0: रनिंग में दो रोटी?
1: करे खाने में दो बार खा चुका हूँ।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहतयाब रखे भाई और इसी तरीके से आपकी आवाज निकलती रहे।
1: अय्यूब भाई सोच रहे हैं मैं तो एक बार भी नहीं खाया।
0: शुरू में आपकी आवाज जिस तरह आई तो मैंने सोचा फोन रख दूं, डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं हम, जरूरत नहीं पड़ेगी फोन की। बट अब ऐसा लग रहा है कि फोन की जरूरत है।
1: अच्छा इनसे सवाल भी पूछ लें?
0: हाँ बिल्कुल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। बिलाल भाई
1: तो आपसे आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले वो है कि जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आप अपना मूड ठीक करने के लिए क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू?
2: मैं फिर दोस्त के साथ फोन पे बात करता हूं, फिर मेरा
1: वाओ नाइस।
0: क्या दिलदारी है, क्या यारी है,
1: वाकई सब पे भारी है,
0: सब पे भारी है। अच्छा
1: ये बात तो सही है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: बहुत जबरदस्त। मुझे लगा आप कहेंगे कि मैं अपनी फैमिली के किसी शख्स, फैमिली मेंबर से किसी से बात करता हूँ और मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है।
2: फैमिली वालों के साथ रिश्ता बहुत कम हो रहा है, हमारे यहाँ सिग्नल काम नहीं करते
0: और उससे और ज्यादा परेशानी बढ़ जाता है आजकल, इसलिए दोस्त के दरवाजे रुक करते हैं। बिलाल भाई मैं भी ऐसे ही करता हूँ और ऐसा करना भी चाहिए।
1: और फिर दोस्तों से पूछे वो किधर रुक करते हैं।
0: हाँ वो बात अलग है, उनके अपनी परेशानी जब उनको दे दी तो फिर तो सलावत
1: वो दरवाजे के बाहर कहीं रुक करते हैं।
0: फिर तो जो सलावाते हैं वो है, बट मगर अपनी परेशानी उनको दे दी फिर उसके बाद और आगे बढ़ गए, फ्री हो गए पूरे तरीके से। तो आपके खास कोई ऐसा खास दोस्त, एक आदमी का नाम बताइए जिससे आप हर चीज शेयर करते हैं।
2: अब्दुल मालिक।
0: अब्दुल मालिक माशाल्लाह वो यही है।
2: मेरा कजन है सर।
0: कजन है, यहाँ पे मौजूद है या पाकिस्तान में? कतर में ही है। क्या बात है यार, देखो ये है नसीब भाई, दोस्त और कजिन और एक साथ होना, एक ही जगह पर होना, ये नसीब की बात
1: ही इनका दोस्त।
0: क्या बात है, क्या बात, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह वाह,
1: बहुत बड़ी बात।
0: अल्लाह ताला दोस्ती रिश्तेदारी और ये जो रिश्ता है इसको साथ खैरियत के कायम रखे, यही हमारी दुआ है। और कुछ कहना चाहते हैं बिलाल भाई?
1: थैंक यू जी।
2: थैंक यू सर, और कुछ नहीं,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इसी तरीके से जुड़ते रहिए और फोन का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए हमसे बात करने में, वरना डायरेक्ट भी बात हो जाएगी। ऐसी कोई बात
2: नहीं। एक बात करना था आपसे।
0: दो करिए।
2: आप दिन में कितना बार रोटी खाते हो?
0: मैं एक ही बार खाता हूँ बस।
2: ऐसा
0: कैसे हो रहा, मगर एक बार खाता हूँ, पूरा खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दिन का। अच्छा लगा सुन के।
2: हमारा तो एक रोटी है, वो एक रोटी आप खाएगा तो आपका शायद दो दिन काम चलेगा।
0: नहीं तो आपका तो सुबह से रात तक जो आप खा रहा है ना वो एक बार में खाएगा। ओके मिलाल भाई, ओके अल्लाह हाफिज। भैया ये थे बिलाल भाई मेरे खाने पे नजर लगाते हुए। हाँ वो तो सही है।
1: हमारे साथ यहाँ जुड़ गए,
0: जुड़े हुए।
1: हेलो
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कौन है हमारे साथ?
3: मेरा नाम मोहम्मद अकरम।
1: मोहम्मद अकरम जी, अच्छा मोहम्मद अकरम जी, आज हम पूछ ये रहे हैं कि जब आपके दिन बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस फील हो रहा होता है, अच्छा
3: स्ट्रेस के लिए पहले स्ट्रेस होता था, बहुत सारी चीजें सीखे, किसी को बना लेते थे दोस्त या किसी को भी शेयर कर सकते थे, फिर उसके बाद समझ में आया कि भाई कभी भी कोई भी आप किससे भी शेयर करते हैं ना, उसके बाद फिर कभी भी फ्यूचर में है ना आपके है ना पीठ पे कोई भी छुरा मार सकता है, तो बेटर है कि आप अल्लाह ताला जो इंसान को बनाए ना, जिसको बनाए हैं जिससे स्ट्रेस हो रहा है, तो आप अल्लाह ताला से अगर आप सीधा ना दुआ करेंगे और सजदे लंबे करके उसमें दुआ करेंगे ना, इंशाल्लाह आपका स्ट्रेस चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वॉकिंग, बस
1: ब्यूटीफुल, दोनों ही ऑप्शंस आपके बहुत ही कमाल के ऑप्शंस। और जैसे आपने एक बात कही ना कि अपने स्ट्रेस में किसी पे बहुत ट्रस्ट करके आप सारी बात बोल दो तो फिर वो आपके लिए बाद में सूना और लेटर कहीं ना कहीं तकलीफ का बायस बन जाती है।
3: लोग क्या करते हैं स्ट्रेस में है ना, अब इसको तो मैं देखूंगा, इसको तो मैं ऐसा बता दूंगा, ये मेरे साथ ऐसा किया। नहीं भाई, अगर आप अब ये बोलना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला बोलेगा कि भाई तुम बोल रहे तुम दिखा लोगे तो मैं खामोश बैठता हूँ। जब आप अल्लाह ताला पे छोड़ के थोड़ा सबर कर लोगे ना, फिर आप खुद शॉक हो जाओगे कि क्या से क्या होता है।
0: मुझे सुन के स्ट्रेस होने लगा, मैं कहाँ जाऊँ,
3: बस थोड़ा सबर चाहिए।
1: वॉकिंग, आप वॉकिंग पे निकल रहे
0: तो कह रहे थोड़ा सबर करिए। क्या नाम बता भाई ने?
1: इकराम जी।
0: इकराम भाई कहाँ है? इकराम भाई, अच्छा इकराम भाई, इकराम भाई कहाँ है?
3: जी मैं अभी ऑफिस से घर जा रहा था।
0: जगह कौन सी है?
3: अरे मतार।
0: मतार,
3: क्या बात, मतार से वाकरा जा रहा हूँ।
0: अच्छा वाकरा, आप भी वाकरा जा रहे हैं? चलिए अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: ये मत कहिएगा कहाँ रहते हैं।
0: नहीं सारे समझदार लोग वाकरा में होते हैं ना, माशाल्लाह।
1: नहीं मैंने कहा पूछ ही लीजिए कहाँ रहते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, वो तो अब काफी है, तो जब इंशाल्लाह अकेले में बात करूंगा तो जान लूंगा। ट्रैफिक वगैरह ठीक है अकरम भाई इस वक्त रोड पे?
3: अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक ठीक है, वेदर भी अच्छा दिख रहा है थोड़ा बहुत।
0: वेदर अच्छा दिख रहा है
1: आपको? नहीं दिखेगा,
0: नहीं खाली दिख ही रहा है मेरे ख्याल में गाड़ी में। हाँ चश्मा आपसे कह रही है ना दिया,
1: नहीं नहीं सर्वर
0: भाई चश्मा उतार के देखिए फिर आपको सही दिखेगा।
1: नहीं आपको नहीं कह रही, इनको बोल रही सर्वर भाई।
3: इससे ज्यादा गर्मी में तो हम लोग वॉकिंग करने जाते हैं ना, तो
1: देख लो
3: वेदर अच्छा दिख रहा है। शाम के टाइम में वेदर और अच्छा हो जाता है,
1: माशाल्लाह। सही कहा आपने, बहुत ठीक हो रहा है आजकल तो, शाम में वाकई अच्छा हो जाता है, आराम से वॉकिंग की जा सकती है।
0: चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत ही अच्छी दोनों आपके पॉइंट्स, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: रोटियां कम खाइए आपको,
0: ठीक है साहब मैं इस बात पे
3: डिपेंड है, मैं तो रोटी का जो आप बता रहे हैं ना तो रोटी का साइज पे भी डिपेंड होता है।
0: हाँ ये बात भी सही है,
1: आपका साइज
0: हमारे यहाँ फुलके चलते हैं,
1: फुलके
0: समझते हैं आप,
1: फुलके नहीं आपके तुलके चलते हैं, तोल तोल
3: फुलके का साइज क्या है?
0: फुलके का साइज एक ये अपने जो तकिया गिलाफ होता है देखा है, तकिया गिलाफ समझते है ना
1: अकरम जी, अकरम जी इनके फुलके नहीं चलते, इनका खाना तुल के चलता है।
0: वाह नादिया वाह, क्या शेर सुनाया भाई, क्या क्या बात है, आज की सारी रोटी आपके नाम, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए,
1: शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए,
0: अल्लाह हाफिज।
1: ऑलराइट, और सर्वर भाई यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ
0: जुड़ गए हैं,
1: जुड़ रहे हैं
0: जी। हेलो सलाम अलैकुम।
4: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह,
0: अहलन वसहलन, कौन है हमारे साथ?
4: आसिफ अंसारी।
0: क्या हाल है आसिफ भाई, खैरियत से हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: कहाँ थे अभी तक?
4: आप दोनों की खैरियत है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खैरियत से हैं,
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: आप इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं सर?
0: आसिफ भाई बात ही धीरे आराम
4: से, मैं आप आराम से बोल रहे हैं ना, देखो आज टॉपिक बहुत अच्छा शुरू करा, उससे पहले जो नाजिया जी ने क्या बोला था आपको अय्यूब, तो इस हफ्ते आपने बहुत सब्र रखा है अपने ऊपर, इसलिए बार बार आपको अय्यूब बोल रही।
0: सब्र रखा है
1: अरबी, मुझे सब्र
4: अरबिक लोग बोलते हैं ना, सब्र मीन अय्यूब,
0: ओ नादिया इतनी काबिल हो रही है यार मेरे साथ बैठ बैठ के,
1: मुझे भी अभी पता चला
0: कि आप इसलिए नहीं कह रही, आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी श्योर,
1: नहीं मैं इसीलिए कह रही हूँ।

0: चलिए बहरहाल आसिफ भाई ने इसकी तशरीह की।
1: मुझे तो आसिफ जी किसी ने कहा कि इनको कहिए अय्यूब खान।
0: ओ
1: हो, तो मैंने कहा चलिए आप जाते
2: हैं तो वो वाले अय्यूब खान सुबह वाले
0: सलामी वाले सलाम उनसे सलामी ले ली है सुबह जो आते हैं उनकी बात हो रही है सलामी वाले अय्यूब खान
1: वही वाले
0: क्या बात है। तो क्या कहना चाहते हैं मुद्दे के हवाले से?
2: मुद्दे के हवाले से ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल तो मैं प्रेस इतना लेता नहीं हूँ, लेकिन जब कभी होता है ना
0: तो क्यों नहीं ले पा रहे? क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में ऐसा जो स्ट्रेस ही नहीं आ रहा
2: है लेने की?
1: सही कह रहे हैं,
2: परेशान करने की जरूरत क्या है?
0: हाँ अच्छा है, स्ट्रेस दे ज्यादा रहे हैं ले कम रहे हैं?
2: नहीं मैं किसी से इतना बात ही नहीं करता हूँ जो स्ट्रेस हो।
1: कह रहे हैं कि मेरा लेन देन का ही नहीं मामला।
0: अच्छा जब भी हमें स्ट्रेस देने आ गए मुझे लग रहा है नहीं करता अब से तो कर रहे हैं यार प्यारे प्यारी बातें और प्यारे प्यारे आसिफ भाई। तो
2: बहुत सारी चीजें ऐसे तो आदमी सो जाता है।
0: नहीं आदमी तो कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आदमी तो कर ही रहा है, वो तो अब्दुल भाई जो हैं वो तो सुबह से शाम तक चार चीजें कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? खुद सो रहे हैं।
1: कह रहे कि मैं स्ट्रेस लेता नहीं हूं।
0: नहीं फिर भी जो मैं देना चाहूँ अगर गायबाना स्ट्रेस तो क्या
2: फिर मशवरा फिर वाले साथ से करना पड़ता है और कोई बात नहीं है, या फिर जो है कुछ ज्यादा और ज्यादा होता है तो फिर अल्लाह ताला के आगे झुकना पड़ता है और वो लाजमी है अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए।
1: बहुत अच्छा,
2: सबसे अच्छी चीज यही है कि अगर अगर कुछ भी है तो शायद अपने गुनाहों की माफी मांग लो, सबसे बेहतर यही है।
1: बहुत सही, बहुत अच्छा
0: नदिया, आप
1: आज तो आप आज से लग जाइए
0: इंसान
2: को अपनी गलतियों की माफी मांगता रहे अल्लाह ताला से,
1: आमीन सुबह
2: सोने का कोई सवाल ही नहीं है।
0: सही सही, चलिए
1: बहुत अच्छी बात, सच में और बहुत ही जेन्युइन। और ये भी जान के खुशी है कि आप अपने पेरेंट्स अपने अब्बा से भी जो है वो मशवरा लेते
2: हैं। साहब से एक्चुअल क्या है, मशवरा हर चीज का लेना चाहिए, किसी दोस्त क्या किसी देखिए किसी दोस्त से या किसी कजन से या किसी भी, आज हम एक हैं कल हो सकता है किसी ना किसी चीज से हमारे इख्तलाफ हो जाए, ठीक है, और वालिद साहब से एक ऐसा वो है कि वो उनसे कोई भी बात करेंगे अगर वो हल नहीं भी कर पा रहे हैं
1: दुआ करेंगे,
2: कोई नहीं दुआ करेंगे हमारे लिए, लेकिन वो हमारे उनके बीच की बात एक दोस्त की तरह, हालांकि वाले साहब हमेशा एक दोस्त की तरह रहते हैं, सऊदी अरब में हैं, उनसे मेरी बात भी कभी कभी होती है महीने में एक आध दो बार, लेकिन जब बात होती है तो लंबी बात होती है
0: जी। हाँ चलिए अच्छी बात है, ये तो
2: अल्हम्दुलिल्लाह
1: चलिए बहुत ही अच्छी बात, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके वाले साहब का साया आप पे हमेशा बना रहे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच आपकी कॉल,
0: ख्याल रखिए अपना, थैंक यू,
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज। वी आर गेटिंग वन मोर कॉल, इवन लाइक टू कॉल्स।
0: अल्हम्दुलिल्लाह जसीम है हमारे साथ मेरे ख्याल में। कैसे है क्यों? हाँ अच्छा, आज मुझे सता रही, असल में हर दिन एक सा नहीं होता, जरा आज मैंने नाश्ता नहीं किया था, एक्चुअली इन्होंने छीन लिया मुझसे मेरा नाश्ता, खुद खा लिया।
1: क्या खिला दिया?
3: आज लिसनर से, आज जो है ना लिसनर को जो सवाल करना चाहिए था वो आज आपके पार्टनर सवाल कर रहा है, वो बार बार आपको चुनौती दे रहा है।
0: मैं समझ गया कि ये कुछ सुबह के जरिए से ही आया होगा ये मसला।
3: भाई
0: तो क्या क्या है मसला, आप ही बता दीजिए, ये तो बता नहीं रही है क्या मसला।
1: अरे मुझे खुद भी तो पता हो कि था क्या सुबह का मसला, मुझे तो कहा कि कह दीजिए, मैं खैरियत पूछ लिया आपसे।
0: नहीं तो ये कह कौन कहलवा कौन रहा है ये
1: मैं नाम तो नहीं बता सकती,
0: गाड़ी होती जा रही है मेरे हाथ की लकीर।
3: अय्यूब भाई को ढूंढा जा रही है, अय्यूब भाई को
0: क्यों क्यों क्यों ढूंढा जा रहा है? कौन है अब्दुल भाई? ना आ रहा है, जा रहा है, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है, कौन है ये अय्यूब, क्यों है ये अय्यूब?

0: जितने यू भाई सुनकर नाराज ना हो जाए।
1: मैंने भी यही कहा था, मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, यूं भाई का नाम ज्यादा ले लेके उसको परेशान कर दिया जाए। कोई और आगे कहते कि मुझे मेरा नाम में क्यों बदनाम किया जा रहा है।
0: तो है क्या मसला, बता तो दे जल्दी से।
2: पैसे का मसला है सारा कुछ। सारा रोना धोना पैसे के लिए है।
1: बैंकों का मसला है, पैसों का मसला है।
2: अब बताओ कैसे सॉल्व होगा भाई।
0: अल्लाह करे कि मेरी भाई? मेरा मुखौटा पहन के कोई निकल गया बाहर। ये हो क्या रहा, हो क्या रहा है आखिर, ये आखिर हो क्या रहा है भाई।
2: देख लीजिए क्या,
0: ये भी नहीं बता रहा है।
2: अरे मैं कह रही हूँ आप पार्टनर का नाम ही लेते
0: हैं। मैं अभी उनसे पूछ लेता हूँ फोन करके, मुझे लग रहा है मैं बैंक कॉल कर लूँ।
2: कि भाई मैं यहाँ हूँ। ये हो सकता है। तो खैर इन्हें भी नहीं पता है लग रहा है पूरी कहानी।
0: हाँ लग तो नहीं रहा,
1: मगर कहानी पूरी पकी है ना, यहाँ पर रिवील करना सही नहीं है।
0: अच्छा अरे थैंक यू सो मच जैस भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस टुडे। अच्छा तो आप जल्दी से ये बता दिए कि स्ट्रेस जब होते हैं तो मेरे अलावा किससे बात करना पसंद करते हैं आप?
2: स्ट्रेस दे देते हैं इधर मिला उधर दे
1: दिया। क्या है भाई ये बताओ पहले
2: ये बता
0: दो। वाह किस चिड़िया का नाम है। नहीं मगर फिर भी यार कुछ तो कभी तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है मैं भी इस बात का कायल हूँ, मगर फिर भी कभी कोई ना कोई ऐसी बात तो होती होगी। फिर भी तो ऐसा कौन है जो मदद करता है आपकी?
2: ये खुद
1: भाई अल्हम्दुलिल्लाह देखो
2: ये खुद ही अपनी मदद करते
1: हैं। हाँ ऐसी कोई नौबत नहीं आई है कि कभी स्ट्रेस हो। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज बेस्ट है अभी तक। आगे अल्लाह की मर्जी है, क्या होता है क्या नहीं पता नहीं भाई।
0: अल्लाह ताला आपको खुश रखे।
2: माशाल्लाह ये पहले हैं जिन्होंने कहा हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस आए ही नहीं आज तक।
1: नहीं नहीं मेरे पास स्ट्रेस का कोई है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह सब बेस्ट है।
2: बताइए अगर किसी चीज टिक नहीं पाया या आपने रुकने नहीं दिया?
1: कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि ना तो टीके है ना रुकने दे, सब अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली स्मूथली चलता रहा।
2: माशाल्लाह
0: अल्लाह ताला इसी तरीके से खुश रखे और इसी तरह आपकी जिंदगी गुजरती रहे, यही हमारी दुआ है। मतलब इस तरह से मेरा मतलब स्ट्रेस फ्री है ना, हो सकता है कि स्ट्रेस आ रहे हैं और आप आने
1: नहीं दे रहे। सुबह को जो है ना सुबह को बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ, नाश्ता करता हूँ, सो जाता हूँ, तो 1:30 बजे उठता हूँ सोके।
0: अच्छा
2: अच्छा और सुबह की कहानी कैसे सुनते हैं फिर आप?
1: वो मैं सुन लेता हूँ ना थोड़ा बहुत जब टाइम मिलता है सुन लेता
0: हूँ। कबीर के शो की कहानी
1: सुन लेता हूँ।
2: मैंने कहा पूछूं तो कहानी में क्या दम क्या था
0: नहीं, मुझे तो दूसरी फिक्र हुई भाई सुबह छोड़ रहा है बच्चों को, सो रहा है उठ रहा है और हमारे साथ जुड़ रहा है, रोटी किधर से आ रही है घर में ये भी तो पता चले।
1: रोटियां
2: बच्चों को छोड़ के किसी काम
1: पे असर की नमाज के बाद में खाना खाएंगे भाई सब।
0: अल्लाह ताला बरकत दे भाई, अल्लाह ताला बरकत दे,
2: ये सही जॉब है आपकी
0: और अल्लाह ताला आपको खुश रखे और पूरे घर को। बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
0: चलिए साहब आप जासिम भाई के बाद एक ब्रेक तो बनता ही है, पहला गाना तो चलाने देना दिया मुझे।
2: अच्छा वैसे कॉल्स आ रही थी
0: परफेक्ट।

0: एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि गुरु ने इनको देखते हुए ये गाना लिख दिया है। अरे मैं पहले मैं समझ रहा था तारीफ मेरी हो रही है, बात मुझे मेरी आंखें खुल गई एकदम गाना सुनते ही। मैं जुओं का जिक्र हो रहा है, नागिन का जिक्र हो रहा है और भी इस तरीके की बड़ी बड़ी शख्सियत का जिक्र हो रहा है तो ये तो भाई नाजिया जी के अलावा कोई क्रेडिट ले ही नहीं सकता इस बात का।
1: भाई आपका मसला है, कब से चल रहा है, मैं कह रही सारे बाल निकलवा दीजिए लेकिन नहीं आपको समझ में।
0: चलिए भाई तो मैसेजेस से शुरुआत कर लेते हैं।
1: हाँ जी,
0: और उसके बाद फिर कॉल की जानिब बढ़ेंगे।
1: हाँ जी, तो यहाँ पे सलाम कहते हैं अय्यूब भाई एंड नाजिया मैम, ये कहा है सलमान ने।
0: अल्लाह मुझे सब्र दे,
1: अल्लाह आपको सब्र के साथ कुछ और भी दे, थोड़ी सी अकल दे दे कभी कभी। अच्छा यहाँ पे कहते हैं सलाम सरवर भाई, मेरा छोटा भाई रिजवान, ये ख्वाजा जी का मैसेज है। मेरा छोटा भाई
0: क्या,
1: सलाम सरवर भाई, मेरा छोटा भाई रिजवान।
0: तो मुझे छोटा भाई कह रहे हैं एक्चुअली।
1: तो आप अय्यूब के बाद अब रिजवान भी आप ही है, सरवर भी आप ही।
0: नहीं नहीं, रिजवान कहना चाह रहे, मैं रिजवान हूँ और मेरा छोटा भाई सरवर तुझे सलाम।
1: शहजादा जी सलाम कहते हैं सलमान भाई और नाजिया मैम और हमें आपके साथ, थैंक यू सो मच शहजादा जी, उम्मीद करें आप भी खैरियत से होंगे। या आरिफ अंसारी जी हैं, वाह सरवर भाई स्पेशली आपके लिए,
0: क्या
1: ये देखिए आपकी फोटो, अय्यूब भाई ये है अय्यूब भाई।
0: यार कितना हसीन लगता हूँ मैं, वो पता लगे कि मुझे मिलाया किससे, बट यार क्या जबरदस्त बनाया हुआ ये फोटो
1: और ये लेके जा कर आ रहे हैं।
0: नहीं और ये वारदात अंजाम कहाँ दी गई है ये भी तो पता चले, अल्लाह रहम
1: करे
0: ये वायरल ना हो जाए, पता चला यहाँ बैठे ही नहीं, कल सरवर भाई कहीं और मिलना है मसला ही टेढ़ा हो गया। ये मैं समझ गया 100% ये वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका जो है ना, सुबह कुछ ऐसी खलबली करके गए होंगे, उन्होंने कोई कहानी सुनाई होगी, उसमें चोरा चक्का होगा कोई, उससे मुझे मिला दिया है, अब यही है इसके
1: क्या
0: अंदर।
1: मिल रहे हैं आप
0: नहीं?
1: ये तो मैं भी कहूंगी बिल्कुल वो आपकी शक्ल मिल रही है। अच्छा यहाँ पे सलाम कहते हैं हम दोनों को, क्या हाल चाल है, उम्मीद करें आप लोग खैरियत से होंगे। और टॉपिक पे आता हूँ और मैं टेंशन नहीं लेता, हमारा काम है टेंशन देना, अगर किसी टाइम टेंशन होगी तो अपना होम मिनिस्टर से वीडियो कॉल पे बात कर लेता हूँ और फिर वल्ला मजा ही मजा।
0: हाँ मतलब मैं समझ गया इनकी जिंदगी किस तरफ जा रही है, किस तरफ बह रही है, ये आखिरी में जो इन्होंने बताई है एक लाइन में समझ गया,
1: ये है उमर फारूक जी,
0: मैं समझ गया उमर भाई आपने आखिर में जो बताया है ना, जो आप जहाँ से एनर्जी ले रहे हैं और फिर उस एनर्जी आप क्या कर रहे हैं, मैं समझ गया हूँ पूरे तरीके से आपका स्ट्रेस किस तरीके।
1: अच्छा यहाँ पे शेख अली जी का मैसेज है, कहते हैं सलाम भाई, और कबीर भाई ने सुबह एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक किरदार था, नाम था अय्यूब।
0: मैं पहले ही पहुंच जाता हूँ यार।
1: सर भाई आप बहुत लेट पहुंचे, जब मतलब सब लोग पहुंच गए वहां से लौट रहे थे तो आप पहुंच रहे,
0: 25 मिनट में पहुंच गया वहां तक
1: तो आप पहुंच रहे थे। सलाम कहते हैं सरवर भाई, नाजिया मैम कैसे हैं आप दोनों, गुड आफ्टरनून, अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखे। मैं तो इस नंबर पे बात कर लेता हूँ,
0: किस नंबर पे
1: देखो कितने मिनट्स हैं सरवर भाई, अब आप समझ जाओ इसे बताना नहीं,
0: नंबर भेजा
1: नंबर पे बात कर लेता हूँ। भैया ये नंबर है, ये आप ही का नंबर है सरवर भाई,
0: और ये कौन सा है,
1: मुमताज अहमद जी।
0: अच्छा क्या बात है यार,
1: टेंशन दूर करते हैं आपसे बात करके, ये कह
0: मेरा भाई कैसा, मुमताज भाई पे पैसे ही पैसा,
1: वाह
0: मगर मेरा नंबर पकड़ पक्की
1: यहाँ पर कबीर का मैसेज है और अय्यूब भाई, अय्यूब भाई
0: आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार था मुझे। ये आप बोले जो हरकत करी है आज, बड़ी छोटी हरकत है वैसे तो मगर बात बड़ी हो गई है, ये डॉलर का साइन भी बनाना, अच्छा हुआ डॉलर का साइन बना दिया यार कबीर तुमने, यहाँ पे रियाल का साइन होता तो दूसरा मसला होता, तो ये पता है कि ये इस शहर में वारदात अंजाम नहीं दी गई है आगे। अच्छा आगे टॉर्च भी लेके भाग रहे हैं, ये कौन सी ड्यूटी लगी है ट्रेन के आगे टॉर्च लेके भागने, क्या है क्या ये मसला, बता तो दिया करो यार कि मुझे क्या जॉब असाइन हुई आज।
1: नहीं मैं ये जानना चाहती थी कि था कौन,
0: कबीर भाई आपसे अगली मुलाकात जब होगी इंशाल्लाह ताला, वो जैसी होगी अल्लाह ताला आप पे रहम करे, अल्लाह मुझ पे भी रहम करे क्योंकि पता नहीं क्या ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजिया,
1: स्ट्रेस हुआ तो अब क्या करते
0: हैं, मैं यही है बस अब आखिरी चीज, अब या तो आप है मेरे सामने या वो है, अब दो में से किसको को चल रहा है ये सोच रहा
1: हूँ। देखिए लकीर कौन सी काट रही
0: है भाई, लाल हो गई खून बह रहा है इन दो लकीरों में से हाथ के मेरे, बहने लगा अब।
1: अच्छा मैं कौन करती सर भाई, मेरी भी एक डेवलप होनी शुरू हो
0: गई, कह रहे हो फाइन।

0: है, काफी चौड़ी है।
1: नहीं, के तो नहीं लिखा उसके अंदर,
0: ऐसा लगा।
1: अस्सलाम वालेकुम नादिया एंड फरूर भाई, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा भाई मोहम्मद मुशीर आलम, कैसे हैं मुशीर भाई, खैरियत से?
0: शहजादा
1: सलीम हमारे साथ। फरूर भाई ये सब किया धरा सुबह आपके खिलाफ साजिश थी मुझे, आई नो शहजादा भाई, बस आप सब मेरे साथ रहिएगा। यार ये क्या बदतमीजी है यार। हद हो गई यार, व्हाट इज दिस यार,
0: हद वाकई हो गई।
1: अच्छा उनको पुलिस वाला बना दिया ये कबीर भाई, आपने पता नहीं ये वाला फोटो देखा है या नहीं देखा, आपको भेजता हूँ एक बड़ा ही अच्छा फोटो इतनी देर में। नादिया आप बात करना शुरू करें, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर हैं।
0: अच्छा हेलो,
2: हाँ जी
1: आइए आइए आइए आइए आइए। कैसे हैं गावा भाई?
0: अरे अयूब भाई, अयूब भाई,
2: नाजिया जी, आज सर्वर भाई ने ना पहली बार आपकी तारीफ में कोई अच्छा गाना पकड़ा है,
0: परफेक्ट वाला।
2: नहीं तो क्या है, जो पहले गाना होता था किसी का कोका गुम हो जाता था, किसी की झांझर गुम हो जाती थी, ये उसी को बोलते थे भी ये नाजिया जी की
1: तारीफ। हाँ, नहीं, हाँ। उसमें तारीफ है भी ना, उसमें तीन चार नाम है,
0: कई चीजें गुम हुई तो आज अयूब भाई नजर आए मुझे, अब पता चला गुम हो कहाँ रहे।
1: चलिए खैर, आज आप लोगों का दिन
0: खुला है। तो आज खुला तो रहा, कबीर ने ये स्टोरी सुनाई तो मुझे तो पता चला कि ये है अयूब भाई, चीजें गायब हो
1: यार, ये फोटो कितना शानदार है यार, कबीर साहब इसमें पुलिस बने हुए और मुझे पकड़ा हुआ है उन्होंने।
0: दोस्तों आपको भी फॉरवर्ड करते हैं,
1: ये किसकी हरकत थी वैसे, मैं खुशी में यही भूल गया ये फोटो बनाया किसने हमारे लिए। खैर गावा भाई कैसे, अरबाज खान ने बनाया। गावा भाई क्या कहते हैं स्ट्रेस दूर करने के लिए, मेरे अलावा किससे बात करते हैं
0: आप, से दूर होते हैं स्ट्रेस दूर?
2: सर्वर भाई से दूर तो हो ही नहीं सकते ना जी।
0: अरे होके तो देखिए फायदा ही फायदा, अगर नजर आए
1: कौन
2: एक दूर रही है। जादू की जप्पी एक थी, जादू की जप्पी जो हम लोगों ने भाई एमबीबीएस में देखी थी, सर्वर भाई की जप्पी।
1: ये म्यूजिक अल्लाह ताला आपको खुश रखे।
2: उसका फायदा पता क्या है,
0: अरे आपको अभी तक मिली वो जप्पी?
2: नहीं नहीं मिली,
0: तो तब बस जब तक नहीं मिले तब तक ही आप तारीफ करेंगे बस।
2: हाँ मेरे को डिजिटली मिल चुकी है,
1: उसके बाद बचेंगे तो तारीफ करेंगे। ये कबीर भाई क्यों फोटो पे बात कर रहे हैं, मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं, क्या वजह है? उनको पता है कि झप्पी कितनी जोरदार होती है। तो क्या भाई फिर भी लाइफ में कोई तो एक ऐसा होगा अपार्ट फ्रॉम भाभी, लेट्स से भाभी तो है ही है आपको टेंशन देने के लिए, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई दोस्त या कोई और।
2: सर्वर भाई यकीन मानिए, मैं आपको सच में बता सकता हूँ, जब से ना पिछले कुछ सालों से मुझे मेरी औकात का पता चला है ना सर्वर भाई, मुझे स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं हुआ जिंदगी में।
1: ओहो नादिया,
2: जिंदगी का कोई भी फील्ड हो सर्वर भाई,
1: समझिए बात को, समझिए गावा भाई क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं शीशा लेके आता हूँ जल्दी से, आपको देखने की जरूरत है
2: भाई, मर्डर थ्री वाला शीशा मत लेके आना सर्वर भाई।
1: यार क्या बात कही है अपने आदमी ने आपने, जिस दिन से मुझे मेरी औकात का पता चला है उस दिन से मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है। यार ये तो डायलॉग ऑफ द डे,
2: क्योंकि जिस दिन से पता चला है ना अपने बारे में सर्वर भाई, तो हर फील्ड में मैं अपनी औकात में ही रहता हूँ भाई, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे ड्राइविंग की लिमिट हो, स्पीड लिमिट हो, चाहे रिश्तों में हो।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: क्या बात है
1: भाई, ताली
0: बजाओ,
1: क्योंकि मसला ये है कि वो ड्राइविंग पे भी और स्पीड में भी मसला ये है कि अब 500 का फाइन आ गया, अब है ही नहीं
0: एक्सीडेंट का भी, तो
1: अब जा रहे हैं नाजिया दे दे भैया जरा फाइन भरना,
0: तो आपने अपनी फाइनेंशियल औकात नहीं पहचानी।
1: हाँ वही तो, वही जबी जबी वो सही कह रहा मेरा भाई,
0: ये भाई बिल्कुल सही कह रहा है,
1: क्या बात है,
0: स्ट्रेस वहीं से शुरू है।
1: अच्छा लगा, अच्छा अच्छी लगी।
0: लाते हैं आप गावा जी, कहाँ से लाते हैं,
1: ढूंढ ढूंढ के?
2: बस नाजिया जी जब से अपने ऊपर काम करना शुरू किया है ना पिछले तकरीबन 10 सालों से, तो अपने आप ही बहुत रास्ते खुलते जाते हैं जी।
1: चलिए साहब क्या बात है,
0: रियली रियली सो इंप्रेसिव,
1: बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेरी तारीफ करने के लिए। एज यूजुअल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाई।
2: देखिए सर्वर भाई पता क्या होता है, देखिए हर बंदे की जिंदगी की शुरुआत मोस्टली सुबह से होती है, ठीक है, मोस्टली किसी की नाइट ड्यूटी भी होगी वो एक्स्ट्रा मैटर है, मगर दोपहर तक आते आते बंदे के पीछे बहुत सारा स्ट्रेस, टेंशन और इवन थकावट भी हो जाती है बंदे को। मगर सरवर भाई जैसे ही 1:30 पे हम लोग ट्यून इन करते हैं 107 FM, यकीन मानिए सरवर भाई बिल्कुल एनर्जी

0: फ्रेश।
1: अरे यार यही हमारा मकसद भी है। अब नाजिया तो खैर जो अपना काम कर रही है कर रही है,
2: सर्वर भाई अपनी औकात पहले पहली फुर्सत में ढूंढने
1: क्या बात हो रही है, चोरों चक्का औकात सारी चीजें हो रही है।
0: सर्वर भाई एक बात और, सर्वर भाई नाजिया जी की जो एंट्री होती है ना,
1: हाँ
0: वो हंसी से ही होती है प्रोग्राम में।
1: अब आप सोचिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, आप सोचिए कि ये रंग बिखारना और बिखेरना और हंसी बिखेरना कितना मुश्किल, आदमी अकेला हंस सकता है, अकेली हंस रही होती तो उनको लोग कुछ और कह रहे होते, तो ये क्या वजह है जो ये हंसी मिलती है।
2: मैं आपसे मिलने पहुंची हूं
1: वो याद कर, शुक्रान, थैंक यू सो मच। ब्रेक आया बहुत ही जरूरी, बहुत तेज ब्रेक आ रहा है इस वक्त,
2: इंशाल्लाह
1: ताला आपसे कल बात होगी।
0: थैंक यू भाई वंस मोर आपके लिए और कबीर भाई के लिए, लव यू 125 किलो।
1: अहलन वसहलन, थैंक यू सो मच।
2: एक
1: छोटा सा ब्रेक लेना भाई, यूं गए और यूं वापस आए, सुनते रहिए FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दो चार और लाइफ ने कर रखा है हम सभी को दो चार। कबीर भाई उतना अच्छा नहीं है बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो थोड़ा तो अच्छा लग रहा होगा। चिड़ना मत देखो ये सुन के हैं प्लीज। बहुत सारे कस्टमर वेटिंग में हैं तो आइए पहले तो बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात।
1: अहलेन अहलेन
3: भाई कैसे हैं?
1: खादिम हुसैन साहब मेरे साथ हैं।
2: मैं ठीक हूँ। देखो अभी भाई बोल रहे हैं और साहब भी बोल रहे हैं, पहले बोले कस्टमर।
1: यार मैं तो ऐसी मतलब तफरी कर रहा था यार। मैं मेरा भाई खादिम भाई कैसा, खादिम भाई पे पैसे ही पैसा, प्यार मोहब्बत दिल जान टुकड़ा शाही टुकड़ा डबल का मीठा। और बताइए यार क्या और इससे ज्यादा मैं कह सकता हूँ, बाकी सब कुछ समझ ही गए
2: आप। बस वो जो पहले आपने बोला जैसे मिर्ची खिलाई और फिर बाद में बोल
1: तीखा जरूरी है लाइफ में तीखा जरूरी है खादिम भाई, कभी कभार तीखा भी खाना जरूरी है। कैसे आप, खैरियत से हैं?
2: मैं तो खैरियत से हूँ, मेरा दिल टूट गया बस।
1: आपको मैंने आज धूप में वेट करवा दिया है। अरे आपका दिल कैसे टूटेगा खादिम भाई, आपने अपना दिल अपने पास रखा हुआ ही नहीं है यार। आपने तो दिल अपना हमें दिया हुआ है खादिम भाई।
2: अरे अरे अल्लाह पाक आपको खुश रखे।
3: खुशबू
1: कह रहे हैं जिलैंद
3: की, आप कुछ अच्छा बोल सकते
1: हैं। अच्छा यार मैं अच्छा
2: नाजिया बहन, नाजिया बहन ये कुछ भी बोले ना मैं इससे नाराज हो सकता हूँ और ना
3: भाई क्यों।
1: यार ये क्या बात होती है,
3: पूछ तो लूं ऐसा नहीं, क्या
1: मैं मत पूछ। हाँ बताओ, आदमी एक तो खुशी जाहिर कर रहा है वो भी बताए मैं क्यों पूछूं।
3: अरे वजह बताए, मैं भी खुशी हूँ, बताओ लोगों को ऐसे इस तरह से स्ट्रेटजी अपनाई जाए
1: मुझसे। कहां आपके और मेरे सितारे बिल्कुल।
2: अल्लाह पाक ने FM 107 को एक इतना बड़ा अजीम तोहफा दिया हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। सरवर भाई की सूरत में
3: अजीम नहीं भारी दिया हुआ है हमें, बहुत भारी पड़ा।
1: खादिम भाई हम दूसरे दिन तारीफ, आज सही लग रहा मुझे तारीफ सुनना, हम दूसरे दिन तारीफ करेंगे।
2: अकेले कोई प्रोग्राम
1: आज टाइम आने वाला
2: नहीं, आप एक काम करो अभी भी पूरी टाइम है। सरवर भाई
1: माइक बंद कर दूं ना,
2: जब ये घर से निकल नहीं जब ये घर से निकलती है टायर गाड़ी की टायर पंचर।
1: अरे मैंने कितनी बार किया है, कितनी बार कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी,
3: तो फिर यही बनवाते भी
1: ये अभी से थोड़ी मेरी जिंदगी में आई हुई है, इनको 25 साल हो गए।
2: माशाल्लाह सरवर भाई दोनों बहन भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं और हमें जो है हमें तो बहुत अच्छा लगता है
1: मेरा भाई।
3: बस हमारी कोशिश है आप लोग खुश रहे।
1: खादिम भाई स्ट्रेस के अलावा ये जो हो रहा है तो दूर हम ही रहे फिर को कॉल, बट फिर भी कोई एक ऐसा आपका कौन सा है?
2: तो कभी भी ऐसा जब भी कुछ कोई बात हो कुछ हो मैं फोन करता हूँ। पहले तो वालिदैन थे अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, अभी हयात नहीं है, जरूर कोई भी माशा कोई भी बात।
1: बहुत अच्छा मैसेज है, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है एक्चुअली।
2: बहन ये माँ के साथ बाबा के साथ और हमेशा बच्चा जितना बड़ा हो वो माँ के लिए हमेशा छोटा रहता है।
1: मैं रोकूंगा आपको और इस वक्त अगर जेन जी और दूसरे यंग लिसनर्स मौजूद हैं तो आप लोग ये बात समझिए जो खादिम भाई कह रहे हैं कि वालिद से हर चीज बहुत अहमियत रखती है लाइफ में, से भी मत छुपाए।
3: और ये सब ओल्ड फैशन है, ये मतलब जो एक्सपीरियंस जबरदस्त और उनके पेशेंस एक्सपीरियंस है आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।
2: देखो माँ बाप बच्चे का की तकलीफ दर्द ये सब समझ सकते हैं। माँ जो है माँ से मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो माँ अपने बच्चे की तकलीफ बात दर्द जो भी हो वो ना समझे। सबसे पहले माँ के साथ शेयर करना चाहिए, फिर उसके बाद बाप वालिद के साथ। अगर ये दोनों हयात नहीं है तो बहन अगर घर में है तो बहन से कभी भी बात नहीं छुपानी चाहिए। इसे बहन को अल्लाह पाक ने जो माँ के बाद दर्जे दिए हो तो बहन का है। और इसके बाद अगर कोई हमारी तरह शुदा है सरवर भाई की तरह नहीं तो
3: इनका तो मसला किससे
1: नहीं, ये सारी चीजें मुकम्मल हो गई हो
3: वाली से
1: तो अब आप ये लोग ये जानिए सारी चीजें मुकम्मल हो गई हो और दिल ना लग रहा हूँ इन सारी चीजों से, तो फिर आई एक्सेप्ट कैश ऑल्सो, आप मेरे पास आ सकते हैं पे करके, मैं आपके पास करने के लिए तैयार।
2: सर्वर भाई से शेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा उसके बाद सर्वर भाई वही बात कंटिन्यू रखना चाहता हूँ कि वाइफ से बीवी से हर बात, हर वो बात शेयर करनी चाहिए जो आपकी जिंदगी में हो, कोई भी कुछ भी हो, अपनी बीवी कुछ तो पाना चाहिए।
3: बहुत सही काम।
2: अगर कोई बंदा अपनी लाजम बताना चाहिए, बच्चों के साथ बातें शेयर करनी चाहिए, बच्चों को अपने दोस्तों की तरह रखना चाहिए। आप यकीन करें कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो टेंशन में रहेगा, जिसको स्ट्रेस होगा, कुछ भी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन वो दिल खोल के उसके साथ ऐसे कि बस एक दोस्त समझ के, वालिदैन को भी और बहन और फिर उसके बाद बच्चे।
1: वाह वाह बहुत अच्छा पैगाम, बड़ी ही अच्छी बात, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह जिंदगी आगे बढ़ते हुए जो बात हमें समझाने की कोशिश करी है खादिम भाई ने, हम इन चीजों को समझें, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
2: मैं अपने तजुर्बे से एक बात हमेशा दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी हम कोई कोई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि बीवी और कोई भाई बोलते हैं भाई, बीवी के लिए भाइयों को और भाइयों के लिए बीवी, कभी भी परेशान नाराज नहीं करना चाहिए।
1: वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात है, जबरदस्त बातें यार, कहां से लिख के लाते हो खादिम भाई? ये डायरी दे देना मुझे एक दिन, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये वाली डायरी दे देना मुझे, किसी दिन काम आएगी मेरे। अभी हम थोड़ी बस एक दो तीन चार मिनट के लिए रोके, क्योंकि यहाँ पर सारे मैसेजेस मेरे पास जमा हो गए हैं, अच्छे अच्छे पैगाम हैं सभी के, कहते हैं राइट सर्वर भैया, आपने सही पकड़ लिया वो पिक्चर वाला बात। हाँ यार मैंने भी देखी है, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। आसिफ आलम है हमारे साथ, बढ़ते हैं आगे। सर्व भाई नाजिया बाजी आपको हर बात में रोस्ट कर रही हैं, प्लीज खान भाई प्लीज मुद्दा आप आगे लेके जाएं, मैं बताऊंगा आपको कौन सी मिनिस्ट्री जाना है इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हारिस। सर्व भाई एंड नाजिया मैम,
3: वालेकुम,
1: कैसे हैं आप लोग?

0: big fan of your show. God bless. Thank you so much.
1: Thank you
0: and
1: so
0: likewise,
1: much.
0: भाई हारिस हयाल साहब, आपको भी अल्लाह ताला खुश रखे. इकराम है हमारे साथ. गुड आफ्टरनून, होप यू आर डूइंग वेल. प्रे फॉर माई प्रिंसेस. अरे यार, अल्लाह ताला रहम करे भाई. ये क्या हो गया इकराम भाई? अल्लाह ताला खैर वाफियत का मामला करे. और हम सभी इंशाल्लाह ताला दुआएं साथ हैं. अल्लाह ताला शिफा कामिल, सेहत कामिल अता फरमाए. और हम आप सबको भी कहेंगे, इकराम भाई ने अपनी बेटी का फोटो शेयर किया है जो इस वक्त मुझे हॉस्पिटल और गलबन आईसीयू में दिख रही हैं. अल्लाह बच्ची पे रहम करे. अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. और दिल भारी हो गया भाई देख के. और अल्लाह खैर करे. मैं दुआ ही कर सकते हैं हम लोग इंशाल्लाह ताला. और ज़रूर खैर होगी, ज़रूर खैर होगी. बच्चे तो डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं, कोई बीच में होता ही नहीं है. आप उससे खुद भी कहिए कि वो दुआ करे, और अपने लिए भी और हम सब के लिए भी. अल्लाह ताला उसको सेहत और शिफा कामिल अता फरमाए. बढ़ते हैं आगे. मूड अजीब सा हो गया यार ये फोटो देख के. एनी हाउ, फोटो हमें भी भेज दीजिए.
1: कौन सी वाली?
0: आरिफ अंसारी. ये वो अच्छा. दूसरी जो वाली. मैं क्यों भेजूंगा? मैं अपनी खुद कैसे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु. गुड आफ्टरनून नाजिया जी और सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल. वेलकम टू एनर्जी आर. दिल से देसी यूसुफ खान. हैप्पी वेडनेसडे मॉर्निंग यूसुफ भाई. यस सरवर भाई, सुबह कबीर भाई ने ही कहा कि आपसे ये पूछें. उनकी स्टोरी कैरेक्टर था अयूब. हाँ, वो पता चल गया यूसुफ भाई. सॉरी, आपका मैसेज देर में रीड किया. मुझे स्ट्रेस जैसे कुछ फील हुआ तो मेरी बच्ची से खेल लेता हूँ. आए हाय हाय हाय. और उसकी बातें तोते की तरह टर टर सुनते हुए सब स्ट्रेस खत्म हो जाता है. माशाल्लाह, अल्लाह ताला भाई सेहत दे सभी के बच्चों को, अच्छा रखे. एंड आई एम रियली फीलिंग सो वरिड. जो इन्होंने इकराम भाई ने फोटो भेजा बच्ची का, मैं और नाजिया दुआ कर रहे हैं बराबर. अल्लाह ताला खैर करने वाले हैं. प्लीज सेंड फोटो. यार ये नहीं हो पाएगा मेरे भाई. आप मैं मोहम्मद भाई ऐसे कैसे. बड़ा ही अच्छा फोटो. मैं एज यूजुअल उसमें हैंडसम स्मार्ट लग रहा हूँ. कबीर जरा उसमें हल्का लग रहा है बेचारा. बहुत अजीब, मतलब मिस्कीन सा, मासूम सा बच्चा कोई एक साइड में पड़ा हुआ है. तो मैं चाहता नहीं कि उसकी
1: वो खुद जितनी हल्के लगे, लेकिन जो पहना है आउटफिट.
0: अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई और नादिया जी, क्या हाल है आप दोनों का? अल्लाह खुश रखे. जीशान, वालेकुम सलाम अलहमदुल्ला. जीशान भाई इतने प्यारे डीपी में. मैं अगर आतिफ असलम प्ले
1: का सॉन्ग
0: क्या कहने. ह्यूमन नाम ह्यूमन है इनका. खबर तो यही है और अच्छी लाइफ बीच में एकदम उठ के. सरवर है नादिया, अस्सलाम वालेकुम. तौफीक अलवाकरा से. अल्लाह ताला तौफीक दे. अल्लाह ताला वालेकुम सलाम. आप तो हमारे सर के ताज हैं सर जी. हाय हाय हाय, मेरी बात हो रही है? ये किसकी फोटो भेज रहे हो यार अरबाज भाई? वो वाला जिसमें मुझे चोर बना रखा और कह रहे हो सर के ताज हैं. कह रहे हैं आमीन आमीन सुम्मा आमीन. मुबीन बुखारी का मैसेज यहीं से शुरू हुआ और यही खत्म हो गया. यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी कौन है हमारे साथ?
2: आरिफ अंसारी.
0: आरिफ भाई कैसे हैं? आरिफ भाई
1: अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों भी खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक हैं. जी आज हमारा टॉपिक सुना आपने, क्या कहेंगे
2: टॉपिक के हवाले से? मैं अपने माँ से बात कर लेता हूँ.
1: माँ से बात कर लेता हूँ. वाओ, यानी पेरेंट्स से ही ज्यादातर लोग जो है बात करते हैं. बच्चे अभी तक तो बीवी कम आई, एक आई, एक किसी ने कहा था मैसेज में कि हम अपनी बीवी से बात कर लेते हैं.
0: मैं इसमें खामोश रहना बेहतर समझता हूँ.
1: नहीं, आपके पास प्रॉब्लम ये किससे, कौन सी वाली से, ये एक अलग मसला है. तो इसलिए आप तो खामोश ही रहे. लेकिन चलिए अच्छी बात ये लगी.
2: ज्यादा करीब होते हैं ना कि बचपन से, एक उम्र के बाद आती है ना.
1: माँ बाप समझते हैं. और जैसे किसी अभी हमारे लिसनर ने एक बात भी बहुत अच्छी कही कि जो हालात कैसे भी हो जाएं, अच्छे बुरे, दोस्तों के साथ तो एक शक और एक डर रहता है कि पता नहीं अगर उनसे अच्छी दोस्ती रही तो क्या हाल होगा, उस बात का कोई और इशू ना बन जाए.
0: देखिए यहाँ पर ये चीजें ज़हनियत बता रही है एक शख्सियत की, दोस्तों पे भरोसा नहीं करती है ये.
1: जिनके आप जैसे दोस्तों मैंने बताया, जिनके आप जैसे दोस्तों भरोसे से भरोसा ही उठ जाते हैं.
2: अयूब भाई मैं बोल रहा हूँ कि वो भरोसा नहीं किया जा सकता. 100 में से 10 ही दोस्त होंगे जिन पे भरोसा किया जा सकता है. आज के दौर में मैं बोल रहा हूँ,
1: आज के दौर में आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता. सही कहा आपने,
2: नहीं किया जा सकता है.
0: आप मोहब्बत देख रही
1: हैं?
0: उस आदमी को मालूम है कि अय्यूब ने क्या किए हैं दुनिया में, फिर भी कह रहे हैं अय्यूब पे भरोसा.

0: किया जा सकता है,
1: इसलिए कि कभी ना कभी पैसे मिल जाएंगे।
0: बहुत शुक्रिया भाई, इज्जत अफजाई का आप, मैं कबीर साहब के और आपका भी बहुत शुक्रिया, इतनी इज्जत अफजाई है। और
1: मुझे लग रहा है कम पड़ रही है, कम तो नहीं पड़ रही,
0: क्या उस फोटो में नेक्स्ट क्या करेंगी बताइए, और मैं कह भी तो नहीं सकता। अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को अच्छा रखे और फैमिली को भी अच्छा रखे,
1: थैंक यू सो मच।
0: दादी क्या कहती है, कॉल मैसेज, कॉल मैसेज?
1: अब सर्वर भाई आप डिसाइड कर लीजिए, आपके हाथ में सारा कंसोल चला गया है।
0: मोबिन भाई ने एक वीडियो भेजा, देखना चाहेंगी आप तो अभी ब्रेक पे देख लीजिएगा, मुझे अच्छा। याद दिला दिएगा। सलाम अलैकुम सर्वर भाई, या बहन, मैं जो परेशानी में होता हूँ मस्जिद में जाकर अल्लाह सुभान व तआला को अपनी परेशानी बताता हूँ और यकीन मानो दिल को सुकून मिल जाता है, परानी भी सब जाती है, रहमान है हमारे साथ। और
1: बहुत ही अच्छा मैसेज,
0: ऐसे ही खुश रहिए और डीपी भी बड़ी अच्छी है। सर आपको खुश करने के लिए मैं नाजिया जी को का फोटो एडिट करके आपको भेजूंगा फिर। हाय अल्लाह,
1: कितना
0: सुकून मिला है बात सुनके, प्लीज। हाँ बनाने की जरूरत है। ओके तो अब यहाँ पे ले लेते हैं वेदर का हाल, कम से कम रस्में जो हैं वो अदा करते चलें। आइए जानते हैं कि क्या है वेदर का हाल।
2: वेदर का हाल 107 दिनाल।
0: तो भाई वेदर का हाल खासम खास हो रखा है यहाँ पर, नादिया क्या कह रहा है टेम्परेचर?
1: हाँ जी बिल्कुल, तो चलिए मौसम का हाल चाल इस वक्त आपको बता देते हैं। और आज अगर देखा जाए तो मौसम थोड़ा सा बेहतर है, जैसे हमारे एक लिसनर भी आए उन्होंने कहा भी कि आज जो मौसम है थोड़ा सा कंपेरेटिवली बेहतर है। आज मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, जो आपको फील होगा 43 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम जाएगा 31 डिग्री सेल्सियस तक, यानी ठीक ठाक है। वैसे आसमान में आज पूरी तरह से बादल ही बादल है, रेन के कोई चांसेस नहीं है। हाँ यूवी इंडेक्स की बात की जाए तो अगेन इट्स वेरी हाई ड्यूरिंग पीक डे, जो डे टाइम है उसमें। अदरवाइज अब थर्सडे यानी कल जो है वो भी मौसम ठीक रहने वाला है, इट्स गोना बी अराउंड 39 से 41 के आसपास, और ये वीकेंड काफ़ी बेहतर है। लेकिन हाँ फिर भी अगर आफ्टरनूनस में आप निकल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एक तो हाइड्रेटेड रहें, दूसरा डायरेक्ट और सनलाइट में अगर आपका काम है तो प्लीज़ सारे प्रिकॉशंस लीजिए आप, आई मीन टू से सनस्क्रीन, अम्ब्रेलाज या फिर और कैप्स वगैरह का इस्तेमाल वगैरह कीजिए, सो दैट आपकी स्किन जो है वो ग्लोई और ड्यूई और
0: मेरी हेल्दी तरह, मेरी तरह
1: मैं स्किन की बात कर रही, मैं हेल्दी इंसान की बात नहीं कर रही थी
0: भाई। यहाँ पर QMD ने कहा है, ये भी बता देता हूँ, कतर में मौसम जो है वो बदलने का वक्त आ गया है, आज 23 सितंबर और कतर में ऑफिशियली ऑटम यानी खिजा का आगाज हो रहा है। नादिया आज से ऑटम का आगाज हो गया है, कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक आज ऑटमनल इक्विनॉक्स, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ, इज इट है, और यानी वो वक्त जब दिन और रात का ड्यूरेशन तकरीबन बराबर होता है, ओके आधे आधे में, और इसका मतलब गर्मी की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने की उम्मीद, टेम्परेचर में नरमी और आने वाले दिनों में कभी कभी बारिश के चांसेस भी, ये तो हम कहते आ रहे हैं, अल्लाह ताला रहम करे भाई। एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि 20 सितंबर को अलजुबरा जो सितारा है वो भी राइज कर चुका है, जो 13 दिन तक रहेगा, हमने इसके बारे में भी आपको पहले बताया था। तो भाई ये कुछ हाल अहवाल रहने वाला है आज के वेदर का। आइए अब एक कॉलर, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी हुआ जाता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
0: अहलन व सहलन,
1: कौन है हमारे साथ?
3: मुदस्सिर बात कर रहा सरल भाई।
0: मुदस्सिर भाई, हमारे पड़ोसी मुदस्सिर भाई फ्रॉम मंसूरा, वाले मुदस्सिर भाई।
3: जी सर, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सरल भाई?
0: अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और नाजिया हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे।
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है,
0: अल्लाह का शुक्र है।
1: तो आज के हमारे टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे हम?
3: जी नाजिया बहन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं, मैं सिर्फ दो काम करता हूँ। सबसे पहले सरल भाई, जो मैं करता हूँ, परेशान तो हम वैसे ही, आपको जो आपको पता है आजकल जो लाइफ है, जो जिंदगी, मेरे ख्याल में तमाम लोग परेशान है, कोई किसी हालात की वजह से, कोई टेंशन काम की वजह से, कोई घर की परेशानी वजह से। लेकिन मैं जब परेशान होता हूँ, मैं जब टेंशन में होता हूँ, मैं दो काम करता हूँ। सबसे पहले मैं जो करता हूँ वो कुरान की तिलावत करता हूँ। वैसे भी हम कुरान पाक की तिलावत कर ईमान है और इबादत है, लेकिन जब भी मुझे तकलीफ होती है, दुख होता है,

0: तो मुझे पता चलता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा पहले मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ जितना मेरे से हो सके, दो पारा एक पारा, और इसके बाद दूसरा ऑप्शन मेरे पास है वो सीधा अपनी माँ को कॉल करता हूँ. जब भी मैं अपनी माँ को करता हूँ, जब भी सरर भाई मैं अपने माँ को कॉल करता हूँ, उसको मेरी तकलीफ का, मेरी जिंदगी का, मेरी परेशानियों का पता है. ये जब भी मुझे कॉल करते हैं, एक खैरियत का पूछते हैं, दूसरा उनको तकलीफ है. तो मैं जब भी अपनी माँ से बात करता हूँ, अपने घर वालों से, माँ बाप से, 10 मिनट 15 मिनट जो भी बातें करता हूँ, उसके बाद जो सुकून मुझे मिलता है तो मुझे खुशी होती है, और दूसरा मुझे भरोसा हो जाता है कि चलो अगर मुझे तकलीफ है, टेंशन है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन जिंदा है, वो मुझे जो दुआ देता है उसकी वजह से मेरी वो जिंदगी, वो तकलीफ, वो टेंशन खत्म हो जाती है. तो मुझे थोड़ा सुकून और खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप जिंदा है, जो भी तकलीफ है, टेंशन है, वो मेरी दुआ की जो दुआ है उसकी, उससे बड़ा नहीं है तकलीफ, जो टेंशन है. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दो चीजें वो जो है मैं कर रहा हूँ सरोज भाई. और
1: बहुत ही अच्छी बात आपने कही, बहुत ज़बरदस्त. और हमें बड़े सुन के अच्छा लगा कि ज़्यादातर हमारे लिसनर्स जो जुड़े हैं, उन्होंने मेजॉरिटी हम कहेंगे कि उन्होंने यही कहा कि उनके पेरेंट्स से बात करके उनका स्ट्रेस दूर हो जाता है. बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, बात शेयर करते हैं, और उनकी बात समझते भी हैं. और अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो जो दुआएँ करते हैं हमारे लिए, उससे हमारी वाकई परेशानियाँ और स्ट्रेस काफ़ी हद तक दूर हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है. तो ये बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा ये जान के आपसे.
0: और दूसरा और तीसरा, सॉरी मैंने ये तीसरा, दो ऑप्शन तो मैंने बताए थे, तीसरा ऑप्शन जो है मेरे ख्याल वो 1:30 बजे की जो FM 107 पे जो प्रोग्राम शुरू हो जाते आप और सरोज भाई का, तो ये भी लाजमी है क्योंकि आप लोग फिर कॉल नहीं उठाते हैं ना, जब तक करना जरूरी है FM 107 का. सरोज भाई
2: भाई भाई
0: तारीफ के बगैर,
2: तारीफ
0: के बगैर कॉल नहीं लगते.
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत
2: बहुत शुक्रिया. को अच्छा रखे,
1: आमीन,
2: और आपकी फैमिली को भी अच्छा रखे. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच.
2: वालेकुम सलाम. नादिया जल्दी से ये भी बता दिए कि आप क्या करती हैं, मतलब सच्ची बात बता दी अगर बताना चाहती हैं, और अगर सच ना बताना चाहें तो मत बताइए, इस बात को स्किप कर दिए. नहीं सीरियसली,
1: आई
2: एम वेरी सीरियस, डैम सीरियस राइट नाउ,
1: वेरी सीरियस नोट, लेट मी स्किप दिस.
2: ओके फाइन फाइन, इट्स फाइन.
1: क्योंकि स्पिरिचुअली अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं और कुछ अपनी प्रेयर्स बेहतर करते हैं, वो तो करना ही चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे स्ट्रेस होता है तो व्हाट आई डू, I think I should remain mum.
2: Okay, it's fine, it's fine. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nazia behan aur Sarwar bhai, dher sari duaon ke saath adab. Ye hai meri duniya, meri kainat, meri pyari beti.
1: Mashallah.
2: Zehra Naseem.
1: देखें ये तो खादिम हुसैन जी की बेटी है.
2: हाँ ये है, देखिए माशाल्लाह प्यारे, अल्लाह ताला माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्लाह, अल्लाह ताला नजर से बचाए और सबको खुश रखे. खादिम भाई बहुत ही प्यारा फोटो. अस्सलाम वालेकुम सरोज भैया एंड नाजिया दीदी, क्या हाल है चाल है आप दोनों, हीरा और मोती का? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे इंशाल्लाह. चलिए टॉपिक पे आते हैं. वैसे तो मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, मेरा काम है टेंशन देना. अगर किसी टाइप टेंशन आ जाए तो मैं अपना होम मिनिस्टर से वीडियो कॉल पे बात कर लेता हूँ.
1: तो और फिर
2: वल्लाह ही वल्लाह, मजा ही मजा, क्या बात है. ये कौन है, ये उमर फारूक?
1: ये तो भाई आपने, आप फर्स्ट थे जिसने इस चीज को कहा कि मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ, मेरा टेंशन दूर हो जाता. मुझे बहुत अच्छा लगा,
2: स्पेशली सरोज भाई के लिए है, और आप लोग ही स्ट्रेस दूर करने के लिए हैं. आरिफ भाई ने यहाँ पर फिर से फोटो एक नया बना के भेजा है आज की वारदात पे. एक महीने में 150 किलोमीटर चलता पैदल, 5 या 10 किलोमीटर कर लो बस. ओके मोमिन भाई, अच्छा। कहते हैं तो जाओ यार, क्यों नहीं शुरू करते, क्या किसका इंतजार कर रहे हो? नादिया कह दो मोमिन भाई से जाने शुरू करें. ओके तो भाई ये कुछ हो रहे ही हैं बातचीत. यहाँ पर एक दो यहाँ पर वॉइस नोट हैं तो वो हम सुन नहीं पाएंगे. मैं इफ्तिकार भाई हैं जिन्होंने वॉइस नोट भेजा है. खादिम भाई जजाकल्ला खैर कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. और यहाँ पर रईस साहब हैं जिन्होंने कुछ, अच्छा ये तो इन्होंने मिटा दिया भाई, इनको पता है शायद कि हम वॉइस नोट जो है शामिल नहीं कर पाते हैं प्रोग्राम में, तो शायद इसलिए. अगर आप मैसेज लिखते तो मैं जरूर पढ़ लेता, या आप कॉल कर लेते तो शायद उठाने की कोशिश भी करता. कहते हैं मैं गुस्सा होता हूं तो खाना कम खाता हूं, लेकिन जब स्ट्रेस में होता हूं तो दबा के खाता हूं. मेरा भाई कैसा,
1: अरे भाई जैसा,
2: जब सब हूं तो हंसने के लिए अपने बच्चे से बात करता हूं, और स्ट्रेस दूर करने के लिए माँ बाप से बात करता हूं. क्या बात है यार आरिफ भाई, और ये बड़ी अच्छी बात कही. आप भी स्ट्रेस में नाजिया, जो कि आपको होता नहीं ऑब्वियसली, बट फिर भी कभी हो जाए, या दूसरे को देख के आप खाना ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है आपके साथ? जल्दी से बताइए.
1: मैं तो कसम खाती हूँ.
2: नहीं वो भी

0: आप भी जाते जाते बता दीजिए आप क्या ज्यादा खा लेते हैं। खाते तो आप माशाल्लाह है लेकिन ज्यादा क्या
1: खाते हैं? ये सच
0: जान खाने के अलावा
1: ये सच है कि जान भी खाता हूँ अल्लाह का।

0: फजील भाई हों, अमीन भाई हों, लंबी लिस्ट है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से मोहब्बत नहीं
1: करूँ। महविश करेगा?
0: महविश महविश महविश तो अरे
1: आप सना का कैसे भूल गए?
0: नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ, किसका नाम पुकार हूँ, किसका नाम ना लूँ, फंसा दिया देगी इस वक्त चलते चलते लोले। नहीं सभी सभी अच्छे हैं, और वाकई आपके कलीग्स जो हैं आपका स्ट्रेस बढ़ाते भी हैं, ये हकीकत है, और कम भी करते हैं, ये भी हकीकत है।
1: और जैसे हमारे लिसनर्स ने कहा कि जब वाकई स्ट्रेस हो तो सबसे ज्यादा अपनी दुआएं बढ़ा दीजिए।
0: यहाँ पर फोटो आया है,
1: ये तो आपके मोहम्मद
0: शफाक भाई, आरिफ अंसारी भाई भी कुछ लिख रहे हैं, तौफीक भाई भी कह रहे हैं, मोमिन भाई का वॉइस नोट है, और ये कहते हैं आई स्टार्ट फाइटिंग विद वाइफ और फॉर रियलाइजिंग माई स्ट्रेस। ये नाम इनका क्या है नहीं है, बहरहाल फिलहाल अब इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए,
1: वीकेंड है
0: और कल बिल्कुल वीकेंड है, खूब तफरी आएगी, कल टॉपिक नहीं है, कल सिर्फ गेम होगा, बातचीत होगी, तफरी होगी, और इसी के साथ वीकेंड को आपके और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे, तो ये हकीकत है भाई, अपना टेंशन दूर रखिए और इंशाल्लाह ताला हमारे साथ जुड़ते रहिए, हम तो आपको टेंशन देते ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है ना,
1: हम टेंशन दूर करेंगे,
0: चलिए दूर करेंगे भाई, सुनते देखते रहिए FM 107
1: दिल से।

0: का एहसास कमजोर पड़ जाता है और जब ये कैफियत पैदा हो जाए तो इंसान एक बुराई के बाद दूसरी बुराई की तरफ बढ़ सकता है। गोया हदीस मुतनब्बे कर रही है, अगर हया खो दी तो बुराई के बहुत से दरवाजे खुल सकते हैं। इस हदीस का एक दूसरा मफहूम भी बयान किया गया है कि अगर कोई काम ऐसा है जिसमें अल्लाह के सामने शर्मिंदगी की कोई वजह नहीं, शरीयत में वो नाजायज नहीं, अखलाकी तौर पर भी काबिल शर्म नहीं, तो उसे करने में भी हर्ज नहीं। गोया किसी काम से पहले एक सवाल अपने आप से कीजिए कि अगर मेरा रब मुझे ये करते हुए देखे, और यकीनन वो देख रहा है, तो क्या ये ऐसा काम है जिस पर मुझे शर्मिंदा होना चाहिए? अगर जवाब हाँ है तो रुक जाइए। इस तरह ये सवाल इंसान के बहुत से फैसले आसान कर सकता है। बाज़ोकात हम हया को सिर्फ लोगों के सामने शर्मिंदगी से जोड़ देते हैं। लोग देख रहे हैं तो गलत काम नहीं करेंगे, कोई जानने वाला मौजूद है तो जबान संभाल लेंगे, लेकिन असल हया इससे कहीं बुलंद है। मोमिन की हया लोगों की मौजूदगी से शुरू नहीं होती बल्कि अल्लाह की निगरानी के एहसास से शुरू होती है। कैमरा बंद हो सकता है, पैगाम डिलीट किया जा सकता है, लेकिन मोमिन जानता है कि अल्लाह से कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये एहसास हया को महज सामाजिक आदाब से उठाकर इबादत के मकाम तक ले जाता है। अब हया और शर्म के दरमियान भी फर्क है, इसको भी समझ लीजिए कि हया का मतलब ये नहीं कि इंसान हक बात कहने से डरे, हया ये नहीं कि कोई आपका हक छीन रहा हो और आप आवाज ना उठाएं। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, ये सब शायद घर वालों को मालूम ना हो, दोस्तों को, मुआशरे को मालूम ना हो, मगर मोमिन का सवाल ये नहीं कि क्या कोई मुझे देख रहा है, उसका सवाल तो ये है कि क्या अल्लाह इससे राजी है। और इसी तरह यही आजकल की जदीद जिंदगी हया का एक बड़ा इम्तिहान है। इसी तरह हया इंसान के लिबास और जाहिरी अंदाज में भी नजर आती है। मजीद गुनाह के बाद हया का बाकी रहना ये भी नेमत है। फिर हया के हवाले से अगर तरबियत की बात करें कि हम बच्चों में हया कैसे पैदा करें, तो बच्चों को हया सिखाने का मतलब ये नहीं कि बार बार उन्हें कहें कि तुम्हें शर्म नहीं आती, लोग क्या कहेंगे, तो ये हकीकी हया पैदा नहीं करता। असल तरबियत यह है कि बच्चे को समझाया जाए कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह हमें देखता है, हम ऐसा किरदार अपनाएंगे जो अल्लाह को पसंद हो। यानी हया को सिर्फ लोगों के खौफ से न जोड़िए, उसे अल्लाह की मोहब्बत और निगरानी से जोड़िए। अल्लाह सुभान व तआला हमारे दिलों को ईमान और हया से आरास्ता फरमाए, हमारी निगाह जबान किरदार और तन्हाई की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपरवर सुन्नत के आज के हल्के से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा से टैलेंटेड खिलाड़ियों का घर समझा जाता है और अब इस लिस्ट में एक नया नाम तेजी से उभर रहा है, अजान अवैस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। और अजान अवैस के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले 21 साल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल की और फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया है। अजान का क्रिकेट सफर काफी दिलचस्प है। उन्होंने पाकिस्तान के एज ग्रुप क्रिकेट सिस्टम में अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 लेवल पर क्रिकेट खेली, जहां से उनकी टेक्निक और टेम्परमेंट को पॉलिश होने का मौका मिला। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका असल ब्रेक थ्रू 2024-2025 कायद आजम ट्रॉफी में आया और सियालकोट की तरफ से खेलते हुए अजान ने सिर्फ 8 मैचेस में 844 रन बनाए, जिनमें 4 सेंचुरीज और 2 हाफ सेंचुरीज शामिल थीं। इसी टूर्नामेंट में उनका हाईएस्ट स्कोर 203 रन रहा। अगर उनकी डोमेस्टिक कंसिस्टेंसी की बात करूं तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती है। 2025-2026 कायद आजम ट्रॉफी में अजान ने 10 मैचेस में 803 रन स्कोर किए, जिनमें 3 सेंचुरीज और 3 फिफ्टीज शामिल थी। वो अपनी टीम के लीडिंग रन स्कोरर रहे और सियालकोट को लगातार दूसरी फाइनल अपीयरेंस तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में भी उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने 448 रन बनाए और ये परफॉर्मेंसेस इस बात का सबूत थी कि अजान सिर्फ एक टैलेंटेड यंगस्टर नहीं बल्कि प्रेशर में रन्स बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका डेब्यू होना ही था। अगर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस में इतना ज़बरदस्त अगर उनके बैटिंग डिस्प्ले रहा है तो वहाँ पर पीसीबी के सेलेक्टर्स ने सोचा कि इस नौजवान खिलाड़ी को चांस दे देते हैं और उनका टेस्ट डेब्यू हुआ 8 मई 2026 नहीं इसी साल बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर के शेर ए बंगला स्टेडियम में। और उनका डेब्यू किसी ख्वाब से कम नहीं था दोस्तों। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग में अजान ने जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखाया। उन्होंने 103 रन की यादगार पारी

अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक अपडेट। और ऑफ कोर्स हम पिछले एक दो दिन से बात कर रहे हैं एप्पल की, तो मैं भी बात करूंगा क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू करना बहुत जरूरी हो चुका है। ऑफ कोर्स वी आर लेट टू द पार्टी, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हम चूंकि ये रिकॉर्डेड वर्जन आपके लिए तैयार करके लेके आए हैं, तो बनता है हमारा भी टू सेंट्स देना इनके प्रोडक्ट्स पे। सो मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, मैं आईफोन के लाइनअप के बारे में बात कर चुका हूँ, स्पेशली प्रो, प्रो मैक्स और उसके डुओ के बारे में जो हाईलाइट है ऑफ द होल इवेंट। लेकिन अब जरा बात करते हैं घड़ी और एयरपॉड्स के बारे में। नंबर वन जो बात करूंगा घड़ी के बारे में, घड़ी में इंप्रूवमेंट के तौर पर मुझे इंतजार था कि शायद इस बार कुछ बहुत ही खतरनाक बड़ा होने वाला है। एप्पल ने इस बार अपनी घड़ी को बेचने के लिए ये कहा है कि इट विल बी मोर रिलायबल। अगर हार्ट रेट को आपको जानना है, ज्यादा एक्यूरेट रहेगी इस बार की एप्पल वॉच, ऐसा एप्पल ने कहा है इसे बेचने के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारा जो सीरी इंटीग्रेशन है वो इसमें कहीं ज्यादा रहेगा। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि आवाज की क्लैरिटी पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। मीटिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए घड़ी का जो माइक है वो बाकायदा आपके लिए पूरी की पूरी MOM बना के दे देगा आपको। एंड जो घड़ी का वही लाइनअप जो उनका रहता है एकदम जो मेजर है, और उसके बाद जो उनका जो बड़े पट्टी वाली घड़ियां हैं वो भी रहेंगी। मगर आई थिंक

0: इतना इतना मेजर मेजर नहीं खेला है उन्होंने इस बार घड़ी में, जितना मुझे लग रहा था वो करेंगे. मतलब सेइंग के मैं हम हमारी घड़ी ले लो, क्योंकि अब घड़ी जो है आपकी दिल की धड़कन और एक्यूरेट बताएगी. एंड शुड नॉट बी द वे ऑफ सेलिंग इट. एटलीस्ट ये सेलिंग पॉइंट मुझे इतना नहीं जमा. पर देखो हैंड्स ऑन रिव्यू जब आएगा तो उसके बारे में फिर और ज्यादा गहराई से पता लगेगा. बट फॉर नाउ बैटरी लाइफ को उन्होंने बढ़ाया है, बोला कि बैटरी लाइफ ज्यादा आपको मिलेगी इस बार, पिछली बार के मुकाबले तो कहीं गुना ज्यादा मिलेगी. आई थिंक 35% ज्यादा का उन्होंने वादा किया है. तो अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम मुझे आ रही थी एप्पल की वॉच से वो यही थी कि जो चार्जिंग का सिस्टम है उसका थोड़ा सा वियर्ड है. कभी कभार लगता है कि पूरे दिन चल जाएगी, कभी कभार लगता है कि अरे क्या हो गया अभी तो, मतलब मैंने इतना तो यूज भी नहीं किया. एंड इसके साथ साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस किए ऑफ कोर्स मोर एप्पल वॉच फेसेस, जो कि मिसिंग थे. वो हमेशा वेट करना पड़ता था कि अब शायद अपडेट में कुछ नया आ जाएगा, बट दिस टाइम अराउंड दे हैव डेफिनेटली कम आउट दिल खोल के, और बहुत सारे एप्पल वॉचेस के जो चेहरे हैं उन्होंने वो दिए हैं. सो कुडोस टू दैट. और इसके अलावा जो उनके जो डिजाइन रहता है रिस्ट में अच्छा पट्टा होना चाहिए, जो बेल्ट होती है घड़ी की देसी भाषा में कहूं तो, वो इन्होंने काफी कलर्स में इंट्रोड्यूस करी है. और एक इन्होंने ग्लॉसी वर्जन भी लॉन्च किया एप्पल का मैट के अलावा, विच इज आई थिंक आर्मी ग्रीन और ब्राउन है. वो अलग ही कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उसका ग्लॉसी वर्जन भी है. तो आई थिंक घड़ी इस कलर में जब बिकेगी तो बहुत कमाल की बिकेगी. और इनके साथ इसके साथ इन्होंने टाइप भी किया है कुछ ब्रांड्स के साथ, ऑफकोर्स मैं उनका नाम ही लूंगा, मगर उसके साथ एक प्रीमियम वर्जन भी निकाला. आई थिंक वो जो गोल्ड वर्जन है एप्पल वॉच का वो भी सामने आपको नजर आ जाएगा. इफ यू वांट टू चेक, आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं. अब आ जाते हैं जरा एयरपॉड्स पे. सो एयरपॉड्स जो है अब हम 5 तक पहुंच चुके हैं, 5 प्रो पे आ चुके हैं, और अब तो कुछ भारी भरकम उम्मीद है. हालांकि डिजाइन वही आपको सेम नजर आएगा, नॉट दैट ऑफ अ ह्यूज डिफरेंस. नॉइस कैंसिलेशन के बारे में हम ऑलरेडी बात करते रहते हैं, एप्पल उसमें बहुत आगे है. नाउ दैट दे आर सेइंग कि उन्होंने अपने AI को इंटीग्रेट किया है अपने एयरपॉड्स के साथ भी. बाय दैट दे मेंट कि उन्होंने इस बार जो लाइव ट्रांसलेशन है उसको बेहतर बनाया. मैं सच में देखना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार के एयरपॉड्स प्रो 4 के साथ ट्रांसलेशन का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था. तो इस बार क्या इन्होंने किया है कि मैं कन्विंस हो जाऊं, वो देखने वाली बात है. हालांकि मैं आई वाज कम्प्लीटली सोल्ड आउट जब उन्होंने इस बार कहा कि फाइनली दे हैव अपग्रेडेड द बैटरी लाइफ एंड एवरीथिंग एल्स इन एयरपॉड 5. बट मैं एयरपॉड्स का पर्सनली फैन हूं. आई थिंक मैं उन लोगों में से आता हूं जो फोन के ज्यादा या फोन के इक्वल एप्पल के एयरपॉड्स का भी इंतजार करते हैं. सो आई एम वन ऑफ देम. सो ये मैं उनका मेन टारगेट ऑडियंस हूँ. तो मैं डेफिनेटली जब ये इंशाल्लाह यूज करूंगा तो मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा. बट इफ यू आर यूजिंग एयरपॉड्स 4 रीसेंट वाले, और जो उन्होंने लॉन्च किया था एक और लाइनअप, तो अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा उसमें, बिकॉज आई हैवंट यूज्ड देम. सो 666-22107 ये तुम्हारा व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया हैंडल्स है FM107 Qatar FM107 Qatar. दीज वर द अपडेट्स, मिलते हैं जल्द. Stay tuned. Tech update. Tech update.
1: आप सुन रहे हैं FM 107. FM 107. दिल से देसी.
2: Scam alert. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस का. वेल, हर रोज हम एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते रहते हैं, और आज जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, या कह लें बड़ा ही लाजवाब तरीके से दिमाग लगाते हुए क्रिएटिव स्कैम जरूर है. ये है एड्रेस अपडेट स्कैम. वेल, कैसे ये काम करता है इस पर हम बात करते हैं. मिसिंग डिलीवरी एड्रेस अपडेट स्कैम, ये इस स्कैम से अलर्ट रहना बहुत जरूरी है. ये स्कैम उन लोगों को टारगेट करता है जो ऑनलाइन ग्रोसरी या मील डिलीवरी का वेट कर रहे होते हैं. आपको एक अर्जेंट टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि ड्राइवर आपका घर जो है वो ढूंढ नहीं पा रहा है, आपने डिलीवरी के लिए एक वेबसाइट से कुछ ऑर्डर किया था ऐसा करके. फिर मैसेज में धमकी दी जाती है कि अगर आपने तुरंत लिंक पर क्लिक नहीं किया और एड्रेस अपडेट नहीं किया तो आपको ऑर्डर कैंसिल करके फेंक दिया जाएगा. जब आप गलती से उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक फेक ट्रैकिंग पेज खुलता है. वहां आपसे एड्रेस अपडेट करने के साथ साथ एक छोटी सी री डिलीवरी फी पे करने के लिए बैंक या कार्ड के डिटेल्स जो है वो मांगी जाती है. जैसे ही आप डिटेल्स एंटर करते हैं स्कैमर्स आपके अकाउंट से पैसे चुरा लेते हैं. इस स्कैम से बचने के कुछ तरीके हैं जिन पर आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, गौर करना.

0: करना चाहिए, क्या तरीके हैं, और वैसे सिर्फ इसी यू नो तरीके को फॉलो ना करें, मतलब जो मैं तरीका बताने वाला हूँ सिर्फ इस तरीके को फॉलो ना करके आप अपने दिमाग से भी काम ले, साथ ही ये जो तरीके मैं जो बताने वाला हूँ एक्चुअली बाकी स्कैम में भी ये फायदेमंद होते हैं। ऑफिशियल ऐप डायरेक्ट चेक करें, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपको कोई भी ऐसा मैसेज आए तो टेक्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बजाय हमेशा उस डिलीवरी कंपनी की ऑफिशियल मोबाइल ऐप खोलकर ऑर्डर स्टेटस चेक करें। कभी भी किसी मिसाल के तौर पे कोई एक यू नो ग्रोसरी का डिलीवरी वाला बंदा है या फिर कोई ऐसा फूड डिलीवरी वाला बंदा, उसने कहा कि मैसेज आया आपके पास, उसने कहा कि प्लीज आप लिंक जो दिया है उस पर अपडेट करें, तो ऐसा ना करें। जिस फूड डिलीवरी ऐप से आपने फूड ऑर्डर किया है उसी यू नो ऑफिशियल ऐप पर जाइए, उसी पर अपडेट करिए, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उसके अलावा टेक्स्ट लिंक पर क्लिक कभी ना करें, किसी भी अननोन नंबर से आए हुए एसएमएस या व्हाट्सएप लिंक्स पर क्लिक ना करें। डिलीवरी ड्राइवर्स आमतौर पर ऐप के थ्रू ही कॉल या मैसेज करते हैं, डायरेक्ट पर्सनल नंबर से एक्सटर्नल लिंक्स नहीं भेजते हैं। उसके अलावा बैंक डिटेल्स देने से बचें। डिलीवरी कंपनीज कभी भी एड्रेस सही करने या रीडिलीवरी के लिए आपसे रास्ते में बैंक का डिटेल्स या ओटीपी नहीं मांगती है। और आपने तो कई बार इस्तेमाल भी किया होगा, अलग अलग वेबसाइट का इस्तेमाल किया होगा ऑर्डर करने के लिए, आपके साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन कभी अगर ऐसा लगे कि यार मेरे पास मैसेज आया और ये फला जो मैसेज है इस पर आपको फोकस करना चाहिए, आपको लिंक करके यू नो लिंक अपडेट करना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा कभी ना करें, क्योंकि ये एक फेक और आपको फंसाने की तरकीब जो है वो हो सकती है। उसके अलावा ड्राइवर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करें, अगर सच में कोई इशू होता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाएं, वहां पर जो डिलीवरी ड्राइवर का नंबर पड़ा हुआ है उस पर कॉल करके बात करें और फिर पूछे कि क्या आपने ये मैसेज भेजा, क्योंकि कई बार यू नो ऐसे ऐसे लोग मिले होते हैं कि आपको पता भी नहीं होता है कि क्या असल में ये डायरेक्ट उस एप्लीकेशन के थ्रू मैसेज आ रहा है मेरे पास या फिर ये डिलीवरी वाले राइडर का है, तो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। इसलिए बहुत ही ज्यादा आपको श्योरिटी रखनी है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू ही या डायरेक्ट ड्राइवर को कॉल करने के बाद ही फैसला लें। हमेशा इनबिल्ट ऐप के चैट सिक्योर सिस्टम का ही इस्तेमाल करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं, और नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। ये स्कैम आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, विच इज मिसिंग डिलीवरी एड्रेस अपडेट। आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर जाते हैं, आपने किसी फूड को ऑर्डर किया और फिर ऑर्डर होने के बाद वो आपके घर के सामने खड़ा है, ऐसा डिटेल्स में लिख कर आता है, जब आपके पास डायरेक्ट मैसेज आता है, लेकिन बजाय इसके कि वो आपसे आपका एड्रेस पूछे, वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप एप्लीकेशन पे या फिर जो लिंक दिया है ना उस पर अपडेट करें। यहीं पर होता है सबसे बड़ा खेल और इस खेल के शिकार आप हो सकते हैं, इसलिए आपको होशियार रहने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
2: तो ये जानने के लिए सुनिएगा Generation Talk, Generation Talk with RJ Kabir and RJ Safa every Tuesday at 3 PM, at 3 PM. Only on FM 107, Dil Se Desi.
3: Number one hits music station.
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
6: FM 107.
4: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाया, थमने ना पाया। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107, दिल से देसी।
3: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
3: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम समझ कर उठाइए।
4: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सुन रहे हैं फ्यूचर करियर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मावशकान। ये वो शो है जहां हम उन करियर्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे मुस्तकबिल की दुनिया को शेप कर रहे हैं और स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स को समझने में मदद करते हैं कि कल की अपॉर्चुनिटीज के लिए आज से किस तरह तैयारी की जा सकती है। मैं हूं आपकी आरजे मावश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फील्ड की जो शायद नजर नहीं आती लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का लगभग हर हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, आप अपना टीवी या मोबाइल खोलते हैं और आपको कुछ मूवीज और ड्रामास रिकमेंड किए जाते हैं जो शायद आपको पसंद आ सकते हैं। आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ आपको वो प्रोडक्ट्स नजर आते हैं जो आपकी प्रीवियस सर्चेस या परचेजेस से मिलते जुलती होती हैं। आप कोई वीडियो देखते हैं और उसके बाद सिस्टम आपको उस तरह की मजीद वीडियो सजेस्ट करता है या फिर

आप गूगल मैप ये किसी नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल करते हैं और वो आपको बताता है कि किस रूट पर ट्रैफिक कम है, लेकिन सवाल ये है कि इन सिस्टम्स को कैसे पता चलता है कि हमें क्या पसंद आ सकता है। इस सवाल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जवाब है, डेटा। आज के डिजिटल जमाने में डेटा हमारी इकोनॉमी और डिसीजन मेकिंग का एक बहुत कीमती रिसोर्स बन चुका है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। लेकिन डेटा अपने आप में डिसीजंस नहीं लेता, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना काफी नहीं होता। असल चैलेंज ये है कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन में से यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाए, पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाएं, फ्यूचर ट्रेंड्स कैसे समझे जाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट इस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल डिसीजंस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। यहाँ से डेटा साइंस का रोल शुरू होता है। डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, टेक्नोलॉजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंबाइन करता है, और इस फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझने में मदद देते हैं कि डेटा उन्हें क्या बता रहा है। आज हर दिन हम अपनी एक्टिविटीज के जरिए डेटा जनरेट कर रहे हैं। हम क्या सर्च करते हैं, क्या परचेज करते हैं, किस लोकेशन पर जाते हैं, कितनी देर किसी वेबसाइट या वीडियो पर स्पेंड करते हैं, किस सर्विस को यूज करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन किसी ना किसी फॉर्म में डेटा बन सकती है। इसी वजह से कंपनीज के साथ साथ गवर्नमेंट्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, बैंक्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो डेटा को समझ सकें और उससे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकें। और यही वजह है कि डेटा साइंस को फ्यूचर करियर्स में एक इम्पॉर्टेंट फील्ड समझा जा रहा है। आज दुनिया भर में ऑर्गेनाइजेशंस पहले से कई ज्यादा डेटा जनरेट कर रही हैं, लेकिन डेटा की क्वांटिटी बढ़ना और डेटा का यूजफुल होना दोनों एक जैसी बात नहीं। एक कंपनी के पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो उन रिकॉर्ड्स को समझ नहीं सकती तो वो इंफॉर्मेशन उस कंपनी के लिए उतनी यूजफुल नहीं होगी। डेटा प्रोफेशनल्स इसी गैप को फिल करते हैं। वो रॉ इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, पैटर्न्स ढूंढते हैं, ट्रेंड समझते हैं और डिसीजन मेकर्स को एविडेंस बेस्ड डिसीजंस लेने में सपोर्ट करते हैं। तो अब आ जाता है हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या आप ऐसी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं जहां आपको काम गैस वर्क के बजाय डेटा और एविडेंस की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करना हो? सोचिए, क्या आपको नंबर में पैटर्न ढूंढना इंटरेस्टिंग लगता है? क्या आपको पजल्स और प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है? क्या आप टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चाहते हैं? या फिर आपको बिजनेस, हेल्थ केयर, बैंकिंग या किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है और आप टेक्नोलॉजी को उसके साथ कंबाइन करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो हो सकता है कि डेटा साइंस आपके लिए एक इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन हो। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि डेटा साइंस में कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल पर किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का कनेक्शन क्या है, और कतर में इस फील्ड के यंग प्रोफेशनल्स के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं। तो अगर आप फ्यूचर के करियर पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं डेटा साइंस करियर और बिग डेटा की ताकत। अब वक्त आ गया है हमारे सेगमेंट जॉब्स फॉर टुमारो का। अब वक्त है हमारे प्रोग्राम के उस सेगमेंट का जहां हम फ्यूचर के उन करियर्स को एक्सप्लोर करते हैं जो यंग पीपल के लिए नए डोर्स ओपन कर रहे हैं, और आज का फोकस है डेटा साइंस करियर। जैसा कि हमने पहले सेगमेंट में बात की, हम में से हर शख्स रोजाना डेटा क्रिएट करता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। जब हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सोशल मीडिया ब्राउज करते हैं, वीडियोस देखते हैं, जीपीएस यूज करते हैं या किसी वेबसाइट पर सर्च करते हैं, तो हमारी एक्टिविटीज से इंफॉर्मेशन जनरेट होती रहती है। अब सवाल

जरूरी है कि इस इंफॉर्मेशन का क्या किया जाए। कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए असल वैल्यू सिर्फ डेटा कलेक्ट करने में नहीं बल्कि उस डेटा को समझने में है, और इसीलिए डेटा साइंस से रिलेटेड करियर की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। सबसे पहले आ जाता है जो जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो है डेटा साइंटिस्ट की। डेटा साइंटिस्ट को आप डिजिटल दुनिया का डिटेक्टिव भी कह सकते हैं। एक डिटेक्टिव डिफरेंट क्लूज को कलेक्ट करता है, उनका कनेक्शन समझता है और फिर किसी कंक्लूजन तक पहुंचता है। बिल्कुल इसी तरह डेटा साइंटिस्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करता है और उसमें पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स ढूंढता है। डेटा साइंटिस्ट का काम सिर्फ नंबर्स देखना नहीं होता, वो डेटा कलेक्ट कर सकता है, उसे क्लीन और ऑर्गेनाइज कर सकता है, ट्रेंड्स एनालाइज करता है और प्रिडिक्शन मॉडल्स डेवलप कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक सुपरमार्केट ये समझना चाहती है कि ईद या फिर किसी हॉलिडे सीजन में कस्टमर्स कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा परचेज करेंगे। डेटा साइंटिस्ट पुराने सेल्स डेटा और कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करके ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर डिमांड का अंदाजा लगाने में हेल्प कर सकता है। इसी तरह हेल्थ केयर में डेटा साइंस पेशेंट इंफॉर्मेशन और मेडिकल डेटा को एनालाइज करने में सपोर्ट कर सकती है ताकि हॉस्पिटल्स बेटर प्लानिंग और पेशेंट केयर कर सकें। और अब बात करते हैं डेटा एनालिस्ट की। डेटा एनालिस्ट का प्राइमरी फोकस इंफॉर्मेशन को समझना और उसे यूजफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट करना होता है। उनका काम डेटा को ऑर्गेनाइज करना, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना और चार्ट्स और डैशबोर्ड्स क्रिएट करना हो सकता है। सोचिए, एक कंपनी के मैनेजर के पास हजारों सेल्स रिकॉर्ड्स हैं। मैनेजर के लिए हर सिंगल रिकॉर्ड को मैनुअली देखना मुश्किल होगा। डेटा एनालिस्ट उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर बता सकता है कि कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं, किस मंथ में सेल्स कम हुई और कस्टमर्स के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए। यानी डेटा एनालिस्ट नंबर्स को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकता है। अगला करियर है बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। ये रोल बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बीच एक ब्रिज का काम करता है। बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटजिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। वो क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, किस सर्विस में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कंपनी के लिए फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं। इस रोल में टेक्निकल नॉलेज के साथ बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट को डेटा मिलता कहाँ से है। यहाँ रोल आता है डेटा इंजीनियर का। डेटा इंजीनियर वो सिस्टम्स डेवलप और मेंटेन करते हैं जहाँ डेटा कलेक्ट, स्टोर और ऑर्गेनाइज होता है। वो डेटाबेसेस, डेटा पाइपलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं। अगर डेटा प्रॉपरली कलेक्ट और ऑर्गेनाइज ना हो तो डेटा साइंटिस्ट के लिए एक्यूरेट एनालिसिस करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए डेटा इंजीनियर भी डेटा इकोसिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज मार्केटिंग भी डेटा के बगैर इमेजिन करना मुश्किल है। मार्केटिंग डेटा स्पेशलिस्ट कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। वो देखते हैं कि कस्टमर्स किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन सी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा इफेक्टिव है और किस टाइप के कॉन्टेंट को लोगों की ज्यादा अटेंशन मिल रही है। इस इंफॉर्मेशन की मदद से कंपनीज अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करती हैं। और अब एक ऐसा करियर जो टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर के साथ कनेक्ट करता है, हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट। हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके पेशेंट केयर, हॉस्पिटल एफिशिएंसी, रिसोर्स प्लानिंग और रिसर्च को सपोर्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको हेल्थ केयर भी पसंद है और टेक्नोलॉजी भी, तो ये एक इंटरेस्टिंग करियर पाथवे हो सकता है। लिस्टनर्स, डेटा साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ एक इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं, बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो।

0: ट्रांसपोर्टेशन हो, स्पोर्ट्स हो, एनर्जी सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज, हर जगह डेटा का रोल बढ़ रहा है। और जब डेटा बढ़ता है तो उस डेटा को समझने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत भी बढ़ती है। इसलिए अगर आप टेक्नोलॉजी, नंबर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेटा साइंस को अपनी फ्यूचर करियर लिस्ट में जरूर कंसिडर करें, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ डेटा कलेक्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, फ्यूचर उन लोगों का होगा जो डेटा को समझकर उसे नॉलेज और एक्शन में कन्वर्ट कर सकें।
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
0: अब आ जाते हैं अपने शो के उस सेगमेंट की तरफ जिसको हम कहते हैं करियर टू कैंपस। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर करियर। आज हम डेटा साइंस की दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने देखा कि डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट जैसे प्रोफेशनल्स किस तरह ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, अगर आप स्टूडेंट हैं और फ्यूचर में डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको आज से क्या करना पड़ेगा? किस सब्जेक्ट पर फोकस करें, यूनिवर्सिटी में क्या स्टडी करें और कौन सी स्किल्स डेवलप करें? तो चलिए इस सेगमेंट में इसी जर्नी को समझते हैं। डेटा साइंस में जाने का एक पॉपुलर पाथवे है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस, एल्गोरिथम्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे स्किल्स सीखते हैं। ये स्किल्स डेटा साइंस के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोडिंग इंटरेस्टिंग लगती है और आप टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करते हैं तो कंप्यूटर साइंस आपके लिए एक यूजफुल एकेडमिक पाथवे हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि डेटा साइंस में जाने के लिए हर स्टूडेंट को सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही स्टडी करनी पड़े। डेटा साइंस के कई डिफरेंट पाथवेज हैं। आजकल यूनिवर्सिटीज में डेडिकेटेड डेटा साइंस डिग्री प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। इन प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स को स्टेट्स, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और डेटा मैनेजमेंट जैसे एरियाज का एक्सपोजर मिल सकता है। यहाँ स्टूडेंट्स सीखते हैं कि लार्ज डेटा सेट्स को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए और उनसे यूजफुल कंक्लूजंस कैसे निकाला जाए। अगर आपको मैथमेटिक्स और नंबर्स पसंद हैं, तो मैथमेटिक्स या स्टेट्स भी डेटा साइंस की तरफ जाने का स्ट्रॉन्ग पाथवे हो सकती है। डेटा साइंस में स्टैटिस्टिकल थिंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना होता कि नंबर्स क्या है, बल्कि ये भी समझना होता है कि उन नंबर्स के मीनिंग क्या है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई है तो एक डेटा प्रोफेशनल को ये भी इन्वेस्टिगेट करना होगा कि सेल्स क्यों इंक्रीज हुई है। क्या कस्टमर्स की डिमांड बढ़ी, क्या एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुल थी, क्या प्राइसेस चेंज हुए या कोई सीजनल फैक्टर था। यहाँ स्टेट्स और एनालिटिकल थिंकिंग का रोल सामने आता है। एक और इंटरेस्टिंग पाथवे है बिजनेस एनालिटिक। ये फील्ड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को डेटा एनालिसिस के साथ कंबाइन करती है। अगर आपको बिजनेस और टेक्नोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट है तो बिजनेस एनालिटिक्स आपके लिए यूजफुल ऑप्शन हो सकता है। इस फील्ड में स्टूडेंट सीखते हैं कि डेटा को यूज करके रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। डिग्री के साथ स्किल्स डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आती है टेक्निकल स्किल्स। स्टूडेंट्स को बेसिक डेटा एनालिसिस सीखना चाहिए। एक्सेल एक एक्सीलेंट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स पाइथन और SQL जैसी टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। पाइथन डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग में वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है, जबकि SQL डेटाबेसेस से इंफॉर्मेशन रिट्रीव और मैनेज करने के

लिए इम्पोर्टेंट है। डेटा विजुलाइजेशन भी सीखना यूजफुल है। नंबर्स को सिर्फ समझना काफी नहीं होता, कभी कभी आपको अपनी फाइंडिंग्स को चार्ट्स, ग्राफ्स या डैशबोर्ड के जरिए दूसरों को समझाना होता है। लेकिन डेटा साइंस सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का नाम नहीं, आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी चाहिए, आपको क्वेश्चंस पूछना आना चाहिए, प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से देखना आना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी फाइंडिंग को क्लियरली कम्युनिकेट करना आना चाहिए। आप कितने भी एक्सीलेंट एनालिसिस कर लें, अगर आप अपने रिजल्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो दूसरों के लिए उस एनालिसिस का बेनिफिट लेना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत वैल्यूएबल है। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो इंटर्नशिप एक्सप्लोर करें। बैंक्स, टेक्नोलॉजी कंपनीज, रिसर्च सेंटर्स, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज में डेटा रिलेटेड एक्सपोजर फ्यूचर एप्लीकेशन में हेल्पफुल हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी के दौरान रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करना आपको क्लासरूम नॉलेज को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने का मौका देता है। और अगर आप अभी स्कूल में हैं, तो ये मत सोचें कि आपको सब कुछ एक साथ सीखना है। आप स्मॉल स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक एक्सेल सीखें, सिंपल डेटा सेट्स के साथ प्रैक्टिस करें, फ्री ऑनलाइन एक्सपोजर करें, पाइथन के बेसिक समझें, छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं, और अगर डेटा कॉम्पिटिशंस या स्कूल प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले तो जरूर ट्राई करें। हर प्रोजेक्ट आपको कुछ नया सिखाता है और हर स्किल आपको फ्यूचर के लिए थोड़ा और प्रिपेयर्ड बनाती है। याद रखिए, करियर एक दिन में बिल्ट नहीं होता, करियर एक जर्नी है और डेटा साइंस की जर्नी भी लर्निंग, प्रैक्टिस और क्यूरियोसिटी से शुरू होती है। अगर आप फ्यूचर में डेटा साइंस को करियर बनाना चाहते हैं, आज का एक स्मॉल स्टेप कल की बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब मिलते हैं आपसे हमारे सेगमेंट AI and Work में। वेलकम बैक टू फ्यूचर करियर। आज हम डेटा साइंस के करियर ऑप्शंस और स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल पाथवेज के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम अपने एपिसोड के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का कनेक्शन। आजकल जब भी टेक्नोलॉजी और फ्यूचर करियर्स की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जिक्र जरूर होता है। लेकिन एक सवाल बेसिक है, AI का डेटा के साथ क्या कनेक्शन है? जवाब है, बहुत गहरा कनेक्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को सीखने, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने और प्रिडिक्शंस करने के लिए डेटा की जरूरत होती है। आप इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक बच्चा जब दुनिया को समझना शुरू करता है तो वो अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता है। वो लोगों को देखता है, डिफरेंट साउंड सुनता है, चीजों को आइडेंटिफाई करता है और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। इसी तरह AI सिस्टम्स भी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा से पैटर्न सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक AI सिस्टम को बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दिए जाएं, तो वो इन एग्जांपल्स में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना सीख सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, हर डेटा यूजफुल डेटा नहीं होता। डेटा की क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। अगर डेटा इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट या फिर बाइस्ड हो तो AI सिस्टम के रिजल्ट्स भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। इसीलिए डेटा साइंस प्रोफेशनल्स का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेटा साइंस और AI को आप एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड फील समझ सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करते हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं और प्रिडिक्टिव मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं। AI सिस्टम्स इन मॉडल्स और डेटा ड्राइवन टेक्निक्स को डिफरेंट टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। आज हम AI और डेटा की एप्लीकेशंस अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं। स्पीच रिकॉग्निशन इसका एक एग्जांपल है।
जब आप किसी डिजिटल

असिस्टेंट से बात करते हैं और वो आपकी वॉइस को अंडरस्टैंड करता है, तो उसके पीछे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा का रोल होता है। रिकमेंडेशन सिस्टम्स भी एक एग्जांपल है। जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आपको मूवीज या फिर प्रोग्राम सजेस्ट करता है या शॉपिंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है, तो डेटा और एल्गोरिथम्स दोनों का रोल हो सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी एआई और डेटा के कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। इसी तरह हेल्थ केयर में एआई बेस्ड सिस्टम्स मेडिकल प्रोफेशनल्स को इंफॉर्मेशन एनालाइज करने और कुछ सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने में हेल्प कर सकती हैं। बिजनेसेस भी एआई और डेटा को रैपिडली अडॉप्ट कर रहे हैं। कंपनीज कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए डेटा यूज करती हैं। वो प्रेडिक्ट करना चाहती हैं कि कस्टमर्स फ्यूचर में किस प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट ले सकते हैं। एआई और डेटा की मदद से कंपनीज सेल्स फोरकास्टिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर सर्विस और ऑपरेशनल प्लानिंग जैसे एरियाज में इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर बैंकिंग सेक्टर में अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा एनालिसिस और ऑटोमेटेड सिस्टम्स का यूज किया जा सकता है। रिटेल कंपनीज कस्टमर डिमांड का फोरकास्ट कर सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपनी ऑपरेशंस और इक्विपमेंट परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकती हैं। यानी एआई और डेटा सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रहे। लेकिन क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा? ये सवाल आज बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में है। अगर एआई इतना कुछ कर सकता है तो फ्यूचर में ह्यूमन प्रोफेशनल्स का रोल क्या होगा? रियलिटी ये है कि एआई पावरफुल टूल है, लेकिन ह्यूमन जजमेंट अब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एआई इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से एनालाइज कर सकती है, लेकिन ह्यूमंस को ये डिसाइड करना होता है कि सही क्वेश्चन क्या है, रिजल्ट्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या इंफॉर्मेशन रिलायबल है और किसी डिसीजन के इथिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एक डेटा साइंटिस्ट को सिर्फ कंप्यूटर से आंसर लेना नहीं होता, उसे ये भी समझना होता है कि आंसर का मीनिंग क्या है और ऑर्गेनाइजेशन को उस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना चाहिए। इसीलिए फ्यूचर वर्कप्लेस में टेक्निकल स्किल्स के साथ ह्यूमन स्किल्स की इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एथिकल जजमेंट और टीम वर्क। अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं और साथ ही लॉजिकली सोच सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने आइडियाज कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप फ्यूचर वर्कप्लेस में वैल्यूएबल बन सकते हैं। फ्यूचर में डेटा साइंस और एआई के दरमियान कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ कोडिंग सीखने पर फोकस नहीं करना चाहिए, उन्हें डेटा को समझना, साइंटिफिक स्टडीज, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन के डिफरेंट एरियाज में डेटा का यूज करते हैं। अगर आपको रिसर्च पसंद है और आप टेक्नोलॉजी और एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो एकेडमिक और रिसर्च एनवायरनमेंट भी आपके लिए एक पॉसिबली पाथवे हो सकता है। कतर में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? अगर आप कतर में स्कूल या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, तो आपको अभी से अपनी स्किल्स डेवलप करना शुरू करना चाहिए। सबसे पहले डिजिटल स्किल्स पर फोकस करें, बेसिक कोडिंग एक्सप्लोर करें, एक्सेल और डेटा एनालिसिस सीखें, लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को फॉलो करें और सबसे इम्पोर्टेंट क्यूरियस रहें। अगर स्कूल, यूनिवर्सिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंटर्नशिप, वर्कशॉप, रिसर्च

0: स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें और फिर ग्रेजुअली अपनी डायरेक्शन चूज करें। अगर आपको नंबर्स पसंद हैं, टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है, प्रॉब्लम्स सॉल्व करना अच्छा लगता है और आप एविडेंस की बुनियाद पर कंक्लूजन निकालना पसंद करते हैं, तो डेटा साइंस डेफिनेटली एक्सप्लोर करने के लायक फील्ड है। कतर हो या दुनिया का कोई भी और हिस्सा, फ्यूचर की इकोनॉमी में एक स्किल इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट होती जा रही है, इंफॉर्मेशन को समझना और उसे यूजफुल नॉलेज में कन्वर्ट करना। और शायद इसी वजह से डेटा साइंस को फ्यूचर करियर्स की लिस्ट में एक इम्पोर्टेंट जगह मिल रही है। तो यंग लिसनर्स, अपनी क्यूरियोसिटी को अलाइव रखें, टेक्नोलॉजी सीखें, क्वेश्चंस पूछें, स्किल्स डेवलप कीजिए और अपॉर्चुनिटीज के इंतजार के बजाय उनके लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं लोगों का होता है जो चेंज को समझने और उसके साथ ग्रो करने के लिए तैयार होते हैं। आज के फ्यूचर करियर की एपिसोड में हमने डेटा साइंस की दुनिया को एक्सप्लोर किया। हमने देखा कि हमारी एवरीडे लाइफ में डेटा कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। असल इम्पोर्टेंस इस बात की है कि हम उस डेटा को कैसे समझते हैं और उसमें से कैसे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मुख्तलिफ करियर्स के बारे में भी जाना, मैंने आपको बताया डेटा साइंटिस्ट के बारे में, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंट एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और इसके अलावा बहुत कुछ। इससे हमें एक इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है कि डेटा साइंस सिर्फ एक जॉब नहीं, ये स्किल्स का एक ब्रॉड कॉम्बिनेशन है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अप्लाई हो सकता है। और अब वक्त आ गया है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को दोबारा याद करने का। क्या आप ऐसे करियर में इंटरेस्ट रखते हैं जहां आपको काम गेस्ट वर्क के बजाय डेटा और एविडेंस की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करना हो? शायद आपका जवाब अब एपिसोड के शुरू से डिफरेंट हो सकता है पहले डेटा साइंस आपको सिर्फ नंबर्स और कंप्यूटर्स की फील्ड लगती हो, लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि डेटा साइंस असल में प्रॉब्लम्स को समझने, क्वेश्चंस पूछने, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने और इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल डिसीजंस में कन्वर्ट करने का नाम भी है। याद रखिए, फ्यूचर उन स्टूडेंट्स का नहीं जो हर आंसर आज ही जानते हैं, फ्यूचर उन स्टूडेंट्स का है जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
1: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आंखों में फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दो हवाला में कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
3: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं एक एहसास है कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है कभी नए सपने दिखाता है मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक हम बनेंगे आपकी आवाज डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास

0: सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar दिल से दे

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 106 दिल से देसी।
1: यस नाउ वेलकम टू FM 106 रहे हैं एंड आज द रिक्वेस्ट वाइब ही बिल्कुल डिफरेंट। मतलब जो कॉलेज के 9 दिनों की बात करते हैं ना, तुम्हारे जो लिसनर्स वो काफी खुश खुश रिक्वेस्ट भेज बस व्यूज हमें खो जाते हैं। शेख अली की डोकी सुनना है ये गाना।

जो कि स्कूल कॉलेज हर फिल्म के परफॉर्म में प्ले हो रहा है। आगे हम उसके बाद अमजद की रिक्वेस्ट है, ये पर्टिकुलर सॉन्ग हमारे ग्रुप का फेवरेट करता था। क्या बात, बड़ी शानदार रिक्वेस्ट है ये भी पर वो हमारे ऑल राइट। तो ये दो गाने हैं और आपकी कौन गाना है जो कि हम कह सकते ना कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप में बहुत पॉपुलर हुआ था, तो शेयर करें अपनी स्टोरी 666-2210 रिक्वेस्ट का। ये अमिता को इंतजार रहेगा।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर सवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
4: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, only on FM 107, दिल से देसी।
5: Yes, and now welcome once again FM 107, सुन रहे हैं आप। एंड यस, द रिक्वेस्ट शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। और आज की जो हमारी थीम है बड़ी सिंपल है, बड़ी प्यारी सी है, कि आप अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में जो आपका फ्रेंड चल रहा है या फ्रेंड्स ग्रुप रहे हैं, उसमें कौन से हिटेड गाने फेमस होते थे और बहुत एंजॉय करते थे। तो यस, वो लिस्ट आज मुझे चाहिए। हाँ, चाहो उसके पीछे की स्टोरी भी बता सकते हो। ठीक है, 666-777-6622-107 इज आर नंबर, इस पर जरूर शेयर करो अपने नाम की स्टोरी, अपने डेडिकेशंस। और अभी हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दैट इज शशाद आलम एंड वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: कुंवर काटियारा अजय देवगन दोनों डेब्यू फिल्म थी। इस स्टंट हमारे देवगन भाई ने कर, मतलब अजय देवगन ने सारे पैसे तो खूबसूरत गाना है कॉलेज स्कूल की शक्ल ने इनको हम फुल ऑन सुने के बाद में अनवर आदिल और रहीम भी फ्रेंड्स है, उन्होंने कहा कि मित्र ये गाना तो कि हमने अपने जिम में परफॉर्म भी दी है।
1: मुझको क्या है
0: भूल गया फ्रॉम द मूवी कुछ कुछ हुआ है, ये गाना पूरा पूरा आपको सुनने मिलेगा, तो बस रेडी हो जाइए इंजन के लिए अपने नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स खो जाएंगे। आप क्या सोच रहे हो भाई, बताओ बताओ कि फ्रेंड्स में कौन सा गाना बड़ा था, बड़ा फेमस था, डू शेयर विद अस 666-1107 पर अभी ये। हाँ यार रुक के एंजॉय करो गाने स्टेट।

0: 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 1488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर देसी।
2: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
3: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
2: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आप मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
4: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
5: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
4: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
6: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर्स। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
7: यस जनाब, वेलकम वेलकम वेलकम, FM 107 सुन रहे हैं आप। एंड यस द रिक्वेस्ट शो पर आज की थीम बड़ी कमाल की, आपके स्कूल कॉलेज के दिनों का वो फ्रेंड सर्कल जहाँ पर गर्ल ग्रुप्स होते थे, बॉयज बैंड्स होते थे, एंड लिटरली इन ग्रुप्स का ना कोई एक गाना था जो बड़ा फेमस होता था या बहुत अजीज था। तो वो उन गानों की रिक्वेस्ट आज आप कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर अपनी स्टोरीज के साथ। ठीक है, अभी मुझे मोहम्मद खलील का मैसेज आया है, इनफैक्ट असलम का भी मैसेज आया है, और वो सुनना चाहते हैं सुखविंदर सिंह की आवाज़ में ये गाना। कहते हैं कि जब तेरे नाम फिल्म आई थी तो उस टाइम से ये हमारे ग्रुप्स में बड़ा फेमस था, सो वी लव दिस सॉन्ग। गैस किया कौन सा गाना है? लगन लगी। सो पूरा पूरा ये गाना हम आपको प्ले कर रहे हैं, आपके लिए प्ले करने वाले हैं, और उसके बाद मुमताज अहमद की रिक्वेस्ट पर हम प्ले करने वाले हैं। क्या बात है, जानवर फिल्म का ये गाना, और बहुत ही मतलब खूबसूरत तरीके से इस गाने को गाया है, और हमारी कहते ना करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार की बड़ी यूनिक सी जोड़ी है। सो ये डेफिनेटली ये गाने हम इंजॉय करने वाले हैं, तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। और आपकी प्लेलिस्ट का कौन सा गाना है जो आपके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड ग्रुप्स की आपको याद दिलाता है? डू शेयर विद अस 6622107 पर। अभी बने रहे FM 107 पर दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस नाउ वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप। आइए आगे बढ़ते हैं। एक से बढ़कर एक रिक्वेस्ट हमारे शो पर आ रही है एंड डेफिनेटली आज का थीम बहुत ही प्यारा था। हमने ये रखा कि भाई देखो आपके स्कूल कॉलेज के दिनों में आपके दोस्तों के ग्रुप्स होते हैं, गैंग्स होती हैं, बैंड्स होते हैं, तो उस दौरान कोई गाना था जो आपको बहुत पसंद आया और आप सब साथ में गुनगुनाते थे लाइक इन्जॉय करते हुए, तो ज़रूर शेयर करें। कोई स्टोरी है तो भी शेयर कर सकते हैं, किसी खास को डेडिकेट करना है दैट ऑल्सो आप कर सकते हैं। सो 666-22-107 पर मैसेज कर सकते हैं। वेल अभी हमें मैसेज आया है शफक का और वो सुनना चाहती हैं।
2: उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में,
1: ये तो शादी वाला गाना हो गया।
2: जाऊंगा तुझे मैं डोली में,
1: बट फिल्म ये दिल आशिकाना एंड डेफिनेटली जब ये फिल्म आई थी तो एक वेव आई थी एक बड़े ही इनोसेंट लव की, और इस स्टोरी को इस फिल्म के गानों को बहुत इंजॉय किया गया था। क्या बात है। तो डेफिनेटली ये गाना पूरा पूरा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। उसके बाद कादिर अब्दुल हादी ने अपनी यादों में किसी खास को ये गाना डेडिकेट किया है। भाई बहुत ही खूबसूरत गाना है और के की आवाज़, ये गाना हम सबका फेवरेट है। और इस गाने के बीच में जब इस तरह के लिरिक्स आते हैं सोचते हैं क्या बोल रहे हैं। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे सिवैया सिवैया सुनाई दे रहा था, मतलब डोंट माइंड। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो बीच में ये फीमेल वॉइस है और ये जो गाना

गाने में लिरिक्स आप सुनते हैं, दैट इज अ स्पैनिश वर्ड सीगो में है, ठीक है, तो इसको अपने अंदाज में बोला गया है. और आज आपको पता चल गया कि बीच में जो बोला जा रहा है वो सिवैया नहीं है, वो स्पैनिश का वर्ड है सीगो में है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी रिक्वेस्ट इंजॉय करते हैं. और अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है जो भी प्ले होना बाकी है तो 666-22-107 पर हमसे जरूर शेयर करें. आगे आपके लिए क्विज टाइम हम लेकर आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड.

0: Yes, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी A for Amita.
1: आप सुन रहे हैं The Request Show A for Amita के साथ. Only on FM 107. दिल से देसी.
0: हाँ जनाब, तो वक्त भागे जा रहा है. Quiz time तो बनता है.
1: Quiz time.
0: ये गाना आपको पहचानना है जो हर स्कूल कॉलेज के फेयरवेल में बजते आया है.
2: तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो दूर.
0: सोचे सोचे कौन सा गाना है. 666-22-107 पर आप हमसे शेयर कर सकते हैं और ये गाना पूरा पूरा आपके नाम हो जाएगा. और इसी के साथ अब अगली रिक्वेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि मुझे अख्तर ने की है और ये बड़ा ही शानदार गाना है रंगीला फिल्म का. सो लेट्स एंजॉय टुगेदर. स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी.

मेरे कॉलेज के दिनों मेरे फ्रेंड ग्रुप पर फेवरेट है. आपने एंजॉय किया है M7 पर. आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल. हमारा बिल्कुल अपने काम पर आपको एक गाना बेहद खूबसूरत गाना है कि आज में जानो तो अपने कैसर ने अफजल ने जमील ने सही पहचाना एंड द सॉन्ग इज याओ. तो हर दोस्त के हर दोस्ती के नाम और इसी के साथ अपनी A4 में इजाजत दीजिए. मेरी मुलाकात होगी शाम 4 बजे से FM 107 सोशल मीडिया जुड़ जाइए. जाते जाते कहना तो बनता है हमें राय प्यार के. फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारा कतर या कॉर्पोरेट मार्केटिंग से कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाज के शाम के अजगार FM 107 पर। الله لا إله إلا هو الحي القيوم

फैमिली मोहब्बत, सपोर्ट, सेक्रिफाइस और कई दफा कॉम्प्रोमाइज़ का भी नाम है। लेकिन वक्त के साथ फैमिली डायनामिक्स बदल रहे हैं। जो माँ बाप कभी हमारा सहारा थे, एक वक्त आता है जब वो हम पर डिपेंड करने लगते हैं। और सच सच ये है कि फिर क्या हम उस तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर पाते हैं, जिम्मेदारी उठा पाते हैं? बस आज यही हमारा टॉपिक है। जो सच हमसे बचपन में छुपाया भी जाता है, कभी कभी वो हमारी जवानी के सामने या हमारी जवानी में हमारी जिंदगी का रुख बदल के रख देता है। आज ये भी टॉपिक है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कुछ अहम बातें। पहला कि क्या बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के वक्त आने के साथ पेरेंट्स के पेरेंट्स बन जाते हैं। फिर बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि वो अपने माँ बाप को उस तरह की इज्जत नहीं दे पाते या उस तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ नहीं पाते या फिर कभी कभी डोमिनेट करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि फैमिली सीक्रेट्स और फैमिली सेक्रीफाइसेस भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं? या आपका मानना है कि ट्रस्ट, ट्रुथ और फैमिली लॉयल्टी, ये सारी चीजें कोर वैल्यूज हैं? बस आज इन्हीं टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम और आप ये जानना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के पेरेंट्स क्यों बन जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी का सबसे इंटरेस्टिंग और इमोशनल साइकिल ये है कि जो पेरेंट्स बचपन में हमारी उंगली पकड़कर चलना हमें सिखाते हैं, एक वक्त आता है हम उनके सहारे बन जाते हैं या हमें उनका सहारा बनना ही चाहिए। जब हम बच्चे थे, हमारी हर जरूरत माँ बाप पूरी करते थे। स्कूल फीस से लेकर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स तक हमारी हर प्रॉब्लम उनकी प्रायोरिटी होती थी। लेकिन फिर वक्त बदला, पेरेंट्स रिटायर हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, कई बार एनर्जी कम हो जाती है और कई दफा डिसीजन मेकिंग भी मुश्किल हो जाती है। यहाँ से फैमिली रोल्स चेंज होना शुरू होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अडल्ट चिल्ड्रन का फर्ज है कि वो हर तरह से पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, या फिर क्या एक लिमिट होनी चाहिए? देखिए, इस सवाल का जवाब पूरी तरह से कोई भी नहीं दे पाएगा। लेकिन हाँ, हमारे कल्चर में आमतौर पर ये कहा जाता है कि पेरेंट्स की खिदमत करना जन्नत का रास्ता है, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आज के इस मॉडर्न जमाने में रियलिटीज कुछ डिफरेंट है। आज के अडल्ट चाइल्ड शायद खुद को अपनी जॉब हैंडल कर रहे हैं, स्ट्रेस में पाते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ आज का अडल्ट चाइल्ड शायद खुद अपनी जॉब हैंडल कर रहा हो, अपनी फैमिली को जो है वो उसकी टेक केयर कर रहा हो, या फिर अपने बचपन की एजुकेशन मैनेज कर रहा हो, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पूरे कर रहा हो, और फिर साथ ही एजिंग पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहा हो। ये सिचुएशन जो है वो इमोशनल भी है और प्रैक्टिकल भी। मिसाल के तौर पे कोई 40 साल का प्रोफेशनल है, उसके दो बच्चे हैं, घर का रेंट है, स्कूल फीस है, और इसी दौरान उसके पेरेंट्स रिटायर हो जाते हैं, उनकी हेल्थ खराब होने लगती है। अब हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस पर स्पेंड करना कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। वीकेंड्स पर उन्हें हॉस्पिटल्स ले जाना कुछ लोगों के लिए अगेन इरिटेटिंग हो जाता है, उनके बिल्स पे करना। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ, अपने मैरिज, अपने बच्चों को इग्नोर करना शुरू करके ये सब कर रहे हैं, तो शायद यहाँ से प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है बैलेंस। बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग जो हैं वो कई दफ़ा गिल्ट फील करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो नो कहेंगे तो बुरी बात है, या बुरा बेटा कहलाऊँगा या बुरी बेटी कहलाऊँगी। लेकिन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि केयर गिवर बर्न आउट एक रियल प्रॉब्लम है। केयर गिवर बर्न आउट तब होता है जब एक इंसान दूसरे की देखभाल में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपना इमोशनल और फिजिकल वेलबींग भूल जाता है। अक्सर हमने सुना होगा कि मुझे अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता, मैं हमेशा टेंशन में रहता हूँ। ये लाइंस बड़ी कॉमन है और मुझे लगता है कि मैं सबको खुश करने के चक्कर में खुश नहीं हूँ। दोस्तों, ये साइन है केयर गिवर प्रेशर, केयर गिवर प्रेशर ज्यादा होना। इसका सलूशन क्या है? कई बार हमें और आपको सलूशन समझ में नहीं आता। सबसे पहली बात, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बनाए। सारे सिबलिंग्स मिलकर पेरेंट्स की केयर प्लान करें। अगर तीन बहन भाई हैं तो सिर्फ एक पर सारा बर्डन ना डाला जाए। फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन भी शेयर होनी चाहिए।
विजिट्स भी शेयर होने चाहिए, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स भी शेयर होने चाहिए। पर हाँ, दूसरी बात, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स से रिस्पेक्टफुली बात करें, उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझें, अपनी लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, हेल्प लेने में शर्म महसूस ना करें। प्रोफेशनल केयर गिवर्स, नर्सिंग सपोर्ट, कम्युनिटी सर्विसेज भी फैमिली सपोर्ट का हिस्सा हो सकते हैं। कई लोग समझते हैं कि अगर उन्हें एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं या लेनी पड़ती है तो वो शायद अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल में इंटेलिजेंट केयर गिविंग वो है जो सस्टेनेबल हो। एक और अहम पॉइंट है इमोशनल डिपेंडेंसी। कभी कभी पेरेंट्स अपने अडल्ट चाइल्ड पर इमोशनली इतना डिपेंड कर लेते हैं कि चाइल्ड की पर्सनल लाइफ अफेक्ट होने लगती है। इस सूरत में हेल्दी बाउंड्रीज जरूरी है। बाउंड्रीज बदतमीजी नहीं है, बाउंड्रीज रिस्पेक्ट का दूसरा नाम है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि नहीं, सवाल ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह निभाया जाए कि ना पेरेंट्स नेगलेक्ट हो और ना चिल्ड्रन इमोशनली और फाइनेंशियली कोलैप्स करें। फैमिली केयर मोहब्बत से होनी चाहिए, गिल्ट से नहीं, रिस्पेक्ट से होनी चाहिए, प्रेशर से नहीं। और जब फैमिली के तमाम मेंबर्स मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं तो केयर गिविंग बर्डन नहीं रहती, बल्कि एक कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ लव बन जाती है। जब बच्चे पेरेंट्स का सहारा बनते हैं तो फैमिली का एक नया जो होता है। लेकिन हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी बैलेंस चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। चलिए अब में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल या सेंसिटिव टॉपिक पर, और ये है फैमिली। कई बार मेरे जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, लेकिन किसान की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सीक्रेट उनके सामने आ जाता है और उसके बाद वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से इनकार कर देते हैं। अब एक छोटी सी मिसाल दूंगी सेकेंड मैरिज की। ये छोटा सा किस्सा है, मेरे नेबर हुआ करते थे। उनकी बहुत सालों तक हमें भी नहीं पता था कि ये जो वाइफ, जो आंटी उनके साथ रहती हैं, वो उनकी सेकेंड वाइफ है, और शायद उनके बच्चों को भी इस बारे में नहीं पता था। लेकिन ऑल ऑफ सडन ये सीक्रेट जो था वो उनके बच्चों पर और हम सब पर भी लेटर ऑन रिवील हुआ। बच्चे भी बड़े हो गए थे और शायद अंकल आंटी भी एज कर रहे थे। अब ऐसे में हुआ ये कि जिस तरह से ये सीक्रेट उनके सामने आया, बच्चों ने अपने फादर की और मदर की तो शायद बिल्कुल भी नहीं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया। बच्चों के दिल में एक गुस्सा था, एक नफरत थी, एक चिढ़ थी जो साफ तौर पर नुमाया हो रही थी। उन्हें लगा कि उनके माँ बाप ने उनसे, स्पेशली बाप ने, इतनी बड़ी बात इतने लंबे अरसे छुपा कर रखी और शायद इसी वजह से अब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उस तरह से उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं थे। अब यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आप पर पूरी तरह से ट्रस्ट करें या आप उन पर पूरी तरह से यकीन करें, तो इस प्रोसेस को टू वे प्रोसेस बनाइए। हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें होती हैं जो सबको नहीं बताई जाती। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी छुपाते हैं और उनकी बेहतरी के लिए छुपाते हैं। कभी फैमिली किसी रिलेटिव की इलनेस या पुराने वाकयात जो है उन्हें डिस्कस नहीं करते, और कभी कुछ सीक्रेट्स इतने गहरे होते हैं कि पूरी जिंदगी उनका जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन सवाल ये है कि क्या फैमिली पीस के लिए कुछ सच छुपा लेना ठीक है, या हर फैमिली मेंबर को सच बता देना उसका हक बनता है, जरूरी है? देखिए, कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि कुछ सच सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर बच्चे हर चीज जान जाएंगे तो टेंशन में आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक फादर अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फैमिली से छुपाता रहता है। उनकी नीयत नहीं बुरी होती, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली को परेशानी से बचाना चाहते हैं। लेकिन जब अचानक फाइनेंशियल क्राइसिस सामने आते हैं तो फैमिली शॉक में रह जाती है। इसी तरह कई बार एडॉप्शन, इनहेरिटेंस डिस्प्यूट, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर सेकेंड मैरिज जिसका मैंने जिक्र किया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं फैमिलीज में जो सालों तक सीक्रेट रखे जाते हैं। लेकिन

प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब सच देर से सामने आए। लोग अक्सर कहते हैं काश मुझे पहले पता चल जाता, सबसे ज्यादा तकलीफ झूठ से हुई वगैरह वगैरह। असल में लोग सच से कम और धोखे से ज्यादा हर्ट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर सच हर वक्त बताना जरूरी है। विजडम और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फैमिली को ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन है और कौन सी डिसेप्शन है। देखिए, हेल्दी फैमिली वो नहीं जहां कोई सीक्रेट ना हो, हेल्दी फैमिली वो है जहां ट्रस्ट मजबूत हो, जहां जरूरी सच मुनासिब वक्त पर ऑनेस्टली और रिस्पेक्ट के साथ शेयर किया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें और आपको याद रखनी चाहिए। टेम्परेरी पीस के लिए छुपाया गया सच कई दफा परमानेंट ट्रस्ट को डैमेज कर देता है। दोस्तों, हर फैमिली में एक इंसान ऐसा भी होता है जो सबको जोड़ के रखने का काम करता है। कई बार ये रोल माँ अदा कर रही होती है, कई बार ये रोल फादर अदा कर रहे होते हैं, या कई बार कोई बड़ा भाई बहन है या कोई बेटा। ये वो लोग हैं जो हर जगह कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, हर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, हर फैमिली मेंबर को खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस तरह की इमोशनल कॉस्ट से वो गुजर रहे होते हैं? बहुत से लोग अपनी खुशी, अपनी ड्रीम्स, अपनी मेंटल हेल्थ कुर्बान कर देते हैं और सिर्फ इसलिए कि फैमिली में पीस बना रहे। मिसाल के तौर पे एक बेटी जो अपने करियर को छोड़ देती है या परस्यू करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि उसके पास वक्त ही नहीं है। या एक बेटा जो अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा घर वालों की जरूरत पूरी करने में लगाता है और खुद सेविंग्स नहीं कर पाता, ये सेक्रीफाइसेस मोहब्बत की निशानी है। लेकिन जब सेक्रीफाइस एप्रिसिएशन के बगैर एक रूटीन बन जाए, तब वो सेक्रीफाइस नहीं, बोझ महसूस होता है। कई लोग दिल में रिसेंटमेंट डेवलप कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने सबके लिए किया, मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। फैमिली को जोड़ना बहुत ही खूबसूरत बात है, मगर अपनी आइडेंटिटी खोना खूबसूरत बात नहीं है। अगर आप हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देते रहेंगे और खुद को इग्नोर करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इमोशनल एग्जॉशन लाजमी हो जाएगा। शायद इसीलिए सेल्फ केयर सेल्फिशनेस नहीं है। हेल्दी बाउंड्रीज फैमिली को तोड़ती नहीं, जोड़ती हैं, मजबूत बनाती हैं। यहाँ ये बात हमेशा याद रखिए कि आप खुद इमोशनली स्ट्रांग होंगे तभी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे। हमने कई बार देखा भी है, महसूस किया है और लोग बात भी करते हैं कि अगर फैमिली ट्रस्ट होती हो तो फिर ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। वहां मैं ये भी कहूँ, फैमिली का फाउंडेशन ऑफ कोर्स ट्रस्ट है, लेकिन कई दफा लॉयल्टी और ऑनेस्टी एक दूसरे के मुकाबले खड़े नजर आते हैं। असल तौर पे एक नंबर अहम बात छुपा रहा है। आप क्या करेंगे बताइए, निभाएंगे या सच बताएंगे? यही डिलेमा बहुत सीखना पड़ता है। अगर कोई फैमिली मेंबर उसकी हर करना लॉयल नहीं है, बल्कि सच बताना और गाइड करना लॉयल साथ जाते हैं और टूटने पर सेकंड्स लोग डिस्कवर करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट बात चाहती है, तो इससे उनका ट्रस्ट और थोड़ी बड़ा मुश्किल होता है। तो फैमिली रिलेशनशिप की स्थिति में है, ऑनेस्टी का मतलब नहीं है, ऑनेस्टी का मतलब ट्रांसपेरेंट होना है। सच एम्पैथी साथ बोला जाए तो वो रिलेशनशिप को मजबूत करता है। झूठ कंफर्ट दे, लेकिन सच लॉन्ग स्टेबिलिटी देता है। इसीलिए फैमिली लॉयल्टी को अपो फोर्सेस नहीं चाहिए, इन दोनों का बैलेंस ही हेल्दी रिलेशनशिप की। तो कहूंगी दोस्तों, जिंदगी एक फता है कि जब फैमिली रोल्स कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, जब पेरेंट्स जो हमेशा हमारे लिए डिसीजंस लेते थे, डिसीजन नहीं ले, जो भी डिसीजन मेकर्स थे।

0: से भी मिल रहा होता है, बच्चों की जो मस्ती उसके चलते भी मिल रहा होता है। यानी एक इंसान एक ही उम्मीद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर प्रेशर हो, इस अक्सर हम अब कहते हैं सैंडविच जनरेशन। आपने सुना भी, मिसाल के तौर पर एक बच्चा सुबह बच्चों को फिर शाम को पेरेंट्स को मैनेज करना या उन्हें लेकर जाना और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, फिजिकल एग्जॉशन या फिजिकल लोड नहीं है, इमोशनल लोड ही है। इसीलिए रोल्स के बाद सबसे अच्छी चीज है कम्युनिकेशन। पेरेंट्स को अपनी नीड्स ओपनली शेयर चाहिए और बच्चों को अपनी लिमिटेशन ओपनली बताए। रिस्पेक्ट दोनों तरफ से चाहिए। अडल्ट चाइल्ड को याद रखे पेरेंट्स की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और पेरेंट्स को भी याद रखना है कि उनके बच्चों की अपनी जिंदगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैमिली का असल हुस्न इसलिए ना पूरी डिपेंडेंसी ना पूरी डिस्टेंस, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं।
1: F107 पर अपने बिजनेस एडवाइस करने के लिए आज तक हमारी कतर मीडिया कॉर्पोरेट की मार्केटिंग टीम से 8886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं सक F107.
1: F107.
2: Log into our website or queue download the app and see now.
4: नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और अमनाथ एवरी थर्सडे 7:15 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
5: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है।
6: अल्लाहु अकबर।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: مشاہدے میں آیا ہے کہ ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ نفرت کے بیچ سے گھنا درخت کب بنتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یقین جانیے کہ زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ انسان محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. نفرت کے لیے لوگ وقت نہ جانے کہاں سے نکال لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالی ہے.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
1: دل سے دیسی. دوستو آج ہم نے بات کی رسپانسبلٹیز کی. بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کے پیرنٹس کیوں بن جاتے ہیں, پھر کس طرح سے کئی بار جو سیکرٹس ہیں جو چھپائی جاتی ہیں باتیں وہ بھی بچوں کو اپنے پیرنٹس سے دور کر دیتی ہیں, کیسے ٹرسٹ اور لائلٹی کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے. دیکھیں میں یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہر فیملی کا جو سفر ہے وہ مختلف ہے, لیکن ایک چیز جو ہر فیملی میں کامن ہے اور وہ ہے محبت. محبت کے ساتھ کمیونیکیشن اور رسپیکٹ. جب ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, سچ کو وزڈم کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں اور رسپانسبلٹیز کو مل بانٹ کر اٹھاتے ہیں, دا فیملیز صرف اور صرف سروائیو نہیں کرتی بلکہ وہ تھرائیو کرتی ہیں, ہے نا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ بچے پیرنٹس کے پیرنٹس بن جاتے ہیں تو یہ جو سینٹینس ہے وہ سننے میں بڑا عجیب سا بھی لگتا ہے. آخر پیرنٹس تو پیرنٹس ہیں اور بچے تو بچے ہیں, لیکن زندگی کے سفر میں رولز اتنے بدل جاتے ہیں کہ اڈلٹ چائلڈ اپنے ماں باپ کی کیئر, پروٹیکشن اور ڈیسیشن میکنگ کی ذمہ داری اٹھانا شروع کر دیتا ہے, چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے. اب دیکھیے ہم نے بہت ساری چیزیں پوچھی کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا ایموشنل اثر کیا ہوتا ہے, سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے بخوبی نبھا پاتے ہیں. زندگی ایک سائیکل ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم پوری طرح سے اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. جیسا ہم نے بات بھی کی, وہ ہمیں چلنا سکھاتے ہیں, بولنا سکھاتے ہیں, اسکول بھیجتے ہیں, ہماری لائف کے جو بڑے بڑے ڈیسیشنز ہیں وہ لیتے ہیں اور اس طرح سے پوری طرح سے ہم ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن پھر وقت بدلتا ہے. ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب وہ ہم پر پوری طرح سے ڈیپینڈ کرتے ہیں. پیرنٹس کی ایج بڑھتی ہے, ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, انرجی کم ہوتی ہے, میموری کم ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہم پہ ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں. اور پھر بچہ کہتا ہے ابو دوا لے لیجیے, امی ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آپ بھول گئیں, یا یہ پیپر ورک میں کر دیتا ہوں, آپ سائن بھی صحیح سے نہیں کر پا رہی. یہ سارے رول ریورسلز شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے کیسز میں میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. شاید انہوں نے اس طرح سے ریٹائرمنٹ پلان نہیں کیا یا کوئی اور بھی ان کی سورس آف انکم نہیں ہوتی, اور پھر یہاں سے فیملی میں ایشوز بھی شروع ہوتے ہیں. میڈیکل ایکسپینسز زیادہ ہے, ایک ہی بچہ رسپانسبلٹی اٹھا رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ ڈسٹینس کریٹ کرنے لگتی ہیں. اور ہمارے کلچر میں یہ بڑی عام سی بات ہے کہ بڑا بیٹا ہے, بڑا جو ہے وہ گھر کا ذمہ دار ہے, اسے ساری ذمہ داری اٹھانی ہے, اور بیٹیاں بس آئیں گئیں, اور کیا شادی شدہ بیٹیاں ہیں تو وہ ذمہ داریاں نہیں اٹھاتی. لیکن حقیقت میں بیٹا ہو یا بیٹی, بڑا ہو یا چھوٹا, ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں. ہاں وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں جہاں پر ایک ہی بچہ ہے اور سنگل چائلڈ ہے تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے, لیکن اگر بچے ہیں دو تین چار تو یہاں سب کی ذمہ داری ہے. سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں. کئی دفعہ یہ رسپانسبلٹی, یہ ذمہ داری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے یا اتنی زیادہ لگتی ہے کہ بچے اپنی فائنینشیل پلاننگ کو لے کر پریشان ہوتے ہیں, اپنے بچوں کی فیوچر کو لے کر پریشان ہوتے ہیں. دیکھیے ایج کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ ہے ہیلتھ کا. ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, ہارٹ ایشو, جوائنٹ پین, کئی بار ڈیمینشیا یا اور بھی پرابلمس آ جاتی ہیں. اب سب سے بڑا کام ہے ہاسپٹل کے ایکسپینسز. اب آپس میں بچے جو ہیں وہ شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوتے, یا پھر ہاسپٹل وزٹس, میں بزی ہوں, تم بزی ہو, یہ وہ, بہت ساری باتیں چلتی ہیں. جو سب سے بڑی اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں ایک گڈ بیلنس آپس میں کریٹ کرنا چاہیے. शायद मैंने स्टार्ट से ही बात की है कि हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए। अपने पेरेंट्स के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में आपस में भाई बहन मिलके बैठ के बात करें। आज की दुनिया डिजिटल हो चुकी है, ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, कितनी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, मेडिकल पोर्टल्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स हैं। कई सीनियर सिटीजंस के लिए सब आसान कर दिया गया है, उनके लिए अलग से लाइंस होती हैं। यहाँ भी बच्चे पेरेंट्स के टीचर और गाइड बन जाते हैं। आज कई पेरेंट्स बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स तक हर चीज के लिए अपने बच्चों पर ही डिपेंड करते हैं और ये डिपेंडेंसी इतनी बढ़ जाती है कि शायद इसका कुछ लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। एक और चीज मैं कहूंगी कि इमोशनल सपोर्ट के बिना इस एज में बड़ी जरूरत होती है। हर डिपेंडेंसी फाइनेंशियल या फिर फिजिकल नहीं है। कई बार पेरेंट्स इमोशनल सपोर्ट के लिए भी बच्चों पर डिपेंड होने लगते हैं। रिटायरमेंट के बाद अब सोशल सर्कल छोटा हो गया, फ्रेंड्स कम हो गए, बच्चे अपनी जिंदगी में बिजी हैं, पेरेंट्स जो हैं वो लोनलीनेस का शिकार है। ऐसे में अडल्ट चाइल्ड सिर्फ केयर टेकर नहीं है, वो लिसनर भी है, वो फ्रेंड भी है, वो इमोशनल सपोर्ट भी है। और वही क्यों है, बाकी कहाँ है? कई पेरेंट्स रोज अपने बच्चों का फोन का वेट करते हैं। एक छोटी सी कॉल भी उनके दिन को खूबसूरत बना देती है। हर रोल रिवर्सल ओल्ड एज में नहीं होता। कभी कभी बच्चे बचपन से ही पेरेंट्स जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना शुरू कर देते हैं। अगर फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, अगर किसी पेरेंट की इलनेस है, अगर डिवोर्स या फिर सेपरेशन है, तो बच्चे इमोशनल बर्डन उठाना शुरू करते हैं। वो अपने सिबलिंग्स का भी ख्याल रखते हैं। पेरेंट्स को इमोशनली सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, फिजिकली सपोर्ट करते हैं और कई दफा अपने एज से ज्यादा मैच्योर भी हो जाते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजी में इसे पेरेंटिफिकेशन कहा जाता है। ऐसे बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी जब बच्चा बच्चा रहने की बजाय पेरेंट का रोल करे तो ये पेरेंटिफिकेशन सामने आती है। ये सिचुएशन इमोशनल प्रेशर भी क्रिएट करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ये मोहब्बत है या एक बर्डन है? क्या पेरेंट्स की केयर करना बर्डन लगता है बच्चों को? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, ऐसा होना भी चाहिए। ये मोहब्बत और ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेशन है, इसे प्रॉब्लम ना समझें। लेकिन हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेक्रीफाइस के दरमियान हम बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते। अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, मैरिज लाइफ को इग्नोर कर रहे हैं, अपने करियर को इग्नोर कर रहे हैं, हर वक्त स्ट्रेस में हैं, तो ये आपके ऊपर बर्डन बनेगा। मोहब्बत और प्रेशर में फर्क है। मोहब्बत जो है वो इंसान को खुश रखती है और प्रेशर इंसान को थका देता है। कई फैमिलीज में एक प्रॉब्लम ये बड़ी है कि दूसरे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही नहीं चाहते। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक चाइल्ड पर है, एक बच्चे पर है। मिसाल के तौर पे तीन बहन भाई हैं, लेकिन पेरेंट्स की देखभाल सिर्फ एक कर रहा है, बाकी सिर्फ दूर से बैठ के मशवरा दे रहे हैं। ये सिचुएशन रिसेंटमेंट क्रिएट करती है। फैमिली केयर एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट भी, टाइम भी, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी। जब काम डिवाइड होता है तो प्रेशर कम होता है। रोल रिवर्सल का मतलब ये भी नहीं है कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कम की जाए। कई दफा एडल्ट चिल्ड्रन डिसीजन मेकिंग करते करते कंट्रोल करने लगते हैं। याद रखिए, पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स रहते हैं। एज और डिपेंडेंसी उनकी डिग्निटी नहीं कम करती। उन्हें कंसल्ट करें, उनकी ओपिनियन लें, उनकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दें। और सबसे जरूरी बात, केयर। केयर का मतलब कंट्रोल करना नहीं है, केयर का मतलब सपोर्ट करना है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज फैमिलीज में जो दरार नजर आती है उसकी वजह है कि हम और आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करते, जबकि हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट होनी चाहिए। आप हेल्प लेना चाहते हैं, जरूर लीजिए। हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, यह आपकी स्ट्रेंथ है। फैमिली मेंबर्स को, हर एक मेंबर को इन्वॉल्व करें, प्रोफेशनल सपोर्ट लें और अपने लिए वक्त भी निकालें। खुद का ख्याल रखना सेल्फिशनेस नहीं है, ये एक जरूरत है, नेसेसिटी है। और आप इमोशनली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग तभी रह सकते हैं जब आप खुद का ख्याल रखते हैं, और जब आप खुद का बेहतर तरीके से ख्याल रखते हैं तो शायद आप दूसरों का भी ख्याल रख पाते हैं। आखिर में दोस्तों, मैं एक चीज और कहूंगी कि जब बच्चे पेरेंट्स के पेरेंट्स बन जाते हैं तो असल में जिंदगी अपने साइकिल कंप्लीट कर रही होती है। कल जो हाथ हमें संभालते थे, आज हम उन हाथों को सहारा देते हैं और देना चाहिए। कल जो लोग हमें अपनी दुनिया समझ रहे थे, आज हम उनकी दुनिया बने। ये रोल रिवर्सल सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ये मोहब्बत, ग्रैटिट्यूड और फैमिली बॉन्ड का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है। लेकिन इस सफर में गुडबस जरूरी है, इस सफर में रिस्पेक्ट होना जरूरी है, इस सफर में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना कि केयर गिविंग एक इंसान की नहीं पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब फैमिलीज मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं ना, तब ना पेरेंट्स बोझ बनते हैं, ना बच्चे थक उठते हैं, और ना किसी एक को ऐसा लगता है कि सिर्फ वही पिस रहा है, बल्कि फैमिलीज एक दूसरे के साथ मिलकर एक अच्छा वक्त और मेमोरीज क्रिएट करती हैं। तब फैमिलीज सिर्फ और सिर्फ सरवाइव नहीं करती, बल्कि मिलकर थ्राइव करती हैं, है ना। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाजत लूंगी, अपना ख्याल रखिए, कल वापस एक और टॉपिक पर बात करेंगे। अपने पेरेंट्स की जाते जाते यही कहूंगी कि कदर कीजिए, अपनी फैमिली को वक्त दीजिए और मोहब्बत का इजहार टाइम टू टाइम करते रहिए, क्योंकि आखिर में जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत ना पैसा है ना स्टेटस है, बल्कि वो लोग हैं जो हर दौर में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसी के साथ नाजिया और शहबाज अंसारी, हम दोनों को इजाजत, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
4: फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: या हबीबी टाइम फॉर द टाइम चेक एफएम 107 की स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 6:02 और आप सुन रहे हैं शो
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
4: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: दिल से देसी इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में अनप्लग्ड इवनिंग 6 से लेकर 7 बजे तक हमारा और आपका साथ है और क्या कुछ चल रहा है कुछ नया जिंदगी में हो रहा है कि नहीं वेल मेरे जिंदगी में एक चीज तो बड़ी गजब की नहीं हो रही है पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स जैसी चल रही है जो मैं देख रहा हूं ना फिर वो लगातार देखता चला जा रहा हूं जैसे होता ना सोशल मीडिया में आपने एक ऐसी रील देख ली खाने पीने की रील देख ली आप लगातार खाने पीने की रील जो है वो आई आ रही है और आप वही बार बार देखे जा रहे हैं और ऐसे ही अब मेरी जिंदगी में जो चीज हो रही है असल में जो चेहरे के सामने आंखों के सामने जो घटना घट रही है वो लगातार मेरे को देखने को मिल रही है कुछ दिन पहले ऐसे मैंने देखा कि किसी की गाड़ी खराब है फिर मैंने वो दिन और उसके अगले दिन और उसके भी अगले दिन यानी कि 3 दिन लगातार लोगों की कई अलग अलग जगह पर गाड़ी खराब होते हुए देखी इवन आज भी मैंने एक जगह देखी गाड़ी खराब होते हुए तो मेरे को लगा ठीक है ये होता है आमतौर पर कभी कभार चीजें दिख जाती है फिर मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक बार किसी के टायर को पंचर होते हुए देख लिया और मजे की बात देखो एक होता है कि टायर पंचर है तो अगली गाड़ी जब आप देख रहे हैं तो उसका 4 में से कोई और टायर पंचर है तो अगर मैंने लेफ्ट साइड के टायर को पंचर वाला देख लिया है तो भाई बाकी की जो 5-6 गाड़ियां और देख रहा हूं घूमते फिरते चलते हुए शहर में मुझे वो गाड़ी के लेफ्ट हैंड के टायर पंचर होते हुए दिख रहे हैं ये कौन सा एल्गोरिथम है यार अभी तक तो यार सोशल मीडिया का एल्गोरिथम चलता था

0: कहीं पैसे पड़े हुए ना मिल रहा यार। जो एल्गोरिदम लाइफ में चलना चाहिए वो नहीं हो रहा है भाई, कि जिस चीज की जरूरत है वो एक बार मिल जाए तो फिर लगातार 3-4 दिन तक मिल रहा हो। तो आज भी मैंने गाड़ी खराब देखी, लेकिन वो लेफ्ट टायर जो है, आगे का लेफ्ट टायर, वो पंचर देखा। ये कैसी जिंदगी है यार, क्या चल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग के हाथों में चिप लगी गई है कि भैया आपकी लाइफ भी जो है वो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ही चलेगी, माफ कीजिएगा। हो सकता है। वेल, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है आप भी बता सकते हैं। नंबर 666-22-107, 666-22-107। और हर रोज की तरह एक सवाल जो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है, झकझोर देता है। वैसे आज का जो सवाल है वो ऑनेस्टी पर है, ईमानदारी से आज आपको जवाब देना है। मुझे लगता है कि शायद किसी ने ये सवाल आई गेस पूछा नहीं होगा, या अगर हम पूछा हो तो कभी बहुत जमाने पहले मैंने ही शायद पूछा हो। तो ये जो आज का सवाल है ये ईमानदारी पे है, ऑनेस्टी पे है। तो चलो आज का सवाल जो मैं कर रहा हूँ, देखते हैं लोगों के अंदर कितनी ईमानदारी है।
1: मेरे सवाल का जवाब दो, दो ना।
0: हाँ, तो आज 23 तारीख है और 23 तारीख को एक सवाल मेरे मन में जो चल रहा है वो ये कि इंसान जो है ना अपनी बुरी आदतों के बारे में एक्सेप्ट ही नहीं करता। डेली एक तो कोई आप गलत आदत अपना रहे, कोई एक गलत हैबिट है आपकी, लेकिन आप मान भी नहीं रहे। ठीक है, आपको पता है कि ये गलत आदत है लेकिन आप मान नहीं रहे, या फिर दूसरों की गलत आदत है और वो नहीं मान रहे और कन्फेस नहीं कर रहे। तो आज आपको ईमानदारी से कन्फेस करना है कि आपकी एक कोई बुरी आदत है भाई, आपको पता है लेकिन आप मान नहीं रहे कि ये तो बुरी आदत है। आज देखते हैं कितने ईमानदार हमें सुन रहे, जरा गिरवान में झांक कर देखो भाई साहब। नहीं, अरे सामने वाला जो कोड़े वाला आदमी बैठा वो झांकने लग गया। अमा भाई तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है मेरा भाई, तुमने अगर झांक लिया तो मैं झांकने लायक नहीं रहूंगा भाई। पीठ पे जो तुम्हारे कोड़े आएंगे सटाक सटाक करके, आप मत झांको, आप एकदम परफेक्ट हो, आप अपने गिरवान को एकदम ऊपर करके रख लो मेरा भाई। बाकी जो जो बाहर सुन रहे हैं, आज ईमानदारी से बता दो कि एक कोई गलत बात, एक गलत हैबिट आपकी है जो आप डेली कर रहे हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है भाई साहब, तो जरूर बताएं 666-22-107 पे। या फिर ये भी है कि आपको दूसरों में दिखती है ना, कई बार आप दूसरे को देख रहे हैं कि यार वो गलत काम कर रहा है लेकिन फिर भी वो कन्फेस नहीं कर रहा है और उसको भी पता ही है गलत काम है, तो आप बताइएगा जरूर 666-22-107। जैसे मेरी एक गलत आदत है और जो मैं मानता हूं लेकिन जिसके सामने मानना चाहिए उसके सामने नहीं मान रही हूं मैं, वो ये कि जैसी बेगम कोई काम कहती है घर में, बड़ा ही आसान सा काम है, अगर वो बेगम ये भी कहते ना कि तुम्हारे बगल वो फला चाबी पड़ी है मेरे को दे दो, भाई साहब मेरे जो कोफ्त पड़ती है काहली एकदम सर पे चढ़ जाती है। मैं कहता हूँ रुक जाओ, अभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ मैं, ऑफिस का मेल आया मैं। पता नहीं दिल भाई, मेरा दिल ना मानता नहीं है कि बेगम ने काम कहा है तो कैसे करूं मैं, ये गलती तो है। देखो मैं मान रहा हूं, कन्फेस कर रहा हूं ईमानदारी से, बगल में भी सामान रखा रहता है ना, लेकिन कभी कभार उठ भी जाता हूं क्योंकि अब ये भी है ना कि हर बार अच्छा जब भी कह रहे तुम्हारे पास ऑफिस का ही मेल आया है, तुम स्पेशल ही काम कर रहे हो और कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो रहे हो तुम है। तो ये जो मैं काम है कर लेता हूं और मुझे पता है ये गलत है, उसकी कही हुई चीज मुझे को बहुत ज्यादा कोफ्त डाल देती है भाई, तो मैं नहीं करता हूं। बाकी आप बताओ 666-22-107 पे, 666-22-107 पे, कि आपके अंदर एक ऐसी बुरी आदत या लोगों के अंदर एक ऐसी मजे वाली, ठीक है ऐसा मत कर लेना कि भाई साहब एक बुरी आदत है बताऊं क्या और फिर एकदम आंसू के साथ आपने कोई बात बता दी। नंबर 666-22-107। और इसी के साथ मोबाइल कहां है,
2: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
3: ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: यार इतनी दूर मोबाइल पड़ा रहता, मैं तुम्हें इतना याद करता हूँ, तुम मेरे हाथों से बड़े दूर निकल जाते हो मोबाइल भाई। दो ही लोगों को तो मैं मोहब्बत करता हूँ, एक क्रिकेट को, एक तुमको। ओ मोबाइल का मैसेज आया, अरे बीवी भी तो मैं करता होता तो फिर उसका काम नहीं कर देता भाई। सलाम अलैकुम, मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और ये मैसेज किस भाई का है, फोटो भेज दिए इन्हें। अस्सलाम वालेकुम सर, किसी की शादी को भी क्या, किसी को भी देख लो, किसी की शादी को भी देख लो, हमारी शादी को हो जाए, हमारी शादी भी देखना को मिल जाए। हैं क्या लिखना चाह रहे हैं भाई साहब, आपकी लैंग्वेज जो है मेरे माथे तक पहुँच नहीं रही है। आपने जो

वर्ड में लिखा है उसको डिकोड नहीं कर पा रहा, मेरा माथा खराब हो रहा भाई। एक तो आपके अंदर मैं कह सकता हूँ ये भी बैड हैबिट है कि सही से लिखा नहीं है। फिर एक तस्वीर भेजी है चोर पुलिस की। सही है भाई, 242 वाले जो भी भाई हैं प्लीज इस पे कॉल ना करो, मैं नहीं उठा पाऊंगा। फिर यूसुफ भाई का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ भाई, कॉल कर रहा है तो उसके लिए नंबर है 4434377। अस्सलाम वालेकुम फजील भाई। वालेकुम अस्सलाम फजील भाई, कैसे हो? वेलकम बैक। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है सोशल मीडिया में, जब क्राइम पेट्रोल देखता हूँ तो देखता रहता हूँ, बाकी कुछ देखने का दिल नहीं करता। मोहम्मद फयाज भाई प्लीज सबकी पोल मत खोलो। यार ये ऐसा ही सवाल पूछ लिया मैंने, पोल क्या खोल रहे हैं? मोहम्मद फयाज साहब कह रहे हैं कि हालांकि सोशल मीडिया वाला तो आपका अलग है, मेरे साथ असल जिंदगी में हो रहा है, मेरा एल्गोरिदम जिंदगी में ऐड हो गया है, इतना ज्यादा सोशल मीडिया चला रही हूं मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। फिर उसके बाद सर कैट केसी को मिला क्या? कैट, अच्छा वो बिल्ली। हाँ बिल्ली मिल गई है, ये समाज में सोसाइटी में ये बात चल रही है कि वो बिल्ली मिल गई है, अब बिल्ली की दरकार जो है, अब ऐसा ना करना किसी और बिल्ली को ढूंढ लो और उस ओनर के पास पहुंच जाओ कि सर वो बिल्ली मिल गई है, वो दो लाफा देगा, कह रहा है ऐसा है बिल्ली मेरे पास जो है वो 6 आ चुकी हैं जिसमें से असली एक भी नहीं है, जो असली वाली है वो मेरे घर पड़ी है बहुत दिनों से, और तुम लोग कोई भी बिल्ली लेकर मत आओ। जो बुरी मिल रही है सब बिल्ली, कह रहा है रेक्स है। लाख रुपए का चक्कर बाबू भैया, लाख रुपए का चक्कर बड़ा खराब है, रियाल रुपए भी नहीं। फिर ये एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई। शेख साहब कहते हैं मेरे अंदर हैबिट ही हैबिट सारी खराब है, एक दो अच्छी, अच्छी हो तो बताओ। अच्छी पूछो तो बताओ, ये कोई बात है? अच्छी पूछो तो बताओ, बड़े गलत। मैं बुरी पूछ रहा हूँ, माना कि आपके अंदर 100 बुराइयां हैं तो उनमें से एक बता दो भाई, बुराइयां नहीं बैड हैबिट। अब वो तो हंसी खुशी मसालेदार कुछ भी हो सकती है। एक बैड हैबिट और है, जैसे ये वाला तो मैंने कई लोगों को देखा भी है, कई लोगों को पता है कि ओपन पार्किंग स्पेस है, लेकिन एक बंदा रेगुलर बेसिस पे एक ही जगह पार्किंग करता है ना, तो उसकी ऐसा जायदाद हो जाती है कि मैं यहीं पर पार्किंग करूं, कोई और नहीं करेगा। लेकिन दूसरे के अंदर एक हैबिट होती है अंदर ही अंदर, कुलबुलाहट, हे जब ओपन पार्किंग है तो क्यों करने दूं इसको। तो वो जाके अपनी पार्किंग लगा के चला आता है और जानता है कि उसके दिल में कोफ्त होगी कि मैं पार्किंग करता हूं तो भाई मेरे लिए स्पेस छोड़ो। लेकिन दूसरा वाला आदमी जो बुरी हैबिट वाला है, बेकार इंसान है, वो ये काम करता है कि भाई नहीं, मैं तो वहीं पार्किंग करूंगा जहां पर वो आदमी डेली पार्किंग करता है। और भाई साहब एक बात तो है, जब तक किसी की जलाई ना जाए मजा नहीं है लाइफ में। एक तो अलग किक मिलती है जब किसी की जिंदगी सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रही हो, बहुत ज्यादा मजे ले रहा है, जब सबकी जिंदगी में ऐसा लग रहा हो ओहो मजे आ रहे हैं इसको, ये बहुत ज्यादा मजे कर रहा है, हल्का सा आग, हल्की सी माचिस डालने में जो दिल को सुकून मिलता है, अल्लाह करे वो सुकून मुझे ना मिले, पता नहीं मुझे भी बहुत मिलता भाई, थोड़ी बुराइयां तो मेरे अंदर भी है। जतिन ललित और शान की आवाज में एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं, और आपके अंदर जो बुरी आदत है वो जरूर बताना, ठीक है? ये जो दूसरे की जिंदगी में हल्की सी माचिस छोड़ के चले आते हो ना तुम, मेरे को पता है तुम्हारे अंदर भी है, वो डेमन है तुम्हारे अंदर, ठीक है? तो जरूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 666-22-107। एक बैड हैबिट जो आपको पता है कि लोगों के अंदर है या आपके अंदर है, बट आप कन्फेस नहीं करते, आज आपको कन्फेस करना है, ठीक है? 6-6-6-2-2-107 पे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, दिल से

छूना मेरे शहर को आज फिर शहर बारिश ने तर किया जॉइंट जला धुआं बातें करे तंजिया दिल किया लिखने को थोड़ी शायरी बूंदों की गायकी ने लफ्जों को खर दिया बार गाए हुसन के जमे गफीर में क्या गुजरे कभी नजर से इस भीड़ में तेरी आंखें हमें देखे इतना बहुत है वरना तो तिश्नगी ऐसी के दिल को चीर दे रोज तेरी मुस्कान का उठाते नुकसान होश ही ना रहे जूंदे तारीफों के पुल बांध धूमधाम छोड़ तेरी खामोशी में रह ले आकर लेना सांस भी रखा नहीं

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी
3: वक्त रुका नहीं है वो तो नए रास्ते बना रहा है क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है पेश करते हैं नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट सिंपल स्टाइल बिग इंपैक्ट पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान बनिए कल का चेहरा आज ही सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर दिल से देसी
4: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
5: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से एफएम 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ
6: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
3: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है। उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप तक। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल तो सुनिएगा जरूर एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
7: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
8: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर
3: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ तो सुनिए यू मैटर आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके क्योंकि आप मैटर करते हैं
8: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है ट्यून इन टू एफएम 107 दिल से देसी
0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
9: हंजी दिल से देसी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का 6:22 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और सवाल आज का बड़ा ही आसान और ईमानदारी वाला सवाल है जहां पर आपको अपनी ईमानदारी से अपनी गलती को अपनी बात को एक्सेप्ट करना है एक अपने बुरी आदत को एक्सेप्ट करके बताना है जैसे पार्किंग वाली बात जो मैंने कही है ये सही में कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे अरसलान भाई ने कहा है कि यार ये वाला तो काम मैं भी करता हूँ सेम और फिर हंसते हुए कह रहे हैं पार्किंग मैंने भी ये काम किया है पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा कोई खुश रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता भाई अच्छा दो तरह की खुशी होती है एक कि आप जैसे आपने कुछ अचीव किया हो तो मैं भी खुश हूं लेकिन कुछ अजीब नहीं किया है कि कोई पार्किंग स्पॉट है अगर अवेलेबल है तो वो फिर सबके लिए है भाई, ये मत सोचो कि तुमको मिलती रहेगी, मैं आके हल्के हाथ से पार्क कर दूंगा। हो सकता है कि महीने के 29 दिन आपने पार करी हो, 30वें दिन बस आपके दिल में कोफ्त पैदा करने के लिए एक बुरा आदमी

ये आपकी जिंदगी में आ गया है भाई साहब, नाम है फजीत। क्या करूं भाई, मैं हूं आदत से मजबूर। फिर उसके बाद ईमानदारी से एक भाई ने कहा है, फहद जमाल इनका नाम, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फजीत भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी सबसे बुरी आदत है ट्रस्ट जल्दी कर लेता हूं। ये बात तो देखो मेरे को पता था, आना था। ईमानदारी से ये बताओ कि ट्रस्ट करना क्या ये गलत हैबिट है? लेकिन ठीक है, आज के दौर में मुझे लगता है कि बात तो है, आप ट्रस्ट करते हैं अपने उस दोस्त पर, रिलेटिव पर, अपने बहुत से करीबी लोगों पर, और ट्रस्ट करके कोई काम कर देते हैं, उनकी मदद कर देते हैं भाई। फिर वो जो अपना रंग दिखाते हैं, आए हाय, फिर बिरयानी में पड़ा हुआ रंग भी एक बार को धुलकर सफेद चावल वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसे लोग फिर अपना जो है रंग बदलते नहीं है, उनका रंग वैसा का वैसा ही रहता। और सही बात कहा है फहद जमाल साहब ने कि बुरी आदत है ट्रस्ट जल्दी कर लेता हूँ और धोखा देने वाले पर भी दोबारा भरोसा कर लेता हूँ। ओहो, एक बार नहीं दो दो बार इनके साथ होता है, बड़ा नुकसान होता होगा। आगे लिखा है, बाकी अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। फहद जमाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई दुआ करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच अल्लाह आपको सलामत रखे, क्योंकि आप जो है लोगों पर ट्रस्ट कर ले रहा है और ट्रस्ट का ईमानदारी से नुकसान तो आपके साथ भी हो रहा है। बट ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी किसी को धोखा दो। मैं तो वाला आदमी हूँ कि जैसे को तैसा। मेरे अंदर की जो ईमानदारी है भाई, वो ईमानदारी तब तक है जब तक मेरे साथ सही हो रहा है। मेरे साथ बुरा होता है कि दुनिया ने इतना सिखा दिया है कि मेरे साथ बुरा होगा, मैं भी बुरा करूंगा। एक बहुत बढ़िया डायलॉग था इरफान साहब का, इरफान जो एक्टर है, कि बहुत हुआ अच्छे इंसान का, ऐसा कुछ करके उनकी लाइन थी, अब जैसे लोग वैसे हम। आखिरी की लाइन याद है बस। मेन मुझे याद होता है, बाकी की लाइनें मुझे याद हो ना हो, कि बहुत हुआ ईमानदारी का सबक, अब जैसे लोग वैसे हम, है ना। तो अब मेरे साथ तुम गोच्ची करोगे तो भाई तुमसे बड़ी गोच्ची हम करेंगे। अच्छा आदमी तो मैं भी नहीं हूं, मैं मानता हूं। लेकिन बुरे के साथ बुरा हूं। और ऐसे भी है कि मतलब बुरा अगर जानबूझ के बुरा कर रहा है तब तो यार मेरे अंदर छाती पीट के फिर उससे लड़ने का मन करता है। लेकिन बुरे पे बुरा करे जाओ तब, अगर गलती से किसी से हो गया है मेरे साथ तो कोई बात नहीं, माफ कर दूंगा मैं। उसके बाद मेरे कार से हॉकी निकलती है फिर। बाकी अरबाज भाई ने बड़े ईमानदारी से कहा है कि मेरी सबसे बड़ी और बुरी आदत है गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है हमको। भाईजान ये हैबिट नहीं है, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि ये गुस्सा ना बड़ी चालाक चीज होती है। देखें बड़े लोगों के सामने ये गुस्सा नहीं आता है, छोटे लोगों के सामने जो कमजोर लोग हैं उन पर गुस्सा आ जाता है। गुस्सा बड़े दिमाग वाली चीज है, तो गुस्सा इकलौती ऐसी चीज है। मैं मानता हूं कभी कभार इंसान ऐसा होता है कि फट जाता है, फिर ये नहीं देखता कि भाई सामने कौन है। अब सामने अब्बा भी होते हैं कभी कभार गुस्से में इंसान कुछ बोल जाता है, सामने बॉस भी होते हैं, सामने कोई बड़ा आदमी भी होता है। कभी आपने देखा है रिक्शा वाला कार वाले को सूद देता है? यहां पर फिर ये नहीं होता कि सामने कौन खड़ा है, गुस्सा आ गया तो आ गया। फिर ये नहीं होगा कि अरे वो कार वाला आदमी है, बाद में कुछ नुकसान कर देगा, रिक्शा ले जाएगा, रिक्शा हमारा तबाह कर दिया जाएगा। ना, पहले इसको सूतो, फिर इंडियंस की सबसे बढ़िया लाइन, या कहे इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी भाइयों की सबसे बढ़िया लाइन, अब मैं सूतो जो होगा देखा जाएगा। उनका यह है कि पहले जो गुस्सा है वो तो निकालो, फिर देखी जाएगी क्या होता है। और अक्सर जो ये लोग करते हैं ना, जो देखी जाएगी, उनके साथ सही में फिर कुछ होता नहीं है, फिर जो होती देखी नहीं जाती। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए इन्होंने कहा है, मुझे जब गुस्सा आ जाता है सर, तो फिर मैं ये नहीं देखता हूं कि कौन है, अगर वो मेरे -- मतलब बहुत ज्यादा प्यार करने वाला शख्स भी वो क्यों ना हो, फिर तो मैं सुताई चालू करता हूं बाबू भैया। बढ़िया, देखिए आप फिर वही वाले आदमी बन जाते हैं कि अब सामने वाला कार वाला हो, चार पहिए वाला हो, अब चाहे वो दुपहिए वाला हो, सूता जाएगा, अब तो होगा। फिर बहुत सारी बातें जो हैं लिख दी हैं मुबीन साहब ने सलाम लिखने के बाद। वालेकुम अस्सलाम आपको और तमाम लिसनर्स को, मुबीन भाई की तरफ से सलाम एक्सेप्ट करें दोस्तों। फिर एक और ये मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, नाम आपने लिखा नहीं है, और इनका कहना है कि भाई एक हैबिट है, अगर ऑफिस देर से पहुंचा तो झूठ बोलने की आदत है आपको। ये बैड हैबिट है झूठ बोलना। अच्छा एक दिन तो ये भी सवाल होगा, ठीक है उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन झूठ बोलना ये

ये मुझे ऐसा लगता है कि आप, ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। आप कितने भी ईमानदार आदमी क्यों ना हो, कई बार आपकी सिचुएशन आपको बुलवा लेती है भाई, आपका दिल नहीं करता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी पड़ जाती है कि आपको मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि कई बार झूठ बोलने से रिश्ते बच जाते हैं। जैसे एक बार का झूठ है, मैंने अपनी बेगम से बोला था उसको जरा भी नहीं पसंद है कि मैं क्रिकेट खेलने जाऊं। अगर आपको चेहरा लाल होना क्या होता है तो वो आप तब देख सकते हैं मेरे बेगम का चेहरा जब मैं क्रिकेट खेलने जाऊं, तो भाई चेहरा उनका लाल हो जाता है। तो एक दिन क्या है कि मैं मैच खेल के आया, गुस्सा था, लेकिन अगले दिन फिर मैच था और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, तो अगले दिन नहीं बता सकते थे कि मैच है। तो मैंने ऑफिस का बहाना करा, मैं मैच खेलने गया ऑफिस के कपड़े में,

0: वो कह रही कि एक मिनट, तुम तो कह रहे थे ऑफिस का कोई इवेंट है और तुम ये एक्सरसाइज तब करते हो जब तुम क्रिकेट खेल के आते हो, कपड़ा तो तुम पहन के आए हो ऑफिस वाला, क्रिकेट खेलने गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं पकड़ा गया क्या? नहीं नहीं, तो नहीं देखो एकदम सही है। तो उसने कहा बाल भी अक्सर तुम्हारे खराब होते हैं, हेलमेट लगाता हूं ना भाई क्रिकेट खेलते हो, बाल भी तुम्हारे खराब है, ऑफिस से आते तो सही रहते, सच सच बताओ। हाँ ठीक है भाई, उस दिन फिर दो बेल्टें पड़ी हैं मुझे तो झूठ बोलना कभी कभार मजबूरी हो जाती है क्योंकि इससे आपका रिश्ता बच रहा होता ना भाई, तो रिश्ता भी बनाना है, बचाना है। तो मैं मानता हूँ ऐसे में अगर आप झूठ बोल देते हैं रिश्ता बचाने के लिए तो दैट्स प्रिटी मच ओके ओके टाइप्स। फिलहाल 6:31 हमारे स्टूडियो की घड़ी में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बाकी के मैसेज और खत की तरफ हम बढ़ेंगे। और आज आज आपको खत लिखना है अपने लिए, ईमानदारी से कन्फेशन देते हुए, कन्फेस करते हुए कि हाँ आपके अंदर एक बुरी आदत है, एक बैड हैबिट है जो आप कन्फेस करना चाहते हैं इन अ लेटर। डियर वट एवर यू इज योर नेम, जो भी आपका नाम है वो नाम लिखिए और फिर कि हाँ मुझसे ये गलती होती है और क्यों होती है ये भी आप लिखें। नंबर है 666-22-107, 666-22-107। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-888-806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

मिलना है तो थोड़ी दूरी छोड़ दूं क्या, कुछ इश्क जता दिया है शाही से, थोड़ा सा इश्क जरूरी छोड़ दूं क्या।

0: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है। पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर। एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीजें जो है वो आप लिख कर बयान कर ही नहीं सकते, वो जबान से निकलना बड़ा जरूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, आप सभी का 6:42 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और एक भाई का मैसेज आया, बाकायदा ऑडियो आया, उनने अपनी बुरी आदत के बारे में बताया, और ये मुझे लगता है कि यार 90% लोगों के अंदर है। होता है ना कई बार के आपका दिल कर रहा होता है, आप गाड़ी चलाते हैं तो आप उस लेन में जाने की कोशिश करते हैं जिस लेन में सबसे कम गाड़ियां हैं, है ना। मिसाल के तौर पर अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना है या फिर आपको सीधा जाना है, तो अगर 4 लेन या 3 लेन है और हर लेन में 6-6, 8-8 गाड़ी खड़ी है, लेकिन एक लेन ऐसी है जिसमें 2 गाड़ी खड़ी है, तो आपको उस लेन में जाने का मन करता है। वाह भाई वाह, कैसे कैसे लोग हैं। ये बीमारी तो मेरे अंदर भी है, पता नहीं क्यों है भाई, मुझे लगता है इसका रीजन है। अच्छा, कई ऐसे लोग भी हैं मैंने देखे हैं, जो अगर 10 गाड़ियां खड़ी है एक लेन में, तो 11वीं गाड़ी 12वीं गाड़ी भी उसी लेन में लगेगी, भले उधर यू नो दूसरी लेन में 2-2 या 3-3 गाड़ी ही खड़ी हो, लेकिन जो पीछे से आ रहा है वो अपनी लेन पकड़ता है। मेरे अंदर एक कुलबुलाहट मचती है, और उसका रीजन मुझे लगता है मेरा अपना मुल्क है, क्योंकि अपने मुल्क में होता है ना कि अरे जल्दी से जल्दी आगे से आगे रहो। क्योंकि आगे अगर आप आगे नहीं रहे तो बाबा आपका काम लग गया, फिर आपका नुकसान हो गया, आप सही में पीछे रह जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है भाई, जब भी मैं गाड़ी चलाता हूं और सिग्नल पर रुकता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी क्रॉसिंग पे खड़ा हूं, कि अगर रेड लाइट उधर से हुई, क्रॉसिंग खुली, दोबारा बंद होने से पहले ये क्रॉसिंग क्रॉस करनी है। इसलिए जिस लेन में 2 या 3 गाड़ी है उस लेन को पकड़ दो, तो मैं खटाक से चेंज कर। अच्छा, ये भी वही काम करते हैं, और मुझे लगता है 90% लोग ये काम करते हैं कि 2 गाड़ी खड़ी है इधर ही सरका लो बाबू, हल्के आज से नहीं पीछे। अगर और ये बात भी सही है कि अगर दोबारा रेड हो गई, पता चला 12वें नंबर पे खड़े हुए हैं, दोबारा रेड हो गई तो पहले नंबर पे तो आ गए, अब सबसे पहले नंबर पे, लेकिन बेवकूफ बन गए, फिर 5-10 मिनट वेट करो, तो ये भी एक नुकसान हो जाता है। लेकिन ये कितनी सच बात है भाई, लोगों के अंदर बुराई, और ये कह रहे हैं कि ये मेरे अंदर बुराई है, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैंने थोड़ा शार्प कट लिया और पीछे से कोई आ रहा होता है, तो ऐसे में भाई ये तो बिल्कुल ना करें। आपको बहुत कायदे से आगे पीछे देखना है, उसके बाद ही फैसला लेना है कि जाएं नहीं जाएं, ठीक है, ये आपका फैसला है। बाकी एक और ये मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरे अंदर भी एक प्रॉब्लम है, गुस्से क्या, ठीक है, ये तो और एक अरबाज भाई तो उन्होंने भी कहा था, आपका नाम क्या है, अजीज साहब इनका नाम है, ओके। हाँ, गुस्से वाली आदत तो यार, वो तो कहो हमारे ईमानदार लोग हैं, वो मैसेज नहीं कर रहे हैं, वरना वो सिर्फ गुस्से वाली बात कहें कि भाई मेरे अंदर भी गुस्सा बड़ा आता है। ओके, आगे मैसेज किस भाई का है, इतने सारे लिख देते हैं, मुबीन साहब का मैसेज देख ले तो क्या है, क्या बात है। अरे ऑडियो सब भेज दिया, रखता यानी अल्लाह, क्या बात है। अरे मेरा भाई, इनके मैसेज पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मेरा ये होता कि बस दिन भर का पढ़ाई हो गई, मेरी इससे आदत नहीं हो पाई यार। मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती है इनका मैसेज देख लेता हूँ। भाई आप ऑडियो भेजा करें मुबीन भाई, और सही में कुछ लोगों को सुनकर अच्छा लगता है। मुबीन भाई आप वही वाले, सुनकर अच्छा लगता है। आप लिखे ना, लिखा मत करिए, ड्राइविंग करते हुए अच्छी बात नहीं है लिखना। फिर एक मैसेज है, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है उस्मान, कहते हैं डियर मी, खुद को लिखा है, दावत के खाने की तारीफ कर दिया करो, झूठी सही। ए भाई, मैंने नहीं कहा कि झूठ बोलना सही होता है, तो इसका मतलब तुम दावत के खाने की बुरी तारीफ कर दो, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, कई बार घर पे आप तारीफ कर देते हैं ना कि खाना बड़ा बड़ा है, बहुत मस्त, नमक एकदम परफेक्ट डाला है आपने, सालन आहा क्या बात है, फिर एक बार आप तारीफ कर देते हैं, आपको हर बार वही खाना पड़ता है, क्योंकि पिछली बार तारीफ कर दी है, अब सेम पड़ा है, सेम नमक है, सेम मसाला है, आप ये नहीं कह सकते अरे थोड़ा नमक मसाला ज्यादा हो गया, पिट जाओगे, तो ये नुकसान भी है यार, कई बार झूठ आपका नुकसान कर देता है। झूठ तब बोलो, वो भी ऐसे वाला हार्मलेस, जब आपको रिश्ते बचाने हो, ऐसा थोड़ी कि आप खाना खा रहे हैं, आपने झूठ बोल दिया, अगली बार फिर वही खाना खाना है, दावत में भी बोल दिया, तो बार बार सेम ही खाना बन रहा है भाई, मजबूरी है, खाना पड़ेगा अब तो। बाकी एक और मैसेज है, नाम क्या है, शेख साहब है, हाँ ये शेख साहब है, मैं समझ, मैं प्रोफाइल देखकर पहचान जा रही हूँ मैं, भाई मेरे अंदर प्रॉब्लम है कि मजदूर मुझ पर, सॉरी भाई मेरे अंदर प्रॉब्लम है कि मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो मैं बहुत एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ, नहीं करना चाहिए भाई ये वाला, तो ये तो बीमारी है भाई, मैं तो कहता हूँ ये आपकी हैबिट नहीं है, और ये तो बीमारी है, और ज़्यादातर ये बीमारी आपको एशियन लोगों में मिलेगी, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों में मिलेगी भाई, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लग जाते हैं हम, पता नहीं क्यों लोगों को इतना ज़्यादा अपीज़ करना होता है हमें, ये क्यों है, क्यों है भाई हम इतना एक्सप्लेन क्यों करते हैं, अगर हमको कोई गलत समझ रहा है तो ठेंगे से मेरे, समझते रहो, हमारा क्या नुकसान है, तो ये वाला एटीट्यूड जो है मुझे लगता है लोगों के अंदर आना चाहिए, ये एटीट्यूड जरूर होना चाहिए लोगों के अंदर कि तुम्हें जो समझना है समझो, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आपको कुलबुलाहट है, आपको परेशानी है, आपकी परेशानी आपके साथ, मेरे ठेंगे से। बाकी मुबीन भाई ने फिर कुछ लिखने की मैसेज कोशिश करी है, सर SMS में ही क्या जो पढ़ने में आ जाए, ऐसे में ऐसा हो पढ़ने में ना, भाईजान देखिए मैं बहुत कम गुस्सा करता हूँ मुबीन भाई, लेकिन माशाल्लाह आपके मैसेज जब जब मैंने पढ़े मेरी मुट्ठी बन जाती इधर से। बस प्लीज मेरे अंदर, देखो आपके अंदर है तो ठीक है यार, मेरे अंदर तो गुस्से को मत बढ़ाओ यार, थोड़ा बर्दाश्त करने का मादा मेरे अंदर जो है वो भी चला जाएगा, फिर देखो हमारे और आपके बीच एक होगा WWF, सारा कतर जो है एक बार आएगा रिंग में देखने के लिए कि फजील कितना पिटते हैं, फिर मैंने मोबाइल भाई की फोटो देखी है, तगड़े आदमी है, लेकिन मैं भी मार के भागता हूं, मैं भी वो वाला आदमी हूं, तो मेरे को पता नहीं ऐसे क्या होता कि आप जो जो हट्टे कट्टे लोग होते हैं आप उनसे लड़ तो पाते नहीं है, लेकिन दुबले होने का फायदा है भाई, आप एक सटाक से कनपट्टी में लगा के भाग सकते हैं। ये आइडिया दे रहा हूं क्या मैं लोगों को? नहीं सॉरी, ये सब नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है, इन सबसे दूर रहना चाहिए। फिलहाल ये मैसेज है किस भाई का, इस्माइल साहब का, कहते हैं रेक्स मिली नहीं मेरा भाई, मेरे को तो नहीं मिली, तुमको मिली तो बताओ, और मैं तो कहता हूं कि किसी को भी भूरी बिल्ली मिल जाए चलते हैं लेकर, क्या मालूम लाख रियाल नहीं तो अच्छी लग जाए, 50,000-10,000 रियाल तो मिल जाए बाबू, क्या मालूम। अमा भैया ये ऑप्शन है यार, ट्राई करने में क्या जाता है, क्या कहते हो इस्माइल भाई, निकला जाए अल रैयान की तरफ, खोई है वही आसपास इलाके में ढूंढते हैं, ठीक है बाकी AI से पूछ लेंगे, कोई चीज अगर खो गई हो तो उसको ढूंढते कैसे। और ऑप्शन दे देगा हम लोग को। फिर एक और ये मैसेज किस भाई का है, आसिफ आलम का मैसेज है, कहते हैं गुस्सा किसको नहीं आता है फजू भाई, देखो यार बात तो बिल्कुल सही है, गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन दो तरह के गुस्से होते हैं, एक लेजिट रीजन के साथ, वजह के साथ सही गुस्सा जो अक्सर घर में आता है, बाद में पता चलता नहीं ये तो फिजूल का है, और एक गुस्सा होता है कि भाई जो बहुत जल्दी और फिजूल का होता है ना, जल्दी वाला तो जो आता है मैं उस गुस्से को मानता नहीं हूँ, लेकिन लेजिट जो एक रीजन के साथ आ रहा है तो वो तो ठीक है, एक है फिजूल का गुस्सा है, वो मैंने कई लोगों के अंदर देखा आजकल बहुत ज्यादा आम हो गया, मे बी उसका रीजन ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लोग आजकल रहते हैं।

फिर उसके बाद इस्माइल भाई कह रहे चलो हाँ चलो यार इस्माइल भाई अपन ढूंढ के आते हैं, मुझ में बुरी आदत है आके कोई मुझे नाराज हो तो मैं खुद सॉरी करके ना तो कहता हूँ यार नाराज ना हो। यार ये भी एक किस्म की अलग परेशानी अशफाक भाई ने जो कहा है नहीं, कितने अच्छे लोग होते हैं भाई। अरे रे रे रे भाई साहब आप नाराज ना हो, मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। ये वो वाले आदमी है जो अपनी गर्दन पहले आगे कर देते हैं। भाई बिल्कुल ना करा करें, जब आपकी गलती नहीं है, इवन दूसरों की गलती है या आपकी गलती जब है भी मत एक्सेप्ट करो, देखी जाएगी। कितना प्यारा लफ्ज है ये, आवाज देखी जाएगी जो होगा। इस लफ्ज का इस्तेमाल करें मेरे भाई, जिंदगी में बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि जब जब आप दूसरे की गलती से सॉरी मांगते हैं ना, तो आपके अंदर स्ट्रेस जो है, जो परेशानी वो डेवलप होती है, और यही परेशानी, यही स्ट्रेस, डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद एकदम से एक दिन फट के गुस्सा निकलता है। कई बार आपने देखा होगा किसी दिन किसी मर्द का जो गुस्सा फट के निकलता है ना, उसमें वो बहुत बुरे बुरे अपने ऑप्शंस जो उसके पास होते हैं वो अपनाता है, बहुत बुरे बुरे काम कर लेता है, बहुत बुरी बुरी बातें कह देता है। तो जरूरत से ज्यादा जो गुस्सा भरता है वो अपने आप को सप्रेस करते हुए, अपने आप को, अपने जज्बात को दबाते दबाते जो है वो गुस्सा एक दिन फट जाता है जब बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। तो वो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। रैयान में अपन है, इधर मत आओ। ये क्या बात हुई, अपना अपना इलाका डिसाइड कर लिया यार, ये तो बिल्ली ने भी नहीं किया था यार। रिफत भाई ऐसा नहीं चलेगा यार, रिफत भाई प्लीज यार, रिफत यार नहीं यार, हम साथ में मिलते हैं ना, लालच अच्छी बात थोड़ी है। ऐसा है कि यार ये बिल्ली ढूंढेंगे तभी पैसे मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है कि वो अल रैयान में एक बड़े से डब्लू के नीचे मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अब देखो ये मैसेज ही आना शुरू होगा कि मैं कहां हूं। हुसैन साहब कह रहे हैं अपन दफना में है, ये बताओ। उधर मिल रही है तो बताओ मेरे को। सोच रहा हूँ टीम वीम बना लूं क्या, एक दफना भेज रहे, एक रैयान अलखोर तक पहुंच गए, अलखोर पहुंच गई, वो क्या पता किसी ट्रक में पहुंच चढ़ के। बिल्ली तो बिल्ली बेचारी मासूम, अब बिल्ली का भी पता नहीं है, क्या मालूम किसी के कार के ऊपर बैठ गई हो। बिल्ली क्या है, उनको तो बैठ जाना है बस। खैर एक भाई ने ऑडियो भेज दिया, भाई इतनी लंबी ऑडियो अब तो बाद में सुनेंगे, बाद में इसका रिप्लाई देंगे। शकील नाम है भाई साहब का। रिफत इस्माइल फज्जू, हाँ तीन लुक की टीम बन गई है, हम लोग रेक्स को ढूंढने जा रहे हैं दोस्तों। मिली है नहीं मिली है बाद में देखी जाएगी, बिरयानी का कलर भी असली थोड़ी होता, ऊपर से डाला ही तो जाता है रंग। देखी जाएगी। एक मूवी मुझे याद आ रही, वो मूवी का नाम क्या है मुझे पता नहीं, किसी का डॉग खो जाता है उसको कलर अलर करके भेज देता। अरे हाँ वो कौन सी एक तो मिस्टर बीन में भी मैंने देखा है। बिल्ली तो मिल गई है, कल मैंने देखा है फलाना एप्लीकेशन में सोशल मीडिया पे। ओनर के पास जाके कह देंगे अरे ये नकली वाली है, उस बिल्ली को धुल देंगे। असली वाली बिल्ली को धुल के नकली वाली चढ़ा दी। बिल्ली वाली न्यूज रियल है या फेक है? रियल है भाई, शोएब भाई अब तक तो ये बात बहुत वाजे हो चुकी है कि वो रियल है। ब्रो अगर रेक्स मिलेगा तो आपका आधा आपका और पूरा मेरा। वाह भाई वाह, इस बात पे मेरी मुट्ठी पूरी मजबूत बन चुकी है। मैं अल रैयान में हूँ सर, अगर कोई आए तो। अरे अरे अरे अरे, अरबाज भाई ने तो पूरी धमकी दे दी है। बाकी ये बिल्ली जो है वो मिल चुकी है, अब मेहनत मत करो भाई, पता चला तुम्हारा पेट्रोल खर्च होता रहा और कुछ मिला नहीं है वो अलग परेशानी। ठीक है, फिलहाल 6:53 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। एक आखिरी मैसेज जल्दी से पढ़ लेते हैं। सलाम अलैकुम फजल भाई, बिल्ली नहीं बिल्ला था। अच्छा थैंक यू फॉर दी एक्सप्लेनेशन, हमें नहीं पता था इतनी डिटेल में जाना जरूरी है, लेकिन फैसल भाई की मेहनत जो है वो कामयाब हुई, इन्फॉर्मेशन भाई के पास थी, बिल्ली नहीं बिल्ला था दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ। इसी के साथ अपन कट ले रहे हैं, आप भी इंजॉय करें आज शाम जो है बेहतरीन से गानों का, FM 107 पे आपको सुनने को मिलेगा। कुछ ही देर में न्यूज बुलेटिन भी आपके लिए पेश की जाएगी इस्माइल की तरफ से। बिल्ली को ढूंढने मत निकलना, अरमान मलिक की आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक सुनिए, मैं रहूं या ना रहूं, FM 107 पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: Mixing in the house.

0: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ आइए जानते हैं वज़ारत दाखला से वीकली अपडेट।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
2: कुछ मिलेगा यहाँ।
1: और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट,
2: एमओआई वीकली अपडेट,
1: आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर,
2: विद आरजे सरवर।
0: वज़ीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी ने रियाद में अपने भाई वज़ीर दाखला मुमलकत सऊदी अरब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज आल सऊद से मुलाकात की। ये मुलाकात कतर सऊदी कोऑर्डिनेशन काउंसिल के तहत कायम सिक्योरिटी और मिलिट्री कमेटी के चौथे इजलास के तनाजुर में हुई। मुलाकात के दौरान दोनों भाई मुल्कों के दरमियान एजेंडा में शामिल उमूर और कतर और सऊदी अरब के दरमियान तआवुन को मजीद फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के अख्तिताम पर वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी और सऊदी वजीर दाखला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने कतर सऊदी कोऑर्डिनेशन काउंसिल के तहत सिक्योरिटी और मिलिट्री कमेटी के चौथे इजलास के मिनट्स पर भी दस्तखत किए। सामईन, गलत पार्किंग ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा करती है और आपको ट्रैफिक खिलाफ वर्जी का मुस्तहक भी बना सकती है। कतर ट्रैफिक लॉ आर्टिकल नंबर 81/1 के मुताबिक गलत जगहों पर गाड़ी खड़ी करना जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सबब बन सकता है। याद रखिए, ट्रैफिक कवायद और रोड एटिकेट की पाबंदी सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए ही नहीं बल्कि सड़क इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद की सलामती के लिए भी जरूरी है। अपनी गाड़ी हमेशा मुकर्ररा पार्किंग मकामात पर ही पार्क करें। रास्ते, दाखिली और खुरूजी रास्तों और ट्रैफिक के बहाव को मुतासर करने वाली जगहों पर पार्किंग से गुरेज करें। वज़ारत दाखला का कहना है कि आपकी जिम्मेदारी और कवानीन की पाबंदी सड़कों को महफूज, मुनज़्ज़म और हर शख्स के लिए आसान बनाती है। ट्रैफिक कवायद की पाबंदी कीजिए और अपनी और दूसरों की सलामती को यकीनी बनाइए। दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है मैतराश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपने जर्मनी के दौरे के दौरान जर्मनी के फेडरल वजीर दाखला अलेक्जेंडर डॉब्रिंड से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन के रिश्तों का जायजा लिया गया और खास तौर पर अमनियत के शोबे में इन रिश्तों को मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की गई। इसके अलावा दो तरफा भामी दिलचस्पी के कई अहम मौजूदात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद वजीर दाखला और लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी और उनके जर्मन हम मनसब ने दोनों ममालिक की वजारत दाखला के दरमियान ट्रेनिंग और तजुर्बात के तबादले के शोबे में सिक्योरिटी कोऑपरेशन से मुतालिक एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। सामईन, अगर कोई मुलाजिम बगैर इत्तला दिए काम पर आना छोड़ दे या उसके वीजा को उस मकसद के अलावा इस्तेमाल किया जा रहा हो जिसके लिए वीजा जारी किया गया था तो अब मैतराज

ऐप के जरिए चंद आसान स्टेप्स लेकर आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट जमा कर सकते हैं। मेहतराश ऐप खोलें, होम पेज से सिक्योरिटी पर क्लिक करें, इसके बाद सर्च एंड फॉलो अप डिपार्टमेंट सर्विस का इंतखाब करें और रिपोर्ट की किस्म मुंतखब करें। अगर मुलाजिम ने नौकरी छोड़ दी है और काम पर हाजिर नहीं हो रहा तो लीविंग द जॉब ऑप्शन चुनें और उसका QID नंबर दर्ज करें। अगर वीजा अपनी जारीशुदा मकसद के बरक्स इस्तेमाल किया जा रहा है तो अदर ऑप्शन चुनें, वीजा नंबर दर्ज करें और अगर वर्क वीजा हो तो मुतालिका कंपनी का इंतखाब करें। तमाम दरकार मालूमात मुकम्मल करें और पूछे गए सवालात के जवाब दें। फॉर्म मुकम्मल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। दरख्वास्त जमा होने के बाद आपको तस्दीकी पैगाम मौसूल होगा जो बताएगा कि आपकी रिपोर्ट कामयाबी के साथ सबमिट हो चुकी है। वजारत दाखिला का कहना है कि मेहतराश ऐप आपकी डिजिटल खिदमात तक आसान और तेज रसाई फराहम करती है। वजीर दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी ने स्पेन के अपने दौरे के दौरान स्पेन के वजीर दाखिला फर्नांडो ग्रेनेड मरलास्का गोम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान मौजूदा तआवुन का जायजा लिया गया और खास तौर पर अमनियत के शोबे में इस तआवुन को मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के कई अहम मौजूदात पर भी बातचीत की गई। मुलाकात के बाद वजीर दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल्फानी और उनके स्पेनिश हम मनसब ने रियासत कतर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और स्पेन की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप 2030 के सिक्योरिटी निजामात के हवाले से तआवुन पर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। सामईन, पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि सड़क सिर्फ मुकर्ररा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से क्रॉस की जाए और ट्रैफिक सिग्नल्स की पाबंदी की जाए। याद रखिए, सड़क पर हिफाजत सिर्फ ड्राइवर्स की ही नहीं बल्कि पैदल चलने वालों की भी जिम्मेदारी होती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें, सिग्नल की हरी बत्ती का इंतजार करें और गैर महफूज जगहों से सड़क क्रॉस करने से गुरेज करें। वजारत दाखिला का कहना है कि पैदल चलने वालों की हिफाजत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आपका ये एहतियात भरा कदम आपकी और दूसरों की जिंदगी को महफूज बना सकता है। कतर पोलिस स्पोर्ट्स फेडरेशन के जेरे एहतमाम 14 से 17 सितंबर 2026 तक असद क्लब के 1969 पैडल कोर्ट्स में मुनक्किद 2026 पोलिस पैडल चैंपियनशिप का अख्तिताम हो गया है। चैंपियनशिप में 90 से ज्यादा टीम्स ने शिरकत की जिनमें वजारत दाखिला, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया और कतर आर्म्ड फोर्सेस के अफराद शामिल थे। इख्तितामी तकरीब में डायरेक्टर जनरल ट्रैफिक ब्रिगेडियर जबर अली अल कुबैसी और वाइस प्रेसिडेंट कतर पुलिस स्पोर्ट्स फेडरेशन कर्नल अहमद बिन हमद अल्फानी ने शिरकत की। इस मौके पर मुतअद्दिद ऑफिसर्स भी मौजूद थे। चैंपियनशिप का मकसद फौजी और सिक्योरिटी इदारों के अफराद के दरमियान राबते और बाहमी तआवुन को मजबूत बनाना, साथ ही सेहतमंद मुकाबले और खेल की रूह को फरोग देना था। तकरीब के अख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली टीम्स और खिलाड़ियों को उनकी कामयाबियों पर इनामात और शील्ड्स देकर इज्जत से नवाजा गया। सामईन, मेहतराश ऐप के जरिए वर्क वीजा आसानी और तेजी से जारी किया जा सकता है जिसके लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस खिदमत से फायदा उठाने के लिए सबसे पहले मेहतराश ऐप की होम स्क्रीन पर जाकर वीजा का इंतखाब करें, फिर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हुए वर्क वीजा का ऑप्शन चुनें, फिर वर्क वीजा के सफहे पर मुतालिक एप्लीकेशन नंबर सिलेक्ट करने के बाद इशू वीजा पर क्लिक करें। इसके बाद दरख्वास्त गुजारने वाले शख्स की कौमियत यानी नेशनैलिटी का इंतखाब करें और उसके पासपोर्ट की वाज़े कॉपी अपलोड करें, फिर एक साफ और वाज़े पर्सनल फोटोग्राफ अपलोड करें। तमाम मालूमात अपलोड करने के बाद ज़ाती डेटा का एहतियात से जायजा लें और यकीन कर लें कि तमाम तफसीलात दुरुस्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। दरख्वास्त जमा करते ही अमल मुकम्मल हो जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए मुतालिक अथॉरिटी को भेज दी जाएगी। वजारत दाखिला का कहना है कि ये डिजिटल खिदमात वीजा के इजरा के अमल को मजीद आसान, तेज और मौसर बनाती है और मुस्तफीद अफराद को घर या दफ्तर से ही अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करने की सहूलत फराहम करती है। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए,
कानून आपकी हिफाजत।

0: Dulce Daisy.
1: Game Changer Season 2.
2: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती, आपका पसंद

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी

0: 700 पर ईयर डेथ्स जो हो रही हैं वो दिल से रिलेटेड हैं, जिसमें से मैक्सिमम डेथ्स जो हैं वो हार्ट अटैक से हैं. और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे ट्रीट किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसको हम जो है टाइम पे अगर ट्रीट करें तो जो है ज़िंदगी बचाई भी जा सकती है.
1: बेशक
0: इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं तो दुनिया भर में हज़ारों लोग जो हैं उनको हार्ट अटैक इस टाइम पे वो इससे गुज़र रहे होंगे. अब इसमें से बहुत से लोग हैं जिनकी नॉर्मल लाइफ चलेगी, और उनमें से बहुत से लोग हैं जो अपने दिल का कुछ हिस्सा जो है वो खो बैठेंगे, और बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जान खो बैठेंगे इसमें. अब इसमें फ़र्क क्या है कि यही हार्ट अटैक कुछ लोगों के लिए नॉर्मल लाइफ है, उसके बाद कुछ लोगों के लिए जो है वो तकलीफदा बन जाता है कि दिल का जो हिस्सा है वो डेड हो गया, और कुछ लोग जो हैं वो बच नहीं पाते
1: जी.
0: अब इसमें फ़र्क आ जाता है कि कौन किस टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा
1: जी,
0: क्योंकि दिल जो है वो एक मसल है और हर मिनट जो है वो उसके लिए एक टिकिंग टाइम बम है कि जितना लेट होगे उतना मसल डेड हो जाएगा. तो सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए कि यह हार्ट अटैक असल में है क्या, क्योंकि सुना तो बहुत है, देखा भी बहुत है हार्ट अटैक आ रहा है. लोग कुछ लोगों के लिए है कि दिल बंद हो गया
1: जी.
0: कुछ लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक मतलब कि दिल बंद हो गया है और जो है वो हार्ट अटैक आ गया है
1: जी. बिल्कुल असल ये कि जैसे हमें थोड़ा ये होना चाहिए कि कैसे, थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जो प्रोसेस है थोड़ा सा हमें पता हो कि किस तरह से हम, या फीलिंग जो है वो तो अलामतें तो बाद में पूछेंगे, मगर ये कि कैसे, क्या कोई रिस्क मतलब होता है कि हार्ट अटैक जो है वो हमें मतलब खुदा नखास्ता आ रहा होता है.
0: अच्छा, तो सबसे पहले जानते हैं कि असल में दिल है क्या
1: जी.
0: दिल जो है वो अगर आप हाथ को ऐसे बंद करेंगे तो इतने साइज का ये सीने के अंदर एक
1: मुट्ठी
0: की तरह एक,
1: और हर एक अलग अलग साइज है हर शख्स का जिसकी उसी साइज के मुताबिक.
0: एग्जैक्टली. और ये दिन में हजारों करोड़ों बार ये बीट कर रहा है
1: जी,
0: और ये धड़कता है तो इंसान जिंदा रहता है, और इसकी कोई ब्रेक नहीं है और ये ऑटोमेटिक चलता रहता है
1: जी.
0: और इसको चलाने के लिए जो गज़ा या जो भी चाहिए वो ब्लड, उसके लिए दिल के जो शरियान हैं वो उसी दिल के ऊपर हैं
1: जी.
0: ठीक है. अब क्या होता है कि ये शरियान आप समझ लें जैसे पाइप होते हैं ना किसी घर के, या नालियाँ उस तरह हैं. अब सालों साल इसमें जब चर्बी जमा होती जाती है
1: जी,
0: या वो इतनी पक जाती है कि वो कैल्शियम जमा हो जाता है उस पर, और सीमेंट की तरह वो टाइट हो जाती हैं जो इस पाइप को बिल्कुल तंग करती जाती हैं.
1: बिल्कुल, जैसे कि आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल के बारे में जैसे हम, क्योंकि सभी जाते कहते हैं ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा किसका हाई है, या जैसे ही ब्लड प्रेशर हो तो ये टेस्ट जो करवाए जाते हैं, तो उनकी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता उन पर डिपॉजिट होते चले जाते हैं प्लेक की तरह.
0: तो ये 20-30-40 साल में जो चर्बी जमा हो रही है इन शरियान में वो एक प्लेक बना देती हैं
1: जी,
0: जो नालियों को बहुत नैरो कर देता है, टाइट कर देता है
1: जी.
0: अब इसको ऐसे ही समझ लें जैसे घर के पाइप हैं और उसमें जंग लग गया और वो उसमें ब्लॉक आने लग गया
1: जी.
0: ठीक है.
1: ठीक
0: तो
1: है.
0: जब पूरा ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है कि
1: ड्रेन से ड्रेन कर देते हैं जी.
0: तो इसी तरह इसमें क्या होता है कि जब ब्लॉक पूरा हो जाता है तो ब्लड जो है वो आगे नहीं जाता, और आगे जिस जगह तक वो नहीं पहुंच रहा, जिस मसल तक दिल के नहीं पहुंच रहा, जिस हिस्से तक नहीं पहुंच रहा, वो मरता जाता है. और जितने सेकेंड या मिनट लेट हो वो ब्लड पहुंचेगा उतना ही डैमेज ज़्यादा होगा.
1: ये हार्ट मसल मतलब पूरा एक है उसकी बात जैसे कर रहे हैं, तो वो उसमें उसके लिए भी ज़ाहिर ज़रूरी है कि ब्लड सर्कुलेशन उसमें आए
0: जी. जी तो दिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अगर अच्छे से अपना काम करना चाहता है तो उसको खून मिले, और वो खून अगर नहीं पहुंच रहा किसी ब्लॉक की वजह से तो वो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं मसल और डेड हो जाते हैं. तो ऐसे ही समझ लें कि वहाँ स्कार बन जाता है एक किस्म का, और दिल की जो ताकत है ना, जो दिल जो धड़क रहा है उसकी ताकत कम जो कम हो जाती है, दिल कमज़ोर हो जाता है
1: ठीक,
0: और वो सही से धड़क नहीं सकता और उसके भी बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। तो अब समझते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि चलो 30-40 साल लगते हैं ये प्लैग बनने में या कोलेस्ट्रॉल के जमा होने में, और एक बार जब पूरी बंद हो जाएगी शरीयान तो तभी जाके हार्ट अटैक आएगा
1: ठीक।
0: अब ये भी नहीं है। अब क्या होता है कि जब एक जगह पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है
1: जी,
0: अब ऐसा टाइम आता है कि वो उधर से ब्रेक कर जाता है, वो जब ब्रेक करता है तो जो खून है उसमें चुपे जो जो जख्म को पहचानने वाले जो हमारे सेल्स हैं वो उसको जख्म की तरह समझते हैं और उधर जाके क्लॉट बना देते हैं
1: ठीक,
0: उसको बंद करने के लिए उस हिस्से को, और वो क्लॉट से ये जो दिल की नालियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं। तो जहाँ क्लॉट बनेगा वहाँ हो जाएगा। तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल जो है वो ये प्लेक जल्दी बना देता है जैसे कि साल में, और ये रप्चर हो जाता है प्लैंक, तो वहाँ क्लॉट बन सकता है और मतलब यंग लोग भी हार्ट अटैक, उनमें भी हार्ट अटैक आ जाता है।
1: बहुत बड़ी परसेंटेज में जो यंग अफराद हैं उनमें ये है हार्ट अटैक जी।
0: उसके अलावा ये है कि ज़रूरी नहीं कि बहुत साल के टाइम पे आपको कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटरी सब हो, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सी बीमारियों की वजह से जैसे कि अगर स्मोकिंग ले लें
1: जी,
0: शुगर, इन सब से दिल के जो शरीयान हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या इरेगुलर हो जाती हैं या उनके सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं रहती
1: जी।
0: तो इसमें जो लत से इवन 30s-40s यंग लोग भी जो हैं
1: अगर मुतासिर होते हैं
0: तो उस उनमें भी इन्फ्लेमेशन जो है वो हो सकती है, मतलब उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उसमें प्लेक नहीं है, वो सिर्फ इन्फ्लेमेशन की वजह से क्लॉट बन रहा है, क्लॉट बन रहा है और हार्ट अटैक आ रहा है
1: ठीक। जैसे कि वो ग्लोबल जैसे पूरे सर्वे किया जाता है उसमें 30% जो हार्ट अटैक्स हैं स्मोकिंग की वजह से, और जो स्मोकर्स हैं 50% हायर रिस्क पर होते हैं
0: जी, बिल्कुल। स्मोकिंग किल्स, और ये जो है ये मेन जो है रीज़न है हार्ट अटैक्स का
1: ठीक,
0: ये इकलौता रीज़न नहीं है, ये वन ऑफ द मेन रीजंस है। और अगर किसी को शुगर ब्लड प्रेशर है और उसके ऊपर वो स्मोकिंग भी कर रहा है तो रिस्क जो है वो 5-fold बढ़ रहा है
1: ठीक।
0: तो अब देखा जाए तो क्या क्या रिस्क हैं, क्योंकि बहुत से लोग जब जिनको हार्ट अटैक आता है वो कहते हैं हमें तो कोई
1: मसला नहीं था,
0: ना हमें शुगर है, ना हमें ब्लड प्रेशर का मसला है, और ना हम सिगरेट पीते हैं
1: जी।
0: बहुत से लोगों के यही कंप्लेन है कि हम तो सिगरेट नहीं पीते तो हमें क्यों हार्ट अटैक आ गया
1: जी।
0: अब जो लोग हमारे पास आते हैं उनमें से तकरीबन 20-30% ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें शुगर है।
1: अच्छा,
0: तो
1: ठीक।
0: जब उन्हें हार्ट अटैक आता है हम सब ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि शुगर है, बहुत अनकंट्रोल्ड शुगर है, काफ़ी अरसे से मैनेज नहीं हुई, और अब उनकी किडनी भी इफेक्ट होने शुरू हो चुकी है और उन्हें मतलब इस तरह हार्ट अटैक भी आ रहा है
1: ठीक।
0: इनमें से तकरीबन 20% लोग ऐसे हैं जिनको जिनकी फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है,
1: अब जब मौजूदी तौर पर
0: जी बिल्कुल, तो जिनकी फैमिली में यंग एज में अगर हार्ट अटैक किसी को आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये फैमिली में जो आगे लोग हैं उनमें यंग एज में आने के चांसेस हैं
1: जी ठीक।
0: तो फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, अगर किसी को आइडिया है कि उसके फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है यंग एज में, ओल्ड एज में नहीं, ओल्ड एज में तो काफ़ी लोगों को आ जाते हैं
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन अगर यंग एज में है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और अगर किसी को ये आइडिया है और उसे लगता है उसे चेस्ट पेन हो रही है तो ये एक अलार्मिंग साइन है, उसको दिखाना चाहिए
1: जी ठीक।
0: उसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना ये भी एक वन ऑफ द मेन रीजंस है
1: जी।
0: और इसी तरह जो मर्दों में हार्ट अटैक ज़्यादा पाया जाता है, और कुछ जो है हमारे पास नेशनैलिटीज़ या रेसेस ऐसी हैं जिनमें
1: ज़्यादा
0: है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं
1: ठीक।
0: तो ये जो है
1: एशियंस की हम बात करें तो जैसे हमारे ममालिक में जैसे पाकिस्तान इंडिया है नेपाल है उसमें तो क्या इनके जो रेट हैं ऑलमोस्ट एक ही हैं
0: ये जो हमारे एशियन पॉपुलेशन है इसमें हार्ट अटैक के रेट बहुत ज़्यादा

0: से हमें नहीं करना चाहिए। और बहरहाल डॉक्टर साहब, स्ट्रेस, एंजाइटी और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन में आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स कम हैं, मगर अब तो रेशो तकरीबन सेम सेम है और एज का भी इतना डिफरेंस नहीं है। स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ साथ डॉक्टर साहब, ये जो हमारे लिसनर कादिर अब्दुल खादी, वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे आपने बैक पेन का जिक्र किया, तो इज़ इट अ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और द कार्डियो प्रॉब्लम?
1: एग्जैक्टली जी, तो बहुत से लोग जो हैं वो ये कन्फ्यूज़ रहते हैं कि अगर मुझे सीने में दर्द हो रही है या जलन हो रही है तो ये हो सकता है कि गैस्ट्राइटिस है या हार्ट बर्न है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में हार्ट बर्न कहते हैं। ये हार्ट अटैक, हार्ट बर्न बहुत क्लोज सिम्टम्स हैं, ये इनमें फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे जो है एक आम आदमी के लिए ये थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। एक तो ये है कि जो ज़्यादा पेट के पास या मैदे के पास अगर वो जलन सी महसूस हो रही है, और लोग अक्सर ख्वातीन कहती हैं मेरा सीना जलता है,
0: जी जी,
1: तो वो जो जलन है ना, और स्पेशली अगर वो खाने के बाद, खासतौर पे स्पाइसी खाने के बाद अगर महसूस हो रही है,
0: शिकायत जो है वो सुनाई देती है कि सीने में जलन है। और फिर ज़्यादातर यही देखा भी जाता है और एक्सपीरियंस भी कि खाने के बाद या स्पाइसी खाने हमारे जिस तरह से हैं ट्रेडिशनल जो है उससे काफ़ी फ़र्क मतलब महसूस होता है जी।
1: अब ये सेम चीज़ जो है वो हार्ट अटैक में हो सकती है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है
0: जी?
1: कि एसिड जो है ना वो गले तक आता है, वो ऊपर तक आता है,
0: रिफ्लक्स
1: होता है,
0: ठीक है,
1: तो डकार आते हैं, खट्टे वाले, गंदे वाले डकार भी आते हैं। और इसमें ये भी है कि अक्सर मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है थोड़ा, मुंह में ऐसे मेटल टाइप फीलिंग आती है खासतौर पे सुबह उठें तो ये एसिड वाली फीलिंग, तो इससे बंदे को आइडिया हो जाता है कि ये एसिडिटी है
0: जी।
1: लेकिन अगर ये
0: ना हो जी,
1: और जलन के साथ ऐसे प्रेशर भी महसूस हो रहा हो दिल पे, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही हो
0: जी,
1: या चलने पे ये दर्द और ज़्यादा बढ़ने लग जाए,
0: अच्छा
1: मतलब ऐसा नहीं कि खाना हजम हो गया दर्द ख़त्म हो गया, लेकिन दर्द है, आप चलते हैं या कोई काम करने लगते हैं तो दर्द ज़्यादा हो जाता है या सांस की तकलीफ ज़्यादा हो जाती है
0: जी।
1: और आप रेस्ट करते हैं तो दर्द ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है,
0: ठीक है।
1: तो ये जो है इस तरह हम दोनों में फ़र्क कर सकते हैं
0: जी।
1: उसके अलावा ये है कि जब सीने में दर्द होती है तो वो अक्सर लोग पानी दूध या पीते हैं तो उससे बेहतर महसूस होता है, और जो है वो डकार वगैरह लेते हैं तो उससे उन्हें थोड़ा
0: बेहतर
1: महसूस होता है, या वो लेटने से उन्हें ये दर्द जो है ऐसे लगता है कि जो है मैदे से लेके मुंह तक आ रहा है,
0: ठीक है।
1: तो इससे ये एसिडिटी ये ज़्यादा है और हार्ट कम है,
0: ये डायग्नोसिस जो है वो मतलब तशीस जो है वो फिर एसिडिटी की तरफ जाती है, मैदे की जो बीमारियां उस तरफ जा सकती हैं,
1: लेकिन कोई भी हार्ट फास्ट रूल नहीं है,
0: ठीक।
1: ये ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट अटैक भी है और उसकी वजह से हाजमा खराब या
0: एसिडिटी, तो फिर क्या करें जैसे, ये तो बहुत मुश्किल सा काम है ना। फिर हम ये भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उन्हें पता भी हो और क्या किस तरह फिर वो खुद से सेल्फ कर सकते हैं जो डिफरेंशिएट कि किस तरह कब हमें इमरजेंसी में जाना है, क्योंकि ये अलामतें तो बहुत ऐसी हैं कि वो कभी एसिडिटी है, स्टमक की तरफ जा रहा है, हार्ट अटैक, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं।
1: अगर तो ये नया है, बंदे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है और उसके लिए वो ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि स्पाइसी खाना पहले भी खा रहा है और उसको नहीं हो रहा, लेकिन ये मतलब किसी शादी पे जाके बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं ऐसा फील नहीं होता, लेकिन अब खा रहे हैं और हो रहा है, ये दर्द कॉन्स्टेंट रहती है, चलने पर नहीं जा रही और बार बार हो रही है, और इसके साथ बंदे को पता है कि उसको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, मतलब कि वो उसकी फाइल मैच कर रही है कि हार्ट अटैक से, तो बेस्ट ये है कि चेक करवा लें।
0: अच्छा, ठीक।
1: उसके बदले में एक 24 साल का लड़का है जिसको ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना वो सिगरेट पी रहा है, और उस दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है, स्पाइसी खाने खा रहा है, और उस टाइम पे उसको ये महसूस हुआ है, तो ये डिफरेंट है।
0: अच्छा, ठीक।
1: लेकिन

0: बात वही है, जब भी डाउट में है तो चेक करवाना ज़रूरी है,
1: ठीक ठीक,
0: डाउट क्लियर करना ज़रूरी है।
1: सही, इसमें भी ये नहीं कि हम एज, जैसे एज में तो हम नहीं सोचते कि इस तरह का कोई मसला हो सकता है, तो कितनी देर तक, जैसे आपने कहा कि बहुत यंग है और उसको ये महसूस हो रहा है इस तरह की अलामतें हैं, तो फिर डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है उसे चेकअप कराना।
0: ये अगर तो उन्हें सीने में दर्द हो रहा है और बिल्कुल जो दिल का दर्द महसूस हो रहा है,
1: कुछ स्वेटिंग हो रही
0: है और साथ में स्वेटिंग भी हो रही है, उल्टी भी आ रही है या बाजू में जा रहा है
1: जी,
0: तो कोई भी एज,
1: अच्छा,
0: क्योंकि यंग लोगों में ज़रूरी नहीं कि शरियान का मसला हो, मसला ये भी हो, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है दिल की, जो सेम हार्ट अटैक की तरह ही प्रेजेंट करती है
1: जी,
0: तो उसमें ये है कि शरियान का मसला नहीं होता लेकिन कि दिल जो है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये भी जो है वो एक ख़तरनाक चीज़ बन सकती है, ख़ास तौर पे अगर किसी को पहले इन्फेक्शन था, ज़ुकाम था और उसके हफ्ते दो बाद ये सीने में दर्द शुरू हो जाए तो
1: जी,
0: क्योंकि ये भी ख़तरनाक साबित हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि दिल का मसला जो है वो सिर्फ बड़ी उम्र में, तो ये किसी भी एज में हो सकता है, या 19 में 18 में ये देखा जा सकता है,
1: ठीक,
0: लेकिन हार्ट अटैक इटसेल्फ जो नालियों का मसला, ब्लॉक का मसला है, वो पहले कहते थे कि एवरेज एज जो है वो 40s में है
1: जी,
0: लेकिन आजकल हम देख रहे हैं 23 24 25
1: इवन 22 जी, तो इसकी क्या वजह है? जैसे हम यहाँ की बात करें तो आपके पास जैसे क्लिनिक्स पे पेशेंट होते हैं, तो क्या आप समझते हैं क्यों इतनी यंग एज में हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं जो मतलब इतनी यंगस्टर्स जो हैं?
0: इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि पहले जब हम अपना घर का प्लम्बिंग सिस्टम देते थे कितना मजबूत होता था, हमने 10-10, 20-20 साल हमने कभी को उसको चेक नहीं किया चलता है, लेकिन आजकल जब हम लगाते हैं तो हफ्ते बाद उसमें या लीक है या ब्लॉक है या कुछ चल रहा होता है या उसको जंग लग जाता है, तो आजकल ऐसा है कि लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा है कि जो शरियान या नाली है वो उस तरह मजबूत नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब क्या है कि हमारी जो ग़ज़ा है उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं
1: जी,
0: और बहुत से लोग जो हैं वो स्वीट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये ज़्यादा लेते हैं, पहले जो है एक्सरसाइज या वॉक ये बहुत लोग बहुत ज़्यादा जो है एक्सर्शन करते थे।
1: वैसे भी जैसे बच्चों की बात करें तो जो इंडोर गेम्स हैं, आउटसाइड बिल्कुल नहीं जाते, डिवाइसेस हैं, और मतलब शुरू से ही अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो फिर अब जो बिल्कुल यंगस्टर हैं तो वो इस हालत तक पहुंच चुके हैं, तो आपके थ्रू इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या इसकी क्या वजह क्या है कि हम सब जो हैं वो इस तरफ जो जा रहे हैं बच्चे?
0: एक्टिविटी लेवल जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है
1: जी,
0: कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं, और एसी जो है उससे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी हो जाती है
1: जी, ठीक
0: है। आजकल जो एक नॉर्मल चीज़ बन गई है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो लोग पानी की तरह पीते हैं
1: जी, अच्छा,
0: खासतौर पर न्यू जनरेशन
1: जी,
0: और आजकल के डिलीवरी ऐप्स ऐसी हैं कि आपको बाहर भी नहीं जाना, आपको फास्ट फूड घर पे मिल रहा है और हर वक्त मिल रहा है,
1: बिल्कुल,
0: और सबसे बड़ी बात कि लोग सोने से पहले जो है
1: वो जो है इस तरह के हैवी मील जो बर्गर खा रहे हैं, ठीक, खासतौर पर यंगस्टर्स
0: पहले
1: वो लेट जो है वो उन्हें अवेलेबल और वो इस तरह से पूरी एक लाइफस्टाइल ऐसे बना ली
0: जी। पहले की आउटिंग होती थी, क्रिकेट खेलने जाते थे, फुटबॉल खेलने जाते थे, आजकल की आउटिंग में या तो सीधा खाने पे जाते हैं या मूवीज पे पॉपकॉर्न और उसके बाद खाना
1: जी,
0: तो बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस में जो
1: जी, डिस्टेंस आप सुन रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या क्या कह रहे हैं, आज मुझे ऐसे महसूस हो रहा है सारी चीज़ें जो बंद होनी होने वाली हैं कि हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं इस हार्ट अटैक से बचने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है जो अपनी अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, और ख़ास तौर पर ये जो सारे मसले हैं एज के साथ साथ तो हो जाते हैं मगर जैसे यंगस्टर्स में इतने ज़्यादा हैं, और जैसे पहले हमने एक प्रोग्राम किया था कि यहाँ पर भी कि यंगस्टर्स में खुदा ना खास्ता जो डेथ रेट है वो बहुत जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो ये छोटे छोटे इस तरह के जो काम हैं वो جو ہیں وہ اگر ہم نہ کریں تو پھر اس سے ہم بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہہ رہے ہیں ہم اس طرح قادر عبدالقادر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کل جیسے انہوں نے نا نان کمیونیکیبل ڈیزیز پر جو ہے ہیلتھ کیئر سینٹر میں لیکچر بھی دیا, مگر وہ تھینک فل ہیں 107 FM کے کہ اس طرح کے جو پروگرامس ہیں جو کہ نالج ایبل ہیں وہ ہیں. بہت شکریہ آپ کا جو قادر عبدالحادی صاحب. اور بالکل 107 FM جو ہے وہ ماشاء اللہ سے یہ جو پلیٹفارم پرووائڈ کیا ہوا ہے اسی لیے کہ ہم اویئرنیس دے سکیں اور یہ چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر پھر جو پوری جو کمیونٹی ہے وہ ہیلدی رہ سکے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس پر بات کر رہے ہیں. جی
0: اب میرے خیال سے بہت زیادہ لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ کیا وجوہات ہیں.
1: جی
0: اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں ہمیں تو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا, تو ان کو جب سینے میں درد ہوتی ہے انہیں لگتا ہے کہ میں جم گیا تھا مجھے
1: مسکولر پین ہو رہی ہے. ٹھیک,
0: لیکن ایسا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ جم جا رہے ہو ایکسرسائز کر رہے ہو تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا.
1: جی
0: کیونکہ کولیسٹرول اوور دا ایئرز جو ہے وہ بنا ہے اور وہ پلیک کبھی بھی رپچر ہو سکتا ہے ایک. جی یہ دوسرا یہ کہ اور بھی بہت فیکٹرز ہیں جو ہارٹ اٹیک کا ریزن بن سکتے ہیں.
1: ٹھیک,
0: تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایکسرسائز کرنے سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں اور آپ کی ڈائٹ اچھی ہے اور ہارٹ ہیلتھ اچھی ہے تو چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک کے.
1: اور پھر خدا نخواستہ اگر ہارٹ اٹیک ہو وہ بھی گیا ہے تو اس میں جو چانسز ہیں ریکوری کے اور وہ بھی بہت, کیونکہ کچھ ایسی ایگزامپل ڈاکٹر صاحب ہیں کہ جو بہت ریگولرلی انہیں واک کرتے ہوئے دیکھا, ڈائٹ بھی بہت زیادہ وہ کانشیس, مگر پھر بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں اور فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہیریڈیٹی فیکٹرز ہے, فیملی ہسٹری جو بہت امپورٹنٹ ہے.
0: جی بالکل, اب یہ تو سمجھ آتی ہے, لیکن یہ ٹاپک آج ہم اس لیے ڈسکس کرنا چاہتے تھے کہ چلو سب کو سمجھ آ گئی کہ ہارٹ اٹیک کیا ہے. اب یہ ہے کہ کتنے لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس میں کرنا کیا ہے. مطلب اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک یا تو آ رہا ہے یا آپ کو درد ہو رہی ہے, اب کریں کیا. اب میں اس ٹاپک کو اس لیے بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے بہت دیکھا ہے ہمارے پاس جو بھی بندہ جو ایون کے ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں وہ بہت دیر کر دیتے ہیں آنے میں. تو جو میں اپنی میری ایک نرس خود ہیں جس جو مطلب ریلیٹڈ
1: ہے, ہمیں سب پتہ ہے, تو وہ پھر بھی جی
0: اس کو سینے میں درد ہوئی الٹی آئی, اسے پتہ ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک آیا, لیکن وہ اپنے ملک میں ہے اور وہ اس کی فلائٹ ہے, اس نے کہا کہ چلو میں جا کے
1: جی
0: آرام سے قطر میں وہاں دکھا لوں گی جہاں میں کام کرتی ہوں.
1: جی
0: اگر تو کسی کو شوگر ہے اس کے لیے یہ تھاٹ بری نہیں ہے, لیکن ہارٹ اٹیک میں ایک ایک منٹ میٹر کرتا ہے.
1: ٹھیک,
0: جتنے منٹ وہ ہارٹ اٹیک اگنور ہو رہا ہے اتنے منٹ جو ہے وہ دل کا جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. اب
1: ادھر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, لسنس کی جو ٹائم ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت سی علامتیں بتائی ہیں تو اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کیا کس طرح سے ہمیں ٹائم جو مینجمنٹ ہے وہ کرنی ہے.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. FM 107 par apna business advertise karne ke liye aaj hi raabta karein. Aaj hi raabta karein. Hamari Qatar Media Corporation ki marketing team se. Call karein 4488-8806 par ya email karein marketing@qmc.qa.
3: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وت ڈاکٹر فوزیہ شفیق اونلی آن FM 107 دل سے دیسی.
1: دلچسپ آج بہت ہی اہم جو ٹاپک ہے اس پر بات کر رہے ہیں. ہارٹ اٹیک کے بارے میں تو کرتے ہیں مگر کچھ بہت سارے ایسے پوائنٹس جو ہمیں ضرور یاد رکھنے ہیں اور یہ کہ انہیں اگنور نہیں کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے بتا رہے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زبیر شہد جو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں اور ہارٹ ہاسپٹل HMC میں. جی ڈاکٹر صاحب,
0: تو اب یہ ہے کہ جیسے ہی فلائٹ لینڈ کی ادھر پہنچے درد ختم ہو چکی تھی. اب بہت زیادہ لوگوں کا بلیف یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ درد ہوئی ہارٹ اٹیک آیا, درد ختم ہوگی ہارٹ اٹیک ٹھیک ہو گیا.
4: ٹھیک ہے,
0: تو بہت سے میرے اپنے جو پیشنٹس ہیں وہ ایون ٹائم پہ بھی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب درد ختم ہو گیا, اب مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے نہیں کرانا کوئی چیک اپ, کیونکہ درد ختم ہارٹ اٹیک ختم.
4: اچھا,
0: ایسا نہیں ہے. اب یہ جو ہارٹ اٹیک کی پین ہے یہ ٹیمپریری ریلیف بھی ہو جاتی ہے اور یہ پھر آ سکتی ہے, خاص طور پہ دوبارہ کوئی ایکٹیویٹی کی. اکثر اس میں یہ ہوتا ہے ریسٹ سے بہتر بھی ہو جاتی ہے یا میڈیکیشن سے.
4: جی جی,
0: تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک چلا گیا, اس کا مطلب ہے کہ اور ڈیمیج ہو رہا ہے لیکن آپ کو درد نہیں محسوس ہو رہی.
4: ٹھیک ہے,
0: تو اب اس نرس نے ادھر آ کے سوچا میرے تو درد ختم ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا, لیکن اسے پتہ ہے کہ ہارٹ اٹیک تھا.
4: ٹھیک,
0: انہیں اپوائنٹمنٹ ارینج کی. اپوائنٹمنٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے, مہینہ لگ گیا.
4: اچھا,
0: تو مہینے تک اس کو ایسا ہوا کہ کام کرتے ہوئے بہت زیادہ سانس میں تکلیف اور یہ سب ہونے لگ گیا. تو بائی دا ٹائم جب میں نے دیکھا تو اس کا دل کی طاقت جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ بہت کم رہ گئی تھی, اور یہ جو ہے دل کا حصہ جو مر چکا ہے یا اس میں سکار بن گیا ہے اس کو واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے.
4: ٹھیک ہے,
0: اور یہ ایک بہت ہی لمبی بیماری ہے, مطلب اس یہ آپ کو ہاسپٹل سے جانے نہیں دیتی اگر صحیح ٹریٹمنٹ نہ ملے. ڈیمیج ہو گیا
4: جیسے مسل, پورا مسکولر وہ ہے دل ہے, اور آپ نے کہا مسل جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. جی,
0: تو یہ جو ہے ینگ عمر میں یہ نرس جو ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی فلائٹ مس نہیں کرنا چاہتی تھی, ٹائم کی ویلیو نہیں تھی اسے, آئیڈیا نہیں تھا کہ اگر میں لیٹ کروں گی تو کیا ہوگا. اسی طرح میرے پاس بہت زیادہ اور لوگ بھی ایسے آتے ہیں جو آ کے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں درد ہوا تھا لیکن ہم اپنے فیملی وغیرہ سے مشورہ کریں گے, ہم دیکھیں گے, اگر تو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو ہم آ جائیں گے. تو جتنا ٹائم وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں اتنا ڈیمیج بڑھتا رہتا ہے.
4: ٹھیک,
0: اکثر لوگ گھر پہ ہوتے ہیں, گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے, درد ہوا تو وہ ویٹ کرتے ہیں کوئی آئے گا میں اسے بتاؤں گا اور وہ مجھے لے جائے گا.
4: ٹھیک ہے, ٹھیک, بالکل ایسا ہی.
0: اور اس اتنی دیر میں بہت سے لوگ جو ہیں, اب کیا ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک تو چلو جو ہے وہ نالیوں کا مسئلہ ہے, اگر یہ بلاک زیادہ ہو جائے تو دل بند بھی ہو سکتا ہے.
4: ٹھیک,
0: تو ان کا دل بند ہو جاتا ہے, گھر پہ کوئی ہے نہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو لیٹ کرنے سے یہ بھی ایک ہو سکتا ہے.
4: ٹھیک ہے,
0: تو اس میں ہمارے گورنمنٹ نے ایک بہت سہولت ہمیں دی ہوئی ہے, جو آپ سیدھا ایمبولینس کو فون کرو, ایمبولینس اسی وقت پہنچتی ہے اور بغیر کسی ایکسٹرا ایکسپینسز کے آپ سیدھا ہاسپٹل پہنچتے ہو. اور ایمبولینس کا فائدہ کیا ہے, ایمبولینس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے پاس ای سی جی کرنے کی فیسلٹی ہے,
4: وہ فوراً اسی وقت
0: تو درد ہونے کے فوراً ساتھ ہی آپ کے پاس ای سی جی ہے جس سے ہارٹ اٹیک پکڑا جاتا ہے.
4: جی ٹھیک
0: ٹھیک, تو اسی ٹائم پہ وہ میڈیسن بھی دے رہے ہیں. تو میڈیسن جتنی جلدی مل رہی ہے اتنا جو ہے وہ ڈیمیج وہ ہے وہ کم ہوتا ہے.
4: ٹھیک ٹھیک,
0: اب بہت سے لوگ کو درد ہوتی ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں.
4: جی,
0: انہیں پتا ہے کہ یہی ہے کیونکہ وہ اس ڈینائل میں ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوگا یا مجھے نہیں ہو سکتا, اور اگر ہو گیا تو میں جاؤں گا تو میرے پیچھے اتنے بچے ہیں جو گھر پہ اور میں ادھر کام کر رہا ہوں تو میں جاؤں گا ہی نہیں تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا.
4: ٹھیک ہے,
0: تو پھر وہ بائی دا ٹائم جب ہمارے پاس آتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے.
4: ٹھیک
0: ٹھیک, دوسرا یہ کہ ہمارے پاس بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو درد ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے سیدھا ہم ہاسپٹل جائیں گے
4: خود سے ہی
0: خود سے, اور یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. پہلی بات کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا جانا کدھر ہے.
4: ٹھیک ہے,
0: اگر وہ کسی ایمرجنسی میں جاتے ہیں اور مطلب شو نہیں کر سکتے کہ مجھے سینے میں درد ہے, وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہم نے دیکھے بھی ہیں جو پہنچ کے ڈاکٹر سے ملنے سے پہلے وہ ادھر ہی جو ہے ان کا دل بنتا ہے, ان کو اریسٹ ہو جاتا ہے.
4: ٹھیک ہے,
0: تو جب ایک ہمارے پاس فیسلٹی ہے اور آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ کا دل کا درد ہے تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ ایمبولینس کو بلائیں. آج تک कोई क्वेश्चन नहीं हुआ कि गलत एम्बुलेंस को बुलाया गया या मतलब किसी ने पूछा हो कि तकलीफ़ नहीं थी और बुलाया
4: जी,
0: वो आएंगे ईसीजी करेंगे, अगर तो नॉर्मल है वो असेस कर सकते हैं, वो जो है वेल ट्रेंड है, और अगर कोई हार्ट अटैक के उस अलामत होगी या ईसीजी पे कुछ हार्ट अटैक होगा वो सीधा लेके जाएंगे और विद इन वन आवर
4: जी
0: पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा।
4: ठीक है।
0: और जब एम्बुलेंस के थ्रू आते हैं हमारे पास लोग
4: जी,
0: हॉस्पिटल पहुंचने से जो स्टैंड डलने तक
4: जी ठीक है
0: मैक्सिमम 15 से 20 मिनट्स गुजरते हैं।
4: अच्छा।
0: और ये इतना कम टाइम है कि दिल जो है वो डैमेज नहीं होता और इसमें जो दिल को खून नहीं पहुंच रहा होता वो एकदम से फ्लो जब ओपन होता है खून पहुंचता है और दिल का मसल दोबारा काम करने लग जाता है।
4: ठीक ठीक।
0: तो दिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब कोई ऐसा ब्लॉक हो तो जितनी जल्दी खुलेगा उतना बेहतर है, उतनी रिकवरी अच्छी होगी। और हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक आए हैं, बड़े बड़े हार्ट अटैक आए हैं और वो हफ्ते के बाद से अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और सालों साल जी रहे हैं और उसमें कोई इशू नहीं है, वो मेडिसिन ले रहे हैं और जी रहे हैं।
4: बिल्कुल। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें पर हमें बिल्कुल देखना है, ख़ासतौर पर टाइम की जैसे बात की है और आज आपने हमें बड़ी डिटेल में बताया कि क्या क्या अलामतें जो हैं वो हों, तो उन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना जी।
0: और अगर किसी को लगता है कि मुझे शक है, क्लियर नहीं है, शायद हो सकता है कि सीने का दर्द है, हमारे हेल्थ सेंटर इतने वेल इक्विप्ड हैं कि अगर आप उधर जाके अगर आपको शक है और आपको लगता है कि बहुत सीरियस नहीं लग रहा मुझे तो हेल्थ सेंटर में आप जाएंगे और वो ईसीजी करके तो उधर भी ईसीजी ब्लड करके तो वहाँ भी क्लियर कर सकते हैं।
4: ठीक है।
0: और सबके मतलब एरिया में हेल्थ सेंटर तो है
4: जी। बिल्कुल।
0: तो मेरे ख्याल से अगर किसी को है शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी और उसे लगता है कि उसको चलने में तकलीफ़ होती है, सांस की या दर्द होता है, और तो ऐसे हर बंदे को चेकअप करा लेना चाहिए।
4: ठीक ठीक। और क्योंकि जैसे आपने बताया था कि ये जो है रिस्क ज़्यादा होता चला जाता है, जैसे अगर किसी को हार्ट का मसला है या शुगर है, पहले से वो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मेडिसिन बेशक ले रहे हैं अनकंट्रोल्ड है, तो ये भी हार्ट अटैक की तरफ जा सकते हैं जी।
0: अब इसके अलावा एक और जो बात है
4: जी
0: वो ये है कि आजकल जैसे चैट जीपीटी है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, अब लोग क्या करते हैं उनको दर्द होती है तो वो
4: फौरन
0: चैट जीपीटी पे डालते हैं। अब उसमें लिखा होता है कि आपको मोस्ट लाइकली हार्ट अटैक आ रहा है तो आप ये दिल की जो दवाइयाँ हैं ये वाली ले लें।
4: अच्छा।
0: और वो घर पे किसी की पड़ी होती हैं तो वो खुद से
4: ले लेते हैं।
0: ये नहीं करना।
4: अच्छा। ऐसे हैं। अच्छा।
0: और ऐसा भी है जो ज़्यादा ले लेते हैं,
4: बहुत खतरनाक है,
0: बहुत खतरनाक है, ख़ास तौर पे कि आपको पता नहीं कि आप ले क्या रहे हो
4: जी।
0: और कितनी ले रहे हो,
4: ज़रूरत है डोज
0: क्या है, इसकी ज़रूरत है कि नहीं, और अगर आपको हार्ट अटैक है भी कि नहीं आप मतलब, तो ये नहीं करना है। दूसरा, बहुत से लोग जो हैं वो उनको दर्द होती है तो वो पेन किलर्स ले लेते हैं।
4: अच्छा ठीक।
0: पेन किलर्स ले लेते हैं, बार बार दर्द होती है, पेन किलर्स लेते जाते हैं और दर्द को दबाते रहते हैं।
4: ठीक है।
0: तो अगर तो आपको ये दर्द बार बार हो रही है और पेन किलर्स के बावजूद हो रही है तो ये एक साइन है कि आपने चेक करवाना है कि ये दर्द क्या है।
4: ठीक है।
0: बेशक मसल की दर्द हो सकती है लेकिन आप चेक करवाएं, क्योंकि अगर ये मसल नहीं है ये आपका दिल है
4: जी।
0: थैंक
4: यू। बिल्कुल। कि इस तरफ ख़ास तौर डॉक्टर साहब आपने बताया कि बाज़ू का जो जिम करते हैं उन्हें भी जैसे दर्द है, समझते ये हैं कि एक्सरसाइज की वजह से या कोई मसल पुल हो गया है या मस्कुलर पेन है, तो उसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट मतलब आप थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे कि वो जो है पेन वही है या एक कॉल है बिल्कुल एंड ऑफ द प्रोग्राम पे, तो लिसन अगर आप पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल हम सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
5: हेलो जी।
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
5: जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब
4: जी आपकी जी कैसे हैं आप
5: जी अल्लाह का शुक्र है बात हो सकती है
4: जी जी टाइम बहुत कम है मगर ये कि आप पूछिए जरूर
5: जी बस मैं जरा मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से बड़ा जी अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत शुक्रिया
4: हेलो
5: जी वो मेरी गुजारिश ये कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका जा रहा है मैंने सुना थोड़ा सा लेट मैंने एंटर हुआ था
4: जी,
5: मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ये जो स्ट्रेस और एंग्जायटी की वजह से जो
4: हार्ट
5: पेन होता है शोल्डर में बैक पेन तो ये भी हार्ट तो अटैक के कुछ अलामत होती है
0: अस्सलाम वालेकुम जी आपका नाम क्या बताया आपने
5: जी मेरा नाम महमूद है और मेरी एज जो है वो 80 इयर्स ओल्ड है तो मुझे किसी वक्त थोड़ी सी एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो जाता है तो फिर मेरी बैक में जो है ना शोल्डर में थोड़ा सा पेन होता है तो ये क्या मैं इसको रिलेट कर सकते हैं कि हार्ट के साथ कुछ इसका लिंक
0: जी तो इस पे हम बात करते हैं टाइम थोड़ा कम है लेकिन इसको समराइज ऐसे करते हैं कि स्ट्रेस से एंजाइटी से एक और चीज़ जो इफ़ेक्ट होती है वो ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर की जिसे प्रॉब्लम है अगर तो है तो वो एक रीज़न है कि वो अपनी मुझे आप पट्टे कहते हैं इनको इनमें खिंचाव महसूस होता है लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं भी है जब इंसान को स्ट्रेस या एंजाइटी होती है तो सबसे पहले उनको ये पट्टे जो हैं वो खींचते महसूस होते हैं क्योंकि स्ट्रेस से ये अक्सर जो मसल्स हैं ये इफेक्ट होते हैं और इसमें अक्सर नॉट्स भी पाई जाती हैं जो अक्सर लोग मसाज करा के तो जो है स्ट्रेस रिलीव करते हैं तो ये कहना कि क्या ये स्ट्रेस से हार्ट अटैक की अलामत है ऐसा नहीं है आप अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है शुगर का मसला है और ये है कि आपको और सीने में दर्द होती है स्ट्रेस हुई है एकदम से सीने में दर्द हो गई है या ठंडे पसीने आ रहे हैं या आपके बाजू में दर्द हो रही है मतलब अक्सर लोग स्ट्रेस में रहते हैं पूरा दिन और बाय द एंड ऑफ द डे जो है वो उनको एकदम से सीने में दर्द होती है जो बाजू में गर्दन में या जबड़े में महसूस होती है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है लेकिन अगर ये कहना कि सिर्फ पट्ठों में और जब भी स्ट्रेस होती है एंजाइटी होती है बार बार ऐसी होती है तो एक रूटीन है ना तो ये रूटीन दर्द ये मोस्ट लाइकली स्ट्रेस की वजह से है लेकिन कभी भी कोई इस तरह इसको जेन में रखना कि ये
4: हार्ट कम
0: कि ये नॉर्मल है लेकिन आपको बॉदर कर रहा है तो बेस्ट इसमें यही होता है कि आप इसको चेक करवा लें ताकि आपको मेंटल पीस हो और जो है वो स्ट्रेस ना रहे इस चीज़ की एटलीस्ट स्ट्रेस ना रहे
4: ठीक है बहुत शुक्रिया आपका
5: जी जी बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि मुझे पसीना भी आ जाता है तो मेरा ख्याल
4: कंसल्ट करना जी बिल्कुल कंसल्ट करना
0: जी कंसल्ट करना तो बहुत ज़रूरी है और बेहतर भी रहता है
4: जी चलिए बहुत शुक्रिया आपका इंशाल्लाह
5: बहुत शुक्रिया जी थैंक यू सो वेरी मच आज का प्रोग्राम बड़ा ही उम्दा था
4: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया और लिसनर्स टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया डॉक्टर साहब से अब मैसेज भी हम जो है वो यही कि अपना ख्याल रखिए और ये कि अगर दोबारा सुनना चाहें तो आप जुमे को सुबह जो है 9 बजे प्रोग्राम पेश किया जाता है आप ज़रूर दोबारा सुन सकते हैं और इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर ज़ुबैर शाहिद फौज़े शफीक और हमारे साथ रहे असले भंडारा उन्हें इजाज़त दीजिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: Hello and welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं वेल्थ मैनेजमेंट. पैसा कमाना जरूरी है या उसे संभालना जरूरी है? आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे. अक्सर लोग समझते हैं कि अमीर बनने का मतलब ज्यादा पैसे कमाना है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है. सवाल ये है कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है, और क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है या हर शख्स के लिए होता है? तो चलिए पहले मैं आपको समझाती हूँ कि वेल्थ मैनेजमेंट है क्या. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब है अपने पैसों को प्लानिंग के साथ मैनेज करना. यानी कितना पैसा कमाया, कितना पैसा सेव किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना पैसा फ्यूचर के लिए सिक्योर रखना है. अगर एक इनकम वेल्थ मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा. देखिए, सिर्फ इनकम ही लोग समझते हैं कि बड़ी जरूरी है. बहुत से लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि वो फाइनेंशियल स्ट्रेस का शिकार रहते हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एवरेज इनकम के बावजूद भी फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं. फर्क सिर्फ एक चीज का है, वो है वेल्थ मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट. अगर हर महीने जितना पैसा आए उतना खर्च हो जाए तो फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव नहीं होता. इसीलिए वेल्थ मैनेजमेंट का पहला कदम है बजटिंग. अब बजटिंग क्यों जरूरी है? देखिए, हर महीने अपनी इनकम और एक्सपेंसेस लिखना एक बड़ी अच्छी हैबिट है. ये आपको बताती है कि पैसा कहाँ जा रहा है. कभी कभी छोटी छोटी अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी साल के एंड तक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाते हैं. तो वेल्थ मैनेजमेंट हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की सलाहियत देता है. बहुत से लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक ही चीज समझते हैं, जबकि सेविंग का मतलब है पैसा महफूज रखना, इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसे को फ्यूचर ग्रोथ के लिए नए काम में लगाना. मिसाल के तौर पे, आप इमरजेंसी के लिए सेविंग्स अकाउंट्स में पैसा रखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट की तरफ देख नहीं रहे. यहाँ अहम बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग के साथ सही डिसीजन लिया जाए. वहीं पर इमरजेंसी फंड्स की भी बड़ी अहमियत है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैसों के बारे में हमारे डिसीजंस हमेशा लॉजिकल नहीं होते. कभी हम इमोशंस में आके शॉपिंग कर लेते हैं, कभी सोशल प्रेशर में आके, कभी अननेसेसरी चीजें खरीद लेते हैं खुद को खुश करने के लिए, कभी फ्यूचर के बारे में सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं. इसीलिए फाइनेंशियल सक्सेस का ताल्लुक सिर्फ इनकम से नहीं, बल्कि हैबिट्स और माइंडसेट से है.

अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को आप आसानी से हैंडल कर पाते हैं, वहीं लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फैमिली के लिए स्टेबिलिटी पैदा होती है। और अगर वेल्थ मैनेजमेंट ना हो तो हर महीने पैसों की टेंशन हो सकती है, डेट बढ़ सकता है, इमरजेंसी में मुश्किल पैदा हो सकती है और फ्यूचर प्लानिंग कमजोर हो सकती है। इसीलिए पैसे कमाना अहम है, लेकिन उसे समझदारी से मैनेज करना उससे भी ज्यादा अहम, कितना इम्पोर्टेंट है। तो बस आज हमने और आपने समझा कि वेल्थ मैनेजमेंट कितना जरूरी है, कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका गुड बैलेंस और इसके बीच गुड बैलेंस और इसका गुड चेक। दौलत सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, असल दौलत ये है कि आप जो कमाते हैं उसे कितना समझदारी से मैनेज करते हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट हमें पैसों का गुलाम नहीं बल्कि उसका बेहतर मैनेजर बनाता है। क्या आप एक बेहतर मैनेजर हैं अपने वेल्थ के? बताइएगा मुझे जरूर 666-22-107 पर। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए, देखते हो।

अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक अपडेट। और ऑफ कोर्स हम पिछले एक दो दिन से बात कर रहे हैं एप्पल की, तो मैं भी बात करूंगा क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू करना बहुत जरूरी हो चुका है। ऑफ कोर्स वी आर लेट टू द पार्टी, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हम क्योंकि ये रिकॉर्डेड वर्जन आपके लिए तैयार करके लेके आए हैं, तो बनता है हमारा भी टू सेंट्स देना इनके प्रोडक्ट्स पे। सो मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, मैं आईफोन के लाइनअप के बारे में बात कर चुका हूँ, स्पेशली प्रो, प्रो मैक्स और उसके डुओ के बारे में जो हाईलाइट है ऑफ द होल इवेंट। लेकिन अब जरा बात करते हैं घड़ी और एयरपॉड्स के बारे में। नंबर वन जो बात करूंगा घड़ी के बारे में, घड़ी में इंप्रूवमेंट के तौर पे मुझे इंतजार था कि शायद इस बार कुछ बहुत ही खतरनाक बड़ा होने वाला है। एप्पल ने इस बार अपनी घड़ी को बेचने के लिए ये कहा है कि इट विल बी मोर रिलायबल। अगर हार्ट रेट को आपको जानना है, ज्यादा एक्यूरेट रहेगी इस बार की एप्पल वॉच, ऐसा एप्पल ने कहा है इसे बेचने के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारा जो सीरी इंटीग्रेशन है वो इसमें कहीं ज्यादा रहेगा। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि आवाज की क्लैरिटी पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। मीटिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए घड़ी का जो माइक है वो बाकायदा आपके लिए पूरी की पूरी MOM बना के दे देगा आपको। एंड जो घड़ी का वही लाइनअप जो उनका रहता है, एक दो जो मेजर है और उसके बाद जो उनका जो बड़े पट्टी वाली घड़ियां हैं वो भी रहेंगी। मगर आई थिंक इतना मेजर नहीं खेला है उन्होंने इस बार घड़ी में जितना मुझे लग रहा था वो करेंगे। मतलब सेइंग के मैं हम हमारी घड़ी ले लो क्योंकि अब घड़ी जो है आपकी दिल की धड़कन और एक्यूरेट बताएगी, एंड शुड नॉट बी द वे ऑफ सेलिंग इट। एटलीस्ट ये सेलिंग पॉइंट मुझे इतना नहीं जमा, पर देखो हैंड्स ऑन रिव्यू जब आएगा तो उसके बारे में फिर और ज्यादा गहराई से पता लगेगा। बट फॉर नाउ बैटरी लाइफ को उन्होंने बढ़ाया है, बोला कि बैटरी लाइफ ज्यादा आपको मिलेगी इस बार, पिछली बार के मुकाबले तो कहीं गुना ज्यादा मिलेगी। आई थिंक 35% ज्यादा का उन्होंने वादा किया है, तो अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम मुझे आ रही थी एप्पल की वॉच से वो यही थी कि जो चार्जिंग का सिस्टम है उसका थोड़ा सा वियर्ड है। कभी कभार लगता है कि पूरे दिन चल जाएगी, कभी कभार लगता है कि अरे क्या हो गया अभी तो, मतलब मैंने इतना तो यूज भी नहीं किया। एंड इसके साथ साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ऑफ कोर्स मोर एप्पल वॉच फेसेस जो कि मिसिंग थे, वो हमेशा वेट करना पड़ता था कि अब शायद अपडेट में कुछ नया आ जाएगा, बट दिस टाइम अराउंड दे हैव डेफिनेटली कम आउट दिल खोल के और बहुत सारे एप्पल वॉचेस के जो चेहरे हैं उन्होंने वो दिए हैं। सो कुडोस टू दैट। और इसके अलावा जो उनके जो डिजाइन रहता है रिस्ट में अच्छा पट्टा होना चाहिए, जो बेल्ट होती है घड़ी की देसी भाषा में कहूं तो, वो इन्होंने काफी कलर्स में इंट्रोड्यूस करी है। और एक इन्होंने ग्लॉसी वर्जन भी लॉन्च किया एप्पल का मैट के अलावा, विच इज आई थिंक आर्मी ग्रीन और ब्राउन है, वो अलग ही कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उसका ग्लॉसी वर्जन भी है, तो आई थिंक घड़ी इस कलर में जब बिकेगी तो बहुत कमाल की बिकेगी। और इनके साथ इसके साथ इन्होंने टाइप भी किया है कुछ ब्रांड्स के साथ, ऑफकोर्स मैं उनका नाम ले लूंगा, मगर उसके साथ एक प्रीमियम वर्जन भी निकाला, आई थिंक वो जो गोल्ड वर्जन है एप्पल वॉच का वो भी सामने आपको नजर आ जाएगा। इफ यू वांट टू चेक आप ऑनलाइन जाके चेक कर

0: अब आ जाते हैं जरा एयरपोर्ट्स पे. सो एयरपोर्ट्स जो है अब हम 5 तक पहुंच चुके हैं, 5 प्रो पे आ चुके हैं और अब तो कुछ भारी भरकम उम्मीद है. हालांकि डिजाइन वही आपको सेम नजर आएगा, नॉट दैट ऑफ अ ह्यूज डिफरेंस. नॉइस कैंसिलेशन के बारे में हम ऑलरेडी बात करते रहते हैं, एप्पल उसमें बहुत आगे है. नाउ दे आर सेइंग कि उन्होंने अपने AI को इंटीग्रेट किया है अपने एयरपोर्ट्स के साथ भी. बाय दैट दे मेंट कि उन्होंने इस बार जो लाइव ट्रांसलेशन है उसको बेहतर बनाया. मैं सच में देखना चाहता हूँ क्योंकि पिछली बार के एयरपोर्ट्स प्रो 4 के साथ ट्रांसलेशन का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था. तो इस बार क्या इन्होंने किया है कि मैं कन्विंस हो जाऊं, वो देखने वाली बात है. हालांकि मैं आई वाज कंप्लीटली सोल्ड आउट जब उन्होंने इस बार कहा कि फाइनली दे हैव अपग्रेडेड द बैटरी लाइफ एंड एवरीथिंग एल्स इन एयरपोर्ट 5. बट मैं एयरपोर्ट्स का पर्सनली फैन हूं. आई थिंक मैं उन लोगों में से आता हूं जो फोन के ज्यादा या फोन के इक्वल एप्पल के एयरपोर्ट्स का भी इंतजार करते हैं. सो आई एम वन ऑफ देम. सो ये मैं उनका मेन टारगेट ऑडियंस हूँ. तो मैं डेफिनेटली जब ये इंशाल्लाह यूज करूंगा तो मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा. बट इफ यू आर यूजिंग एयरपोर्ट्स 4 रीसेंट वाले और जो उन्होंने लॉन्च किया था एक और लाइनअप, तो अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा उसमें, बिकॉज आई हैवंट यूज्ड देम. सो 666-22107 ये तुम्हारा व्हाट्सएप है. सोशल मीडिया हैंडल्स है FM107 Qatar, FM107 Qatar. प्लीज वॉच द अपडेट्स, मिलते हैं जल्द. Stay tuned. Tech update. Tech update.
1: Number one hits music station.
2: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
2: Kabhi bhi aur kahi bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया. सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी
2: गेम चेंजर
4: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है. आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए. ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है. मेहतराश ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं. ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आपकी सेहत वाकई अहम है, योर हेल्थ मैटर्स। आज हम बात करते हैं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी की एक बहुत अहम चीज वो है खाने की, कि किस तरह से हम खाते हैं। हम रोजाना कई बार खाना खाते कि हम कभी सोचते हैं कि जो कुछ हम खा रहे हैं वो हमारे जिस्म के लिए क्या कर रहा है। खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं है, हमारी ग़िज़ा जिस्म को तवानाई देती है, यानी जो एनर्जी लेवल है उसको ज़्यादा करती है, जिस्म की जो नशोनुमा है और उसकी मरम्मत में मदद करती है और मजमूई सेहत पर असर डालती है। सेहतमंद ग़िज़ा का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पसंद की हर चीज़ हमेशा के लिए छोड़ दें। असल बात है बैलेंस क्या है, यानी तवाज़न और उसकी मिकदार कितनी है। अपनी प्लेट पर नज़र ज़रूर डालिए कि क्या इसमें सब्ज़ियाँ मौजूद हैं, क्या आप फल खाते हैं, क्या आप दालें, अंडे, फिश, गोश्त या दूसरी मुनासिब प्रोटीन वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, ये देखना बेहद ज़रूरी। इसी तरह पानी पीना कभी मत भूलिए। बहुत से अफराद प्यास को नज़रअंदाज करते रहते हैं और दिन भर मुनासिब मकदार में पानी नहीं पीते। एक और अहम बात है, वो है सॉल्ट और शुगर, यानी नमक और चीनी। हमें अक्सर अंदाज़ा भी नहीं होता कि जो तैयारशुदा खाने हैं और जो मीठे मशरूबात हैं या बेकरी के जो आइटम्स हैं और मुख्तलिफ पैकशुदा चीज़ों में कितनी मकदार में सॉल्ट है या शुगर शामिल हो सकती है। इसलिए खाने के लेबल पढ़ने की आदत बना लीजिए कि जो भी आप ख़रीदें कोई बीफ मील, तो उसमें देखिए कि उसमें सॉल्ट कितना है, उसमें शुगर कितनी है, ये बहुत अहम है। और खाने के वक्त जल्दी ना कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता खाना खाइए और अपने जिस्म के इशारों पर तवज्जो दीजिए कि क्या आपका पेट जो है वो भर गया है, आपकी भूख कम हो गई है, इसे ज़रूर समझिए। बच्चों के लिए भी यही उसूल अहम है, उन्हें सिर्फ ये ना कहिए कि ये मत खाओ, ये ना करो, ये फलां चीज़ जो है वो आप बिल्कुल ना खाएं, बल्कि घर में सेहतमंद इंतखाब आसान और जो दस्तियाब है उसे बनाइए। याद रखिए सेहतमंद खाना कोई वक्ती जो डाइट नहीं है, ये जिंदगी भर की एक बहुत ही अच्छी आदत है। आज से एक छोटी सी तब्दीली कर लीजिए, मसलन ये कि जो शुगरी ड्रिंक्स हैं या मीठे मशरूबात की जगह पानी और एक इजाफी जो वेजिटेबल है या फल का एक हिस्सा है, या फिर जो फ्राई की हुई चीज़ें हैं उनकी जगह निस्बतन आप सेहतमंद इंतखाब कीजिए, मगर आज ही से। तो आज की बात याद रखिए कि अपनी प्लेट का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी ग़िज़ा आपकी सेहत का एक अहम हिस्सा है। इसी तरह हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है। हम में से बहुत से अफराद वर्जिश के नाम से घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना जिम जाना या बहुत सख्त एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन हमारी जो जिस्मानी सरगर्मी या एक्टिविटी है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जिम नहीं है। चलना है, सीढ़ियाँ इस्तेमाल करना है, घर के काम करना है, बागवानी करना है।

0: बच्चों के लिए आपने काम करने हैं, उनके साथ खेलना है, ये सब हमारे जिस्म को एक्टिव रखने के तरीके हैं। आजकल हमारा ज़्यादा वक्त बैठकर गुजरता है, यानी ऑफिस में बैठना, गाड़ी में बैठना, घर आकर मोबाइल या टीवी के सामने बैठ जाना। मसला ये है कि जिस्म को मुसलसल हरकत की ज़रूरत होती है, जिस पर हमें तवज्जो देनी है। अगर आपका काम बैठकर करने वाला है तो दिन के दौरान छोटे छोटे वक्फे लीजिए, कुछ देर आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा आप चलिए और जिस्म को स्ट्रेच कीजिए। और एक आप मामूल बना लीजिए कि हर 30 मिनट के बाद आपको 2 से 3 मिनट इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो है वो करनी है। और अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल जो हदफ है उससे उसका आगाज़ न कीजिए, अपनी मौजूदा सेहत और जिस्मानी सलाहियत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता शुरू कीजिए। मसलन रोज़ाना कुछ मिनट आप पैदल चलने से आगाज़ कीजिए और वक्त के साथ साथ उसे बढ़ाते रहिए। बुज़ुर्ग अफराद भी अपनी सलाहियत के मुताबिक जो जिस्मानी सरगर्मी है वो जारी रख सकते हैं। बच्चों के लिए खेल कूद और फाल रहना उनकी सेहत और नशोनुमा के लिए बहुत अहम है। लेकिन अगर किसी शख्स को दिल, सांस, जोड़ों या किसी दूसरी बीमारी का मसला है तो नई या कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। याद रखिए कि जो एक्सरसाइज है वो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा की जाए, बल्कि उसमें सबसे अहम बात यह है कि मुस्तकिल मिजाजी हो। हम और आप आज ही अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर तब्दीली करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सोच लीजिए कि आज मैं पहले से कुछ ज़्यादा एक्टिव कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। लिफ्ट की जगह आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल कीजिए, गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कर लीजिए, खाने के बाद मुख्तसर जो वॉक है वो कीजिए, या हर घंटे के बाद चंद मिनट उठकर आप चलना शुरू कर दीजिए। ये छोटे छोटे कदम हैं लेकिन बहुत ही अच्छी आदत बन सकते हैं। आज का पैगाम बहुत सादा है कि ज़्यादा हरकत कीजिए, कम बैठिए, यानी मूव मोर सिट लेस, क्योंकि अब आपका जिस्म हरकत के लिए है। और अपनी सेहत के लिए आज एक कदम ज़रूर उठाइए। Your health matters.
1: Your health matters.
2: आप सुन रहे हैं FM 107.
3: दिल से देसी.
4: FM 107.

0: भी लिंक मेरे पास मैसेज ये फला जो मैं आपको फोकस करना चाहिए को लिंक पर अपडेट करना चाहिए तो बिल्कुल है, अभी एक फेक और आप फंसाने के लिए। उसके अलावा ड्राइवर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट, अगर सच में कोई इशू होता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाएं, वो डिलीवरी ड्राइवर का नंबर हुआ है उस पर कॉल करके बात करें कि क्या आपने ये भेजा, क्योंकि कई बार ऐसे लोग मिलते हैं कि आपको पता भी नहीं होता है क्या असल में ये डायरेक्ट ओशन के थ्रू मैसेज आ रहा है मेरे या फिर ये डिलीवरी वाला का है, तो आपको कुछ आई हो इस बहुत ही ज्यादा आपको श्योरिटी रखनी है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू या डायरेक्ट ड्राइवर को कॉल के बाद ही फैसला लें। हमेशा इनबिल्ट ऐप के चैट सिक्योर सिस्टम का ही इस्तेमाल करें, देख जिनसे आप बच सकते हैं। और नए जमाने के बारे में मैं आता रहूंगा, ये आजकल बहुत चल रहा है, मिसिंग डिलीवरी एड्रेस अपडेट। आप किसी भी वेबसाइट पर भेजते हैं, आपने किसी फूड को ऑर्डर किया और फिर ऑर्डर होने के बाद वो आपके सामने खड़ा है, ऐसा डिटेल लिख कर आता है, डायरेक्ट मैसेज आता है कि वो आपसे आपका एड्रेस पूछे, वो नहीं नहीं आप एप्लीकेशन पे या फिर दिया है ना उस पर करें। यही पर होता है सबसे बड़ा खेल और इस खेल के शिकार आप हो सकते हैं, इसलिए आपको होशियार रहने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के स्कैम के बारे में बात कर। FM 107 दिल से देसी स्कैम अलर्ट।
1: FM 107 दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवाइस करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत अवेयरनेस और

मॉडर्न लाइफ फास्ट है लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107, मैं हूं आपके साथ आपके आरजे महवेश खान और आप सबको मैं इस्लामिक मॉडर्न लाइफ में वेलकम कहती हूँ। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दुनिया देखा जाए तो इस वक्त हमारी जेब में सिमट आई है। एक छोटी सी स्क्रीन और पूरी दुनिया की खबरें, तस्वीरें, आवाजें, ख्यालात, फतवे, फैशन, नजरियात, सब एक लम्हे में हमारे सामने मौजूद होते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की कि तेज रफ्तार जो जदीद जिंदगी है, फास्ट पेस लाइफ,

दुनिया छोड़ने का नहीं कहता, बल्कि ये सिखाता है कि क्या देखना है, कितना देखना है और कब रुक जाना है। एक स्क्रॉल रोक लेना, एक वीडियो आगे बढ़ा देना, एक गलत अकाउंट अनफॉलो कर देना, ये सब छोटे अमल हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये बड़े बन सकते हैं, क्योंकि दिल की हिफाजत के लिए ये किए जाते हैं। या थोड़ा सा एक हम स्ट्रेस करते हैं, गौर करते हैं इस बात पे कि गलत अकाउंट को अनफॉलो कर देना। आजकल मेरी और आपकी दोनों की ऑब्जर्वेशन में है कि अगर हमें कुछ ऐसा कॉन्टेंट नज़र आ रहा होता है जो हमें सही नहीं लगता अखलाकी तौर पे और मॉडस्टी के हिसाब से, तो हम करते क्या हैं, हम जाके कमेंट कर करके उस जो भी शख्स है, कोई खातून है या कोई मर्द है, उनको हम ये बताते हैं कि आपने बहुत गलत किया, आप इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा लिबास आपके ऊपर सूट नहीं करता, आप कुछ और पहने, आप ख्याल रखें कि आपका ताल्लुक इस्लाम से है। ये सारी बातें हम करते हैं और नतीजा क्या होता है, लोगों की मजीद अटेंशन उस पोस्ट पे जाती है। मैंने जैसे पहले कहा कि सोशल मीडिया पूरा का पूरा जो इसका मामला है, जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो एल्गोरिथम पे है। आप जितना किसी चीज़ को लाइक करेंगे या कमेंट्स करेंगे, जितना जिस चीज़ को देखेंगे वो इतना ही आपके सामने आएगी, बल्कि और लोगों के सामने भी आएगी जो जिन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है या उन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है। तो नतीजा निकलता ये है कि जो काम आप ये सोच के कर रहे हैं कि शायद आप नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि आप उस चीज़ को और प्रमोट कर रहे हैं, उसकी और तशहीर कर रहे हैं। जब आपका कमेंट किसी पोस्ट पे नज़र आता है आपको जिसने फॉलो किया हुआ है, तो वो भी वो पोस्ट देख पाता है, और इस तरह से वो चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगी थी, आपने दूसरे जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको इनवाइट कर लिया कि वो भी वो आपकी पोस्ट देख सकें जो आपने देखी है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है और अकलमंदी का तकाजा यह है कि अगर आपको कभी भी कोई चीज़ नागवार लगती है, अगर आपको लगती है कि अखलाकी तौर पे और जैसे मैंने पहले कहा शर्मोहया के हिसाब से ये जो पोस्ट है ये ऐसी नहीं कि इसको मैं देखूं या मेरे जानने वालों में से कोई भी देखे, आपका जो हल्का अहबाब है उसमें से कोई देखे, तो आपको करना ये चाहिए कि फौरन से पेशतर उस अकाउंट को अनफॉलो कर दें। आप यकीन माने कि जितना इस तरह का रवैया रखा जाएगा, और अगर सब लोग जिनको फिक्र है इस बात की, क्योंकि नज़रों को हिफाजत की ज़रूरत है, उन्होंने ऐसा कंटेंट नहीं देखना, अगर यही रवैया अख्तियार करें बजाय किसी को लेक्चर देने के, तो वो पोस्ट लोगों की नज़र से ज़्यादा गुजरेगी नहीं, और जो भी पोस्ट करने वाले का मकसद है वो ज़्यादा लाइक्स हैं, ज़्यादा कमेंट्स हैं और ज़्यादा अटेंशन है। और आप और मैं बखूबी जानते हैं कि अगर किसी अटेंशन सीकर को अटेंशन ना मिले तो फिर वो काम करना तर्क कर देता है। तो इसलिए अब से ये आदत बनाएं कि जो चीज़ भी मोरालिटी के हिसाब से, मॉडस्टी के हिसाब से आपको मुनासिब नहीं लगती, उसको आपने इग्नोर करना है, अनफॉलो करना है, अनसब्सक्राइब करना है और आगे बढ़ जाना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पूरी हो जाती है। हिदायत देना अल्लाह का काम है, अल्लाह ने चाहा तो उस शख्सियत को ज़रूर हिदायत मिलेगी। याद रखिए, जो दिल को ख़राब करता है वो चाहे हराम ना भी हो तो नुकसान दे ज़रूर होता है। नज़र की हिफाजत कोई पाबंदी नहीं, ये रहमत है, ये सुकून का रास्ता है, ये ईमान की ताजगी है। अब आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक और बुनियादी नेमत की तरफ चलते हैं, जिस पर डिजिटल दुनिया ने सबसे ज़्यादा कब्ज़ा किया हुआ है। अगर मैं आपसे एक बहुत सादा सवाल पूछूं, आपके पास इस वक्त सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या हो सकता है वो जो बहुत वैल्यूएबल हो, बहुत कीमती हो? क्या मुमकिन है कि ज़्यादातर लोग कहें कि सेहत, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, या फिर कुछ लोगों के लिए वो शायद फैमिली हो, और वो लोग जो थोड़े से सुकून में रहना चाहते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उनके लिए शायद सुकून हो, और फिर एक कैटेगरी आ जाती है जिनके लिए होगा ईमान। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से

सबसे बड़ा जहाद ही अपने नफ्स पे काबू पाना है. जब दिल स्क्रॉल करना चाहे तो आप रुक जाइए, ये भी एक जहाद है और अल्लाह ताला इस पे भी अजर देगा. आखिर में बस यही कहना चाहूंगी कि डिजिटल डिसिप्लिन दर्द की दुनिया नहीं बल्कि दुरुस्त इस्तेमाल है. डिजिटल रोजा दिल को आजाद करेगा और कॉन्टेंट की सफाई ईमान को ताजा करेगी. लिस्टनर्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय-बाय.

दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।

दोस्तों, घर में एक फंक्शनल फायरिंग शना एक अहम रोल की रिक्वायरमेंट है। अब थोड़े वक्त के बाद ये चेक कर वो वैलिड है और गन में इसे ऐसी जगह रखी इमरजेंसी वक्त आपसे मिल सके और साथ ही इसे इस्तेमाल करने को भी यकीन बनाए। याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी की इमरजेंसी बचा सकती है। बाय शिफ्ट इग्नोर करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है, ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

अगर मैंने तुमसे कोई अजर मांगा है तो वो तुम ही को मुबारक रहे। मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है और वो हर चीज पर गवाह है। इसे कहो, मेरा रब मुझ पर हक का इल्का करता है और वो तमाम पोशीदा हकीकतों का जानने वाला है। कहो, हक आ गया और अब बातिल के लिए कुछ नहीं हो सकता। कहो, अगर मैं गुमराह हो गया हूं तो मेरी गुमराही का वबाल मुझ पर है, और अगर मैं हिदायत पर हूं तो उस वही की बिना पर हूं जो मेरा रब मेरे ऊपर नाजिल करता है। वो सब कुछ सुनता है और करीब ही है। काश तुम देखो इन्हें उस वक्त जब ये लोग घबराए फिर रहे होंगे और कहीं बच कर न जा सकेंगे, बल्कि करीब ही से पकड़ लिए जाएंगे। उस वक्त ये कहेंगे कि हम उस पर ईमान ले आए, हालांकि अब दूर निकली हुई चीज कहां हाथ आ सकती है। इससे पहले ये कुफर कर चुके थे और बिला तहकीक दूर दूर की कौड़ियां लाया करते थे। उस वक्त जिस चीज की ये तमन्ना कर रहे होंगे उससे महरूम कर दिए जाएंगे, जिस तरह इनके पेश रो हम मशरब महरूम हो चुके होंगे। ये बड़े गुमराह कुन शक में पड़े हुए थे।

إِلَى اللَّهِ